जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सरो सामान है, और जो कुछ अल्लाह के हां है वो बेहतर भी है और पायदार भी। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं, जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। हमने जो कुछ भी रिस्क उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जब उन पर ज्यादती की जाती है तो उसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे उसका अज्र अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला लें उनको मुलामत नहीं की जा सकती। मुलामत के मुस्तहक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में ना हक ज्यादतियां करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक आजाब है। अल्बत्ता जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये बड़ी उलुल अजमी के कामों में से है, जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे उसका कोई संभालने वाला अल्लाह के बाद नहीं है। तुम देखोगे कि ये जालिम जब आजाब देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की भी कोई सबील है, और तुम देखोगे कि ये जहन्नम के सामने जब लाए जाएंगे तो जिल्लत के मारे झुके जा रहे होंगे और उसको नजर बचा बचा कर कनंखियों से देखेंगे। उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए थे कहेंगे कि वाकई असल ज़ियाकार वही है जिन्होंने आज कयामत के दिन अपने आप को और अपने मुताल्लिकीन को खसारे में डाल दिया। खबरदार रहो, जालिम लोग मुस्तकिल आजाब में होंगे और उनके कोई हामी और सरपरस्त न होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में उनकी मदद को आए। जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसके लिए बचाव की कोई सबील नहीं।

0: इसे सईद अल इस्तिगफार कहा जाता है, जिसने पूरे यकीन के साथ इसे सुबह के वक्त पढ़ लिया और उस दिन वो फौत हो गया तो जन्नत में चला गया, और जिसने शाम के वक्त इसे पूरे यकीन के साथ पढ़ा और उसी रात वो फौत हो गया तो जन्नत में दाखिल हो गया। रिवायत है बुखारी की।
1: اللهم إني أصبحت أشعر

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। नींद बहुत अहम है, नींद से हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, यानी हमारी सेहत ठीक रहती है। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें जो हैं वो भी सही ही रहती हैं, जैसे हमारा मूड है। अगर नींद आपकी ठीक है तो ठीक रहेगा, अगर आप कुछ आपकी तबीयत नासाज है तो भी वो ठीक हो जाएगी। तो क्या है कि नींद सिर्फ और सिर्फ आराम का जरिया नहीं है, बल्कि हमारी सेहत का एक अहम सतून है। नींद हमारे दिमाग और जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है। नींद की कमी की वजह से आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो तवज्जो है, उसमें कमी हो जाती है। मोटापा जो है वो आना शुरू हो जाता है। दिल की बेशुमार बीमारियां हमारे साथ साथ चलना शुरू हो जाती हैं। इम्यूनिटी या फिर जो कुव्वत मुदाफ़त है उसमें भी कमी आ जाती है। एडल्ट्स जो अफराद हैं उनके लिए 7 से 8 घंटे नींद ज़रूरी है, और बच्चे और नौजवानों के लिए इससे कुछ ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स रोज़ाना 6 घंटे से कम सोता है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, उसका वज़न बढ़ने का ख़तरा ज़्यादा होता चला जाता है। तो इसके लिए हमें करना यह है कि रात को एक ही वक्त में सोने और सुबह एक ही वक्त पर जागने की आदत डालनी है। सोने से पहले मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर कम इस्तेमाल कीजिए।

0: उसके अलावा आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर मुराकबा दिन के आखिर में करें ताकि आपका जिस्म सुकून हासिल कर सके। कमरे को आराम दें और कुछ तारीख रखें। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए नींद की स्केड्यूल का ख्याल रखिए। नींद हमारे लिए अहम तो है ही, मगर हमारी सेहत की बुनियाद भी है। याद रखिए, अच्छी नींद सेहतमंद जिस्म और ताजा दिमाग। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Maximum music, maximum fun
3: on FM 107, दिल से देसी।

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियां नेहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं

0: दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, एक खूबसूरत जंगल में दो गहरे दोस्त रहा करते थे। उन दोनों का नाम अहमद और यूसुफ था। दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल के रास्ते बहुत खतरनाक थे और दोनों दोस्तों को मालूम था कि यहाँ कई खतरनाक जानवर छुपे हुए हैं। एक दिन अहमद और यूसुफ दोनों जंगल की सैर करने को निकले। रास्ते में चलते हुए उन्होंने आपस में वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दूर तक चलने के बाद अचानक दोनों ने भारी कदमों की आवाज सुनी। जब उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई तो एक बड़ा सा भालू उनके करीब आ रहा था। अहमद और यूसुफ दोनों फौरन खौफजदा हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। ये जंगल बहुत ज्यादा घना था और वहां भालू का आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब वो दोनों इस सूरत हाल में फंस चुके थे। अहमद, जो कि थोड़ा ज्यादा डरपोक था, फौरन एक दरख्त की तरफ दौड़ने लगा और उसके ऊपर चढ़ गया। यूसुफ, जो कि ज्यादा समझदार था, उसने फौरन फैसला किया कि वो भालू के आगे खुद को मुर्दा दिखाएगा ताकि भालू उससे दूर हो जाए। उसने फौरन जमीन पर उल्टा लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांस भी रोक ली। जब भालू यूसुफ के करीब आया तो उसने यूसुफ की तरफ एक नजर डाली और फिर उसके कान के करीब सूंघना शुरू कर दिया। यूसुफ का दिल डर से बहुत तेजी से दौड़ रहा था, मगर वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। भालू ने थोड़ी देर तक तो उसे सूंघा, फिर उसने यूसुफ को छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में वापस चला गया। उसके बाद अहमद दरख से नीचे उतरा और यूसुफ के पास आया। वो बहुत परेशान था और उसने पूछा, यूसुफ तुम ठीक हो ना? वो भालू तुम्हें क्या कह रहा था? यूसुफ मुस्कुराते हुए बोला, वो भालू कुछ खास नहीं कह रहा था मेरे दोस्त, उसने मुझे सूंघा और फिर बस इतना ही कहा कि झूठे दोस्तों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। अहमद ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, यूसुफ मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हें छोड़कर दरख पर चढ़ गया। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया। यूसुफ ने उसकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं अहमद, मैं जानता हूँ कि तुम खौफजदा हो गए थे, मगर एक सच्चा दोस्त कभी भी अपने दोस्त को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। अहमद ने इस बात पर गौर किया और दिल से फैसला किया कि वो हमेशा यूसुफ के साथ वफा करेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे सूरत हाल कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। यूसुफ ने कहा, अहमद तुमने जो किया वो गलती थी, मगर उससे सीखो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों दोस्तों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इस सबक को हमेशा याद रखेंगे। यूसुफ ने अहमद से कहा, याद रखो, एक सच्चा दोस्त हर मुश्किल में साथ रहता है, वो तुम्हारी मदद करता है चाहे हालात कैसे भी हों। इसके बाद अहमद और यूसुफ ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे चाहे कुछ भी हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर ये अहद किया कि वो एक दूसरे के वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को मुश्किल में अकेला छोड़कर भागेंगे नहीं। तो दोस्तों, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे को अकेला छोड़कर भागते नहीं हैं।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है, किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है।

0: इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुताल्लिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाअत कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूं एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट की, और ये कॉन्सेप्ट और ये टर्म है इक्विटी। जी हाँ, इकोनॉमिक्स में इक्विटी का लफ्ज अक्सर इस्तेमाल होता है और इसके मायने इंसाफ या फिर बराबरी से है। ये एक ऐसे निजाम को दिखाता है जहाँ लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक रिसोर्सेस या फिर एसेट्स फरहम किए जाते हैं। इक्विटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ माली या फिर फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बल्कि सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल होता है। इसके बहुत ही बड़े क्लोज मायने हैं, लेकिन उसके पहले इक्विटी की मीनिंग को समझ लेते हैं। दोस्तों, इक्विटी का असल मतलब है इंसाफ और बराबरी। वैसे सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। इसका मतलब ये है कि हर शख्स को उसकी जरूरत के मुताबिक रिसोर्सेस का मौका दिया जाए। ये एक ऐसे निजाम की तरफ इशारा करता है जहां हर शख्स को उनकी मेहनत और जरूरत के मुताबिक रिसोर्सेस मिलते हैं। वेल, इक्विटी का कॉन्सेप्ट अक्सर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से समझा जाता है। तो इसके इस्तेमाल पर भी जरा गौर कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में इक्विटी का इस्तेमाल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में होता है। ये आम तौर पर दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। पहला है फाइनेंशियल इक्विटी और दूसरा है सोशल इक्विटी। फाइनेंशियल इक्विटी क्या है? दोस्तों, फाइनेंशियल इक्विटी का मतलब है किसी कंपनी या बिजनेस में ओनरशिप का हिस्सा। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्से के मालिक बन जाते हैं। ये इक्विटी आपको कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा देने का हक देती है। वहीं पर फाइनेंशियल इक्विटी का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में होता है, जहां पर इन्वेस्टर्स अपने पैसों को कंपनीज में लगाते हैं। और दूसरा टर्म है सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी का मतलब है सब लोगों को बराबर मौके देना, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ केयर या एम्प्लॉयमेंट के हों। इसका मकसद ये है कि हर शख्स को उसकी जरूरत के मुताबिक रिसोर्सेस फरहम किए जाएं, ताकि सब लोग बराबर तरीके से ग्रो करें, आगे बढ़ें। ये कॉन्सेप्ट अक्सर गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्ट्रेटजी, सोशल प्रोग्राम्स में देखा जाता है। और ये एक मुल्क तक महदूद नहीं है। जितनी भी कंट्रीज हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को अपनी पॉलिसीज में अडॉप्ट करती ही करती हैं। वेल, इक्विटी का असर किसी भी सोसाइटी के इकोनॉमी पर गहरा होता है। जब एक सोसाइटी में इक्विटी होती है तो लोगों में बराबरी और इंसाफ का एहसास होता है। इसका असर सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है। वहीं पर अगर इक्विटी नहीं होती तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह का माहौल बन जाता है। वैसे सोशल स्टेबिलिटी जो है, वो किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बहुत अहम है। जब लोगों को बराबर मौके मिलते हैं तो वो अपने आप में इत्तेहाद, अमन महसूस करते हैं। इससे सोसाइटी में सोशल टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि हम सबको अच्छा खाने के लिए, अच्छा पीने के लिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर बराबर से मिल रही है। जैसे अगर आप एग्जांपल लेकर समझना चाहें तो कतर इज अ वेरी गुड एग्जांपल। यहाँ पर हेल्थ केयर सबके लिए एक बराबर है। जो चाहे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को हेल्थ फैसिलिटीज बराबर तरीके से दी जाती हैं और वो उन्हें उसी तरह से अवेल करता है। तो इससे माशरे में सोशल स्टेबिलिटी जो है वो आती है। वहीं इकोनॉमी भी ग्रो करती है। जब लोगों को बराबर मौके मिलते हैं तो वो अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं और इकोनॉमी में हिस्सा देते हैं। इस इकोनॉमिक ग्रोथ को फरोग मिलता है। इक्विटी की वजह से ज्यादा लोग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मौके हासिल करते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होता है। वहीं पर इस ग्रोथ की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। इक्विटी की वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। जब सब लोगों को हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बराबर मौके मिलेंगे तो उनकी जिंदगी बेहतर ही होगी ना। इससे उनकी हेल्थ और वेलबींग भी बेहतर होती है, जिससे और ज्यादा जोश और जज्बे से वो काम

0: करते हैं। जब वो काम करते हैं वो तो सिर्फ पैसा नहीं कमाते, अपनी फैमिली का घर अपना घर नहीं चलाते, बल्कि पैरेलली इकोनॉमी की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देकर भी मैं आपको समझाती हूँ इक्विटी है क्या। ये एग्जांपल सबसे पहले मेरे जहन में एजुकेशन को लेकर आता है। देखो, एजुकेशन के हवाले से इक्विटी का मतलब है कि हर बच्चे को बेहतर एजुकेशन का मौका मिलना ही चाहिए। अगर किसी इलाके में सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही अच्छे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो ये इक्विटी का वायलेशन है। जी हाँ, गवर्नमेंट्स खासकर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स के जरिए एजुकेशन में इक्विटी को प्रमोट करते हैं, जो कि उन्हें करना जरूरी होता ही है। वहीं पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर में इक्विटी का मतलब है कि सब लोगों को बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज का मौका मिले। अगर सिर्फ कुछ लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं अच्छी वाली और बाकी लोग इससे महरूम हैं, तो ये इक्विटी का वायलेशन है। गवर्नमेंट्स अक्सर यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम के जरिए हेल्थ केयर में इक्विटी को प्रमोट करते हैं, जिसे करना मैंडेटरी है। वहीं बात की जाए एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी इक्विटी के मतलब को समझना जरूरी है। अगर किसी कंपनी में सिर्फ कुछ लोगों को ही नौकरियां मिलती हैं और बाकी लोग महरूम रह जाते हैं, या यूं कहें कि उनके घर वाले, खानदान, रिश्तेदार को ही बार बार जॉब्स मिल रही हैं और बाकी आउटसाइडर्स को चांस ही नहीं मिल रहा, तो ये हुआ इक्विटी का वायलेशन और ऐसे में शिकायत की जा सकती है। रिया, गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस खासकर डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव प्रोग्राम्स के जरिए एम्प्लॉयमेंट में इक्विटी को प्रमोट करते हैं। तभी तो आपने देखा है रिजर्वेशंस जो है वो इम्पोज किए गए हैं और तरह की स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज पर काम किया जाता है ताकि इंक्लूसिव सोसाइटी साफ दिखे। तो इक्विटी एक बेहद अहम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो इंसाफ और बराबरी को दिखाता है। इसका इस्तेमाल फाइनेंशियल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है। इक्विटी का असर किसी भी सोसाइटी या इकोनॉमी पर बहुत गहरा होता है और ये सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है। इसलिए हर सोसाइटी को इक्विटी को प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सब लोगों को बराबर मौके मिल सके और वो अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सके। वेल, मैं उम्मीद कर रही हूँ आज के इस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को मैं भरपूर तरीके से आपको समझा पाई होंगी। वेल, अभी के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाजत लूंगी। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इकोनॉमिक टर्म के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

क्रिकेट लवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो क्रिकेट के मैदान का असल लेजेंड था, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। डोनाल्ड ब्रैडमैन का जन्म 27 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में हुआ। छोटी सी उम्र से ही उनका क्रिकेट का शौक शुरू हो गया था। क्या आप यकीन करेंगे, बचपन में वो एक गोल्फ बॉल और क्रिकेट स्टंप के साथ प्रैक्टिस करते थे। बस इसी डेडिकेशन ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनाया। उन्होंने 1928 में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला। फिर जो ब्रैडमैन का सफर शुरू हुआ वो सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ता गया। सर डॉन का टेस्ट बैटिंग एवरेज 99.94 है, जो क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे अनबीटेबल रिकॉर्ड है। ब्रैडमैन ने अपने करियर में 52 टेस्ट मैचेस खेले और 29 सेंचुरीज बनाई। 1930 के एशेज सीरीज में उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर्स का हाल बुरा कर दिया। सिर्फ एक सीरीज में 974 यानी 974 रन बनाए। वो सिर्फ एक ग्रेट बैट्समैन नहीं बल्कि एक ट्रू स्पोर्ट्समैन भी थे। ब्रैडमैन का गेम के लिए जज्बा और ऑनेस्टी उन्हें और भी रेस्पेक्टेबल बनाती है और इसी वजह से उनको टाइटल मिला, द डॉन। उन्होंने 1948 में क्रिकेट को अलविदा कहा, लेकिन उनकी लेगेसी कभी खत्म नहीं हुई। सर डॉन ब्रैडमैन को 1949 में नाइटहुड का ऑनर मिला। वो आज तक सिर्फ क्रिकेट के नाइट है। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन क्रिकेट के मैदान का एक ऐसा सितारा है जो कभी नहीं बुझेगा। वो हमें सिखाते हैं कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। ब्रैडमैन का नाम क्रिकेट की किताब में हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। ये थी कहानी क्रिकेट लेजेंड सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज और सुनते रहिए स्पोर्ट्स हाइलाइट्स।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 FM 107,
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी A4 अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। Assalamualaikum, मरहबा, मैं हूँ आपकी A4 अमिता और लाइफ को सिंपल और इजी बनाने के लिए लाइफ हैक्स आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज का सबसे पहला जो लाइफ हैक है वो है, कपड़ों की सिलवटें मिटाओ जीरो मेहनत में। कैसे, चलो आपको बताते हैं। तो शर्ट या पैंट से सिलवटें या रिंकल्स हटाने के लिए हमें आयरन या स्टीमर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इस झंझट को छोड़ो। क्या करना है आपको, अपने रिंकल्ड कपड़ों के साथ ड्रायर में कुछ आइस क्यूब्स या फिर एक गीला कपड़ा डाल देना है। जैसे ही आइस पिघलेगी और स्टीम बनेगी, आपके कपड़ों की सारी सिलवटें गायब हो जाएगी। ये ट्रिक हल्के कपड़ों पर जादू की तरह काम करती है। बेस्ट पार्ट, 10 मिनट से ज्यादा ड्रायर चलाने की जरूरत नहीं। पर इसी के साथ दूसरा हैक है, एक रीयूजेबल बैग से 2 बन सकते हैं। कैसे, चलो बताते हैं। ये अब तक का सबसे कूल हैक है। मतलब एक सैंडविच बैग से 2 स्नैक साइज के बैग बड़े आसानी से बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे आपको बताते हैं। एक पुराना बटर नाइफ आप लो, उसे लाइटर से गर्म कर लो या गैस पर थोड़ा सा गर्म कर लो, एंड देन इस पर्टिकुलर बैग को बीज से काट दो। अब नाइफ गर्म रहेगा तो प्लास्टिक के किनारों को भी वो सील कर देगा, और ये सील इतनी स्ट्रांग होगी जितनी फैक्ट्री से बनकर आती है। अमेजिंग है ना। मतलब 2 छोटे छोटे बैग्स आपके एक बैग से तैयार हो जाएंगे, तो स्नैकिंग के लिए बड़े कमाल का इस्तेमाल हो सकता है। सो यस, इसे जरूर ट्राई करना और हमसे भी शेयर करना। फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।
3: Anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में। हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड।

आज हम सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में बात करेंगे। जब हम ट्रैवल करते हैं तो अगर हम सस्टेनेबल टूरिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हम अपनी प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब भी ट्रैवल करें, इको फ्रेंडली होटल्स या अकोमोडेशंस चूज करें जो एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। ट्रैवल के दौरान प्लास्टिक का यूज कम करें और रीयूजेबल बॉटल्स और बैग्स का इस्तेमाल करें। लोकल कल्चर और ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करें और अपने टूरिज्म प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल रखें। लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करें, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल फूड मार्केट का यूज करें। सस्टेनेबल टूरिज्म से हम अपने ट्रैवल को एक्साइटिंग और एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज।

दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमरास ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107. Time check. Time check. Right guys, time for the time check. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
0: देखो कहीं ना कहीं मुझे जो है ना वो सुबह बहुत अच्छी लगती है. जैसे मैंने हमेशा ही आप लोगों से कहा है कि जो सुबह सूरज ये जो अर्ली मॉर्निंग्स हैं वो इतनी अच्छी इतनी प्यारी इतनी पॉजिटिव होती हैं. कम से कम मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो एक नया नूर बिखेर रही होती हैं, एक नई उम्मीद होती है, एक नई खुशी का एहसास होता है. तो बस मुस्कुरा के इस दिन की शुरुआत की.

0: कीजिए। मेरा मतलब है आज के दिन की शुरुआत भी मुस्कुरा के कीजिए, क्योंकि आपके पास हर लम्हा मौका है। आज एक बहुत भरपूर मौका है आपके पास एक नई कहानी लिखने का, और उस कहानी के हीरो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। राइट गाइस, सलाम आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? मैं हूं नाजिया और आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। पूरे 3 घंटे आपके साथ रहने वाली हूं और ये उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे। वैसे पहले आपका हाल चाल मैं पूछती हूं हमेशा ही कि आप खैरियत से हैं, चाहे आप घर पर नाश्ता कर रहे हैं या नाश्ता बना रहे हैं, या फिर हो सकता है ऑफिस जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर सिंपली अपनी मॉर्निंग ड्राइव को इंजॉय कर रहे हैं। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। नंबर्स हैं हमारे 666-22-107, यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं फिर नंबर है 6-4-3-6-4-3-7-7। तो किस तरह से आज की मॉर्निंग की शुरुआत हुई है ज़रा बताइए मुझे, अच्छे से सॉलिड तरीके से हुई या लड़खड़ा के डगमगाते हुए हुई, या फिर अभी तक आपकी मॉर्निंग की शुरुआत ही नहीं हुई। जो भी कुछ है अपना हालचाल मुझे बताइए। और आज इस शो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें तो हर रोज़ ही हम करते हैं आपके लिए, लेकर आते हैं बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट्स हैं, कुछ यूज़फुल अपडेट्स भी होती है हमारे पास, और हमारे पास जो है वो इंटरेस्टिंग डिस्कशंस भी होते हैं जो आज भी होंगे, और आज का सवाल जो है वो इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो आज इस पर ज़रूर बात करूँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के बात करूँगी, थोड़ा सेट हो जाए। चलिए आप भी थोड़ा सा अपनी कॉफ़ी इंजॉय कीजिए, अपनी चाय इंजॉय कीजिए, और अपना एक प्यारा सा वॉइस नोट भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए 666-22-107 पे, किस तरह से आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हुई, हो चुकी है, नहीं हुई है, या हो रही है, या होने वाली है, या अभी भी आप रिलैक्स मोड में चल रहे, या ऑलरेडी आप काम पे पहुंच चुके हैं और काम स्टार्ट कर चुके हैं। सब कुछ हम और आप मिलकर जानेंगे यहीं पर, और वापस आएंगे तो कुछ और भी बातें इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट बिफोर दैट अभी बढ़ रहे हैं मॉर्निंग अस्कार की तरफ, सो स्टे हुक टू FM 107 दिल से देसी।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے،
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس، اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
2: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں،
3: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ، اونلی آن FM 107۔
2: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔
4: Number one hits music station anytime anywhere
5: kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107 log into our website urduradio.qa or download the app QMC now।
3: doston گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے۔ اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی سامان، خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز، پلاسٹک، کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے، آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں۔ روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے، اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے۔ اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے، کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے۔ ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے۔ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں۔ سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی ان یوزول اسمیل، وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگوشر ایکسیسیبل ہو، اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
6: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ آر جے نازیہ کے ساتھ، صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
7: رائٹ گائز، ایک بار واپس آپ سبھی کو کہیں گے ویلکم، خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں سمر مارننگز، میں ہوں نازیہ آپ کے ساتھ، اینڈ 6:19 آن دا کلاک۔ کچھ لوگوں کے پیارے پیارے گڈ مارننگ والے میسیجز آ گئے، تو سب سے پہلے جو ہے یہ شامل کرتے ہیں۔ یہاں پر میسیج ہے توفیق جی کا، ویری گڈ مارننگ، سلام کہتے ہیں، اینڈ آئی تھنک ہی اسٹارٹڈ ود ہز بریکفاسٹ۔ کیا بات ہے، روز امیزنگ سا بریکفاسٹ، بس آپ کو اچھے سے ہضم ہو جائے۔ اوکے، یہاں ملک جی کا ایک میسیج ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، ابھی اس پہ ہم آپ کو دھیرے دھیرے ہی کچھ بتا پائیں گے، کیونکہ جو نمبر جس نمبر سے آپ کا رابطہ چل رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں میسیج ضرور ڈالیے، کیونکہ وہی ہے ٹیم ہماری جو ایڈمن ٹیم ہے۔ یہاں پر کسی نے پوچھا، ملک جی نے جو پوچھا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، وہ اپنی پرائز منی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو جو ایڈمن ٹیم جہاں سے آپ کو میسیج آیا ہے، وہاں پر واپس آپ میسیج ڈال سکتے ہیں، ان سے کوئری رکھیے، ان سے رابطے میں رہیے، کیونکہ ہم لوگ کو زیادہ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے، بس آپ کا میسیج हम पहुंचा देते हैं टू पिचते सेट कि यस वी आर डूइंग तो फिर हम वापस से कहेंगे उनसे बट आई इंसिस्ट कि अगर आप खुद डायरेक्टली जो है राबता करें देन दैट वुड बी ग्रेट ओके यहाँ पर अहमद जी का मैसेज है गुड मॉर्निंग कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे हुसैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कहते हैं मैं अलखोर से आपको सुन रहा हूँ सो थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया जी यहाँ पर तारिक जी का मैसेज है सलाम करते हैं कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे और मेरी तो मॉर्निंग की शुरुआत 3 बजे से हो जाती है अच्छा वाह क्या बात है भाई आप जल्दी उठते हैं नमाज आई थिंक आराम से आप पढ़ के रिलैक्स करके थोड़ा सा टाइम निकाल लेते होंगे अपने लिए भी अर्ली मॉर्निंग क्या बहुत ज़्यादा हासिल बसल होती है क्योंकि लोग उस तरह से जल्दी शायद मैं कहूँगी आपका मुझे नहीं मालूम आप लोग तो अगर टाइमली उठते हैं थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं देन दैट्स ग्रेट मेरे लिए होता है कि मैं एकदम टाइम पर उठी फिर हासिल बसल होती जल्दी जल्दी किया फिर सो गई फिर उठी फिर चली तो इस चीज़ इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरह से मॉर्निंग्स को इन्जॉय कर पाती हूँ जैसे करना चाहिए यहाँ मुजाहिर जी का मैसेज है गुड मॉर्निंग कहते हैं कैसी हैं हाय हेलो आई एम गुड लियाकत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी एंड और भी हमारे पास मैसेज है सलाम कहाँ एंड गुड मॉर्निंग कहाँ है इनका नाम है सामी जी वेरी गुड मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग और यहाँ पे सलाम कहते हैं मकसूद जी वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग चलिए बहुत सारे लोगों का हाल चाल मुझे तो मिल गया मेरा तो मैं कंटिन्यूसली आपको बता ही रही हूँ अपने बारे में चलिए अब जो है मौसम के हाल चाल की तरफ आ जाते हैं व्हाट यू से
3: मौसम का हाल चाल
7: कितना अच्छा हो गया मौसम से मुझे भाई आप इतने नाराज क्यों हो इतनी गर्मी मतलब इतना गुस्सा क्यों है आपको थोड़ा सा पानी पीजिए थोड़ा रिलैक्स कीजिए आराम कीजिए ऐसा होता नहीं ऐसा हम पूछ नहीं पाते हैं उसे बता पाते हैं मौसम का हाल तो आज किस तरह से मौसम रहने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ आज कतर में जो मौसम है वो ज़्यादातर सानी और बहुत ज़्यादा गर्म ही रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा जो आपको फील होगा 51 वहीं पर मिनिमम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 37% है सुबह के वक्त और भी बढ़ेगी वहीं हवा की रफ्तार की बात की जाए तो तकरीबन 10 किलोमीटर पर आवर और वहीं पर सनराइज़ की मैं बात करूँ तो 4:56 AM पे सनराइज़ हुआ एंड सनसेट होगा 6:24 PM पे तो ऑल टुगेदर आज भी मौसम थोड़ा सा ऐसा है जहां आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आपको ख्याल रखना है अपने पानी जो है वो ज़्यादा पिए डायरेक्ट धूप से बचिए अपने जो लव्ड वंस हैं उनका भी ख्याल रखिए जो स्पेशली बच्चे हैं उनका ख्याल रखिए और एल्डरली पीपल उनका भी ख्याल रखना है क्योंकि बच्चे और ये एल्डरली पीपल ये दोनों जो हैं वो पानी इनटेक उस तरह से नहीं लेते जैसा मुझे लगता है तो इनको बार बार याद दिलाना इनको बार बार कहना कि भाई आपको थोड़ा सा पानी पीना है क्योंकि हमें महसूस नहीं होता है लेकिन हमारी बॉडी को चाहिए तो प्रॉपर हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हाँ बाहर की जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उन्हें आपको अवॉइड करना है इफ़ इन केस आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं आपने प्लान नहीं किए अपने वेकेशन और बच्चे आपके साथ घर में ही हैं तो उनको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज कीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है और वो क्या हो सकती है वो भी हम बात करेंगे उस पर भी बात होगी लेकिन उसके पहले आज का जो टॉपिक है उस पर आने से भी पहले आज 22 जुलाई को जो है वो कौन कौन से डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं उस पर मैं पहले बात कर लेती हूँ जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आज है 22 जुलाई और आज पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेन डे ओहो आज का दिन जो है वो ब्रेन हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है और ये हमें याद दिलाता है कि जिस तरह से हम अपनी बॉडी का अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं उसी तरह से हमें अपने दिमाग का और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है तो आज का दिन है तो अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने का दिन है थोड़ा सा अपनी सेहत पर यू नो मेंटल हेल्थ पर गौर करने का भी दिन है उसके साथ है आज नेशनल मैंगो डे तो आज मैंगो लवर्स के लिए स्पेशल दिन है वैसे तो सीज़न ही है ये ऐसा चल रहा है कि मैंगो सभी खा रहे हैं इन्जॉय कर रहे हैं और मैंगो आई थिंक सबका फेवरेट और मैंगो बाय द वे दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंदीदा फलों में से एक माना जाता है एंड गर्मियां लोगों को एकदम अच्छी नहीं लगती बट गर्मियों का इंतज़ार रहता है फॉर द रीज़न कि मैंगोज़ हम इन्जॉय करेंगे तो आज अपने फेवरेट वाला जो आपका मैंगो है उसके साथ अपनी अच्छी सी पिक्चर क्लिक कीजिएगा इंस्टा पर डालिएगा हमें भी टैग कीजिएगा हमें बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट वाला मैंगो वैसे इतनी वराइटीज़ है कुछ के तो मैंने नाम ही नहीं सुने होते जब मुझे लोग बताते हैं कि ये वाला मेरा फेवरेट है अच्छा ये भी होता है क्या तो इस तरह का भी है उसके साथ आज ऐसा दिन भी है जहां पर आपको थोड़ा सा इट्स अ रिलैक्स्ड डे, जहां वैसे तो आज क्योंकि वेंसडे आई डोंट नो कितने लोगों को मिल पाएगा मौका कि वो रिलैक्स करें, बट हाँ अगर आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स करना, अपने बिजी रूटीन से ब्रेक लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का मैसेज ये है कि आप अपने लिए वक्त निकालिए, रेस्ट को भी इम्पॉर्टेंस दीजिए और अपनी सेहत और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और हाँ फ्रूट्स को इन्जॉय भी कीजिए विद दिस मैंगो नेशनल मैंगो डे। तो ये सारे दिन हो गए और मौसम का हाल चाल हो गया, कुछ और लोगों के भी मैसेजेस हैं मेरे पास। जैसे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज मुझे वॉइस नोट किया, हालांकि मुझे सुनना पड़ेगा ये कौन है क्या कहना चाहा है, बट थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और इनका नाम है अली, थैंक यू अली, आपने बहुत ही प्यारा मैसेज किया है, एक बहुत ही अच्छी सी पिक्चर भेजी है, एकदम प्यारी सी सुबह है और इतना अच्छा, मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब आ रही होती है जब भी आप यू नो कनेक्ट होते हैं। अच्छा कोई मुझे कॉल कर रहा है 6622107 पे, जिनके लास्ट में नंबर है 721, सो आई रिक्वेस्ट अगर आप चाहें कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 4434377। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि 666 वाले नंबर पे हम आपके सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस ही ले पाते हैं। अच्छा हाँ बता रहे हैं, टॉपिक भी अभी बताते हैं, रुकिए रुकिए सब्र कीजिए। यहाँ पर जो है टॉपिक पूछ रहे हैं आज का टॉपिक क्या है, इनका नाम है सज्जाद। तो अभी हमने टॉपिक बताया ही नहीं है, अब से थोड़ी देर में जो है वो टॉपिक रिवील करने वाले, मुझे लगता है थोड़ा सा अभी अपडेट्स हो जाए और चीज़ें हो जाए फिर टॉपिक एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर वो चलता रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा रुक के हम स्टार्ट करते हैं 7 बजे के आसपास करते हैं। What do you say? तो थोड़ा सा टाइम है आपसे इंटरेक्ट करने का अच्छे से, एंड ऑफ कोर्स फिर टॉपिक पे आएंगे तो फिर वो बातें तो चलती रहेंगी। अच्छा इसके साथ हमारे पास जो है मैसेज, इनका नाम भी मैं पढ़ लेती हूँ, इनका नाम हबीबी। अच्छा पता नहीं शायद यही नाम है कि क्या कहा है। ओके ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, इसके साथ हमें गुड मॉर्निंग भेजा है, बहुत ही प्यारा सा पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत सी है, इनका नाम है हुसैन, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड यहाँ पर इकराम हमें हाई कहते हुए, हेलो एंड हाई एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। फिलहाल यहाँ पर बढ़ रही हूँ छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आऊँगी तो कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगी एंड देन फाइनली हम लैंड करेंगे आज के अपने टॉपिक की तरफ। बट बिफोर दैट स्टे हुक्ड टू FM 107 दिल से देसी।
3: दोस्तों मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
7: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
3: गेम ऑन,
7: वॉल्यूम अप,
3: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
7: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
3: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
5: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज न सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बाइस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड 6:32 ऑन द क्लॉक। चलिए आज की जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं।
2: लोकल न्यूज़,

उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आपके पास मौका होता है क्या फार्मर से भी मुलाकात कर लें और ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं. फेस्टिवल जो है वो संडे से थर्सडे शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक रहेगा. और अगर बात की जाए वीकेंड्स की यानी फ्राइडेज और सैटरडेज की, तो फिर शाम 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक. वहीं मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने ऐलान किया है कि इस फेस्टिवल में कतर की जो बेहतरीन डेट्स हैं उनकी वैरायटी है देखने को मिलेगा और उसको आप टेस्ट कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं. तो ज़रूर जाइएगा अगर आपको मौका मिलता है. जैसे मैंने आपको बताया कि 25th से स्टार्ट हो रहा है, आई मीन टू से 25th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. टाइमिंग्स है शाम में 4 बजे से. ओके, चलिए इस अपडेट के साथ एक और अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं और वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने कतर में ग्रीन स्पेसेस और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाने के सिलसिले में अहम तरक्की हासिल की है. जी हाँ, मिनिस्ट्री की 2025 एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 39 प्लान्ड पार्क्स में से 12 पार्क्स का इनिशियल हैंडओवर मुकम्मल कर लिया गया है. इसी तरह 12 प्लान पब्लिक प्लाजाज में से 5 प्लाजाज भी हैंडओवर कर दिए गए हैं. जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक पार्क्स और पब्लिक फैसिलिटीज में सर्विलेंस कैमरास लगाने का जो प्रोजेक्ट था वो 87% कंप्लीट हो चुका है, जबकि म्यूनसिपैलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स कैमरा प्रोजेक्ट 92% मुकम्मल हो चुका है. आपको बताएं कि डिपार्टमेंट ने 85 से ज्यादा लोकल लोकेशंस को जो है वो सर्विलेंस के अंडर में लिया है और ज़्यादातर जो लोकेशंस हैं उन पर कैमरा सिस्टम इंस्टॉल किया है. 15 से ज़्यादा साइट्स को जो है वो सेंट्रल ऑपरेशन रूम से कनेक्ट किया है, जिससे मॉनिटरिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बेहतरी आएगी. आपको बताएं कि म्यूनिसिपल सर्विसेज को मजबूत बनाने के लिए डिपार्टमेंट ने 6,000 से ज़्यादा सर्विस रिक्वेस्ट प्रोसेस की हैं, जहाँ पर 30,000 कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 220 एम्प्लॉइज को, ताकि काम और बेहतर तरीके से और एफिशिएंसी से हो सके. तो ये भी एक बहुत ही अच्छी अपडेट. और इसी अच्छी वाली अपडेट के साथ एक और छोटी सी अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जस्ट बिकॉज समर्स है और जैसे हमने कहा कि कुछ लोग तो प्लान कर चुके हैं, जा चुके हैं, अपने वेकेशंस इंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फॉर सम रीज़न जा नहीं पा रहे हैं या नहीं गए हैं और वो अपने बच्चों के साथ यहीं पर हैं. तो क्या कुछ किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के साथ एक्सप्लोर की जा सकती हैं, तो उसके लिए एक तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कलर वर्ड्स जो है कल मैंने आपको बताया वो स्टार्ट हो चुका है. बच्चों के लिए स्पेसिफिक एज ग्रुप के बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ प्लान की जा रही हैं. तो मौका मिलता है आप वहाँ ज़रूर जाइए. अदरवाइज़ कतर में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. कतर में गर्मी तो होती है लेकिन बावजूद इसके भी आउटडोर डेस्टिनेशंस मौजूद हैं रात में, इवनिंग्स में, जहाँ पे एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को जो है वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ही मिल रहा होता है. जैसे जीवान आइलैंड, यहाँ आप जाइए आपको उस तरह की गर्मी का एहसास नहीं होगा. आइलैंड एक बिल्कुल मॉडर्न वाटर फ्रंट डेस्टिनेशन है, कूल वॉकवेज है, पब्लिक स्पेसेस है, एक बहुत ही अच्छा डाइनिंग ऑप्शन है आप लोगों के लिए. तो बहुत ही अच्छी क्रिस्टल वॉक है जो कि यू नो दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर एयर कंडीशन मॉल माना जाता है. वो सारी चीज़ें हैं जो और कहीं जगह नहीं है, जो यहाँ कतर में है. और यहाँ 100 से ज़्यादा रिटेल और डाइनिंग आउटलेट्स भी मौजूद हैं, तो यहाँ आप जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं. वहीं सेंट्रो एक और डेस्टिनेशन है, एक मॉडर्न आउटडोर लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है, जहाँ कैफेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे वेलनेस फैसिलिटीज़ हैं, शॉपिंग ऑप्शंस हैं और क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी. यानी मतलब उस तरह की गर्मी का आपको एहसास नहीं होगा. और ये एरियाज़ जो हैं वो फैमिलीज़ और दूसरों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सोशल गैदरिंग स्पॉट बन चुका है. नहीं बना है तो आप भी एक छोटी सी गैदरिंग जो है वहाँ कर सकते हैं. इसके साथ हम सबका फेवरेट इस कटारा कल्चरल विलेज एंड ऑफकोर्स कटारा आर्ट्स, कल्चर और एंटरटेनमेंट का मरकज़ बन चुका है. यहाँ पर देखा जाए तो 21 हाई स्ट्रीट एडवांस आउटडोर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ एक लग्जरी शॉपिंग और डाइनिंग का एक्सपीरियंस हमें और आपको देती है. यहाँ पर बहुत सारी गैलरीज हैं जिन्हें एंजॉय किया जा सकता है, पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप पर्सनली जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी, अगर आप समर हॉलीडेज के दौरान कोई ऐसी आउटडोर एक्टिविटी इंजॉय करना चाहते हैं तो कतर इज सच अ गुड डेस्टिनेशन. बहुत सारे मॉडर्न डेस्टिनेशंस का यहाँ पर हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं. आप जाइए, यहाँ इंजॉय कीजिए एंड डोंट वरी, एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से आपको उतनी गर्मी

0: भी नहीं लगेगी, ठीक ठाक सा एनवायरमेंट रहेगा जहाँ पर आप आराम से इत्मीनान से अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स हैं या फैमिली के किसी और मेंबर के साथ जा रहे हैं, पूरी फैमिली ही जा रही है तो सब मिलजुल के एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, मेक श्योर कि थोड़ा सा इवनिंग्स में जाइएगा, ऐसा नहीं कि दोपहर में निकल गए। तो चलिए, बस ये ख्याल आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। अब थोड़ी देर बाद जो है वो अपने सीधे मुद्दे पर आ जाएंगे। बस वही बच्चा है मेरे पास, तो वो अपना मुद्दा लेकर मैं वापस आती हूँ। बट हाँ, उसके पहले कुछ और लोगों के मैसेजेस हैं, क्योंकि वे सारे मैसेजेस हम ले भी नहीं पाते ना। तो शहजादा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कॉल करो मैम। अच्छा, मैं अभी आपको कॉल करती हूँ, ज़रूर करती हूँ कॉल। इसके साथ है रिफत हुसैन जी का मैसेज, एंड सलाम कहते हैं आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग। यस, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं रिफत जी? मुझे बताइए अपना हाल चाल। इसके साथ हमें एक और मैसेज आया है, और ये मैसेज है, का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, बट गुड मॉर्निंग कहते हैं, और शायद इन्होंने भी अपने प्राइस मनी के हवाले से पूछा है। साथ में हमें मैसेज नसीम जी का है, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग कहते हैं रमेश जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हैं रिफत जी, कैसी खैरियत? रिफत जी ने तो एक बहुत ही सॉलिड वाली न्यूज़ मुझे भेज दी लिख के, तो आप खैरियत से हैं? क्या हुआ, थोड़ा सा डिटेल मुझे बताइए। आप ठीक हैं? अभी हुआ, पहले का बता रहे कुछ, तो अब आप लोग सोचोगे क्या बताया उन्होंने पहले, मुझे लगता है ये खुद ही बता दे मुझे ठीक से, उसके बाद ही मैं कुछ बताने की पोजीशन में आऊँगी। ओके, इसके साथ हमें रमेश जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक, एक मंथ पहले। अच्छा, यहाँ पे जो है मुझे शहजादा जी ने कहा था कि कॉल कर लीजिए, तो मैंने उन्हें कॉल पे लिया है। लेट्स सी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या। हेलो
1: जी, जी जी जुड़ गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है आपकी, कैसे हैं आप? खैरियत से?
1: कल का ऐसा हुआ ना, मेरी गाड़ी चेंज हुई है।
0: अच्छा।
1: तो वो गाड़ी मुझे मिली ना, उसका रेडियो नहीं चल रहा है।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे ही चला गया कल का, है ना। तो फिर आज मैंने, आज भी वही गाड़ी है, तो अभी मेरी गाड़ी भी चेंज हुई की पार्किंग में गई है, तो अच्छा। उसमें रेडियो सब कुछ बराबर था, अब ये जो रिप्लेसमेंट में मिली है, अब इसका रेडियो भी काम कर रहा है, तो
0: अच्छा।
1: मुझे भी थोड़ा सा बड़ा अफसोस रहा, इस चीज का मिस कर दिया मैंने प्रोग्राम।
0: कोई
1: तो
0: बात नहीं, आपने बहुत तो अच्छा किया। वो लोग जो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हो ना, कि फॉर सम रीजन कॉल नहीं कर सकते, जैसे आपने लिखा कॉल कर लीजिए, तो उसमें हम हाँ खुद ही आपको कॉल कर लेंगे, वो आपके लिए भी आसान है।
1: फिर दोपहर को फिर मैं लंच पे गया था अपना। अच्छा। लंच ब्रेक होता है, तो उसके फिर मैंने मोबाइल लगाया, तो फिर मैंने सफाबाजी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, तो उन्होंने लगाया था कि 80s है ना, स्पेशली 80s,
0: हाँ।
1: 80s के गाने मिस कर रहा है। तो ये देखा किए थे वहाँ पर भी, तो मजा आया। तो बहरहाल Everything is all is great.
0: हाँ, यही होना चाहिए लाइफ में कि ends well, all's well, ends well. तो वही है कि आपकी शुरुआत जैसे भी हो, लास्ट आते आते सारी चीजें बेहतर हो जानी चाहिए। ये लाइफ का बहुत सुकून वाला पल होता है। तो आपकी मॉर्निंग्स की शुरुआत यूजुअली कितने बजे से होती है?
1: मेरा अभी जो शेड्यूल इस तरह का है ना, गर्मी की वजह से, तो सुबह 3 बजे है मेरा, तो क्योंकि जो प्रोजेक्ट पे साइड पे जो काम करने वाले जाते हैं ना, वो उनका 4 o'clock ये है ऑन ड्यूटी है, फिर उनको ब्रेक है 10 बजे, फिर 3:30 बजे अगेन है, हाँ आफ्टरनून के इवनिंग क्लोज इवनिंग में, फिर उसके बाद शाम तक मतलब 6 बजे तक ऐसा रहता है। तो शेड्यूल चेंज हुआ है गर्मी की वजह से। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अपने जो एम्प्लॉयज है ना, पूरे जो स्टाफ वगैरह है, तो उनका शेड्यूल इस तरह का है गर्मी की वजह से, बाद में फिर सितंबर से चेंज हो जाता है, फिर रोज की जो रूटीन होती है ना, उस तरह की हो जाती है फिर। शेड्यूल चल रहा है। हाँ, बिल्कुल।
0: मतलब आपका भी ये है कि चेंजेस की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है।
1: हाँ, रहती टाइमिंग,
0: हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं है कि एक बार जो सेट हो गई वो हो ही गई।
1: ये स्पेशल जो कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है ना, इसमें तो गवर्नमेंट ला है ना कि आप बाहर
0: निकलते हैं
1: 3 बजे तक, हाँ, तो बड़ा हीट रहता है ना, तो इसीलिए ये शेड्यूल चेंज हो जाता है।
0: हाँ, शायद इसीलिए बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं कि उनकी रात में ड्यूटीज होती हैं, और दैट्स हाउ वो ना फिर सुबह बिजी भी रहते हैं।
1: तो कई लोग, हाँ कई लोग 3 से रात को 1 होता है, फिर सेकंड शिफ्ट रात को 1 से सुबह 10, तो 10 बिटवीन 3 o'clock है ना, वो पूरा जो है ना

0: ये रहता है मतलब काम नहीं रहता है बिल्कुल, मतलब स्टॉप, प्रोजेक्ट पूरे स्टॉप रहते हैं,
1: स्टॉप हो जाते
0: हैं, स्पेशल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट।
1: कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा शहजादा जी, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ गए, आप हमारे पहले कॉलर हैं, तो मुझे लग रहा है आज का जो हमारा टॉपिक है उसका आगाज भी आपसे ही करते हैं। आज मैंने सोचा कि पहले मैं अपने लिसनर से ये पूछूं कि आप लोगों को पेट्स पालना, घर में रखना अच्छा लगता है, स्पेशली अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ तो क्या आप घर में उन्हें रखना पसंद करते हैं। फिर जो मेरा बड़ा सवाल है वो ये है कि जानवरों को जू में और बर्ड्स को पिंजरे में रखना ठीक है?
0: बर्ड्स का तो मुझे बड़ा तरस आता है क्योंकि हमारे अच्छा। कैंप में भी है ना, तो एक बंदा है काफी टाइम से है कलरिंग तोते होते हैं ना उसपे रखा हुआ है पिंजरे में, तो मैंने उसको दो तीन बार, क्योंकि जब भी मैं गुजरता हूँ ना वहाँ से तो ऐसा लगता है कि वो कुछ है ना पूछ रहे हैं, कुछ मुझसे ना बात करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा रुकता हूँ ना, हाँ ऐसा मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं उसको पूछा, भाई तूने कितने के लिया? बोले मैं तो बहुत पहले लिया था अपना 50,000 में जो। मैं बोला अगर बेचना है तो, मैं बोला मेरे को दे दो, तो बोलता नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं, मैं लिया था बड़े उससे, हाँ तो मुझे नहीं बेचना है। तो मैं बोला अगर मुझे बेचता ना वो तो मैं जाता हूँ ना स्टेशन, मतलब यहाँ से दूर है ना कराना वगैरह साइड जाता हूँ मैं, तो जो बीच में कुछ ऐसे गार्डनर ऐसे मतलब छोटा सा एक जंगल जिसको कहा जा सकता है, जैसा कुआ पार्क वगैरह है ना, घने झाड़ और हरियाली, बहुत सारे बर्ड्स उधर, तो मैं चाहूंगा कि ना उसको जाके पहले उसको वहां पर मैं छोड़ दूं, खुला कर दूं बेचारा, वो जो बाहर जो उसको मिलेगा ना मतलब वो, हाँ तो मुझे बड़ा तरस आता है ये जो पिंजरे वाले जितने भी ना, इवन दूसरे जानवर भी एनिमल्स ले लो जैसे टाइगर्स है वगैरह वगैरह जितने भी लॉपर्स है, नहीं यार वो एक देखो उनका एक अपना एक जिंदगी है, एक अपना मिजाज है, एक अपना एक रहन सहन का एक अपना तरीका है ना, तो अब वो तो बोल तो सकते ही नहीं, लेकिन हम हमारे शौक के लिए हम उससे प्यार भले कितने भी कर रहे हैं, उसको टाइम पे खाना दे रहे, वो दे रहे, सारा कुछ दे रहे, लेकिन वो तो कैद तो कैदी होता ना, ऐसा तो एक कैदी को भी जेल में कुछ भी नहीं करता बेचारा, उसको 3 दिन खाना मिलता है लेकिन वो सजा काट रहा होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा।
0: हाँ वो सजा काट रहा होता ना, तो इसीलिए अगर वही कैदी को भले खाना कुछ ना दो, अगर उसको बोले ना आज से तुम रहा हो, तो फिर उसके दिल की खुशी पूछो।
1: सही बात है,
0: बिल्कुल। तो इसी तरह है ना ये बर्ड्स का है ना, तो मैं तो यही कह के इनको मतलब है ना नहीं पालना नहीं है। हाँ अगर आप अगर ऐसा डेरा डालते हो आपकी विंडोज के पास, अगर आप बर्ड्स का आपको शौक है और बर्ड्स आपसे मोहब्बत करे, तो उसका सोल्यूशन है बड़ा अच्छा है।
1: क्या?
0: आप आपके विंडोज के पास है ना एक ट्रे में एक कोई प्लेट में ना कुछ दाने कुछ डालो, और एक पानी की वो कटोरी या कुछ रख दो, ऐसा देखो बर्ड्स आते हैं अपने टाइम पे आएंगे और खाएंगे चले जाएंगे।
1: बिल्कुल सही है,
0: खाना मिलता है तो बड़ी दुआएं करके जाते हैं वो, तो ये बड़ा बहुत अच्छा है। तो इस तरह के घर तो यहाँ तो कदर में माशाल्लाह है, ये जो फैमिली जिनको मिला हुआ है सारा कुछ है, गार्डन है सारा कुछ है, तो वो बाकायदा एक अपना आशियाना इस तरह से ना बना सकते हैं, बहुत बेहतर है। हाँ बहुत बेहतर, आपने रख दिया है उस टाइम पे सब आए और एक ने एक आके गया तो फिर वो अपने 4 को और दोस्तों को लेके आता है, फिर इस तरह से सब बढ़ते जाते हैं, वो एक उनका एक ग्रुप हो जाता है कि आज वहाँ चलना।
1: आपको तो इतना कुछ पता है
0: हाँ ठीक है ना, बड़ा
1: आप तो नहीं फ्लाई करते साथ में?
0: हाँ हाँ मुझे बहुत मतलब है ना ये मतलब परिंदों और एनिमल से ना मेरे को इतना मतलब इतना लगाव है ना, क्योंकि मैंने इससे पहले भी मतलब डिस्कशन किया था कि जो फूड्स वगैरह का जो वेस्टेज होता है ना,
1: वो तो आप बता
0: मैं जब जाता था ना उस तरफ तो कराना साइड उधर जाता था ना, तो ये बकरियां और कैमल्स वगैरह चढ़ते थे, तो मैं ये हमारे मैस का जितना भी खुबूस जो फेंका जाता था मैस सोने का, तो सारे पैकेट ही उठाता था और वो खोल के उनको डाल देता था, तो कितने टाइम ऐसा होता था ना जो मेरी पिकअप देखते थे पीछे कुबूस, तो बकरियां दूर रही थी ना भाग के आती थी गाड़ी देखते ही,
1: पहचान जाते हैं ना जानवर तो फौरन।
0: तो इतना जो बर्ड्स वगैरह जितने भी मतलब है ना इनको मतलब एक ये इनके साथ मोहब्बत करो आप, और इनको एकदम खुला आजाद बिल्कुल आजाद और पूरा हक रखते हैं,
1: पूरा हक रखते हैं।
0: हाँ इंसान एक

0: हर एक अपनी जरूरत पे, हर एक अपनी चीज, हर एक खुशी पे अपने इख्तियार और हक रखता है, तो फिर वो क्यों नहीं रखेंगे? उनका हाँ। भी तो एक है ना,
1: है ना।
0: अभी हाँ। कबूतर जैसे कितने हमारे इधर प्लांट है ना, जो कैंप है ना, कितने हाँ। कबूतर उतरते हैं ना, जो वॉशिंग एरिया है ना, तो अभी हाँ। गर्मी की वजह से थोड़ा सा है ना भीगने आते, थोड़ा पानी अच्छा लगता है उनको, कम और ज्यादा पानी गाड़ी होते हैं ताकि थोड़ा सा उनको पीसफुल लगे थोड़ा सा, है ना। ऐसा
1: बहुत ही अच्छी बात कही आपने शहजादा जी, एंड आई एम ग्लैड ये सवाल की शुरुआत मैंने आपसे ही कर दी और आपने बहुत सारी चीजें शेयर की, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू फॉर योर कॉल।
0: ओके जी, शुक्रिया
1: शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर हमारे साथ थे शहजादा जी। आज का हमारा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आई थिंक हर शख्स की सोच और उसके जो जो नज़रिया है उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को मानते हैं, स्ट्रॉन्गली मानते हैं कि जूज और ये जो जू में रखे जाते हैं एनिमल्स या फिर जो बर्ड्स को केज्स में रखा जाता है वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हर जानवर और हर परिंदा आज़ादी के साथ अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने का हक रखता है। तो बस मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी यही सवाल किया जाए, क्या एनिमल्स को जू में और बर्ड्स को केज्स में रखना एथिकल, मेरे मतलब है ठीक है कि नहीं। एक कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल सब खैरियत है, आप कैसे हैं नूर जी? खैरियत से
2: अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे फूलों को छुपने के लिए कांटों का सहारा पड़ता है, वैसा ही जानवरों को छुपने के लिए किसी घर का सहारा नहीं बल्कि जंगल का सहारा पड़ता है। उसका घर जंगल है, उसका जंगल में होना जरूरी है, किसी पिंजरे में नहीं।
1: हाँ, तो मतलब आप कहते हैं उसको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए और जो स्पेशली बर्ड्स हैं उनको हवा में उड़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए।
2: हम लोग को जेल में रख दे, थोड़ा खाना पीना दे तो फिर भी दम घुटता है।
1: घुटता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल।
2: जहाँ पर उसका हक है रहने का वहाँ पर रहने का।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि जानवर जो है वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ही वो इंजॉय करते हैं और उनको हक मिलना चाहिए कि वो वहीं रहे। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो पसंद करते हैं और उनकी दलील ये होती है कि यू नो उन बर्ड्स को प्रोटेक्शन मिल रही है और वो प्रोटेक्ट हम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम खाना दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें ठीक है टू सम एक्सटेंट, मुझे लगता है ये भी ठीक है जी।
2: लेकिन जब अगर उसका कुछ हो जाएगा तो उसका भी सब आपसे से दिया जाएगा, क्या मतलब जैसे भी ध्यान में रखने का तो सही हिफाजत करना। अगर नहीं आप उतना नहीं समझे तो उसको पिंजरे में मत रखें, अगर रख सकते हैं उसको पूरे ख्याल रखना क्योंकि वो बेजुबान है।
1: बेजुबान है, बिल्कुल सही बात है। और जैसे शहजादा जी ने बड़ी अच्छी बात की, अगर आपको बर्ड से प्यार है इफ इन केस तो आप जो है ना उसके लिए खाना रख लो या पानी रखो, बर्ड्स वहाँ पर आएंगे, आप देखिए एंजॉय भी कीजिए और उनकी कैद भी नहीं हुई और आपकी भी जो शौक है वो भी पूरा हो रहा है ना।
2: वो तो सही है, आपका जैसे अभी गर्मी का सीजन है, इंसान को जरा जरा सवाब कमाने का, जैसे कोई हम लोग काम करते हैं जहाँ पे पानी मिलता है वहाँ पे कोई दही का डब्बा या कुछ पानी का मोटर मिलता है काट के किसी जमीन पे रख देते हैं अपने, वो उसका अपना प्रयास निकल जाता है। आदमी का बहुत होता है, जैसे हमारे फिलिपिनी है, इसमें फिलिपिनी का बहुत बड़ा रोल है, इतना मैं देखता हूँ उसका बहुत बड़ा रोल है। हम लोग का काम किए मेरा टॉपिक बस करने का मतलब यही है, बस हर चीज को अपनी आज़ादी जीना चाहिए।
1: सही बात है। अच्छा, आपको जू जाना अच्छा लगता है, आप गए हैं कभी जू देखा जाके?
2: मैं जब दुबई में था हाँ। मैंने गया था। अच्छा। मैं जब उसमें अंदर जू देखा हाँ। तो मैं सोचा मैं जो मुझे इतना खौफ हो रहा है तो ये लोगों को कितना खौफ होता होगा।
1: अच्छा, क्यों ऐसा क्यों था, आपको इतना डर क्यों लग रहा था?
2: बस अब गया तो पूरा अंधेरा अंधेरा, फिर कभी लाइट जलता है कभी अंधेरा है, दुबई का मतलब एक दूसरे टाइप का है, इधर तो नहीं किया कभी।
1: अच्छा,
2: मैंने दुबई में किया।
1: अच्छा,
2: इधर सोचा था जाने के लिए, मैं एक बार गया था अलफोर में, फिर वहाँ से मैं समुंदर ब्रिज पे चला गया जो मैं नहीं किया आदमी ने, फिर वहाँ से मैं फिर क्या गया, ये गर्मी जाएगा लगभग सितंबर में जाने का इरादा बना रहा।
1: सही सही, तो आपको लगता है
2: हमारे नेपाल से लिखेन आया है ना, देखने के लिए बहुत इनसे कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक देखा नहीं,
1: देखा नहीं है। चलिए, टाइम मिलता है, मौका मिलता है, जरूर जाइएगा, विजिट कीजिए, देखिए, एंजॉय कीजिए। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत

0: प्रिया
1: जी,
0: प्रिया कैसे? तो इन्हीं फिल्म मेरा गांव में भी है, देखने को तो मिल ही जाता है।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं।
0: किस तरह से रहता है वो देखने का जरूरी।
1: हाँ, ये देखने का और एक बार जाना चाहिए अगर आपको मिले मौका। हालांकि मुझसे अगर आप पूछे तो मैं जू के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं होती हूँ, लेकिन लोगों की अपनी दलील है उसके पीछे भी, तो वो भी धीरे धीरे अभी बात करेंगे तो लोग हमें समझाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा रिजर्व कर रही हूँ अपने कॉमेंट्स। अच्छा जी, नहीं हम भी आपसे बात करते तो कुछ सीखते हैं ना। ये तो ऐसा है कि आप हमसे और हम आपसे सीख रहे होते हैं, ये बात है, मिलजुल के सीख रहे हैं, सिखा रहे
0: हैं। हाँ।
1: सही बात है, सही।
0: चलिए ठीक है,
1: चलिए, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया बहुत,
0: थैंक यू,
1: थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, एक और कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आरिफ अंसारी जी आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आज का स्टेटस क्या है? पराठा हमने सामने, आप पराठे के सामने, पराठा आपके सामने?
0: आज थोड़ा सुबह फोन कर दिया ना इसके लिए, थोड़ी देर बाद पराठे सामने आएंगे।
1: अच्छा, अभी पराठे जो है वो वेट कर रहे हैं, चलिए सही है।
0: मैं उसके पास जा रहा हूँ।
1: अच्छा, आप जा रहे हैं, सही सही। तो ऐसा नहीं सोचते कि आज मैं कुछ और ही खाऊं, मतलब कुछ डिफरेंट हो जाए आज, या सेट है आपका ब्रेकफास्ट रोज यही?
0: लगभग चटी है, रोटी ऐसा है ना, काम करते ऐसा है कि वो एक दुकान ही मिलता है नाश्ता करने के लिए,
1: तो लगभग सेट रहता है आपका मामला। चलिए अच्छा है, लेटर ऑन अपना ब्रेकफास्ट आप एंजॉय कीजिएगा, लेकिन उसके पहले आज का जो हमारा मुद्दा है उस पर क्या कहेंगे?
0: मुद्दे पे वैसे तो अच्छी बात है, किसी को वो कैद करके ना रखना वो बहुत ही बुरी बात है, आजाद रखना चाहिए। लेकिन अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, अब मैं नेपाल से हूँ तो नेपाल जैसे कंट्री में तो कुछ वो होता है ना, रिफिलिंग के लिए जैसे इधर कतर के पास गैस है, पेट्रोल है उसका अपना, तो कंट्री अच्छे से चल रहा है। अब नेपाल जैसे कंट्री में कुछ नहीं है ऐसा, तो फैक्ट्रिया भी नहीं है कुछ ऐसे खास की बाहर कुछ सप्लाई दे सके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन ज्यादा चाहिए,
1: ये भी एक पॉइंट है कि भाई थोड़ा सा जो है, लेकिन बहुत सारे जो है वो आपने देखा, जैसे मैं कल जब मैं आई थी वेकेशन से, मैंने बात की जिम कॉर्बेट की, तो इस तरह से भी प्रिजर्व, मतलब जानवरों को भी रखा जाए, टूरिस्ट भी आएंगे वहाँ पर और शायद उनके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। और जैसे मैं जानती हूँ ये नेपाल में हर्ब्स बहुत हैं,
0: है ना? हाँ, पर टूरिस्ट तो हर,
1: हाँ नहीं, जाहिर है टूरिस्ट तो हाँ उन्हें थोड़ा सा,
0: मैं एग्री करता हूँ कि उन लोगों को कैद नहीं रखना चाहिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, क्यों हम लोगों को कोई कैद करके रखे वो हम लोगों को खुद गवारा नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे कैद कर सकते हैं? उन लोगों को पंख दिया गया है उड़ने के लिए ना, तो हम लोगों को कैद करके कैसे रख सकते हैं?
1: बिल्कुल, कैसे रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे लगती है कि जो कंजर्वेशन के लिए भी जानवर, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिन्हें अगर जू में ना रखा जाए तो शायद आज दुनिया से वो ख़त्म हो चुके होते हैं।
0: हाँ,
1: तो मतलब जू में जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो उनके जरिए भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो शायद एक वो एक रीजन समझ में आता है।
0: अभी बहुत सारे एनिमल, उतना तो मेरे को नाम मालूम नहीं है, पर कभी कभी आता है ना, मतलब पढ़ते हैं कि तो कितना एनिमल अभी तक वो गायब हो चुका होता है, पर वो एक दो दस पांच ऐसे करके उन लोगों ने उसको संभाल के रखा है जिसे बना के ओपन एरिया में
1: कंजर्वेशन जो है। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है जो कि लोग देते भी हैं और मुझे समझ में भी आता है टू सम एक्सटेंट कि हाँ ये है कि कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन हो रही है। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो वाकई अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो ख़त्म हो चुकी होती, या कुछ हो ही चुकी हैं तो यहाँ पे, हाँ हो चुकी हैं, तो कम से कम जू में ये जो प्रोग्राम चलता है ब्रीडिंग का उसके ज़रिए आप कुछ प्रोटेक्शन दे रहे हो एनिमल्स को, और इस तरह से ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने जो नेचुरल तरीका है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो रहने के आदि हैं, उससे तो आप उनको रोक ही रहे हैं।
0: वो तो मैं भी एग्री करता हूँ, उसको नहीं रोकना चाहिए। एक पॉइंट जो था मेरे को अच्छा

0: मेरे को समझ में आ रहा था इसीलिए मैंने जू वाला भी
1: मारा। नहीं बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर तरफ से लोग बात करें, मतलब प्रो हो कॉन्स हो दोनों तरफ से बात हो तभी मजा आता है उसमें, कई पॉइंट्स आते हैं
0: डिबेट का, वही पॉइंट
1: यही बात है, तभी तो डिबेट का मजा आता है। सो नाइस, थैंक यू कि आपने एक अलग सा पॉइंट रखा है, आई रियली अप्रिशिएट। मैं चाहती हूँ कि लोग हमारे साथ जुड़े इसी तरह से, आपकी तरह प्रो आर्ग्यूमेंट्स भी दें और हमें बताएं भी कि नहीं क्यों नहीं पसंद करते हो, क्यों पसंद करते हैं, फॉर बोथ द रीजंस। चलिए थैंक यू सो मच, आप अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कीजिए एंड एंजॉय रेस्ट ऑफ योर मॉर्निंग, रेस्ट ऑफ योर डे। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर कॉल, अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट, और आज का बड़ा ही सॉलिड सा सवाल मैंने आप लोगों से किया है, क्योंकि मैंने कुछ देखा, मैंने किसी के कल मैं घर गई और मैंने देखा बर्ड्स को केज में, मेरे जहन में आया कि मुझे पूछना चाहिए क्या वाकई एनिमल्स को जू में और बर्ड्स को केज में रखना एथिकल है, आपको लगता है ठीक है कि नहीं है। सो दिस इज टुडेज़ क्वेश्चन। और एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन है हमारे साथ?
2: आवाज सुन करके बात की
1: देखा, आप आवाज बदल बदल के बात करेंगे तो कैसे पहचानेंगे?
2: रईस बात कर रहा हूँ।
1: अरे आज साहब की बिल्कुल ही आवाज अलग थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
2: मैंने थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा आदमी को थोड़ा सा कंफ्यूज करना भी चाहिए कभी कभी, हमेशा एक एक ही तर्ज पे, क्योंकि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो नात पढ़ने का, शेर पढ़ने का, ये सब जबरदस्ती पकड़ के हमारे अब्बू थे ना वो, उनको बड़ा शौक था सुनने का, तो जो गाँवों में कोई छोटा मोटा फंक्शन होता तो पकड़ के जबरदस्ती कर देते थे कि नहीं नहीं सुनाओ, पढ़ के सुनाओ।
1: ये तो अच्छा है ना, मुझे लगता है आपको इसका फायदा हुआ, आप अच्छा एक्सटेम्पोर पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं कहीं पे
2: ना, तो वो सब टाइम पे पढ़ने का मतलब उसमें, हाला उस मार्केट से मैं निकल गया बाहर, हाला उस टाइम थोड़ा सा बहुत कुछ उलूल जुलूल सब उसमें सिरकिया आसार होते थे, तो वो सब पहले वो सब अकीदा कुछ अलग होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो समझ में आया कि वो सब जो उसमें शेर के जो बोल होते थे उसमें बहुत ज्यादा मतलब शिरकिया अल्फाज हुआ करते थे, उतना लोग ख्याल नहीं करते थे उसके तरफ, तो अब थोड़ा समझ में आया, तो अब हमने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं गलत था वो, मैंने तौबा भी किया अल्लाह से।
1: सही
2: है, आजकल अच्छा जानते हैं कि मतलब शेर व शायरी के उसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा जो दीन के उससे एकदम हट के हमारे उसके खिलाफ बिल्कुल अल्फाज होते हैं, तो उस पे भी हमें गौर करना चाहिए।
1: सही सही, बहुत ही अच्छा।
2: और सुनाएं आज का आपका क्या चल रहा है, मतलब ये
1: आज का हमारा क्या चल रहा है? आने में बताती हूँ। आज का हमारा जो सवाल है वो ये है, क्या एनिमल्स को, जानवरों को जू में और बर्ड्स को पिंजरे में रखना आपके हिसाब से ठीक है?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से पिंजरे में रखना ये तो थोड़ा सा मतलब बांधने के मतलब ये हो जाता है, ये बस हाँ कुछ शौकिया जो मतलब कुछ चिड़िए जो हैं वो बेचारे उड़ना, उनको उड़ने का पता ही नहीं चलता कि हमें हम उड़ने वाले मतलब परिंदे हैं।
1: सही कहा,
2: वो बिल्कुल अपना उड़ने का भूल जाते हैं, उनका जो तरीका जो होता है ना उड़ने का, बहुत से मैंने देखा है बहुत से परिंदों को, वो छोड़ते हैं तो बेचारे वो उड़ने का उनके अंदर वही नहीं रह जाता है कि वो कि मतलब हाँ हम उड़ने वाले परिंदे हैं, उनके पास वो सलीका होता है वो ही नहीं रह जाता है बिल्कुल, वो बस ऐसे आम मुस्ती जैसे जैसे मुर्गियां अपने यहाँ नहीं गांव में जो पाली जाती है वो भी ये करने वाली है, लेकिन अब वो थोड़ा वजन होने की वजह से, लेकिन उनको वो तरीका जो नहीं होता है उड़ने का, वो जिस तरीके से और चिड़िया उड़ती है वही जो फ्री उसमें घूमते हैं बिना मतलब पिंजरे के, उनका अलग ये होता है, तो रखना चाहिए कुछ शौकिया मतलब जो है उनका उस हिसाब से उनका ख्याल करना चाहिए कि हाँ कुछ जो बहुत से परिंदे जो हम लोग के इधर पहले आया करते थे जो छोटी वाली चिड़िया होती थी बारिश में, अब वो बहुत कम दिखती हैं, आपने खुद मतलब इसको जज किया होगा।
1: सही बात है,
2: जो पहले आती थी पता नहीं अल्लाह आलम, पहले जो मतलब ये जानवर होते थे, ये गिद्ध एक जानवर आपको शायद पता होगा कि नहीं पता है, जो ये जो बड़े बड़े जानवर कभी कभी मर जाते थे तो वो बाहर फेंक देते थे बाहर ले जाके मैदान में, तो वो आके नोच के खाते थे तो वो भी जानवर अभी मतलब नहीं दिखाई देते हैं, पता नहीं किस मुल्क में और किस उस पे चले गए, वो भी बहुत कम
1: रेगिस्तान में वगैरह में होते हैं, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे अगर किसी
2: पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उस वक्त खाली इतना डर लगता था ना कि वो तो हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों से तो भारी भारी उनकी हाइट होती तो इतने इतने जोर से कि लोग डरते थे कि मतलब डराते थे कि ये बच्चों के ऊपर भी हमला करके और वो ये कर सकते हैं उनकी इतनी बड़ी बड़ी चोंच की पूरी गोश्त को निचोड़ निचोड़ के खाते थे वो गोश्त खाने वाले मतलब वो परिंदे ही है वो स्पेशल तो ये चीजें मतलब हाँ कुछ जो अपने मतलब जिसका ये खात्मा हो रहा है उसके ऊपर कुछ ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट को लेकिन उनको ट्रेवल मतलब उनको उड़ने का और ये सब करने का बाकी जो जानवर है कुछ लोगों को आज कुछ जो शेर और ये सब जो मतलब आजकल उसके उससे बता रहे हैं कि खत्म हो रहे हैं तो पहले के हिसाब से मतलब हाँ उनको कायम रखने के लिए उनकी नस्ल को कायम कर रखने के लिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा बांध के रखना भी उनको मतलब पिंजरे में और ये सब थोड़ा सा गैर मुनासिब है
1: दोनों ही चीजों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं जैसे जो लोग कह रहे हैं कि जू में रखो जानवरों को उनका ये कहना है कि जू में जो है एनिमल्स की उनकी जो हेल्थ चेकअप है या फिर अगर किसी तरह की उनकी कोई बीमारी है उस सब का इलाज हो जाता है अभी जंगल में होंगे तो नहीं होगा
2: नहीं नहीं नहीं नहीं इसके मालिक हम नहीं है ये अल्लाह के हवाले है देखो पहले पहले के लोग थे ना इतनी डॉक्टरी थी ना इतना मतलब ये सब तरह तरह का चेकअप था और अल्लाह ताला उनको मतलब उस हिसाब से जिस हिसाब से उनके अंदर कुव्वत होता था वो बर्दाश्त करने का उससे लड़ने का उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त अल्लाह ताला उनके अंदर खुद पैदा करके ये करके रखता है तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम उसके हेल्थ के और उसके हाँ भाई ख्याल करना चाहिए ये भी सही है अपने जगह पे लेकिन अब इतना ज्यादा जो जिससे हम मुकल्लफ नहीं है तो इतना ज्यादा हम फिर उसके मुकल्लफ बनने की कोशिश भी ना करें अल्लाह ताला जिसको पैदा किया उसका जरिया बना देगा
1: और
2: ऐसे ही लोगों में है कि अब कैसे है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 लोग मतलब बिना हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे उसमें से वो लोग होंगे कि जो किसी के ऊपर मतलब झाड़ फूक और ये तरह तरह के उससे मतलब अल्लाह पे तवक्कल करने वाले होंगे तो अब ये भी लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इसको किया और ये तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि भाई ठीक है अल्लाह ताला के ऊपर मतलब ये तरह तरह के इनके पास फला शिर्क और फला चीज पे बिदात के ऊपर नहीं मतलब ये करते हैं अल्लाह पे भरोसा करके और उनका भी ये करता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है वो जानवरों को अब चेकअप हाँ ठीक है उनकी उनकी नस्ल बाकी रखने के लिए
1: जरूरी
2: वो तो उतने तक मतलब महदूद रखना चाहिए बहुत ज्यादा को कैद करके और उसको ये बना के नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से हाँ वो कुछ लोगों को जैसे बहुत से लोग हैं जो जो जानवर का मतलब कभी जिंदगी में नहीं देखते हैं तो ये सब चीजें मतलब ये करके जो जैसे अफ्रीका के उसमें जो दिखाया जाता है सीरियल पे टीवीओ पे जी तो उसमें देखने को अजीब और गरीब का देखो उसमें अल्लाह का मतलब तारीफ निकलता है कि देखो अल्लाह ताला ने कैसे कैसे जान और कोई भी जानवर और कोई भी चीज जितने इंसान के लिए फायदे के लिए अल्लाह ताला ने बनाए है ऐसा नहीं है कि मतलब वो जिसको हम मतलब अपने इस्तेमाल में लें या अपने अपना उसको हम खाएं या मतलब सवारी करें वही चीज हमारे लिए फायदा नहीं जो हमारे लिए मतलब बिल्कुल हम उससे जो दरिंदे हैं या हमें नुकसान पहुंचाने वाले उसको भी अल्लाह ताला का मतलब एक हिकमत है कि कुछ कुछ वो ऐसी चीजें हैं कि जो इंसानों के लिए वो आसानी पैदा करती हैं हम नहीं समझ सकते हैं उसको
1: सही बिल्कुल सही
2: वही हाल है कि मतलब एक बार मूसा अलैहि सलाम ने एक छिपकली को देख के कहा था कि अल्लाह ताला ने मतलब उसने मतलब वो जब उगे तो उसके तो उसके पेशाब का कतरा उनके ऊपर पड़ा मैंने एक मतलब उसमें पढ़ा था तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला तुमने ऐसा क्यों पैदा किया मतलब इस जानवर को इसकी क्या जरूरत थी तो अल्लाह ताला का वहां से आवाज आया कि ऐ मूसा वो कह रही है कि तुमको क्यों पैदा किया तुम्हारी क्या जरूरत थी तो हर कोई अपने हिसाब से सोचता कि मतलब इसको क्या जरूरत है ये दरिंदे और ये सांप ये तरह तरह के जो मूजी जानवर हैं इसको पैदा करने की जरूरत नहीं थी और इसको क्यों पैदा किया गया ये सब हमारे और आपके उससे बाहर है हमें इसके बारे में मतलब इतना ज्यादा अल्लाह के उससे ये नहीं करना चाहिए हाँ वो जानवर है कुछ जो की मतलब उनका
1: ब्रीडिंग के लिए आपने कहा जरूरी है जो खत्म हो रहे हैं जानवर उनकी ब्रीडिंग अगर हो रही है जू में तो ठीक है अदरवाइज आप कहते हैं कि नहीं इलाज जो लोग दलील देते हैं कि नहीं उनका इलाज हो जाता है उनकी बीमारी अगर कोई है तो वो हम ट्रीट कर लेते हैं जो कि जंगल में नहीं हो सकती तो बहुत सारे जख्मी हो जाते हैं तो वो फैसिलिटीज मिल जाती हैं
2: आप बताएं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो जितने बड़े बड़े गैप की बातें बताते हैं, उनको भी ऐसे ऐसे मौलिक बीमारी

0: हो जाती है और ऐसे इस तरीके से उनकी मौत हो जाती है कि जो कि ब्रेन के एकदम स्पेशलिस्ट होते हैं कि मतलब कितने लोगों का ऑपरेशन किया रहता है और उनको ब्रेन हेमरेज और तरह तरह का ऐसे उसमें आके उनकी मौत हुई है। आपने पढ़ा होगा ये बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो अल्लाह ताला के हाथ में, आप कितनी भी सही बात है।
0: हाँ, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, उनको कैद करके मतलब जिसको अल्लाह ताला ने जिस तरीके से ये करके रखा उनको आजाद करके रखना और जो उनका जगह मुंतखब है वहीं पे रहना। हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट की, हाँ वो आम कस्बे में जहाँ इंसानों के बीच में ना आके नुकसान ना पहुंचाए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा मतलब मेरे ख्याल से जरूरी है कि बहुत से जो बड़े बड़े मतलब शेरों के जो मतलब नस्ल है वो आके इंडिया के अंदर ही बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट ख्याल करे उनको, उनके लिए ये जरूरी है। बाकी उनको कैद करके रखना ये मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा उनके ऊपर ये करना ये सही मुनासिब नहीं है।
1: हाँ, ये उनके एक तरह से जुल्म है कि उनकी फ्रीडम सेफ्टी के चक्कर में आप उनकी फ्रीडम छीन लो। सही, बहुत ही अच्छी बात की आपने, जबरदस्त। थैंक यू सो मच रईस जी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक, हम यूं गए और यूं आए।

0: FM 107. Time check. गाइस वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नासी आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:10.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ इन 7:19 ऑन द क्लॉक। आज जिस टॉपिक पे बात चल रही है उसमें आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज मैं आपसे पूछ ही रही हूँ, आपको क्या लगता है, क्या एनिमल्स को जू में और बर्ड्स को पिंजरे में रखना एथिकल है या नहीं? एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद जी हमारे साथ, ये तो मैंने पहचान लिया आवाज।
1: बहुत शुक्रिया, आप कैसे हैं? खैरियत से ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से?
1: मैं बिल्कुल, कल मैं अनफॉर्चुनेटली गायब रहा, मैं किसी और जगह पे था और कल भी मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो इन एडवांस में बता रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: बाकी
0: कल भी आप बिजी हैं
1: माशाल्लाह। फर्स्ट कॉलर शहजादा सलीम, वो वैसे भी शहजादे इंसान है, और उसके बाद फिर रईस भाई, वो माशाल्लाह जबरदस्त रईस हैं वो। दोनों की कॉल मैंने सुनी और एक एक लफ्ज की उन्होंने डेफिनेशन भी दी, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि मुझे वो जंगल में छोड़ने आ गए हैं।
0: वो ऐसे समझाते हैं आदमी को, लगता है अब आखिरी है, बस अब कुछ नहीं होना। या सुधर जाओ या गए। नहीं, बहुत अच्छी
1: है।
0: वही है ना कि हर किसी को लगता है हम तो बिल्कुल एकदम लास्ट पे बैठे हुए, कब चले जाए।
1: तो बिल्कुल तो नहीं, बहुत अच्छा लगता है उनकी कॉल्स के, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात करते हैं। अच्छा, वैसे ना मैं लोगों के ओपिनियन भी मैंने सुने आपके बारे में, और आपकी जो वापसी हुई वेकेशन से तो कुछ हिस्सा मेरा भी बनता है। अगर मैं ये कहूँ तो जरूरी है कि अगर किसी ने मतलब अरसा के बाद अपना काम दोबारा शुरू किया हो और पूरे जोश जज्बे और तवानाई के साथ कर रहा हो तो उसे कहते हैं नाज़िया।
0: ओहो, थैंक यू सो मच। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो आई डोंट डिजर्व, बट फिर भी थैंक्स, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये वर्ड तो बहुत छोटा है, बट हाँ, आप लोगों के साथ की वजह से ऑल टुगेदर हमें भी हिम्मत मिलती है। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। दिस ट्रू, दिस इज फैक्ट। तो मेरे सारे आर्जेस के लिए
1: एग्जैक्ट, आपके इंटरव्यूज और सब कुछ, मान देखिए हर बंदे की ना अपनी मिसाल आप है, हर बंदे के अंदर जो अल्लाह ने खासियत दी है, उसकी जो पावर है, उसकी जो तवानाई है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन हर एक के पास है।
0: सही बात, ठीक है, बिल्कुल
1: अपने लिमिट के मुताबिक। और दूसरा जो आपका सवाल ये था बर्ड्स के हवाले से, तो मैं खुद भी बहुत ही पसंद करता हूँ पेट्स को और बर्ड्स को, मतलब एक मेरी उनसियत उनके साथ, बहुत मोहब्बत है मेरी उनके साथ। इसलिए कि अगर आप देखिए बर्ड्स के साथ या जानवरों के साथ आप प्यार करते हैं तो वो आपको ऐसा रिवर्स देते हैं कि इंसान की सोच से बाहर होता है कि क्या क्या वो करते हैं इंसान के साथ, जिनकी मोहब्बत की एक मिसाल है।
0: अच्छा।
1: और एक वक्त था, मतलब कुछ अरसा पहले, मैंने ऐसे ही चार कबूतर

0: तो मैंने लिए करते करते ज्यादा हो गए, फिर उसके बाद मैंने केज बनवाया, फिर बड़ा केज बनवाया तो 250-300 मेरे पास हो गए।
1: इतना?
0: तो हाँ मैं आपको वीडियो भी इसकी शेयर कर सकता हूँ। और उनकी देखिए मोहब्बत ये देखिए कि मेरा सिर्फ काम ये होता था कि असर की नमाज के बाद जब मैं पिंजरा खोलता था तो वो सर पे मंडलाते थे ऊपर ही।
1: अच्छा, वैसे उड़ते नहीं थे जब आप पिंजरा खोलते थे?
0: नहीं नहीं नहीं, मतलब पिंजरा बड़ा वफादार परिंदा है ये। ये जाके आप फॉर एग्जांपल कहीं चला भी जाएगा ना या रास्ता भूल भी जाएगा तो ये वापस आएगा, ये वापस आएगा।
1: अच्छा, ये तो नई बात आपने मुझे बताया। ओ रियली?
0: हाँ,
1: बड़ी बात।
0: उसका ये भी था कि फॉर एग्जांपल अगर इतने कबूतर, क्योंकि शाम के वक्त जो पिजन्स है ना कबूतर, ये उड़ते नहीं है। ये उड़ते नहीं है। और ये अगर मिसप्लेस हो जाए, मेरी बिल्डिंग के सामने जो घर था वो चार पांच छह जो भी वाकई रह जाते थे, तो आप यकीन करें बखुदा नेक्स्ट डे जब मैं उसका वो केज का ताला खोलने आता था तो वो उड़ के ऐसे आते थे जैसे मतलब कोई मेरा बच्चा आ रहा है, यार पापा आ गया तो बच्चा आ रहा मेरा।
1: ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने मुझे बताई।
0: बहुत
1: ये लोग उड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं।
0: आप जहाँ भी इनको मतलब ये इतना वफादार है कि ये आप इसको खुला छोड़ दें, एक दफा आपने दाना उसको डाल दिया, पानी दे दिया, तो उसके बाद ये आपकी जगह नहीं छोड़ेगा, ये वापस उधर ही आएगा।
1: तो इतने सारे आपने तो पिजन्स के लिए 300 के आसपास बोल रहे हैं, उन सबको खिलाना रोज आपका, ये आपकी ड्यूटी थी रोज खिलाना पानी?
0: ये मेरी भी ड्यूटी थी। हाँ, मतलब ये खाली खिलाना नहीं था, उनके लिए टब मैंने रखे हुए थे उनके, क्योंकि वो पिजन जो है ना वो नहाते भी हैं, गर्मी में डेली नहाते हैं वो।
1: अच्छा,
0: फिर अपने पर खोल के बैठते हैं जमीन पे सुखाने के लिए। बड़ी मैंने आपको एक तो वहाँ पर अल्लाह पाक की जो तख्लीक है, अल्लाह पाक की जात वो दिखती है उसके अंदर। तूने क्या सेंस दी हुई है इसको, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने जो सेंस दी हुई उनको। और फिर छोटे छोटे बच्चों को अपने चोंच से एक माँ का जो किरदार है, जो माँ इंसान है, जो माँ कोई भी है, वो वहां पर आपको दिखेगा किस तरीके से चोंच के जरिए अपने बच्चों को वो पहले खा के उसको लिक्विड बना के फिर बच्चों के मुंह में डालते। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की कुदरत है देखिए आप।
1: क्या बात,
0: मैं इंशाल्लाह अगर मतलब
1: मुझे आप भेजिएगा। हाँ प्लीज मुझे वीडियो भेजिएगा, मैं देखना चाहती हूँ इतने सारे। हाँ। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने उनको ऐसा कैद भी नहीं किया, वो बाहर उड़ भी रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं और आप उनका उनकी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है भाई, इंटरेस्टिंग।
0: मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि जिस वक्त वो उड़ के जब दरवाजा खोलने लगता हूँ और उड़ के बाहर निकलते हैं तो वो अपने घर के आस पास चक्कर मारते हैं पूरे झुंड की सूरत में जितने भी हैं। और उसके बाद एक और आपको मतलब मैं तवील बात नहीं करूंगा, मजे की बात यह है कि मगरिब के वक्त उनको पता है कि अब शाम हो रही है, अभी हमने अपने घर वापस जाना है, तो मेरे पास एक छत पे डंडा है।
1: अच्छा,
0: एक डंडा रखा था मैंने।
1: अच्छा,
0: जब मैं उसको जमीन पे मारता था ना तो उनको ये पता था कि इस आवाज से अब हमने केज के अंदर वापस जाना है।
1: अरे सच्ची?
0: हाँ,
1: इतना
0: ये ऐसे मतलब इतनी ये ऐसे मतलब इस तरीके के है ये। और आपको वीडियो में शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, देखिए मेरे हाथ से वो दाने का हाथ पे बैठ के खा रहे हैं वो।
1: अरे वाह, आपने तो मेरा पूरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया।
0: मैं शेयर करूंगा।
1: हाँ नहीं, प्लीज शेयर कीजिएगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई और बहुत नई बातें मुझे पता चले जो आई एम नॉट अवेयर। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे बर्ड से बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसा डर है, मेरा अजीब सा फोबिया है, ऐसे बताते हुए भी अजीब सा लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे ना बहुत डर लगता है बर्ड से, पता नहीं क्यों। कोई भी बर्ड, कोई भी बर्ड हो, इवन स्पैरो भी हो, उससे भी मुझे डर लगता है, मुझे उनके पर से मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों।
0: और इसलिए क्योंकि वो आपने अपने जहन में उसको बिठाया हुआ है, वो तो इतने नाजुक होते हैं, इतने मतलब सेंसिटिव है कि अगर आप उनको परिंदे को हाथ में पकड़ थोड़ा दबाएं तो वैसे बेचारा जो है वो खत्म हो जाए, वो तो इतना सेंसिटिव होता है
1: ना। वही ना, बस पता नहीं मुझे उनके जो बर्ड्स के जो पर वगैरह उनसे इतना डर, और मेरा भाई मुझे बचपन से डराता है और मैं मतलब रोती थी चीखते चिल्ला, वो डर मेरा आज तक है, आज तक मुझे डर है। मैं बर्ड्स के करीब कभी नहीं जाती, मैंने ऐसे ही बस वीडियो वगैरह देखे, मैं नहीं जा पाती, मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं क्या करूं। लेकिन आपने कहा जहन में बैठा रखा है मैंने, मैं कोशिश तो करती हूं कि मैं इस चीज़ से ज़रा मुझे भी निजात मिले, बट हो नहीं पाता। हालांकि देखिए कितने प्यारे होते हैं, देखिए आप इतने प्यारे लगते हैं बर्ड्स, बट पता नहीं मुझे क्यों डर लगता है, मुझे ये नहीं समझ आता, अजीब सा है ये मेरा कनेक्शन। खैर क्या कर सकते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बहरहाल मैं आपको इंशाल्लाह आज या कल वीडियो भेजूंगा वो जो

0: वो मेरे हाथ से खा रहे हैं और जो मतलब मैं पिंजरा खोल के वो जो उड़ रहे हैं अंदर से हाँ, और जिस हाँ, तरीके से
1: प्लीज प्लीज प्लीज जरूर भेजिएगा, मैं देखना चाहती हूँ, जरूर भेजिएगा।
0: क्योंकि आपने कोई भी जो चीज रखी है ना, फिर आपको उसकी केयर बहुत करनी पड़ती है, एग्जैक्टली मोर देन योर किड्स, आपको केयर करनी पड़ती है।
1: सही बात है, और बेचारे वो आप ही के आसरे हो जाते हैं, तो उनका आपको ख्याल रखना ही रखना है। बिल्कुल सही बात है।
0: बाकी रही बात परिंदों से हटके, जो जानवरों को, परिंदों को पिंजरे में और जानवरों को चिड़ियाघर में रखना सिर्फ इंसान की तफरी के लिए नहीं होना चाहिए नाजिर जी। हर जानदार को अपनी फितरी आजादी, मुनासिब रिहाइश, अच्छे देखभाल का हक है ये।
1: बिल्कुल।
0: अगर किसी जानवर या परिंदे को तहफ्फुज़, इलाज या नस्ल के तहफ्फुज़ के लिए, कंसर्वेशन के लिए रखा जाए और उसके मुकम्मल इलाज का ख्याल रखा जाए, तो फिर तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है कि फिर तो आप उसको कैद कर सकते हैं, तो मतलब उन चीजों के हवाले से। लेकिन आप देखिए कि बड़े बड़े जितने भी जंगलात हैं, वहाँ पर पूरी पूरी टीम्स होती हैं जो उनके लुकआउट करते हैं, वो मतलब
1: फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनके अंदर पूरी पूरी टीम्स हैं। तो पर वो देखिए, आपको जरूरी नहीं कि आप जू में ही उनका जो है वो कंजर्वेशन का प्रोग्राम चलाएं या उनकी ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाएं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन उनको दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो ये भी दलील देते हैं कि जो बच्चे हैं या फिर जो अडल्ट हैं, वो जो जू में आते हैं, एनिमल्स को करीब से देखते हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ या एनिमल्स के बारे में समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, उनको एक नॉलेज मिलती है, तो इसलिए भी जू का होना बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आप इस बात से रखते हैं क्या?
0: देखिए, मैं इस बात से इत्तफाक, आजादी जो है ना, आजादी हक, मतलब हाँ। आजादी छीने ना, आप अपने आप को रखिए किसी जगह पर, ये मुझे रखिए हाँ, किसी जगह पर, ये कोई भी बंदा हो, इवन आपका जो घर है, आपका जिसके अंदर आप रहते हैं, सुबह शाम उठते हाँ। बैठते, खाते हाँ। पीते, सोते हैं, आप हाँ। कितने दिन एक कमरे के अंदर बंद रह सकते हैं, अपने ही कमरे में
1: नहीं रह सकते? बिल्कुल सही बात है, सोच ही नहीं सकते, खौफ आ जाता है सोच के ही हम लोगों को।
0: मेरे ख्याल में तो परिंदों की असल जो जगह है वो खुला आसमान है हाँ। और जंगली जानवरों की असल जगह जंगली है, बाकी ठीक है, वो तफरी के लिए बनाई जाती हैं चीजें हाँ। और अगर चीजों को देख के अवेयरनेस हासिल करनी हो, तो आज मतलब साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि आप घर बैठे जो देख सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं,
1: सीख सकते हैं,
0: जाना जरूरी नहीं,
1: जरूरी नहीं है। ये बात भी बिल्कुल वैलिड है, सही कहा आपने, जबरदस्त और बहुत अच्छा लगा, आपकी कॉल इतनी इन्फॉर्मेटिव थी, मैंने बहुत एंजॉय की, और प्लीज भूलिएगा नहीं मुझे वीडियोस भी आप शेयर कीजिए, ठीक है?
0: डेफिनेटली डेफिनेटली, इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा, बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो एकदम एक अलग एंगल हमें जो है वो समझने का मौका मिला। हमारे साथ एक बहुत ही कमाल के कॉलर जुड़े, जावेद जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि नहीं, आप उन्हें पाल भी सकते हैं और एट द सेम टाइम उनकी फ्रीडम को भी, उनका उसका भी आप ख्याल रख सकते हैं, और जैसे उन्होंने पिजन का पर्टिकुलरली यहाँ पे हवाला दिया। तो एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो,
2: हाँ जी,
1: हाय, हाँ जी, कैसे हैं गाबा जी आप?
2: ओके रिपोर्ट मैडम,
1: ओके रिपोर्ट,
2: जबरदस्त
1: जबरदस्त, चलिए यही सुनना चाहते हैं, आपकी मॉर्निंग जबरदस्त और आप खुद जबरदस्त,
2: और उम्मीद करता हूँ आपकी ये जो डिसेंट एनर्जी है ना मैडम, ये हाँ। भी ऐसे ही ओके ओके रहे
1: इंशाल्लाह। डिसेंट एनर्जी सुन के मुझे अच्छा लगता है कि मतलब ठीक ठाक वाली, बेतुकी नहीं, हाँ यही इसका मतलब लेके चलू ना मैं,
2: बस इसको मैं नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैंने टॉपिक पे बात करनी है,
1: अच्छा,
2: जरूर करूंगा नेक्स्ट टाइम,
1: हाँ प्लीज एक्सप्लेन कीजिए।
2: अच्छा मैडम, आपने आवारापन मूवी देखी है इमरान हाशमी की?
1: नहीं, मैंने मूवी नहीं देखी है।
2: चलिए मूवी आप छोड़िए, आप ना उसका एक सीन देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा,
1: अच्छा,
2: वो आपसे रिलेट करेगा।
1: ओके
2: ठीक है जी,
1: वो भी डरते हैं
2: आवारा? नहीं नहीं नहीं, डरते नहीं, उसमें कुछ अच्छी बात बताई गई है, आवारापन मूवी पिजन सीन, 5 मिनट का है, आप वो अच्छा, डालना, ठीक है?
1: ठीक है ठीक है,
2: यही जैसे अभी अपने जावेद भाई कॉल करके गए हैं ना, बहुत अच्छी कॉल थी,
1: बहुत अच्छी कॉल थी,
2: मैं उन्हीं की बात से रिलेट करता हूँ सारा कुछ।
1: अच्छा,
2: तो उसमें मैडम अच्छी तरह से बताया गया कि सबको आजादी है, परिंदों को, जानवरों को, ठीक है, तो आप वो जरूर देखिएगा, 5 मिनट का सीन है,
1: जरूर देखूंगी अभी मैं, बिल्कुल ब्रेक पे जाऊंगी। अभी मैं
2: जी अभी आपको लेके चलता हूँ दोहा से पंजाब, मैडम हमारे वहाँ पे ना हाँ? लोगों को बहुत शौक है कबूतर रखने का।
1: अच्छा, हाँ मैं जी, हमारे कबूतरबाजी तो लड़वाते हैं,
2: कबूतरबाजी मैडम इतनी ज्यादा चलती थी ना पहले, अभी तो शॉर्ट टाइम के लिए बंद है वो हाँ। मैडम इतने ज्यादा मुकाबले होते हैं ना हमारे हाँ। वहाँ पे,

0: चक्कर पता क्या है इसमें ना, बहुत सारे गलत बंदे इन्वॉल्व हो गए, जैसे आपने बताया ना अभी बैटिंग।
1: हाँ, हाँ।
0: बैटिंग के अलावा एक चीज और है, कबूतरबाजी का मैडम जो मुकाबला होता है ना वो इस चीज से होता है, भी आप कबूतर को उड़ाइए, जौन सा कबूतर सबसे लेट उतरेगा ना हवा में सबसे ज्यादा रहेगा वो विनर होता है।
1: अच्छा ये होती है रेस। अच्छा ये कॉम्पिटिशन है। Nice.
0: ये कॉम्पिटिशन शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो बहुत अच्छा। सारे लोग उनका स्टैमिना बढ़ाने के लिए, उनको हवा में रखने के लिए बहुत सारी गलत चीजें देती हैं मैडम।
1: अच्छा।
0: तो उसकी वजह से सरकार ने अभी पाबंदी लगाई हुई है पंजाब में।
1: अच्छा अच्छा ये बात है। चलिए फिर तो मतलब रेस्क्यू करने के लिए जानवरों को, मैंने सुना था बहुत सारा इलीगल ट्रेड भी होता है।
0: वो मैडम कबूतरों का नहीं होता, वो बहुत सारे होते हैं, वो तो चलो दूसरा मैटर हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बहुत बड़े लेवल पे होता है मैडम, हीरों से भी ज्यादा।
1: सही कहा, वो भी बहुत बहुत बड़े पैमाने पे होता है
0: जी। अगर इसको आपने समझना है तो आप फिर इमरान हाशमी की तस्करी मूवी देखना, नेटफ्लिक्स पे है वो।
1: क्या बात है, आपने मुझे दो दो मूवीज रेकमेंड कर दी दोनों चीजें समझने के लिए। मैं तो खैर उसी पढ़ाई में,
0: जरूर देखना मैडम आप।
1: हाँ देखते हैं, जरूर देखेंगे और अभी देखूंगी, अभी ब्रेक पे जाऊंगी तो मैं देखूंगी जो आपने बोला इमरान हाशमी का सीन, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है ऐसा क्या है, तो मैं वो देखती
0: हूं। बहुत रिलीजियस है, आपसे रिलेट करेगा, उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, मैं तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता उनको। अच्छा। तो आप जरूर देखिएगा मैडम।
1: मैं जरूर चेक करूंगी। चलिए दोनों चीजें आपने अच्छी बताई और ये एक नई इन्फॉर्मेशन दी कि अच्छा ये कॉम्पिटिशन है कि कौन देर तक हवा में रहेगा, ये मुझे नहीं पता था
0: जी। मैडम यकीन मानिए जो कबूतर होते थे ना, कबूतर लोगों को इतना शौक होता था ना उसका, मेलों में लेके जाना उनको सजा के। तो कबूतरों को देखने के लिए तो आजकल बहुत सारे व्लॉगर आते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि ये चीज ज्यादा नहीं है ना, पहले बहुत ज्यादा
1: थी। पहले बहुत थी बिल्कुल।
0: और मैडम यकीन मानिए कबूतर पता किस पे बैठते हैं, अगर तीन चार कबूतर हैं
1: किस पे,
0: जैसे हम लोग एंटीना बनाते थे ना पहले टायर का, टायर के अंदर जो रिम होता था उसके ऊपर पूरा अच्छा सिस्टम बना के कबूतरों के लिए दाना रखा जाता है कि वो ऊपर बैठे।
1: ऊपर बैठे, बहुत ही अच्छी बात है। और आई थिंक सारे लोगों ने यहाँ पे ये साबित भी किया कि आप ख्याल भी रख सकते हैं बर्ड्स का, स्पेशली पिजन की बात हुई, और आप उनको पूरी आजादी भी दे रहे हैं कि वो हवा में पूरी तरह से जो है आजादी से घूमे फिरे, तो उनकी आप फ्रीडम पे भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगा रहे।
0: और मैडम कबूतर एक ऐसी स्पीसीज है ना, इसको तो मैडम डेली निकाल के आपको उड़ाना पड़ता है, इसकी डेली रूटीन का हिस्सा है ये।
1: और वापस आ जाता है जैसे बताया जा रहा है।
0: वापस तो आता जाता है, बिल्कुल वापस आता है।
1: भाई ये बड़ी कमाल की बात है। अच्छा कोई मुझे बता रहा था कि तोता जो है आप उसे कितना भी खिलाओ पिलाओ उसका ख्याल करो, एक बार आपने पिंजरा खोला वो वापस कभी नहीं आता।
0: वो हाथ से निकल गया मैडम, नहीं आएगा।
1: ये है। वो वापस कभी नहीं आएगा आपके लिए, वो इस तरह का लॉयल नहीं होता।
0: मैडम एक्चुअली पहले पता क्या होता था ना, देखिए खुले खेत होते थे, इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था सिस्टम पहले, तो हम लोगों ने मैडम इतने ज्यादा खरगोश देखे हैं ना मैडम खेतों में। तो सबसे मुश्किल जो था, डिफिकल्ट टारगेट था जिसको पकड़ना था एज अ एंजॉयमेंट मैडम, कोई वो नहीं है, मैं टॉर्चर की बात नहीं कर रहा, उसके पीछे भागना सबसे मुश्किल काम था, खरगोश को पकड़ना मैडम।
1: वो पकड़ में नहीं आते थे?
0: नहीं आता था मैडम, अगर आपके हाथ में भी आ जाएगा ना उसकी बॉडी ही ऐसे है। हाँ जी हाँ जी, नहीं उसकी बॉडी ही ऐसे बनी हुई है, बस आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा उसी टाइम।
1: मुझे याद है मैंने भी बहुत, जब मैं छोटी थी एक रैबिट हमारे घर पे पाला गया था, एक ही था, और फिर उसका ख्याल किया, फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ बिल्ली ने उसको वो किया समथिंग, तो उसके बाद से हम लोग ने कभी भी किसी को पेट को नहीं रखा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़ा ख्याल करना होता है
0: जी। बिल्कुल मैडम, आप ना एक चीज और सर्च कीजिएगा, मेरे दिमाग में आ गई, जो जिसको हम गिद्ध नहीं बोलते, वल्चर, वल्चर, उस पे आप डीपली रिसर्च कीजिएगा। वैसे वो देखने में अच्छी नहीं लगती हमें, मगर वो अभी भी बिल्कुल ही मैडम वो अलोप हो चुकी है इंडिया में।
1: अच्छा खत्म होती जा रही है।
0: आप देखिए ना, आपने लास्ट टाइम कब देखी थी, या मैंने, मेरे को तो है नहीं मैडम याद।
1: ऐसे वल्चर्स हम लोगों ने देखी भी कब है, ऐसे कहाँ नजर आती है, वो तो बिल्कुल ही आउटर स्कर्ट्स में यहाँ वहाँ होती है, या बहुत ही डेजर्टेड एरिया है वहाँ होती है, जहां पे या जंगलों में आपको दिखे दिख जाती हैं क्योंकि वहां पे जानवर जो नेचुरल अपनी डेथ से मरते हैं तो उन्हें खाती हैं या फिर रेगिस्तानों में जहां पे कोई बर्ड या कोई भी जानवर कहीं भी तरह से कोई मर गया कुछ हो गया तो वहां पहुंच जाती हैं बट ऐसे तो हम लोगों ने सिटीज में तो नहीं देखी कभी आपने कभी देखी है उसको रियल लाइफ में मैं तो नहीं देखा
0: आउटस्कर्ट पे भी देखी है

0: लाइव में भी देखी है अभी, वो पता क्यों नहीं मैडम दिखती?
1: क्यों नहीं दिखती?
0: क्योंकि वो जो जानवरों को खाती है ना, हम लोग उनको मेडिसिन इंजेक्शन ही इतने ज्यादा देते हैं, उसका नुकसान उनको बहुत ज्यादा होता है।
1: हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। इनफैक्ट देखो ये भी एक पॉइंट है कि हम किस तरह से उनको इंजेक्शंस और ये सारी चीजें दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वल्चर्स या मतलब वो जो खा रही है उनको भी पहुंच रहा है। अभी मैं सर्च करती हूँ इसको, वल्चर्स
0: इसको भी और सीन को भी मैडम जरूर
1: दोनों जरूर देखते हैं जरूर। चलिए थैंक यू सो मच गाबा जी, थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आई नो आपकी 8 बजे से शुरू होती है ना वो ड्यूटी?
0: बस 7:30 अराउंड मैडम।
1: अच्छा 7:30 हो
0: जाती है। 20:30-40 किसी टाइम
1: इस टाइम पे स्टार्ट हो गए। चलिए एंजॉय रेस्ट ऑफ द ऑफ योर डे और थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मजा आया, हमेशा ही आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
0: अपना ख्याल रखिए,
1: यू टू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। ऑलराइट दोस्तों, बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत देर से बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। स्टे हुक टू FM 107 दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी.

साथियों और आप कॉल हो चुके हैं, वापस आ जाइए इसी शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स। मैं हूं नाजिया आपके साथ 7:46 ऑन द क्लॉक। और आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। आज हम पूछ आपसे ये रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो एनिमल्स हैं या फिर जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स को जू में बर्ड्स को केज में रखना आपके हिसाब से एथिकल है, ठीक लगता है कि नहीं लगता है, या एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, या फिर कोई और दलील है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया था वल्चर्स को लेकर, और मैंने गाबा जी यहाँ पे वाकई पढ़ा, और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है, एक ख़ास तरह की जो दवा है, जो ड्रग है, जो मतलब और जानवरों को दिया जाता है, और जब वल्चर्स इनको खाते हैं, मतलब इनके जानवरों की लाश को खाते हैं, तो ये दवा उनके जिस्म में भी पहुँच जाती है, एंड इसकी वजह से उन्हें किडनी फेलियर होता है। ये तो बड़ी, मैं तो वल्चर्स की किडनियाँ ख़राब इसलिए हो रही हैं और शायद इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन गिरती चली जा रही है, जो कि बिल्कुल सही कहा। वहीं पे बहुत बार ये जहरीली जो हैं वो लाशें ऐसे खा लेती हैं, उसके बाद भी बेचारे मर जाते हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे, और फिर इनकी अपनी कोई ऐसा जो हैबिटेट है वो है भी नहीं जहाँ पर ये ब्रीडिंग कर सकें आसानी से, इसलिए भी इनकी तादाद धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। लेकिन हम जब इसको देख रहे थे, पढ़ रहे थे, हालांकि देखने में किसी को भी वल्चर जो है वो अच्छा नहीं लगता, और खैर मैं तो, मुझे तो वैसे ही बर्ड से, मैंने बताया ना मुझे डर लगता है, तो वल्चर से तो बहुत ही डर लगता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये हमारे जो होते हैं ना, व्हाट यू से, अनसंग हीरो टाइप, ये उस तरह का है, उस तरह की है वल्चर जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत यूज़फुल है। तो कहने को ये हमें अच्छे नहीं लगते, नहीं समझ में आते, लेकिन ये वाकई अनसंग हीरोज हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वल्चर्स जो हैं वो लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट को पूरी तरह से साफ़ कर देते हैं नेचुरली। मुर्दा जो जानवर हैं उन्हें खा लिया तो एक तरह की सफाई हो जाती, इससे बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होती, इससे जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है। तो देखा जाए इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो वल्चर्स कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, और हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। और जब वल्चर्स ही कम हो जाएंगे तो सोचिए क्या होगा, कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप देखेंगे, अभी आप देख भी रहे हैं कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, उससे बीमारियाँ फैल रही हैं, लोगों में बहुत सारे मसले पैदा हो रहे हैं। तो वो जो क्लीन अप क्रू है वो बेचारा अपना काम ही नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, अल्लाह ताला ने हर एक मखलूक को बनाया है फॉर अ रीज़न। हम लोगों ने जैसे उन्होंने कहा ना कि छिपकली भाई क्या ज़रूरत है, हम लोग शायद उतना नहीं समझते।

लेकिन जो लाइफ साइकिल है वो सारे के सारे जानवर जितने भी परिंदे हैं हर कोई उसका एक अहम जो है वो पिलर है। ये बात अलग है, हमें उस तरह की नॉलेज नहीं है तो हम शायद उसको उस तरह से नहीं लेते या नहीं समझते, बट हाँ उनका अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो अदा करते ही करते हैं। अच्छा चलिए वापस आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। एंड जैसा हम आपसे पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जानवरों को जू में रखना चाहिए, बर्ड्स को जो है वो पिंजरों में रखना चाहिए, पिंजरे में रखना ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। पिजन के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, और कोई इसके अलावा कोई बर्ड है जिसे आप लोग अपने केज में रखते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर। और कुछ लोग मुझे कॉल कर रहे हैं 666 वाले नंबर पे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो नंबर है 4434377। इस नंबर पे हम आपकी कॉल जो है वो रिसीव कर सकते हैं, और 666 वाले नंबर पे आपके मैसेजेस। अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा मैसेज है और इन्होंने एक वॉइस नोट भेजा है, मैं इनका नाम चेक कर लेती हूँ। अपना नाम आप लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं बताते हैं ना, ये कुछ ख़ास बात है। अच्छा सुहेल है इनका नाम, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैडम मैं जो हूँ पिछले कई सालों से स्पैरोज़ हैं इनके पास, वो बता रहे हैं पिजन जैसे बताया था जावेद जी ने कि 300 के करीब, इन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ इतनी ही फिगर होगी। मैंने ऐसे पूरा एज सच काउंट नहीं किया, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ 100-150 से ज़्यादा ही है। और हर रोज़ मेरी ड्यूटी रहती है कि मैंने खाना उन्हें दाना दूँ और उन्हें पानी दूँ। और बिल्कुल सही कहा हमारे लिसनर ने कि वो वापस जाते हैं, घूमते हैं और वापस फिर अपने ही घर आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात हो गई। अच्छा हाँ सही कह रहे, अगर इंसानों को पिंजरे में रखा जाए तो इंसान तो फिट ही नहीं हो पाएगा, पहले तो सोच लीजिए पिंजरे में बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अच्छा सीबी है यहाँ पर सलाम का है, और ये वीडियो हमें भी भेजिएगा। हाँ मुझे पहले मिल जाए तो मैं आपको भी भेजूँगी ज़रूर। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमें ये भेज दें। आरिफ अंसारी जी हैं, 2-3 ऐसी बर्ड्स हैं जिसे पाला जा सकता है, वो वापस भी आते हैं। कबूतर सबसे बेस्ट होते हैं, हमारे यहाँ घरों में कबूतर रखे जाते थे और फिर खाने के। अच्छा ठीक है, तो आरिफ जी ने भी बहुत ही अच्छी बात की यहाँ पर। यहाँ पर मुझे सलाम भेजा है और इनका नाम मलिक है, वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ है फयाज जी का मैसेज, जो कहते हैं आप मुझे बताइए कि आप जो है वो वेजिटेरियन क्यों है। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, आज हमारा सवाल दो कुछ और चल रहा है, बट आपने मुझे ये वाला सवाल पूछ के बहुत अच्छी वाली कन्फ्यूजन का शिकार किया। देखिए मेरे पास कोई ऐसा जिसकी दलील तो नहीं है, कोई मैं स्ट्रॉन्ग लॉजिक तो नहीं दे पाऊँगी, शायद मैं ऑन एयर देना भी नहीं चाहूँगी, तो मैं आपको ऑफ एयर वॉइस नोट भेजती हूँ, ठीक है। अच्छा इसके साथ हमें मैसेज है और इनका नाम है, देखो फिर नाम नहीं, आप लोगों का नाम आप नहीं भेजते। अच्छा मोहम्मद इब्राहिम जी हैं, कैसे हैं आप, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल जो चल रहा है और जो आपकी भी मजबूरी है और मेरी भी बड़ी मजबूरी है, आज मैं कुछ ऐसा वॉइस नोट रिकॉर्ड करवा लेती हूँ अपनी एडमिन टीम से जो मैं आप लोग को फॉरवर्ड करूँ, बस यही हो सकता है। देखिए हम उम्मीद ही कर रहे हैं, बाकी तो मैं आपको कुछ सही बता नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर सलाम कहते हैं मोहम्मद यूसुफ जी, एंड कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैप्पी वाली वेंसडे मॉर्निंग, आपको भी हैप्पी वेंसडे मॉर्निंग एंड थैंक यू। और यहाँ टॉपिक के हवाले से कहेंगे कि कुछ एनिमल्स और बर्ड्स हैं जिन्हें हम रख सकते हैं जिनसे इंसानों को कोई नुकसान नहीं होता, अदरवाइज इनका मानना है कि नहीं रखना चाहिए, कैद नहीं करना चाहिए। सही, कुछ जानवरों को कैद कर सकते हैं जो मतलब जैसे पिजन की बात है जो बता रहे हैं कि ना वो जाते हैं वापस आ जाते हैं, बट हर कोई ऐसा, सारे बर्ड्स ऐसे नहीं होते हैं। स्पैरो कोई रखता है तो बताइए, कोई और किसी तरह की बर्ड्स रखता है तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे सलाम का है, कैसी आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुमताज़ अहमद जी हैं, नाजिया मैम मुझे कबूतर पालने का बहुत शौक़ है, मैं कबूतर के लिए घर बना के रखा हूँ। ओहो अरे वाह मुमताज़ जी क्या बात है भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बर्ड से डरते नहीं हैं, उन्होंने बाकायदा घर बना रखे हैं। हमें ये मैसेज है शिराज जी का, शिराज जी ने क्या गुड मॉर्निंग भेजा है, सो वेरी गुड मॉर्निंग आपको। एंड एक महीने पहले रिफत जी ने बताया कि ओहो, तो रिफत जी कैसे हुआ, खैरियत सब चीज़, आप ठीक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लापरवाही से हुआ होगा, कुछ और ही हुआ है। रईस खान जी हैं, सलाम कहते हैं, इसके साथ मुझे सलाम भेजा है, इनका नाम नूर मोहम्मद मंसूर जी है। मेरा कबूतर दूसरे अच्छा भैया ये भी चल रही है कहानी, ये तो हमको

0: बताई नहीं था. अच्छा रमेश यादव जी हमारे साथ हैं. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको. एंड वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर. एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं. हेलो.
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम अल्लाह वबरकातुहू.
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कौन है हमारे साथ?
1: जी मेरा नाम समद है.
0: समद जी, सो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाउ इज योर मॉर्निंग? सुबह कैसी जा रही है? अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा कुछ ऐड करना चाहेंगे? आज हम बात जिस टॉपिक पे कर रहे हैं वो है क्या जानवरों को जू में और बर्ड्स को पिंजरे में रखना ठीक है?
1: अब ये एक ऐसा सवाल है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो कहते हैं ना कि गरीबी हमेशा अमीरों के लिए बनाई जाती है हमेशा. तो जो है जानवरों को पिंजरे में रखना भी कुछ इसी तरीके से है कि वो आएंगे और देखेंगे कि ये है. तो कुछ हद तक जो है ठीक है, बट कुछ हद तक ठीक नहीं है. मेरे अगर आप पिंजरे में नहीं अगर रखना ही चाहते हैं जू में, तो एक ऐसा एनवायरमेंट बनाया जाए जो कि बिल्कुल एकदम ओपन स्पेस में रहे, जैसा कि हम देखते हैं अफ्रीका केन्या वगैरह में कि वहाँ पर जो है बिल्कुल एक जंगल में रखा जाता है और गाड़ी में हमको घुमाया जाता है. हम केज में होते हैं, वो केज में नहीं होते हैं. खुले आजाद घूमते हैं और हम जो है एक केज वाली गाड़ी होती है उसमें घूमते हैं. तो मैं अफ्रीका गया था तो उस टाइम पर मैंने ये चीज देखी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो जो उनका नेचर से जो जुड़ी होती है चीज, उनकी जो कुदरत ने उनको जिसके लिए बनाया है तो उसी में रहते हैं. कोई ऐसा केज वगैरह नहीं है. इनफैक्ट बर्ड्स के लिए भी नहीं रखा है उन्होंने. बर्ड्स के लिए एक अलग से पार्क है, वहाँ पर बर्ड्स रहते हैं. और कुछ ऐसी जाली कुछ ऐसा कुछ नहीं है समझे. नो केजेस नथिंग. तो ऐसा कुछ है तो फिर ठीक है, वरना पिंजरे तो जो है ना वही है. तो एक शेर भी बड़ा मशहूर है ना कि पिंजरे से निकालना है पंछी को, हम बस उसके दिल से पिंजरा निकालना है. तो ये जो होती है कि पिंजरे बड़ी खराब चीज है.
0: पिंजरे बड़ी खराब, बहुत अच्छी बात बोली आपने. सही है, तरीके और भी हैं अगर आप ब्रीडिंग के पर्पज से या उनके प्रोटेक्शन के या कंजर्वेशन के पर्पज से सोच रहे हैं तो तरीका और भी है. नॉट दैट जू जो आपने कहा. बिल्कुल. और बहुत लोग कहते हैं कि हम जो है ना रेस्क्यू करना चाहते हैं एंड यू नो फॉर दैट हम उनको रखते हैं जू में और वहाँ पे जो या सेंचुरीज हैं तो उनका एक बहुत ही सेफ होम बन जाती हैं. तो सेंचुरीज तो मुझे लगता है बर्ड सेंचुरीज तो ठीक है, चलिए वो तो फिर भी एक हद तक ठीक है, बट जू इज अ वेरी स्मॉल स्पेस वाइल्ड एनिमल्स के लिए.
1: हाँ ये तो है. जैसा कि अब आजाद घूमने वाली चीजों को आप एक जगह कैद कर दोगे और उसे एक लिमिटेशंस में रख दोगे तो वो नहीं रह पाएंगे. तो उसी नेचर ने बनाए हैं उनके लिए. अब वो बाकी अल्लाह जाने, इंसान जाने. इंसान अपनी नफ्स ख्वाहिशात के लिए हर चीज को अपना गुलाम बनाना पसंद करता है. तो ये तो एक है कुदरती निज़ाम, आप क्या कर सकते हैं. लेकिन ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई दुनिया में हर कोई आजाद बनाया है अल्लाह ने हर किसी को. ये किसी का कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी को पकड़े और अपनी खुशनुदी के लिए उसे कैद करें.
0: बिल्कुल से, बिल्कुल सही का.
1: सोच की भी अभी अभी हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं ना कि यहाँ पर तो हम सोचने पर भी पाबंदी है. ये तो जानवर ही है फिर भी.
0: सही बात है, बिल्कुल सही काम. ऐसी दुनिया हम सोच भी नहीं सकते और हम कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं. वो आज़ादी हमें नहीं मिली तो उसमें हमें कितना फ्रस्ट्रेशन. और इनकी तो आपने पूरी पूरी लाइफ को ही जो है वो गुलाम बना दिया, कैद कर दिया. तो सोचिए
1: सही तो वो जो अल्लाह ने उनका जो नेचर है जिस तरीके से वो चीर फाड़ के जो है उनका अपना एक कला होती है जो है उनके अपने एक एक्सपर्टीज होती है कि वो शिकार करते हैं खाते हैं जो भी है. और पंछी हुए तो उनको उड़ना, उनके पंख खोल कर उड़ना. अब जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई एक अगर हम हमारे बच्चों को पकड़ के जो है खूबसूरत बच्चे होते हैं कोई तो उन्हें पकड़ के रख देंगे और एक एग्जीबिशन लगा देंगे कि यहाँ पर जो है सुनहरे और प्यारे बच्चों की एग्जीबिशन लगी है तो कोई माँ बाप कहेगा कि वो इसे लगाए
0: एग्जीबिशन? कभी नहीं, कभी नहीं. सही बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया.
1: हमारे बच्चों को लेकर हम जाते हैं जू को, ये देखो यार ठीक है बताना चाहिए बट ऐसा कुछ सेटअप करवाओ, ऐसा कुछ करो कि ये जैसा कि मैंने कहा कि अफ्रीका में जैसा है खुला वैसा खुला रखो तो उन्हें भी लगे कि हाँ वो कैद में नहीं है, घूम फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जी रहे हैं. ऐसा कुछ रहेगा तो मैं उस चीज का फायल हूँ, अदरवाइज नहीं. रही बात बर्ड्स की, और बर्ड्स जो है घर पर जो लोग पालते हैं तो उसमें भी जो है कबूतर जो है ठीक है मेरे हिसाब से. बाकी दूसरे पंछी जो होते हैं जैसा कि मतलब तोता हो गया, और अपने पैरेंट से जिसे हम कहते हैं तोता कहते हैं और पता नहीं कौन कौन मुख्तलिफ अपनी जुबानों में क्या क्या कहते हैं, बट तोता और पैरेट तो कॉमन है हमारे यहाँ। और बाकी दूसरे जैसा कि छोटी छोटी बर्ड्स

0: जाती हैं जो रेगुलर बर्ड जो हमको मॉर्निंग मॉर्निंग में दिखाई देती हैं, आजकल तो खैर बहुत कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक बिल्डिंग्स और ग्रीनरी जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो उसके चलते भी जो है उनके घर टूट रहे हैं ना, तो घर से बेघर करना तो ये दुनिया का दस्तूर है, क्या करें।
1: सही कहा आपने, बड़ा गहरा सवाल है सोचने के लिए हम सब के लिए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जो हम कहीं ना कहीं नेचुरल जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसका असर कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पड़ेगा और पड़ ही रहा है, पड़ ही रहा है,
0: पड़ चुका है इनफैक्ट सारी चीजें। देखिए हम तो है ना अब ये हम इतनी टेक्नोलॉजी से आ चुके हैं कि ये टेक्नोलॉजी के चलते हमारी हेल्थ खराब हो रही है, तो सोचे कि वो जो छोटी छोटी चिड़ियां हैं, छोटी छोटी बर्ड्स हैं, जो खूबसूरती अल्लाह ने बनाई है और हर एक चीज के लिए आपने जैसे बड़े अच्छा कहा कि रीजन के लिए बनाया है, और हम समझते हैं ऐसे ही फर्जी, ऐसा फर्जी कुछ नहीं है, अल्लाह के कुदरत में हर वो चीज अपनी एक वक्त मुकर्रर पे बनाई गई है और वो उसी वक्त पे काम करती है जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है, तो हर एक चीज का अपना एक मकसद है, बेमकसद किसी को नहीं बनाया गया।
1: सही बात।
0: लेकिन हमने उसे क्या किया, अल्टीमेटली वो टेक्नोलॉजी टावर ये सारी चीजों से घेर के उनके लाइफ स्पैन को कम कर दिया है। इट्स जस्ट लाइक यू नो एक इंसान स्मोकिंग करता है उसे पता है कि वो मरने वाला है, कि मतलब अपनी अर्ली डेथ कर रहा है, या ड्रिंकिंग स्मोकिंग जो बैड हैबिट्स होती है, तो ये उसी तरीके से बर्ड्स का भी हाल हो गया है कि टेक्नोलॉजी में जो टावर्स हो चुके हैं ये सब सारी चीजें, ये हम भी क्या करें, हम भी मजबूर है इन्हीं से गिरे हुए हैं, इसके चलते टेक्नोलॉजी के चलते हमारी भी लाइफ नहीं चल सकती है आगे, इतना यूज हो चुके हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और शायद जंगल आपने कहा ना खत्म हो रहे
0: हैं,
1: वी आर समवेयर डेफिनेटली, हम जंगल्स को काट रहे हैं, शहरों की तादाद बढ़ रही है, तो जो बर्ड्स हैं उनको नेस्टिंग का या फिर उनको फूड के लिए कोई मुनासिब जगह ही नहीं मिल रही, तो जाहिर उनकी तादाद तो कम होनी है, और फिर सबसे बड़ा जो एक रोल प्ले करता है पेस्टिसाइड्स और पोल्यूशन, मतलब खेतों में ये जो इस्तेमाल होते हैं केमिकल्स, इनकी वजह से आप देखिए तो बर्ड्स जो है वो मर रहे हैं, बहुत से बर्ड्स इंसेक्ट्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं ना, वो इंसेक्ट्स तो पेस्टिसाइड्स और वो सारी चीजें ले रहे हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी में भी वो पहुंच रही है, तो वो एक फूड चेन है ना, तो वो मुतासर तो हो ही रही है, आपने बिल्कुल सही बात की,
0: बिल्कुल,
1: और इसीलिए मर रहे हैं।
0: तो इंसानों के बॉडीज पर मुतासर हो रही है दवाओं का असर, वो तो बेचारे हैं छोटी छोटी मखलूक का, उनको तो कुछ नहीं, पर मैं सभी लिसनर्स और हम सब लोग को एक मैसेज देना चाहूंगा इंक्लूडिंग मी, कि हम जो है कि अभी समर चल रहा है, हम सब जो है क्या कहते हैं अपने पानी घर के बाहर हो सके तो थोड़ा सा रखें, और मतलब अगर दाना पानी अगर आप स्पेस रखते हैं जहाँ पर जो है किसी को प्रॉब्लम ना हो और गंदगी ना हो, उस चीज का भी ख्याल रखें, ऐसा नहीं कि बस हम जो है जानवरों की ख्वाहिशें आरज़ू में हम हमारे एनवायरनमेंट को भी खराब कर दें, वैसा भी नहीं होना चाहिए, कुछ
1: अच्छा
0: इस तरीके से एहतमाम करें कि अपनी नेकी भी हो जाए और आप जो चीज से मकसद से रख रहे हैं वो भी हो जाए और कुछ तकलीफ भी ना पहुंचे, ना खुद को ना आसपास के लोगों को, तो ये ऐसा कुछ रहेगा तो मजा आ जाएगा।
1: बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही इम्पैक्टफुल मैसेज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कॉल, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे बात की, थैंक यू फॉर योर कॉल,
0: थैंक यू सो मच,
1: टू यू टू, टेक केयर, बाय। बहुत ही अच्छे हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, हर किसी ने अपने अपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे, अपना ओपिनियन रखा, और मैं कहूँगी कि मास ऑडियंस का यही कहना मानना है, हम सब ने यूनानिमसली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, आज़ादी सबको प्यारी है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदे हो, और अभी जैसे इन्होंने कहा कि कितने बर्ड्स जो हैं कम हो रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ और ख्याल आई कि आपने देखा ना कितनी सारी पावर लाइन्स होती हैं, तो कुछ एरियाज़ में जो पावर लाइन्स हैं उनसे टकरा कर भी तो कितने सारे जो बर्ड्स हैं वो बेचारे मर जाते हैं, फिर ये और चीज़ मुझे याद आई, मैंने देखा कितने सारे बर्ड जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, शीशे की बिल्डिंग है उन पर अगर आपने बहुत ज़्यादा उनका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं किया है, और ट्रैफिक की वजह से हर साल देखिए कितने सारे बर्ड्स जो हैं वो ज़ख्मी या फिर वो भी मर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने तरक्की के नाम पे, अपनी चीज़ों के नाम पे तो हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, लेकिन ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम सबको जो है इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि बर्ड्स सिर्फ हमारे आसपास जो है वो खूबसूरती नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं बैलेंस रखने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे हमारे लिसनर ने कहा कि हर किसी का अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, छोटा सही लेकिन सबका एक इंपॉर्टेंट रोल है, और जब बर्ड्स की तादाद कम हो जाएगी तो इंसेक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर आप सोच सकते हैं इकोसिस्टम पे किस तरह का इसका असर होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चेन का हिस्सा है। अच्छा, कुछ लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी 293 जिनके लास्ट में है कि आप प्लीज़

मुझे कॉल करना चाहते हैं, नंबर है 4434377। वापस आएंगे तो उस टॉपिक को कंक्लूड भी करेंगे एंड अपने गेम की तरफ भी आएंगे। एक छोटा सा और भी सेगमेंट है, उस पर भी बात होगी। स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. Time Check. 8:05 जी हाँ, थर्ड आवर में हम एंटर हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ।

0: वाह क्या गाना है फहीम अब्दुल्ला जी आपकी आवाज वेलकम बैक गाइस आपने बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक एंजॉय किया सैयारा मूवी का टाइटल ट्रैक बहुत ही कमाल धमाल का एंड वन ऑफ माय फेवरेट काफी टाइम के बाद कोई ऐसा गाना है जिसको मैं लूप पर सुन सकती हूँ तो वो यही गाऊं तो फिलहाल जो है अब हमारा टाइम हो चला है कि हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें बट बिफोर दैट कोई हमारे साथ कनेक्ट होना चाहता है तो चलिए एक कॉल ले लेते हैं आई थिंक कुछ वो ऐड करना चाहेंगे इस टॉपिक पे एंड देन वील कंक्लूड दिस हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग
0: वेरी गुड मॉर्निंग वालेकुम अस्सलाम कौन है हमारे साथ
1: अज्जू अज्जू
0: हाय कैसे हैं अज्जू हाउ आर यू डूइंग
1: वी आर गोइंग गुड हाउ आर यू
0: ऑल गुड सो आज आई होप आपने हमारा टॉपिक सुना है
1: रिलेटेड टू द पीजीएम
0: यस रिलेटेड टू कीपिंग द एनिमल्स इन जू एंड बर्ड्स इन केज डू यू थिंक दिस इज रियली या Do you think it's really ethical?
1: No, actually the you know the pigeons have some special ability. They can fly even 1,000 miles away. If you leave your pigeon 1,000 miles away, 2,000 miles away, it can come here in your home. I will tell the technique the pigeon कैसे वो टेक्निक यूज करता है ना वो उसका फिलोसफी वो दो दो तीन चीज है एक उसका सन का थ्रू उसका मैपिंग है नॉर्मली ये पिजियन रात को फ्लाई नहीं करता
0: ये बताया
1: ओनली दिन में करता है वो क्योंकि उसका मैपिंग रोड उसका सन का सन मैपिंग है एंड यू नो दिस अर्थ का सेंसिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स सो उसके हिसाब से उसको पता चल जाएगा क्योंकि वो बर्ड्स ये पिजियन वेरी फ्यू बर्ड्स कैन हियर 0.005 डेसिबल हर्ट्ज
0: Sit.
1: Oh, like pigeon, I think it comes fourth or five. It may aata hai. Very lower sound ko hear kar sakta hai.
0: Oh.
1: And there is one more sensing ability. Hai, uska sense smelling bolta hai. A sense melting like dogs hai na dog dogs and some animals animals ko wo smell wo sense smelling bolta hai usko wo smell ka hisab se pata chal jayega uska area wo ye matlab wo for example tiger hai to jungle mein uska ek territory hai उसका मालूम है उसका टेरिटोरी कितना दूर तक है वो कैसे पता चलेगा सेंस स्मेलिंग का थ्रू पता चलेगा तो वो सेम एबिलिटी वो पिजन को भी है
0: हाँ शायद इसीलिए वी से दैट दे आर इंटेलिजेंट बर्ड्स और शायद इसीलिए दे आर बीन या
1: पिजन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट कंपेयर टू सम अदर बर्ड्स देयर आर सो मेनी इंटेलिजेंट बर्ड्स आल्सो देयर बट पिजन इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट बर्ड्स
0: दैट्स हाउ दे होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिस्टोरिकल इवेंट्स यू नो दे यूज्ड टू कैरी द मैसेजेस अभी आई कैन रिलेट विद दिस Yeah.
1: Yeah, like you know the now we are in modern age, but in vintage like before 600 BC before who sending the post? Who is the postman? Pigeon is the postman.
0: Yeah, pigeons were the one.
1: Yeah, pigeon is the postman. So how they are sending?

0: their message, some miles and million miles from away, like this ability. But the real fact is, who found this pigeon ability? Till now, I didn't get. Uska inventor kaun hai?
1: Kaun hai? Nobody knows.
0: God
1: Almighty.
0: Yeah, my thing.
1: Yes.
0: लेकिन वो बोलता है पिजन नॉनस्टॉप फ्लाई करता है लेकिन उसका स्टैमिना कंपेयर टू अदर बर्ड्स बहुत कम है.
1: अच्छा कम है.
0: बट उसका मीट अच्छा है.
1: But we know that कि pigeons जो है अगर आप कितने भी kilometers like 100 kilometers travel कर लें but still they find their way home. तो वो एक ability है.
0: Yeah, वो मैं उसका पहले बोलता ना उसका सबसे अच्छा homing and उसका GPS उसका navigation वो बहुत
1: और even human faces भी बहुत अच्छे से recognize रखता है. जैसे जावेद जी ने बताया पहचान जाते हैं और उनके हाथ पैर सब जगह.
0: मैं बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया में मैं कई बार गया हुआ. उधर वो दाना मिलता है आपको हाथ में लेके उधर लेके जाएगा तो पिजन आपका हाथ में आ जाएगा. तो वो उस दैट एरिया पिजन्स नो अबाउट द पीपल. ओके दे आर कमिंग टू गिव अस फीड. जस्ट यू बाय सम फीड एंड टेक योर हैंड पिजन विल कम इन योर हैंड.
1: They will come in your hand, right? Okay.
0: But in your home, you are taking care of pigeons. There are certain things you need to follow. Clean properly the pigeon area because ये गांव में तो वो snake का problem बहुत है. मेरा grandfather का वो ये pigeon का शौक था.
1: अच्छा.
0: वो बहुत सारा सांप आ जाता है उसका अंडा खाने के लिए. थोड़ा मुश्किल है. वो
2: पहले ही बेड से डरती है तो मौत डरा हो सांप. अभी अपना माइंड चेंज करें ना जी. अभी आप बर्ड
1: कौन है आपके साथ?
2: हम अब्दुल रऊफ
1: जी. अच्छा अच्छा सही काम. मैं कैसे करूं? मुझे आप हेल्प कीजिए. मैं किस तरह से?
2: आप सूख वागफ में जाके एक पिंजरा लें छोटा, उसमें आप लव बर्ड लें दो पेयर. अच्छा? लें पेयर.
1: अच्छा.
2: तो उसको पाले घर में. उसके जब आप घर में रखेंगे ना तो आपको उससे प्यार हो जाएगा.
0: वो दो दिन में मर जाएगा?
2: नहीं मरेंगे नहीं. पुट इन द एसी एंड पुट द प्रॉपर फीड. सो आप उनको खेलते हुए देखते हुए क्योंकि इतने नाजुक है वो तो आपको कुछ नहीं करते हैं.
1: कुछ भी नहीं करते. पता नहीं मुझे क्या एक अजीब सा डर.
2: वो आपका एक माइंड में एक साइकोलॉजिकल वो आ गया.
1: मैं सूख वाकिफ का वो एरिया है मैं कभी नहीं जाती. आई एम सो स्केर्ड. मैं वहां से एकदम कट के दूसरी तरफ से निकलती हूँ. हाँ लोग जाते हैं, मेरे सारी फैमिली के लोग जाते हैं. मैं बाहर उधर बैठी रहती हूँ. मुझे डर लगता है. क्या कर सकती
0: हूँ? सबसे बेस्ट थिंग यू बाय वन पैरट.
2: वो बेवफा तोता जिस्म होता है वो सही नहीं.
1: उसको तो सबसे पहले खोल के मैं ही उड़ाऊंगी लगता है डर के मारे कि चलो अच्छा जाओ तुम जल्दी से निकल जाओ.
2: छोटे बर्ड्स ले रहे हैं, कलर बर्ड आते हैं. पैर लेके आप रखें थोड़े दिन तो देन यू गेट यूज्ड टू विद देम.
1: चलिए मैं कोशिश करती हूँ.
2: काफी हो गया आज का टॉपिक.
1: आज के लिए बहुत हो गया. चलिए जी. थैंक यू दोनों को. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर कॉल. टेक केयर. बाय. बहुत ही अच्छी बात की और रऊफ जी ने मुझे बताया तो मैं कोशिश जरूर करूंगी. मगर मैं क्या बता सकती हूँ. बहुत पहले भी लोगों ने मुझे बहुत कोशिश करवाई, सिखाया कि बर्ड से मत डरो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम पे हंसते हैं, तुम भाग रही होती हो, सब तुम्हें देख रहे होते हैं. लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ भाई. अब मुझे डर लगता तो लग ही रहा है. अब कितनी छोटी सी बर्ड है और मुझे लोगों ने कहा तुम इतनी बड़ी हो, इतनी छोटी सी बर्ड, तुम्हें उससे डर लगता है लेकिन लग रहा है. चलिए कभी ना कभी ये शायद डर मेरा कम हो, ख़त्म हो. लेट्स होप. आज हमने जिस टॉपिक पे बात की बहुत अच्छा लगा. आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को जो है वो एड्रेस किया, अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर किए. जैसे हमने बात की क्या जानवरों को रखना जू में, बर्ड्स को पिंजरे में रखना आपके हिसाब से सही है या नहीं है. अभी तक मुझे जो समझ में आया कि लोग बिल्कुल इस चीज़ को फेवर में किसी ने भी नहीं कहा. कुछ पॉइंट्स हैं कि ठीक है आप उनका उनके कंजर्वेशन के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए टू सम एक्सटेंट ठीक है. कोई कहता है कि भाई एजुकेशनल पर्पस या फिर अवेयरनेस के पर्पस से देखो या फिर उनकी मेडिकल केयर है या कुछ लोग कहते हैं कि चलो उनको रेस्क्यू करते हैं क्योंकि इलीगल ट्रेडिंग है एंड ऑल दैट. इसलिए सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं. लेकिन एक चीज़ जिससे हम सब ने इत्तेफाक रखा वो ये

कि आज़ादी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पर है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है एनिमल्स और बर्ड अपनी नेचुरल फ्रीडम खो देते हैं अगर आप उन्हें जो है वो कैद कर लेते हैं। शेर जंगल में किलोमीटर्स तक घूमता है, एलिफेंट्स जो है वो लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और बर्ड्स खुले आसमान में उड़ते हैं। अगर आप इनको जो है वो कैद कर लेते हैं तो इनकी नेचुरल लाइफ को हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से लिमिट कर देते हैं। कई एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं वो आप देखिए एक स्ट्रेस में होते हैं, हम नहीं समझ सकते बट वो होते हैं इसका शिकार, क्योंकि वो बंधे बंधे फ्रस्ट्रेट होते हैं। जैसे एक भाई ने कहा कि वो बेचारे उन्हें फिर बाहर निकालो तो वो उड़ नहीं पाते, भूल जाते, उन्हें ऐसा लगता ही है कि पता नहीं मैं उड़ने की मेरे अंदर कैपेसिटी है कि नहीं है। तो चाहे जू कितना ही मॉडर्न, आज के टाइम में लोग ये भी कहते हैं कि बड़ा मॉडर्न जू हो गया है एंड ऑल दैट, कितना भी मॉडर्न हो, वो जंगल डेजर्ट हो या ओशन जैसे नेचुरल हैबिटेट को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते, इसमें तो कोई राय ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जू जो है वो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन के पर्पज़ से देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है, ज़्यादा पब्लिक जो है आती भी है तो एंटरटेनमेंट भी है और एक वेलफेयर का भी काम हो रहा है, बट मुझे लगता है ये एथिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जैसे अपनी आज़ादी को प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें, इसी तरह हमें ये भी समझना है कि जू हो या फिर ट्रीज हो, बर्ड्स हो या फिर एनिमल्स हो, इनको भी अपनी आज़ादी प्यारी है। आखिर में शायद ये सवाल नहीं है कि क्या हम एनिमल्स को रख सकते हैं, कुछ लोग घर में रखना पसंद करते हैं, सवाल असल में ये है क्या हम उनकी ज़िंदगी को इज्जत रहमत और बेहतरीन केयर के साथ गुजारने का मौका दे सकते हैं। और अगर दे सकते हैं तो ज़रूर रखिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि नहीं शायद हम नहीं दे सकते या उस तरह से नहीं दे पाएंगे तो प्लीज़ उन्हें रिहा करें। चलिए यहाँ पे इस टॉपिक को कंक्लूड करें और बस छोटा सा ब्रेक लूँगी, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मुन्ना सा ब्रेक लूँगी, मेरे पास टाइम बहुत कम है। वापस आऊँगी तो एक छोटा सा हमारा सेगमेंट होगा जहाँ पर आपको एक लेजेंड को पहचानना भी है। बट बिफोर दैट विशाल मिश्रा की आवाज़ राजशेखर के साथ, इन्जॉय दिस।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सबको कहूंगी वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ 8:29 ऑन द क्लॉक। इस टॉपिक को तो हमने कंक्लूड कर लिया और अब आज के लेजेंड की तरफ आते हैं। और इस सेगमेंट में आपको जो है मैं छोटी सी स्टोरी नरेट करूंगी और मुझे बताना है आपको कि ये किस लेजेंड के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये सेगमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही ले रहे हैं, यानी आपको अगर समझ में आ जाता है कि भाई ये किस लेजेंड के बारे में बात हो रही है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको झटपट से उनका नाम लिखना है और भेज देना है 666-222-107 पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की।
1: Guess the legend.
0: भाई तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि ये शख्स बॉम्बे, मतलब आज की मुंबई, बॉम्बे पहुंचे थे। बनना तो एक्टर चाहते थे लेकिन बन गए सिंगर। अब इनकी सिंगर बनने की जर्नी में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसान रहा। वो कहते हैं ना, लाइफ इज़ नेवर अ बेड ऑफ रोज़ेस, तो इनके साथ भी बहुत सारे कांटे थे, बहुत सारी चीज़ें थीं। और सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि कई बार फैमिलीज इतनी कंजर्वेटिव होती हैं, और उस टाइम तो थोड़ा सा और भी था ये सिंगिंग एंड ऑल दैट, इसको लोग जो था उतना समझ नहीं पाते थे या लगता नहीं था कि इसमें कोई अपना करियर बनाएगा तो किस तरह से, कैसे एक्सेल कर पाएगा, कैसे कमाएगा, क्या वाकई इस पर पूरी तरह से डिपेंड कर पाएगा, ब्रेड एंड बटर किस तरह से लोगों की चलेगी। तो ये सारे सवाल हुआ करते थे लोगों के जहन में। लेकिन बस कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान की जो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से वो लेकर आता है, डेडिकेशन के साथ, कन्विक्शन के साथ, और फिर कुछ करके ही दिखाता है। मतलब इस लड़के की अगर मैं कहानी की शुरुआत करूं तो मैं कहूंगी कि दिल्ली के एक बहुत ही छोटे ब्लो मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक था। किसी को नहीं पता था कि इन्हें एक्टिंग का और म्यूज़िक का इतना शौक है, क्योंकि ये दोनों शौक इन्होंने अपने छुपा रखे थे। अगर पता चल जाते तो फादर से शौक में चले जाते, इसलिए ये बताते नहीं थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो थी, कहीं ना कहीं इनका ये ख्वाहिश थी कि मैं जो हूँ वो म्यूज़िक भी सीखूँ और एक्टिंग भी सीखूँ। तो भाई एक्टिंग की तो जुगाड़ हो नहीं पाई, लेकिन म्यूज़िक की जुगाड़ ऐसे हुई कि इनकी दोस्त की एक बहन जो थी वो म्यूज़िक सीखती थी। तो ये छुप छुपा कि भाई अपने दोस्त की, उस बहन की म्यूज़िक क्लास में पीछे, मतलब दूसरे बाहर से उनको सुना करते थे और धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते थे। अब देखिए, सीखने सिखाने की कोई ऐसा फॉर्मल इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई इन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही छुप छुपा के करते थे। अब इन्होंने इस चक्कर में, मतलब क्लास को सीखना है और मुझे जाना है, उसकी बहन के बाहर जाते थे क्लास के सुनते थे, इस चक्कर में अपने क्लासेस इन्होंने स्कूल को बंक करना शुरू किया। अब ये बात बहुत दिन तक तो छुपनी नहीं थी, इनके पेरेंट्स को पता चल गई। तो जब पेरेंट्स को पता चली तो इन्हें ठीक ठाक तरीके से पिटाई हुई, मतलब अच्छे से डांटा गया, पीटा गया। लेकिन भैया, डांट पिटाई का असर इन पर बहुत दिनों तक रहा नहीं। फिर ये जो थे घूमते घुमाते फिर अपने उसी पैशन की तरफ चले गए। आखिर में ये थोड़े से बड़े भी हुए और हालात इतने बिगड़ गए कि फादर साहब ने धक्के मार कर लिटरली इन्हें दुनिया के धक्के खाने के लिए निकाल दिया। अब इनकी कहानी ऐसे बढ़ती है कि अब इन्हें कुछ ना कुछ तो करना था, मतलब जाहिर है अब घर में तो अब निकाल दिए गए घर से, तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए अपना हिसाब किताब, अपना जुगाड़ करना ही था। तो इन्होंने एक छोटी सी सरकारी डिपार्टमेंट, छोटी सी नौकरी जो थी वो पकड़ी। लेकिन वहाँ से भी इनकी इतनी अर्निंग्स नहीं हो पाती थी कि भाई अपना ठीक ठाक तरीके से गुजारा कर सकें। तो फिर इन्होंने एक और काम शुरू किया, फैमिली जो वेडिंग्स हैं या इस जगहों पे जाके मतलब गाना वाना गाना शुरू किया। शुरू में तो बहुत ज़्यादा ने पैसे नहीं मिले, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा ने पसंद भी नहीं किया। फिर इनके एक दोस्त के थ्रू इन्हें एक मौका मिला कि एक बड़ी वेडिंग में ये गाना गाए, और वहाँ इनका दोस्त इन्हें समझा के ले गया था, एक तो तुम्हें अच्छे से तैयार होकर जाना है। तो मतलब इन्होंने एक उधार करके कहीं से पैसे लिए, फिर उसके बाद कहीं से जो था किराए पर सूट खरीदा, मतलब सूट लिया किराए पर, वो भी उधार के पैसों से और सब कुछ। खैर, अब ये बिल्कुल तैयार व्यार हो के इस वेडिंग में पहुँचते हैं, यहाँ पर ये गाना गाते हैं, और शायद ये इनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बनता है। यहाँ इस वेडिंग में, जो एक बड़ी वेडिंग थी, एक मशहूर एक्टर भी थे। आपने इनकी आवाज़ सुनी और इतनी

इतने मुतासिर हुए कि इन्हें बॉम्बे यानी आज की मुंबई वहां बुलाया और फिर म्यूजिक के दरवाजे इनके लिए खुल गए। शुरू शुरू में सिंगर अपने जो थे ये एक फेवरेट एक्टर की

अपना अंदाज अपनी आवाज अपनी अलग पहचान बनाई एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द था एक ऐसी आवाज जिसमें उम्मीद थी एक ऐसी आवाज जो अकेलेपन ने आपको साथी का एहसास दिला दे बेशुमार गाने गाए और सबसे अच्छी बात ये कि ये वॉइस ऑफ द मिलेनियम और ट्रेजेडी किंग ऑफ प्लेबैक सिंगिंग इन टाइटल से नवाजे गए इनकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं रही एक पहचान बनी इन्होंने नेशनल अवार्ड्स जीते और एक खास अगर मैं आपको क्लू दूं तो इनकी आवाज सुनते ही कहीं ना कहीं राज कपूर साहब की याद आ जाती है कभी कभी जीना यहां मरना यहां कहीं दूर जब दिन ढल जाए ये सारी इनकी पहचान बनी तो अब मैंने ठीक ठाक से आपको क्लू तो दे दिए हैं करना आपको क्या है पहचानना है जी हाँ पहचानना है कि ये किस लेजेंड के बारे में बात हो रही है अगर आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर नाम लिख के मुझे भेजिए 666-22-107 पर

Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजी आपके साथ 8:39 ऑन द क्लॉक। अब हमारे पास टाइम कितना कम बचा है, अभी गेम भी खेलना होता है, बस टाइम ऐसे ही निकल जाता है। अच्छा, आज जिस लेजेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि किस लेजेंड के बारे में, मैंने अभी इतनी लंबी चौड़ी कहानी जो है वो आपको सुनाई, तो चलिए कुछ और क्लूज मैं दे देती हूँ फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है कि ये जो थे सिंगर, यू नो, इनकी

0: इतनी आवाज में इनका दर्द था कि लोग कहते थे कि जब भी इनका गाना सुनते हैं ऐसा लगता है कि यू नो सीधा दिल तक छू रहा है. और ये बहुत ज्यादा इन्होंने इस तरह के गाने गाए भी. एंड ऑफ अदर रीजन इनको एक और टाइटल भी दिया गया था और वो था वॉइस ऑफ पेन. ये भी कहा जाता था जितने भी दर्द भरे गाने थे इनकी आवाज़ में ज़्यादा करके रिकॉर्ड करवाए जाते थे. अच्छा, इनके सिंगर जो थे, जैसे मैंने बताया कि एक एक्टर की वॉइस को बहुत ज़्यादा कॉपी करते थे. इनके फेवरेट एक्टर होते थे राज कपूर साहब, लेजेंडरी द लेट राज कपूर जी. उनकी आवाज़ इनकी पहचान बनी. लोगों को ऐसा लगता था कि जब गाना सुनते थे राज कपूर जी का कि शायद वो खुद ही गा रहे हैं. और एक ऐसा किस्सा हुआ भी था कि जब एक कॉन्सर्ट हो रहा था रशिया में बेसिकली वहाँ पे एक सिटी में इनके कॉन्सर्ट्स भी बैक टू बैक होते थे और वहाँ पे इनके गाने बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए. तो एक्टर और ये सिंगर भी थे, राज कपूर जी का कॉन्सर्ट था वहाँ पर. तो जब स्टेज पर वो आए तो लोगों ने सबसे पहले उनसे कहा कि आप गाइए. तो उनका मैं कहाँ गाना गाता हूँ. तो पीछे से इस सिंगर ने उनको वॉइस दी एंड इन्होंने सिर्फ लिप्स किया और फिर थोड़ी देर के लिए पॉज लिया और वो पीछे वॉइस चलती रही और ये एकदम मम रहे थ्रू आउट. दैट्स हाउ लोगों को पता चला कि ये आवाज़ इनकी नहीं होती है, पीछे एक बहुत कमाल के सिंगर हैं जिन्हें पीछे से आगे लाया गया. और फिर लोगों ने जाना कि अरे वाह. अच्छा, इस सिंगर का जो सबसे पहला सुपरहिट गाना था वो था दिल जलता है तो जलने दे. ये गाना बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुआ. उसके अलावा भी बहुत थे जैसे आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, किसी की मुस्कुराहटों पे, मतलब इस तरह के बहुत सारे सॉन्ग्स थे. और इन्होंने जो था सैड सॉन्ग्स के साथ साथ पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी भर भर के गाए. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब ये अपना आखिरी कॉन्सर्ट कर रहे थे एंड दैट वाज मतलब जो इन्होंने भी डिक्लेयर किया था कि इसके बाद से ये ब्रेक ले लेंगे सिंगिंग्स एंड ऑल दैट, उसी कॉन्सर्ट में इनको जो था वो अटैक भी हुआ और उसके बाद लेटर ऑन कुछ दिन बाद इनकी डेथ भी हुई. तो अब आपको मुझे बताना ये है कि इस मशहूर सिंगर का नाम क्या है. रईस जी ने कहा सुदेश भोसले. नहीं, सलीम शहजादा जी का जवाब बिल्कुल ठीक है. किसी ने मुझे लिखकर भेजा है हंस राज. देखिए, मैंने तो गाने भी आपको बता दिए, जीना यहाँ मरना यहाँ, किसी की मुस्कुराहटों पे, एंड यू नो कहीं दूर जब दिन ढल जाए. तो ये सारे गाने इनके जो हैं वो ख़ास रहे. इसके साथ मैं देखती हूँ और कितने लोगों का है मैसेज सही. अल्ताफ राजा ने, अल्ताफ राजा तो नहीं है इनका नाम. खलील पराचा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आप हैं कहाँ बाय द वे, आपने तारीफ तो लिखी बट आप हैं किधर ये मुझे बताइए. यस, राज का जवाब बिल्कुल ठीक है. एंड नाउ रईस जी ने भी अपना जवाब बिल्कुल सही कर लिया यहाँ पर. वेरी नाइस टॉपिक. और कैसर जी ने कहा है कि इम्पॉर्टेंट है कुछ, मेरा वीडियो सुनिए, शेयर कीजिए. तो मैं अभी आपका सुनती हूँ, शेयर करती हूँ, बताती हूँ. आरिफ अंसारी जी है, उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही सही जवाब यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया. क्या बात है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग पहचान पाए, कुछ लोग अभी थोड़ा सोच रहे हैं. तो चलिए, जब तक आप सोच रहे हैं बीच में गेम वेम भी खिलवा लेते हैं क्योंकि फिर हमारे पास टाइम बहुत कम है. और एक कॉलर यहाँ जुड़ रहे हैं मैं. हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कौन है हमारे साथ? हेलो, अरे आप हैं? हेलो, मुझे तो आवाज़ ही नहीं आ रही. ओके, आई थिंक यहाँ पे कॉल भी ड्रॉप हुई है. तो वापस से अगर आप मुझे कॉल मिलाएं तो बहुत अच्छा है. अच्छा, एक और कॉलर यहाँ मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो,
2: हेलो.

0: तो अभी तो आप आए हैं गेम खेलने के लिए, बाकी जो आपने जवाब दिया बिल्कुल सही। थोड़ी देर और लोगों को सोचने का मौका देते हैं, फिर हम बताते हैं।
1: और मैं तो गेम खेलने के लिए आया हूँ।
0: क्या बात है। अच्छा, आज के गेम का जो है वहाँ आपको आवाज़ें ही पहचाननी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक जो हम बाइट प्ले करेंगे उसमें दो लोगों की भी आवाज़ें हो सकती हैं। तो बस आप अगर दोनों की पहचान लेते हैं तो आपका इस हिसाब से दो स्कोर हो जाएगा। सो यू नो यू गेटिंग, जितना आप पहचान पा रहे हो उतना आप स्कोर करते जाएंगे।
1: ओके, कोई मसला नहीं है।
0: और बीच में एक ट्विस्ट भी रहेगा, हो सकता है एक्टर एक्ट्रेस के अलावा किसी की एक वॉइस हो। आप फर्स्ट विनर। हाँ नहीं, मुझे याद है कि आप विनर रह चुके हैं। कुछ लोग हैं जैसे आप थे, यूसुफ जी हैं, और एक दो हमारे और गफ्फार जी थे आई थिंक। कुछ लोग बहुत ही अमेजिंग राज हैं जिन्होंने हमेशा बैक टू बैक जीते हैं, वो चैंपियंस रहे भी हैं। सो चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं। सो आर यू ऑल सेट फॉर दिस? ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: एक्चुअली मुझे आजकल किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्द।
0: कौन सा?
2: अच्छा सुनो,
1: काजोल।
0: काजोल नहीं,
3: जो डर गया समझो मर गया।
1: गब्बर, उसका नाम मेरे को याद नहीं रहा।
0: अच्छा चलिए, मैंने गब्बर पे आपको मार्क्स दिए।
4: एनीवे, आज हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं। रोमियो एंड जूलियट।
1: कपिल शर्मा में बैठती है ना, क्या नाम उनका?
0: बताइए कौन बैठती है?
2: लेकिन शुरू करने से
1: उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को।
0: क्या बात है। चलिए एक और आपको वॉइस सुनाते हैं, अगर आपने ये पहचान ली तो आपको दो डायरेक्टली दो स्कोर करने का मौका मिलेगा, टू पॉइंट्स। ठीक है, सुनिए।
5: नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसमें पढ़ना चाहिए, बल्कि अगर अगर एक दिन किसी रात में वितर रह गए हैं तो फिर अगले दिन में चार रकात पढ़ें, यह भी एक रिवाज या एक राय मौजूद है। लेकिन
0: नहीं बचाने
1: ना।
0: चलो जी, कोई नहीं, कोई गल नहीं, एक का तो स्कोर किया है कम से कम, ये बड़ी बात है।
1: हाँ
0: ये बात हुई ना, कम से कम कुछ ना कुछ तो मैंने स्कोर किया है। ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल जीरो पे गया हूँ। That's nice.
1: जीरो भी तो एक शुरुआत होती है ना, कम।
0: क्या बात है भाई, ये चाय का कमाल है कि पराठे का कमाल है? नहीं आपके, ये मेरा कमाल है, ये मेरा खुद का कमाल है। है ना? हाँ ये बात है। और शायद आपके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, जिस तरह से उन्होंने आपकी तरबियत की, आप उसी तरह से पॉजिटिवली हर चीज़ को देखते हैं और लेते हैं अपनी लाइफ में। दैट्स रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल अबाउट यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय, लवस। एक और हमारे साथ यहाँ पर कॉलर जुड़ते हुए। हेलो,
6: अस्सलाम वालेकुम। हम भी बोले अंडे लेके चले जाते हैं।
0: रईस, अंडे तो आप भी नहीं लेंगे मुझे पता है, कम से कम आप एक दो का तो स्कोर कर ही लेंगे। ट्राई करिए। ठीक है चलिए। और हाँ, आपका टाइम जो है, क्या कह रहे हैं,
1: जल्दबाजी में वो जहन से नाम निकल जाता, जैसे वो कौन है, क्या नाम था उसको।
0: हाँ, वो बोले गब्बर सिंह बोल रहे हैं, बट नाम नहीं याद आ रहा उन्हें कि कौन से एक्टर हैं।
1: आप वही प्ले करें, देखते हैं।
0: चलिए देखिए, ट्राई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: एक्चुअली मुझे आजकल किसी बात का बुरा नहीं लग रहा, पता है क्यों? क्योंकि मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। अच्छा सुनो, भाग कर शादी कर रही हूँ, लड़का सीख नहीं है ना, लोग मानेंगे नहीं, पर शादी के बाद कोई क्या कर सकता है, जाके पैरों में गिर जाना है उनके, माफ तो करना ही पड़ेगा।
1: ये काजुल नहीं लग रही है, मतलब मेरे को काजुल का ही आवाज तो मतलब
0: नहीं,
1: लग रहा
0: है काजुल की आवाज तो नहीं है, बट चलिए दूसरा ट्राई कीजिए।
4: एनीवे, आज हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं, रोमियो एंड जूलियट, एक अमर प्रेम कहानी, द इटर्नल लव स्टोरी। लेकिन
0: पास करो, चलिए एक और ट्राई कीजिए।
7: इसका जो मैंने दी थी,
8: कौन सी डिस्क?
0: इसमें दो आवाजें हैं।
7: डीसीपी साहब को सिंघानिया के सभी कॉन्टैक्ट्स और बैंक अकाउंट्स की डिस्क दी थी।
8: ऐसी किसी डिस्क का जिक्र नहीं किया,
7: लेकिन कहीं तो होगी, मेरा मतलब उनके अपार्टमेंट में या यहीं कहीं उनके उनके डेस्क में या
0: कुछ पहचान पाए कुछ समझ।
1: शाहरुख खान।
0: ओ फाइनली आपने अपने आपको जीरो देने से बचा लिया। फाइनली शाहरुख खान आपने सही पहचाने, शाहरुख।

0: खान की आवाज थी और एक और एक्टर है उनकी भी वॉइस थी वो भी आप पहचान सकते थे यहां पे आप दो का स्कोर करने का आपके पास ऑप्शन था बट कोई बात नहीं आपने एटलीस्ट
1: वन टू थ्री एक नाम और मतलब लेना चाहता था लेकिन अब नहीं लूंगा क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया ना तो जिसको आपने लास्ट में उनसे पूछा था
0: मुझे लगा कि आप वो नाम पहचान लेंगे इसलिए मैंने दूसरा आपके लिए पहचान लिया
1: रहने वाले हैं बस बिल्कुल
0: थैंक यू जी कितने अच्छे इंसान हैं मुझे लगा ये शाहरुख का तो आप 100% शायद पहचान ही ले वॉइस क्योंकि
1: शाहरुख खान हम लोगों के टाइम के मतलब वो सब हम लोग उनकी मूवी को देख के ज्यादा बड़े हुए हैं तो ज्यादा करेक्टर उनके आवाज से तो पहचान में आ जाता है
0: सही बोला पर चलिए थैंक यू सो मच जज़ाकअल्लाह फॉर योर कॉल अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ बाय ऑलराइट एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं हेलो वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम यूसुफ जी कोई तो जुड़ा हमारे साथ कैसे हैं
2: आप कैसे हैं
0: आपको ऐसा लग रहा होगा ना सुन सुन के ये तो सारे मुझे पता है मुझसे क्यों नहीं पूछ रही है ना
2: ऐसे फीलिंग आ रही है किया था
0: कितना प्यारा बोल दिया आपने मैं सोच रही थी थोड़ा सा भी इस पे पूछ लूंगी लोग लेकिन हाँ ये आंसर बिल्कुल सही आपने जवाब दिया मुकेश ही हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे थे और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है
2: जी जब पहले आपने नरेशन स्टार्ट किया तो मैं पहचान नहीं पाया एट द पॉइंट ऑफ व्हेन यू सेड राज कपूर देन आई फाउंड इट दैट टाइम आई हैव मैसेज
0: आपने सबसे पहले मैसेज किया था और बिल्कुल सही जवाब था आपका तो आई एम लाइक अमेज्ड इनको इतनी जल्दी समझ में आ गया बट आपकी नॉलेज है अच्छी टचवर्ड मतलब है अच्छी तो अच्छी है इसमें कोई डाउट नहीं है दैट्स नाइस चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं वन अभी तक का हाईएस्ट है लेट्स सी आप कितना स्कोर कर पाते हैं ओके सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ
3: एक्चुअली मुझे आजकल किसी बात का बुरा नहीं लग रहा
2: है करीना
3: पता है
0: बिल्कुल सही
4: जो डर गया
2: अमजद खान
0: बिल्कुल सही
2: अर्चना पूरन सिंह
0: राइट
5: नहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसको पढ़ना चाहिए
0: बिल्कुल सही
6: जो मेनू ने दी थी
2: शाहरुख खान एंड ओम पुरी
0: क्या बात है क्या बात है बिल्कुल सही आवाज पहचानी आपने
7: इसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं
0: टाइम तो यहाँ पर चलिए एक बार फिर सुनवा देते हैं
7: उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं
0: समझ में आया
2: इमरान हाशमी
0: नहीं ये इमरान हाशमी नहीं है बट टाइम भी यहाँ पे अप हुआ है बट यू नो आपने कितना स्कोर किया है आपने पूरा 6 का स्कोर किया है क्या बात है बहुत जबरदस्त जितने भी थे कार्ट में आपने सारे पहचाने अमेजिंग
2: वो लास्ट है फिर एक बार सुनता हूँ सुनना चाहता हूँ जस्ट पहचानने के लिए काउंट मत कीजिए
0: अच्छा चलिए ठीक है यस गो फॉर इट
7: उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं
2: अक्षय कुमार
0: हाँ अक्षय कुमार की वॉइस थी जिसे आपने थोड़ा सा
2: मैं कंफ्यूज हो गया
0: बट कोई बात नहीं अक्षय पहचान लेते तो 7 था अदरवाइज आपने 6 का बहुत ही ट्रेमेंडस स्कोर किया है फैंटास्टिक इतनी सारी वॉइसेस पहचाना इट्स नॉट एन इजी थिंग आपने पहचानी हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ थैंक यू सो मच यूसुफ जी थैंक यू फॉर योर कॉल ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू यू टू टेक केयर
2: सेम हियर थैंक यू
0: थैंक यू टेक केयर बाय ऑलराइट दोस्तों अब मेरे पास टाइम बहुत ही कम बचा है और मुझे कहा भी जा रहा है कि बस अब हो गया निकलिए अब आपका आज का हो चुका तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही रखते हैं और आज के हमारे इस गेम के जो विनर हैं वन एंड ओनली यूसुफ खान जी विद 6 का स्कोर कल थोड़ा सा और पहले शुरू करूंगी ऐसे मैं हर बार बोलती हूँ बट मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ और हाँ यहाँ पर यूसुफ जी ने बता भी दिया कि वो जो लेजेंड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो है मुकेश जी का आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है तो मुझे लगा क्यों ना आपसे पूछा जाए हालांकि आप ज़रूर मुझसे कहेंगे कि पुराना गाना चलाना चाहिए बट नहीं क्या कर सकते बट हाँ चलिए कुछ भी हो हम जब मौका मिलेगा तो उसको आगे पीछे देखेंगे कभी लेकिन हाँ मॉर्निंग्स में नहीं चलता क्योंकि रूटीन है किसी ने लिख के भेजा कि ये वाला गाना अगर आप चला दें तो भाई आज तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे ये क्योंकि हमें बकायदा पूछना पड़ता है ओके अन सैफुर रहमान सर की आवाज़ बहुत सारे लोग यहाँ पे पहचान रहे हैं। अब्दुल हादी जी का जवाब बिल्कुल ठीक था। जावेद बाजवा जी हमारे साथ जुड़े। ओ ये सारे पिजन्स की उन्होंने फोटो वगैरह भेज दी, अब मैं आराम से सुकून से देखूंगी। एंड लास्ट वॉइस है सलमान जी ने लिखा सैफुर रहमान सर की, वाह बिल्कुल सही। किसी ने मुझे लिख के भेजा मुनीर जी ने कि मैं खेलना चाहता हूँ, बट कल हम खेलेंगे, आज हमारे पास टाइम ही नहीं रहा, क्या कर सकती हूँ। सुरेश जी ने हमें जो है वह सलाम लिख के भेजा है। सुरेश जी क्या बोल सकती हूँ मैं, सबसे ज़्यादा मुझे फेस करना पड़ रहा है। रईस जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नूरुद्दीन हमारे साथ जुड़े, गुड मॉर्निंग कहते हैं। एंड सैफ सर की वॉइस, क्या बात है सैफ सर की वॉइस बहुत सारे लोगों ने पहचानी। इस तरह से कुछ और भी वॉइसेस रहेंगी जहाँ पर आपके लिए एक ट्विस्ट रहेगा। एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, और भी कुछ वॉइसेस यहाँ पर डालेंगे, बस आपको अपने जहन पर जोर देना और पहचानना है। और ये भी एक तरह की ब्रेन एक्सरसाइज है, जस्ट बिकॉज आज हमने सेलिब्रेट भी कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेन डे, तो थोड़ा सा जहन पर जोर देना, चीज़ों को याद रखना, ये हमारे लिए और आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ब्रेन को हमें ट्रेन करना भी तो होता है ना। तो चलिए इसी प्यारी सी और पॉजिटिव सी बात के साथ अब वक्त आपसे इजाजत का, इंशाल्लाह कल वापस मुलाकात होगी इसी शो में 6:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से तीसी। और हाँ गाबा जी, मैंने आपके कहने पर वो देखा सीन, इट्स माइंड ब्लोइंग। अब कल उस पर बात होगी, ठीक है।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। और जैसे आप लोगों को पता है कि ये प्रोग्राम जो है इस पे हम कतरी स्पोर्ट्स स्टार्स, एथलीट्स और लेजेंड्स के बारे में हम बताते हैं, आप लोगों को शेयर करते हैं नॉलेज अबाउट दी कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स और स्टार्स। आज हम बात करें अब्दुल अजीज अल कुवारी के बारे में। अब्दुल अजीज अल कुवारी कतर के मशहूर मोटर रैली ड्राइवर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी टैलेंट और मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के जरिए मोटर स्पोर्ट की दुनिया में खास मकाम हासिल किया है। हम तो नासर अल अतिया के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन नासर अल अतिया तो एक सुपरस्टार, सुपर लेजेंड के स्टेटस में है। उनके साथ साथ ऐसे कई ड्राइवर्स हैं, रैलिस्ट हैं, जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, आप लोगों को बताना मैं फर्ज समझता हूँ। तो अब्दुल अजीज अल कुवारी, उनका नाम FIA मिडल ईस्ट रैली चैंपियनशिप के सबसे कामयाब और मुकाबलेबाज ड्राइवर्स में शुमार होता है। रैली रेसिंग एक इंतहाई मुश्किल खेल है, जहां रफ्तार के साथ साथ स्ट्रेटजी, हिम्मत और गाड़ी पर मुकम्मल कंट्रोल की जरूरत होती है। और अब्दुल अजीज अल कुवारी ने इन तमाम सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया है। अब्दुल अजीज ने सालों तक मिडल ईस्ट रैली चैंपियनशिप में कतर की नुमाइंदगी की और कई मर्तबा पोडियम फिनिशेस हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने रीजनल सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक्वामी क्रॉस कंट्री रैली इवेंट्स में भी अपनी काबिलियत साबित की। चैलेंजर कैटेगरी में उनकी कामयाब परफॉर्मेंसेज ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन ऑफ रोड ड्राइवर्स की सफ में ला खड़ा किया। कतर में मोटर स्पोर्ट्स के फरोख में अगर किसी की बात होती है तो अब्दुल अजीज अल कुवारी की बात होती है, और उनका अहम किरदार आज भी हम याद करते हैं। उनकी कामयाबियां नए ड्राइवर्स के लिए हिम्मत और रहनुमाई का जरिया बनी हैं।

0: पथरीले रास्तों और सख्त मौसमी हालात में रेस करते हुए उन्होंने दिखाया कि कतरी एथलीट्स मोटरस्पोर्ट के सबसे मुश्किल मुकाबलों में भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकते हैं। आज अब्दुल अजीज अल कुवारी कतर के मोटरस्पोर्ट के एक नुमाया एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी मेहनत, जज्बा और कामयाबियां उन्हें कतरी खेलों की दुनिया का एक रोशन सितारा बनाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है। मैतराश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के। इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो। दूसरा, गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो। तीसरा, दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैतराश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और चौथा, बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो। प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है, मैतराश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं। बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है। जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है। ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है, जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम वर्जिश के बाद की जो स्ट्रेचिंग है उस पर बात करेंगे कि उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बहुत से अफराद जो एक्सरसाइज है वो मुकम्मल होते ही फौरन बैठ जाते हैं या अपनी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन माहिरीन सेहत एक्सरसाइज के बाद चंद मिनट स्ट्रेचिंग करने का मशवरा देते हैं। एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स मुसलसल काम करते हैं और सिकुड़ते रहते हैं। एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद स्ट्रेचिंग मसल्स को आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामूल की हालत में वापस लाने में मदद देती है। एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग का एक अहम फ़ायदा ये है कि ये मसल्स की अकड़न और सख्ती को कम कर सकती है, ख़ास तौर पर अगर आपने रनिंग की हो, साइकिल चलाई हो, वजन उठाया हो तो स्ट्रेचिंग जिस्म को आराम पहुँचाती है। स्ट्रेचिंग ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है जिससे मसल्स तक ऑक्सीजन और गजाई अज्जा बेहतर अंदाज में पहुंचते हैं। ये अमल जिस्म की बहाली या रिकवरी में मददगार साबित होता है। एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग जिस्म की लचक बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है, और अगर स्ट्रेचिंग को रोज़मर्रा का मामूल बना लिया जाए तो फिर हमारे जिस्म की हरकत बेहतर रहती है और रोज़मर्रा के जो काम है वो आसानी से सर अंजाम आप दे सकते हैं। स्ट्रेचिंग ज़हनी सुकून भी फराहम करती है। वर्जिश के बाद चंद मिनट गहरी सांसों के साथ स्ट्रेचिंग करने से जिस्म और दिमाग दोनों को आराम मिलता है। ये तनाव कम करने और मुस्बत एहसास पैदा करने में मददगार साबित हो सकती है। लिसनर्स, जैसे कि आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो कोई भी जो आप स्ट्रेच कर रहे हैं किसी भी मसल पर, तो 15 से 30 सेकंड तक उसको बरकरार रखिए और झटके देने से गुरेज कीजिए। अगर किसी शख्स को जॉइंट्स का मसला हो, शदीद दर्द हो या कोई और तिबी बीमारी हो तो इसे स्ट्रेचिंग शुरू करने से पहले अपने मुआलिज या फिर फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। लिसनर्स, वर्जिश या एक्सरसाइज सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी का नाम नहीं है बल्कि इसके आगाज़ और इख्तिताम को सही तरीके से सर अंजाम देना बेहद अहम है। एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग जिस्म को तैयार करती है, जबकि एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग जिस्म की बहाली में मदद करती है। तो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज ही स्ट्रेचिंग को अपनी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद। मेरी पहचान, पहचान सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और मेरी पहचान में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज मेरी पहचान कुछ अलग ही होने वाला है। यस, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर बड़ों का काम समझकर छोड़ देते हैं या ये सोचकर टाल देते हैं कि ये तो मर्दों का डिपार्टमेंट है। तो आज बात होगी फाइनेंशियल पहचान की। आज हम बनाएंगे आपका अपना मनी मैप। तो ब्यूटीफुल लेडीज, हमारे शहर की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, चमचमाते मॉल्स हैं और बड़े ही अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, इन सब के बीच क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि वेयर डिड द मनी गो, हमारा पैसा जाता कहाँ है? Well, पिछले हफ्ते जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर गई थी या सुपरमार्केट गई थी, वहां पर शॉपिंग वगैरह की, तो उसके बिलिंग काउंटर पर खड़ी होकर क्या वो लंबे से बिल को हाथ में देखा है? क्या उस वक्त दिल की धड़कनें तेज हुई थी? आई एम श्योर जरूर हुई होंगी। वो जो एक हल्का सा डर होता है ना कि महंगाई बढ़ रही है, रेंट बढ़ रहा है, स्कूल की फीस बढ़ रही है और पता ही नहीं चल रहा है कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, हाँ? बस उसी डर को आज हम समझदारी में बदलेंगे। सो मेरी प्यारी लेडीज, आप घर चलाने में तो एक्सपर्ट्स हैं। बेहतरीन डील्स ढूंढना, सेल का इंतजार करना, सब्जी वाले से मोल भाव करना ये सब तो हमें आता ही है, लेकिन पैसा मैनेज करना और पैसा ओन करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ एक सैलरी का नाम नहीं है, ये एक हक का नाम है। यस, चाहे आप एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हो या शानदार होम मेकर, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कश्ती किस दिशा में जा रही है। तो चलिए आज का सवाल आपसे पूछ ही लेती हूँ। पूरी ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको पता है कि हर महीने आपकी फैमिली की असली सेविंग्स कितनी होती है? या फिर आप बड़े फैसले अपने पार्टनर पर छोड़ देती हैं या घर के बड़ों पर? मुझे व्हाट्सएप कीजिए 6622107 पर, 6622107 पर, और अपने नाम के साथ मुझे जवाब दीजिए कि क्या आपको पता है कि हर महीने आपकी फैमिली की असली सेविंग्स कितनी होती है। यस, मुझे आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। और अभी एक शानदार सा गाना आपकी राहों में आ चुका है, तो

फंड थी। वो पैसे सिर्फ कागज नहीं थे, वो दादी का गर्व या यूं कहे दादी की प्राइड हुआ करता था और वो उनकी बरकत थी। लेकिन आज जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो डिब्बा काफी है? नहीं ना। तो ब्यूटीफुल लेडीज, हमें ये समझना होगा कि आज के दौर में सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। आज हम दोहा में रहते हैं, एक ऐसी जगह जहां हर साल रेंट भी बढ़ जाता है, जहां स्कूल की फीस हर साल एक नई बुलंदी छू रही होती है। वो जो दादी ने 10 रुपए बचाए थे, उनकी कीमत आज भी 10 रुपए ही है। लेकिन उन 10 रुपयों में जो सामान पहले आता था, आज उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं आता। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन और उर्दू में कहते हैं गिरानी, यानी महंगाई का वो ड्रैगन जो चुपके से आपके पैसे की ताकत को खा जाता है। अगर आपने आज 100 रियाल बचाकर अलमारी में रख दिए, तो 2 साल बाद भी वो 100 रियाल ही रहेंगे, लेकिन उनकी ताकत 80 रियाल की रह जाएगी। तो आज की सोच ये है कि हमें सिर्फ बचाने वाली नहीं बल्कि बनाने वाली बनना है। हाँ, हमारे एंसेस्टर्स ने पैसे को छुपाना सिखाया था, है कि नहीं? हमें पैसों को बढ़ाना सीखना होगा, क्योंकि आज की जो महंगाई है ना, वो किचन के डिब्बे के नोटों को भी खा जाएगी अगर हमने उन्हें सही जगह काम पर नहीं लगाया। मैं अक्सर सुनती हूँ कि अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि मीता, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे मियाँ बहुत कमाते हैं या मेरे अब्बू ने सब संभाल कर रखा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है और मैं यही चाहती हूँ कि ऊपर वाला आपकी जो ये बरकत है वो बनाए रखे। लेकिन याद रखिए, पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं है, पैसा आजादी की जुबान है। मनी इज द लैंग्वेज ऑफ फ्रीडम। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, ठीक है? जब आपके पास अपना पैसा होता है या आपको अपने घर के पैसे का पूरा हिसाब पता होता है, तो आप सिर्फ खर्च नहीं कर रही होती हैं, आप चुन रही होती हैं। यू आर चूजिंग योर लाइफ। चूज करना यानी ये फैसला लेना कि क्या हमें इस साल बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारे सवाल, ठीक है? क्या मुझे वो महंगा डिजाइनर बैग लेना चाहिए या उस पैसे से एक नए बिजनेस में एक छोटा सा हिस्सा लेना चाहिए? जब आप फाइनेंशियल पहचान बनाती हैं, तो आप डिपेंडेंसी से पार्टनरशिप की तरफ बढ़ती हैं। आप घर की मैनेजर से घर की CFO बन जाती हैं। हाँ, और यकीन मानिए, जब एक औरत को पता होता है कि उसके पास एक बैकअप है, तो उसके चलने का अंदाज बदल जाता है। उसके लहजे में एक नई सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। अब आप सोच रही होंगी, अमिता, ये सब तो ठीक है, पर मुझे नंबर से डर लगता है, मैं तो आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे मैथ नहीं समझना। देखिए, आपके जैसा मेरा भी हाल है, मुझे भी मैथ से डर लगता है। लेकिन मेरी प्यारी प्यारी लेडीज, पैसा समझने के लिए आपको कोई मैथ की डिग्री या कैलकुलेट करना ये सब नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपको बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए उन नंबर्स की तरफ देखने की। हिसाब से डरना छोड़ना पड़ेगा, हिसाब रखना शुरू करना पड़ेगा। ये वैसे ही है जैसे पहली बार ड्राइविंग सीखी होगी आपने। शुरू में डर लगता है, लेकिन फिर आगे कंट्रोल भी आ गया और उसके बाद हमने जो स्टीयरिंग व्हील संभालना शुरू किया, बस रास्ते अपने आप खुलते चले गए। तो भाई, आज की सोच का निचोड़ ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने पार्टनर से पूछिए हमारा इंश्योरेंस कहाँ है, हमारी सेविंग्स कहाँ इन्वेस्ट हो रही हैं, अगर कल को बैंक का पासवर्ड भूल गए तो हम क्या करेंगे। ये सवाल पूछना कोई बदतमीजी नहीं होती है या कोई डिसरिस्पेक्ट या डिस्ट्रस्ट की बात नहीं है, ये समझदारी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ लाखों कमाना नहीं है, इसका मतलब है अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो नाव है या यूं कहें आपकी जो कश्ती है, वो किस दिशा में जा रही है। क्योंकि जब तूफान आता है तो वही कश्ती बचती है जिसका कैप्टन होश में होता है, राइट? तो आज से किचन के उस पुराने डिब्बे की यादों को दिल में रखिए, लेकिन अपने हाथ में डिजिटल मनी मैप पकड़िए, अपनी पहचान बनाइए, क्योंकि आप सिर्फ एक स्पेंडिंग मशीन नहीं है, आप इस घर की मजबूत दीवार है और ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है? चलिए, इसी बात पर अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 107। मैं हूं आपकी अमिता, आपके साथ मेरी पहचान है शो का नाम। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। यस, थोड़ी देर पहले हमने बात की उस पुराने किचन के डिब्बों की याद की जिसे हमने ताजा किया, लेकिन अब थोड़ा आज में लौट जाते हैं। चलिए अब रुख करते हैं उस चीज की तरफ जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हमारा अपना शरीर, हमारी बॉडी और हमारा बैलेंस।

क्या आपने कभी महसूस किया है कि महीने की 25 या 26 तारीख होती है बैंक अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे जा रहा होता है और अचानक आपको लगता है कि आपके कंधों पर दर्द शुरू हो गया है क्योंकि भार काफी हो जाता है या फिर वो जो अचानक सर में एक हल्की सी टीस उठती है हम बेवजह माइग्रेन की गोलियां खाने लगते हैं। देखिए लेडीज वो माइग्रेन बेवजह नहीं होता। क्या आपको पता है कि पैसों की चिंता फाइनेंशियल स्ट्रेस इससे हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। साइंस कहती है कि जब हम पैसों को लेकर अनसेफ महसूस करते हैं तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिससे स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ते जाते हैं। मुझे रात भर नींद नहीं आती और हम बार बार करवट बदल बदल के सोते रहते हैं और ये सोचते हैं कि अगला खर्चा कैसे निकलेगा। वो जो मियाँ बीवी के बीच छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होता है अक्सर उसकी जड़ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं होती बल्कि एक खाली बटुआ या वो कहते हैं ना बढ़ता हुआ कर्ज या बढ़ती हुई महंगाई या बढ़ता हुआ पैसों का अरेंजमेंट ये सारी चीजें होती हैं। जब पैसा कम होता है तो घर में सुकून कम हो जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है। अब थोड़ा हमारी लाइफस्टाइल पर ये सोचिए कि भाई देखो हमारे जो दोहा की लाइफस्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट है। हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जो कि चमक धमक से भरा हुआ है। यहाँ हर रोज एक नया मॉल खुलता है, हर रोज एक नई गाड़ी लॉन्च होती है और यहाँ हम एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं। हाँ जी, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है हम अपने खर्चे उससे भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, वो हमें सही सलामत ऑफिस और घर पहुंचाती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ने कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली, अचानक हमारी पुरानी गाड़ी हमें छोटी लगने लगती है कि नहीं? और हर वीकेंड वो लग्जरी ब्रंच करना, वो 300-400 रियाल एक वक्त पर खाने में गवा देना, क्यों? सही कह रही हूँ ना? क्या हमें वाकई भूख है इतने सारे पैसे खर्च करने की, या फिर सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी फोटोज डालनी है, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हम ये खर्चा करते हैं, या यूं कहें तो सोशल मीडिया के कंपैरिजन ट्रैप में फंस गए हैं। वेल, इससे हमारा जो मेंटल पीस है ना और बैंक बैलेंस, ये दोनों ही ना खोते जा रहा है। हम इस मामले में अक्सर दिखावे की जिंदगी जीने के चक्कर में अपना सुकून बेच देते हैं। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। थिंक अबाउट इट, क्या ये डील या यूं कहें क्या ये सौदा सही है? याद है वो फिल्म तुम्हारी सुलु? अगर आप सभी ने देखी होगी, काफी हिट हुई थी हमारी विद्या बालन की। उसमें विद्या बालन का ना एक वो आइकॉनिक डायलॉग था, मैं कर सकती हूँ। बस वही जज्बा हमें अपने फाइनेंसेस में चाहिए। अक्सर जब हम बजट का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमारी आजादी छीन रहा है कि नहीं? ऐसी फीलिंग आती है ना, हमें लगता है कि बजट एक ऐसा वर्ड है जो हमें ना मतलब सलाखों के पीछे डाल देगा। लेकिन लेडीज, आज मेरी ये बात ध्यान से सुनिए। बजट कोई जेल नहीं है, बजट एक बाउंड्री है जो आपकी हिफाजत करती है, आपके पीस को बचाती है और आपके मेंटल पीस को भी प्रोटेक्ट करती है। ये वैसा ही है जैसा आप अपने घर के बाहर एक दीवार बनाते हैं ताकि आप अंदर महफूज रह सकें। बजट आपको ये बताता है कि इतना खर्च करके मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। जब आप और आपके पार्टनर मिलकर एक बजट बनाते हैं तो लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं और आप एक दूसरे से नहीं लड़ रहे होते हैं, आप मिलकर उस नंबर से लड़ रहे होते हैं। इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बढ़ता है और आपके प्लान्स मजबूत होते हैं। देखिए, जब एक औरत अपने घर का बजट संभालती है तो वो सिर्फ पैसे नहीं बचा रही होती है, वो अपने घर की मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जब आपको पता होता है कि इमरजेंसी फंड में पैसे रखते हैं तो अचानक वो माइग्रेन कम होने लगता है क्योंकि अब आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में नहीं थ्राइविंग मोड में चलने लगता है। मैं आपके साथ एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट शेयर करना चाहती हूँ। यूएन विमेन की एक रिसर्च कहती है कि जब एक औरत के हाथ में पैसों का कंट्रोल होता है तो उसके पूरे खानदान की सेहत और तालीम का लेवल ना ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि एक औरत
हमेशा फ्यूचर फर्स्ट सोचती है। वो बच्चों की पढ़ाई, घर की बीमारी और बुजुर्गों की देखभाल, इन सब के बारे में पहले सोचती है। सो माय ब्यूटीफुल लेडीज, अगर आप महीने के आखिर की चिंता में यूं घुलती जा रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपका शरीर थका थका रहता है, तो समझिए कि शायद आपका शरीर आराम मांग रहा है उस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से। अपने आप को इस तनाव से, इस स्ट्रेस से आजाद कीजिए। बैठिए, बातें कीजिए और अपने बैंक अकाउंट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। पैसा दुश्मन नहीं है। अगर आप इसे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो ये आपका मालिक बन जाएगा। आपकी पहचान एक मजबूत और एक कॉन्फिडेंट लेडी की होनी चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपका बैलेंस और आपकी बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में चलते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए। मनी इज जस्ट अ टूल एंड यू आर द मास्टर। इस चीज के बारे में सोचिए तो आई एम वेरी सर्टेन कि जिंदगी की सारी चिंताएं यू गुल हो जाएंगी। और इसी बात के साथ अब हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुख करेंगे, उसके बाद वापस आकर अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ। और मेरी पहचान में आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल पहचान की, या यूं कहें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जिसको हम अक्सर इग्नोर करते आते हैं, और इसी बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज इज अवेयरनेस, जिसका अगर हमने ख्याल रख लिया तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमें धीरे धीरे मिल ही जाएगा। पहले शो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पता होता है कि उनके एंटायर फैमिली की हर मंथ की कितनी सेविंग है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर मुझे जोया का मैसेज आया है और अस्सलाम वालेकुम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम, कहती है कि अमिता सच कहूँ तो पहले मुझे कुछ भी पता नहीं होता था, पर पिछले साल जब मेरे शौहर की तबीयत खराब हुई तब मुझे एहसास हुआ कि फाइनेंशियल नॉलेज कितनी जरूरी है। अब हम हर महीने साथ बैठकर बजट बनाते हैं। दैट इज सो कूल एंड दैट इज सो नाइस। मतलब सोचिए, एक इंसिडेंट की वजह से आपने ये कदम उठाया। वैसे मैं कहूंगी कदम उठाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसे इंसिडेंसेस का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। बलफरा का मैसेज है, वो कहती है कि मैं तो आज भी बड़े फैसले अपने पार्टनर पर ही छोड़ देती हूँ। मुझे लगता है बैंक और इन्वेस्टमेंट के मामले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ घर के खर्च तक महदूद रहती हूँ। शायद मुझे बदलना चाहिए। यस फरा, आई रियली इंसिस्ट कि आपको थोड़ा बदलना चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो आस्क अपने पार्टनर से कि यू नो कैसे खर्चे होते हैं, क्या होता है। मैंने पहले ही कहा था कि नंबर से हमें डरना नहीं है, उन्हें समझिए, और ये बस थोड़ी सी समझ का ही खेल है। एटलीस्ट आप अवेयर हो जाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सायरा का मैसेज है कि मेरी पहचान टीम को सलाम। सो यस, थैंक यू सो मच सायरा। एक वर्किंग वुमन हूँ मैं, और तो जाहिर है मुझे एक एक रुपए का हिसाब पता होता है, और मैं और मेरे पार्टनर हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितना सेव करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। बराबरी का रिश्ता तभी होता है कि जब फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में दोनों को ही समझ आता हो। देखिए सायरा, आपने बिल्कुल सही बात कही है, और मुझे लगता है कि जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो इस चीज़ का ख्याल रख रही हैं। बट बात सिर्फ वर्किंग लेडीज़ और होम मेकर्स की नहीं है, बात कई बार ऐसी होती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमें फरा ने कहा कि मैं सारे अपने फैसले पार्टनर पर ही छोड़ दिया करती थी, अक्सर छोड़ती हूँ, तो ये इवन वर्किंग लेडीज के साथ भी कभी कभी हो जाता है। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ भी करें, देखिए घर, जैसे हमने कहा था कि घर की जिम्मेदारी दोनों की होनी चाहिए, उसी तरह जब हम पैसों की बात करते हैं तो वो जिम्मेदारी भी दोनों की ही होनी चाहिए। उसके बाद रुखसार का मैसेज है, वो कहती है कि मेरे पास अपनी एक अलग सीक्रेट सेविंग होती है जो मैं घर के खर्च से बचाती हूँ, पर असली सेविंग्स कितनी है वो मुझे नहीं पता। ओहो रुखसार, देखो यहाँ पर आप ना मात खा गए। मैं आपसे कहूंगी जितनी आप अलर्ट हैं अपनी सीक्रेट सेविंग के लिए, उतनी आपको अलर्ट होना होगा अपने घर की सेविंग के लिए, तब हर चीज इजी होगी और स्मूथ होगी, है कि नहीं। वेल, हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने हमें मैसेजेस किए, बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार हमारे शो के बाद भी मैसेजेस आते हैं, डेफिनेटली मैं उन्हें पढ़ती हूँ, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने मैसेजेस हम तक जरूर पहुंचाएं और हमें बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगता है, या कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि हमारे शो के जरिए लिसनर्स तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर। चलिए आइए अपनी बातों को अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम अक्सर शीशे में खुद को देखते हैं, एक माँ, एक बीवी, एक बेटी, एक एम्प्लॉय, लेकिन आज मैं बात करना चाहती हूँ उस शख्सियत की जो हमारे अंदर कहीं दबी हुई है, कहीं खामोश है, जिसे हम कहते हैं छुपी हुई मैं। ये छुपी हुई मैं कौन है? ये वो औरत है जिसे पता है कि उसकी असली कीमत उसके शौहर की बैंक बैलेंस या उसके पिता की जायदाद से तय नहीं होगी। ये वो है जो अपनी एक अलग फाइनेंशियल पहचान चाहती है। ठीक है, तो मेरी ब्यूटीफुल लेडीज, हमने सदियों से सुना है कि सोना ही औरत का असली साथी है, और ये सच भी है। सोना यानी कि गोल्ड एक पुरानी और बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। मुश्किल वक्त में इसी ने हमारा साथ दिया है। लेकिन आज के दौर में सिर्फ सोना काफी नहीं है, ठीक है, आपकी

हिलाएं बल्कि उसका मतलब भी समझें। अभी बहुत जरूरी बात है कि जब मैं कहती हूँ ना कि हर औरत को अपने पैसे का पता होना चाहिए, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अमिता क्या तुम हमें अपने पार्टनर पर शक करने के लिए कह रही हो? नहीं, हरगिज नहीं। खुदा ना करे कि आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, लेकिन हकीकत से आंखें फेरना समझदारी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऊपर वाला ना करे कि अगर कल को आपको अकेले दुनिया का सामना करना पड़े या कोई भी सिचुएशन आए, पर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो क्या आप रास्ता ढूंढ पाएंगी? ये अपने पार्टनर पर शक करना नहीं है, ये खुद की इज्जत करना है, ये जिम्मेदारी है एक पूरे कॉन्फिडेंट की। यस, और एक जो कॉन्फिडेंट लेडी होती है, विमेन होती है, या यूं कहें औरत होती है, वही होती है जो हर मौसम के लिए तैयार हो। इसीलिए हर औरत को, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग विमेन हो, कुछ बातों का उसे ख्याल रखना ही होगा। जैसे पैसे कहाँ हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली की सेविंग्स कौन से बैंक में है और किसके नाम पर है, वो कैसे प्रोटेक्टेड है, क्या हमारा इंश्योरेंस है, क्या हमने नॉमिनी फाइल किए हैं, और जरूरत पड़ने पर आप उसे एक्सेस कैसे कर सकती हैं, क्या आपके पास पासवर्ड्स हैं, क्या आपको पता है कि इमरजेंसी में पैसे कैसे निकालने हैं। ये सवाल पूछना आपका हक है और ये आपकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो फिर जनाब, बातें बहुत हुई, अब थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं, और आज से हम अपना मनी मैप कैसे शुरू करें इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का थोड़ा सा ख्याल रखना है। सबसे पहला है द फाइनेंशियल डेट नाइट। सुनने में थोड़ा सा फिल्मी लग रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। महीने में एक बार, सिर्फ एक बार, बच्चों को सुलाकर, फोन साइड में रखकर और टीवी बंद करके अपने पार्टनर के साथ बैठिए, एक कप चाय लीजिए और बैंक स्टेटमेंट्स देखिए, पासवर्ड्स शेयर कीजिए, खुलकर बात कीजिए कि सर पर कितना कर्ज है या हाथ में कितनी कैपिटल है, कितनी पूंजी है। जब दोनों को पता होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, तो रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी और मोहब्बत दोनों बढ़ेगी। नंबर टू, आप 10% रूल का ख्याल रखें। ये रूल आपकी जिंदगी बदल सकता है। घर के खर्च के लिए जो पैसे मिलते हैं या जो आपकी अपनी कमाई है, उसमें से सबसे पहले 10% निकाल कर एक अलग अकाउंट में डालिए जो सिर्फ आपके नाम पर हो। इसे भूल जाइए, ये आपका फ्रीडम फंड है, ये वो पैसा है जो आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाएगा। नंबर तीन, एजुकेट योरसेल्फ। यस, अगर आप कतर में हैं और ये ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो कतर फाइनेंशियल सेंटर की वेबसाइट देखिए, या वो जो कहते हैं ना इन्वेस्टोपीडिया जैसे फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। हर हफ्ते एक नया शब्द देखिए, इन्फ्लेशन क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, डिविडेंड्स किसे कहते हैं। याद रखिए, जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी शील्ड होगी। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपका डर कम होगा। तो आज की मेरी टॉप टिप बस इतनी ही है, और इसे अपने किचन के दरवाजे पर लिख लीजिए। यस, वो मत बचाइए जो खर्च करने के बाद बच गया है, बल्कि पहले बचाइए और फिर जो बच जाए उसे खर्च कीजिए। आया समझ में? चलिए, इसी बात के साथ मैं कहूंगी कि फाइनेंशियल पहचान सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये उस भरोसे के बारे में है जो आपको अपने आप पर होता है। जब आप अपने कॉइन्स की मालिक बनती है ना, तो आप अपनी जिंदगी की मालिक बन जाती हैं। अगले हफ्ते मेरी पहचान में हम एक और खूबसूरत से टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। यस, और वो क्या होगा वो जानने के लिए आपको सेम टाइम सेम प्लेस मेरी पहचान पर अपनी अमिता से मिलना होगा। फिलहाल के लिए अब आप मुझे दीजिए इजाजत। मुझसे कुछ कहना है तो हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं FM 107 के, या फिर हमारा जो नंबर है 666-22-107, इसके जरिए भी आप मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी आरजे अमिता से अपने दिल की बात कह सकते हैं। चलिए, अब आप मुझे दीजिए इजाजत। आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: दोस्तों, रिक्रिएशनल और प्ले एरियाज में बच्चों के हिफाजती इकदामात को तरजीह देना उन्हें हादसात से बचाता है और खुशगवार और सेव आउटिंग्स को यकीनी बनाता है। बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बराए मेहरबानी मुसलसल निगरानी को बरकरार रखें और बच्चों को अपने फैमिली मेंबर्स के इर्द गिर्द ही रहने की इजाज़त दें। गाड़ी को हमेशा सेफ पार्किंग में ही पार्क करें और बच्चों का गाड़ी से बाहर निकलते वक्त खास ख्याल कीजिए। उनका हाथ पकड़ के रखिए और दूसरी गाड़ी जब रिवर्स हो रही हो उस वक्त बच्चों को उसके पीछे जाने से रोकें।
4: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
4: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
3: हर मंडे सुबह 10 से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
4: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
5: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु साथियों, इस वक्त FM 107 की घड़ी बजा रही है ठीक 11 बजकर, रुक जाओ 5 सेकंड रुक जाओ, और हाँ अब बज गए 11 बज के 2 मिनट और आपका टाइम हो चला है सफा के साथ जुड़ने का, यानी के
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: तो भाई सफा के साथ जुड़ गए हैं आप FM 107 पर, सन एंड साउंड चल रहा है। गोभी दिया फुल्लो आ जाओ जरा खुशबू लगा के, आ जाओ बातचीत करते हैं। मेरा और आपका साथ रहेगा कब तक, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। क्या क्या कहना चाहिए, नहीं नहीं नहीं ऐसे कहना चाहिए 11 AM till 1 PM। कितना सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, आदत नहीं है ना। तो भाई आप सभी को ढेर सारा वेलकम है। और आज हमारे पास क्या हो गया है, देखें आज हमारे पास खुशी का दिन हो गया है। खुशी का क्यों, वेडनेसडे है ना। अब वेडनेसडे से अगर खड़े होकर सामने देखें तो थर्सडे यूं स्माइल करता हुआ नजर आ रहा होता है, और थर्सडे तो हम काउंट करते ही नहीं क्योंकि वो वीकेंड के तौर पर, मतलब शाम के टाइम अपना वीकेंड शुरू हो जाता है भाई, जिन जिन का नहीं होता माजरत। देखिए मेरी खुशी तो मेरी खुशी है, लेकिन मुझे इस वक्त वीकेंड बहुत पास नजर आ रहा है, बस यूं एक हाथ की दूरी पर है। तो भाई साथियों ढेर सारा वेलकम है, और मैं आपको ये बताती चलूं कि इस शो में ये क्योंकि एक इंटरैक्टिव शो है, तो भाई इस शो में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन का पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि जल्दी से ज़रा गोभी दिया फुल्लो आ जाओ खुशबू लगा के अटेंडेंस लगवा लो। कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, मैं भी बोलने वाली थी, कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है, तो देख नहीं रहा मैं, भूल गई कि रेडियो है। तो भाई कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, ज़रा आप एक काम करो हमें मैसेज करो। मैसेज करने के लिए नंबर है 666-22107। क्या नंबर है, देखो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ आज, जल्दी जल्दी नहीं बोल रही। 666-22107 पर आप एक काम कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, फिलहाल के लिए अटेंडेंस लगवा लो ताकि मुझे पता चले हाँ भाई बाद बाबुलाइजा होशियार हर कोई मौजूद है, ठीक है। और जिन जिन ने कॉल पे बात करनी है, मुद्दा अभी हाजिर होगा, मुद्दे पे बात कर लेंगे। फिलहाल तो एक काम करते हैं, तड़कती भड़कती हम जो है ना कहाँ चलते हैं, वेदर रिपोर्ट पर चलते हैं। क्या कहते हो, वेदर रिपोर्ट बता दी जाए। वैसे मुझे पता है होशियार लोगों वेदर अच्छा खासा फील हो ही रहा होगा आपको, लेकिन क्योंकि हमने वार्म अप करना है तो हमने जो है वो वार्म अप न्यूज़ तो देनी है ना, वेदर क्या चल रहा है वो तो बताना ही पड़ेगा। गोभी दिया फुल्लो ड्यूटी है, ड्यूटी वेदर बताने की। तो भाई अगर आपको थोड़ा बहुत एसी में रहकर भूल गया है कि क्या वेदर हो रहा है, मैं आपको याद दिला देती हूँ, टेंशन नॉट। तो भाई आज का मौसम सुन करना आपका जो पसीना है ना, अगर वो थोड़ा बहुत सूख गया है तो मैं उसको वापस से बहाल कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि दोहा का वेदर आज फुल समर सुपरस्टार मोड में है, मतलब हाइप पे चल रहे भाई, हाइप पे। आज सूरज मियाँ ने सुबह सुबह ड्यूटी पर ओवर टाइम करने का फुल प्लान कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अभी ये डिसाइड कर लिया है कि आज मैंने छुट्टी नहीं लेनी, ना ना ना ना ना, मैंने ऐसा माहौल गर्म करना है कि मेरे जाने के बाद भी दोहा गर्म रहे। देखिए टेम्परेचर का हाल ये है कि बाहर निकलते हुए ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे नेचर ना फ्री में आपको सूना सेशन दे रही है, ठीक है। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है जैसे कल पड़ रही थी, टेंशन ना लें,

कुछ चेंज नहीं हो रहा, बल्कि उसे थोड़ा सा ऊपर ही जा रहा है, जहां टेम्परेचर तकरीबन अभी तकरीबन मेरी लिस्ट में दिखा रहा है 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है, और ऐसा ही रहने का, मतलब शाम जब होगी तो 37 तक आ जाएगा, लेकिन 37 का टेम्परेचर सुनकर ज़्यादा खुश नहीं होएगा, क्योंकि कल भी मुझे ऐसा ही लग रहा था 37-35 का टेम्परेचर था, लेकिन जब मैं शाम के टाइम बाहर निकली थी ना, तो भाई मैंने सोचा स्कूटी चला लेती हूँ, स्कूटी तो ऐसा लग रहा था जैसे चमड़ी उधेड़ती हुई हवा जो है ना वो, नहीं भाई स्कूटी नहीं चलाना शाम के टाइम, ना कुछ ऐसा नहीं होने वाला जैसा आप सोच रहे हैं मेरी तरह ना। लेकिन दोस्तों अगर आप गर्मी में पार्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, या पार्क छोड़ें आप है जो है ना वो आप जो है ना गर्मी में, इस गर्मी के मौसम में अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करने के चक्कर में लगे हुए ना कहीं पर, तो वापस आते हुए ना स्टेयरिंग व्हील को बहुत ध्यान से देखिए, मैं रिमाइंडर दे रही हूँ, जब आप वापस आएंगे ना गाड़ी पार्क करके अपना काम वाम खत्म करके, जब वापस स्टेयरिंग व्हील पे हाथ रखने लगेंगे ना, तो मेहरबानी करके बहुत ध्यान से हाथ रखिएगा, क्योंकि वो तब तक मिनी तंदूर का एक्सपीरियंस आपके लिए बन चुका होगा, तड़कता भड़कता। अगर आप कच्चा आटा लेकर आए ना और अपने स्टेयरिंग व्हील पर यूं यूं करके लपेट दें, तो बता रही हूँ फ्री फंड की रोटी तंदूर की आपको मिलेगी वहां पर। हाँ, और जो मेरी तरह लोग होते हैं ना, जो बहुत डेढ़ होशियारी झाड़े होते हैं कि भाई मुझे तो गर्मी पसंद है, मुझे तो गर्मी नहीं लगती, तो अभी तक की जो गर्मी है ना वो मुझे भी याद दिला रही है कि पानी ज़्यादा पिए, धूप में ज़रूरत के बगैर ना निकलें, और अगर बाहर जाना हो तो मेहरबानी करके टोपी छोपी पहन लो, गोभीदिया पुल्लो एकदम हीरो शीरो बन के ना, सनग्लासेस और सनस्क्रीन इस्तेमाल करना ना भूलो, और मेहरबानी करके डिओड्रेंट लगाना मत भूलना, डिओड्रेंट लाजमी लगाओ। ये जो लोग हैं ना जो कहते हैं नहीं हमसे तो खुशबुएं आती हैं, मेहरबानी करके खुशबू लगा कर बाहर निकलो, ऐसे ना निकलना, डिओड्रेंट लाजमी लगा के निकलना, नहीं तो आसपास वाले वैसे ही बेहोश हो जाएंगे। तो भाई आपसे ये, आपको ये बताया जाए कि हवा की रफ्तार कितनी चल रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ, हवा की रफ्तार जो है ना इस वक्त 21 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चल रही है। ह्यूमिडिटी कल से थोड़ी सी बनिस्बत कम है, 17% पर ह्यूमिडिटी आई हुई है, और यूवी रेस का तो आपको पता ही है, एयर क्वालिटी का तो आपको पता है, होशियार हैं आप, अब तो आपको सब पता होगा, बड़े बादशाह चल रहे हो भाई, मतलब आप जो है ना एक्सपर्ट लेवल का गेम पे चल रहे हो इस वक्त, फील्स लाइक 50 हो रहा है इस वक्त, तो आपको अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए कि यूवी रेस कैसी होंगी, आपको अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई सनी वेदर है, बारबेक्यू चिकन नहीं बनना हमने, अपने आप को थोड़ा सनस्क्रीन लगाओ और डिओड्रेंट मत भूलना लगाना, नहीं तो आसपास के लोग वैसे बेहोश होकर गिर जाएंगे। खुशबू लगा के बाहर निकलो अच्छे अच्छे बनकर, ऐसे चश्मा वश्मा बिल्कुल पप्पू स्टाइल में, ठीक है, ऐसे वाला। अच्छा भाई, जब इतनी बातें कर ही ली हैं गर्मी के बारे में, तो क्यों ना आपको थोड़ा बहुत अच्छी साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, आप इतना कुछ तो बोल लिया लेकिन कुछ पॉजिटिव साइड पे लेकर चलते हैं। तो भाई आज के फन ट्रिविया की तरफ चलते हैं, यानी कि आज मैं आपको एक ऐसी खबर देने वाली हूँ जिससे आप शुक्र अदा करेंगे कि चलो गर्मी है कोई बात नहीं, दुनिया में ही है ना। अगर किसी और पे, जो कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं कि भाई इस गर्मी से तो बेहतर था मैं किसी और सैयारे पे चला जाता, मतलब किसी और प्लैनेट पे चला जाता, तो भाई आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इत्तला आम है, आप लोगों को ये बता दूं कि शुक्र करें आप अभी दुनिया में ही हैं, किसी और प्लैनेट पे पैदा ना हुए आप, शुक्र करें। देखें हमारे यहाँ की 2 महीने की गर्मी से तंग आकर, दो चलें 3 महीने की गर्मी से तंग आ जाते हैं लोग, तो ज़रा दूसरे सैयारों के बारे में सोचें, यानी कि दूसरे प्लैनेट्स के बारे में सोचें। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देती हूँ, यूरेनस नाम का एक प्लैनेट है, ठीक है, वहां पर ना गर्मियों का बड़ा ही अलग हिसाब है, बहुत बड़ा अलग हिसाब है, मतलब मैं कहूंगी थोड़ा हिसाब उल्टा नहीं, वहां पे बिल्कुल अलग हिसाब है। आज अगर आप अपने एसी का टेम्परेचर अगर 24 या 22 या 18 पे भी कर लेते हैं ना, तो रिक्वेस्ट करते हैं आप, और फिर भी आप ये कहते हैं कि भाई उफ हाय हाय हाय कितनी गर्मी है, तो मैं आपको बता दूं जरा यूरेनस पे जो प्लैनेट है ना उस पर गर्मी का अंदाजा करें। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए वहां की गर्मी हमारी दोहा की गर्मी के जैसी बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल, बल्कि ऐसी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, मतलब आई है और उसने वापस नहीं जाना। यूरेनस पर एक गर्मी का मौसम आपको पता है कितने साल का होता है,

ओ भाई लगभग 21 अर्थ के जो ईयर्स होते हैं ना उस तक चलता है, 21 साल तक चलता है। यानी सोचिए अगर आप ये कह लें कि यूरेनस पर अगर आप स्कूल जाते होते, स्कूल का टाइम याद करना, हम सबको पसंद है अपने स्कूल का टाइम, तो अगर आप यूरेनस पर स्कूल जा रहे होते और समर वेकेशन शुरू होती तो भाई छुट्टी खत्म होने तक ना आप खुद स्टूडेंट से अंकल या आंटी की कैटेगरी में आ चुके होते, ठीक है। हाँ 21 साल की गर्मी भाई। अब सवाल ये है कि भाई यूरेनस पर ऐसा होता क्यों है, भाई वहां पर इतना लंबा मौसम चलता क्यों है। नॉलेज में इजाफा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन है। देखिए हमारी अर्थ जो है ना वो, हाँ ये है कि टोटली सीधी नहीं खड़ी होती लेकिन थोड़े से टिल्ट के साथ ना खड़ी हुई होती है। मतलब ऐसे जैसे आपके लिए वो स्मार्ट स्टूडेंट नहीं होता असेंबली में, जो यूं होशियार खड़ा होता है असेंबली में सीधा। लेकिन यूरेनस का मसला ये है कि यहाँ जब आप कह रहे हैं यहाँ पर जो ना ये जो यूरेनस जनाब है ना, ये थोड़े से अलग स्टाइल के, थोड़े से क्या मैं कहूँगी, बिल्कुल टोटली अलग हैं ये। पता है क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट लगभग 98 डिग्री टिल्ट पर लेटा हुआ होता है। इसका बस चले तो ये कभी जागे ही नहीं, ये यूं लेटा हुआ है पोज देने के लिए, जैसे हम तस्वीरें खिंचवाने के लिए करते हैं ना, बिल्कुल यूं 98 डिग्री टिल्ट पे लेटा हुआ है। मतलब यूरेनस ऐसे घूमता है जैसे किसी ने फुटबॉल को साइड पर गिरा दिया हो और वो रोल करता हुआ सूरज के चक्कर लगा रहा हो। बहुत ही लेजी है ये। और भाई इस लेटे हुए स्टाइल के नतीजे में ये होता है कि यूरेनस का एक हिस्सा सूरज की तरफ ही लेटा रह जाता है, तो वहां लगातार रोशनी रहती है, लगातार दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। मतलब यूरेनस पर जाकर हम ड्यूटी भी नहीं कर सकते, 21 साल ड्यूटी करोगे। फिर जरा इमेजिन करें, सुबह हुई, नाश्ता किया और फिर 20 साल तक की छुट्टी, धूप ही धूप। अगर आप ये कहें ना कि भाई, मतलब ये कहना बनता है यूरेनस पर जाकर, ये कहना तो बनता है ये भाई सनसेट कर दो, खुदा का नाम लो, थोड़ा सा आराम करने दो हमें, ऐसा ना चल पाएगा। शुक्र करें दुनिया पे पैदा हुए हैं। और अगर दूसरी साइड पर आप चले जाए ना, इसके एक तो हिस्सा 21 साल के लिए गर्मी में तड़कता भड़कता, हाय हाय तंदूर फुल 21 साल का तंदूर, तो भाई दूसरी साइड मतलब एक तरफ लोग सनस्क्रीन ढूंढ रहे होते हैं और दूसरी तरफ लोग टॉर्च की बैटरी ढूंढ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड बिल्कुल स्लीपिंग मोड पर है, अंधेरा, 21 साल तक वहां पे रोशनी का सीन ही नहीं होता भाई। तो भाई अगली बार जब आप कहेंगे ना कि यार गर्मी बहुत है, हाय गर्मी बहुत है, तो भाई याद रखिएगा हमारी 2-3 महीने की गर्मी ना बहुत बेहतर है, बहुत सेट है। हाँ हाँ चलेगी चलेगी चलेगी, मुझे चलेगी भाई, कम से कम हमारे पास रात तो हो जाती है, मौसम बदल तो जाता है। तो भाई ये हो गई इन्फॉर्मेशन आज की, ठीक है। तो साथियों आप सुन रहे हैं FM 107 पर सन एंड साउंड। भाई इसी मजेदार सी एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको याद दिलाती चलूं कि इंटरैक्टिव सा शो है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-2107 पर, द मैसेज नंबर इज 666-2107, और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर। और गोविंद आप भूल लो, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई, आप लोगों के मैसेज भी धड़ाधड़ आना शुरू हो गए। एक काम करती हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, गर्मी बहुत लग गई, 21 साल की गर्मी चढ़ गई दिमाग पर। एक काम करती हूँ, एक ब्रेक लेती हूँ, ठीक है। तो एक ब्रेक लेने के बाद आते हैं, आपकी कॉल भी आना शुरू हो गई है। कॉल जो भी कर रहा है उसकी कॉल जो है ना वो ब्रेक के बाद वसूल करेंगे, ठीक है। दिमाग चकरा रहा मेरा, 21 साल की गर्मी भाई, अभी तो हवा चाहिए, हवा हवाई 21 साल की गर्मी, नो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुनिया में पैदा हुए हैं, किसी और सैयारे पर नहीं हुए। चलो भाई अभी तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर सुनेंगे सन एंड साउंड में आगे सफा के पास क्या है, मुद्दे पे बात करेंगे, ठीक है। और अभी के लिए सुनते रहें FM 107 दिल से देसी, हवा हवाई, मैं आई

0: 7 पर दिल से देसी
1: वेलकम बैक जी वेलकम बैक मुझे तो दो ही टिकी टिकी याद रहती हैं एक घड़ी की टिक टिक और एक वो जो टिकी होती है ना शामी कबाब वाली वो वाली मेरी दिलचस्पी सिर्फ इन दो टिक टिक में है मुझे बाकी और टिक टिक कोई समझ में ना आती ये बताओ टिक टिक सुन के आपको क्या याद आया तो भाई वेलकम बैक साथियों आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा ऑन एफएम 107 इस वक्त हमारी घड़ी में बज रहे हैं 11:21 हो गए भाई 11:21 और भाई देखें हमारे पास मैसेजेस ढेर सारे आ गए हैं पढ़ लिए जाएं मैसेजेस ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मेरा ना वो गजनी वाला हिसाब है कुबी दें तो मैं जो ना भूल जाती हूँ तो भाई कौन है भाई यूसुफ भाई हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं गुड मॉर्निंग जी अजी गुड वाला मॉर्निंग जी तुहाडा मैसेज पढ़ के गुड वाला मॉर्निंग ही हो गया है तो क्या कह रहे हैं कैसी हैं आप होप वेल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यूं फिट बिल्कुल गुड देखिए वेनसडे को तो गुड होना ही है क्योंकि थर्सडे की याद आ जाती है थर्सडे शाम की याद आ जाती है तो और ज़्यादा एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है अच्छा भाई और क्या कह रहे हैं हैप्पी वेनसडे मॉर्निंग जी अच्छा जी और कौन है हमारे साथ दूसरे मैसेज में है समवन वाह क्या तो नाम है समवन हाँ जी समवन कह रहे हैं समवन क्या कह रहे हैं मैडम गर्मी पड़ने वाली नहीं है इस वक्त गर्मी पर पड़ रही है पढ़ने ओ गर्मी पड़ने वाली नहीं गर्मी पड़ रही है देखें इस बात का तो लेकिन आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है बाकी सारा मैसेज भूल गया मुझे नाम बड़ा समवन वो मुझे याद आ गया कोई तो हम घर में आमतौर पर कहते हैं भाई कोई पंखा चला दे कोई दरवाज़ा बंद कर दे कोई ये कर दे कोई फलाना कर दे कोई ढमा ये समवन आस पास चल गया समवन यही है वो कोई तो यही है पकड़ लो सब पकड़ लो इनको मिलकर मैं बता रही हूँ वो जो घर में होता है ना एक मसला कि कोई ये काम कर दे वो समवन यही है मैं बता रही हूँ अच्छा भाई और कौन है जी हाय गुड मॉर्निंग आई एम मोहम्मद सुल्तान फ्रॉम अलखोर अरे भाई अच्छा मेरा एक मेरे ब्रदर इन लॉ इसका नाम भी सुल्तान है माशाल्लाह ये नाम मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है सुल्तान बड़ा सॉलिड ना मतलब कैसा वो शहाना सा फील आता है ना सुल्तान अच्छा माशाल्लाह नाइस नेम तो भाई आपको भी गुड मॉर्निंग सुल्तान भाई और कौन है ये क्या बात हुई भाई मतलब मैसेज में कुछ और थंब प्रिंट डालकर अब मैं क्या आपका नाम क्या कहूँ थंब प्रिंट फिंगर प्रिंट मतलब इन्होंने अपना नाम रखा है फिंगर प्रिंट इमोजी फिंगरप्रिंट का लगा हुआ है नाम की जगह पर अब भाई अगर इतना इन्होंने पता है मैसेज बड़े शॉर्ट टर्म भाई हैं ये बहन हैं या भाई हैं बड़े शॉर्ट टर्म है मतलब क्यों क्योंकि इन्होंने लिखा गराफा बस अब भाई कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम मतलब बात शुरू कर मतलब एक होता है ना एक मोमेंटम होता है ना बात का मतलब कहता है अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप मैं ठीक ठाक आप सुनाएं नहीं ऐसे कोई यूं करके स्टिकर लगा दे गराफा ठा ये क्या किया ठा करके भाई नाम भी लिख दे इतनी तो कोई मुश्किल ना थी अच्छा मतलब मैं क्या बोलूँ फिंगरप्रिंट का मैसेज आया है अच्छा ये क्या है ये कौन है भाई अच्छा ये कौन है फयाज सैयद कह रहे हैं ये बातें कहाँ से सीख कर आती हैं आप देखिए ये फ्री फंड की नॉलेज है पैसे नहीं लेती मैं इसके बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मुझे पता है चिल्लर तो इस वक्त किसी के पास नहीं होगा सबने अपना चिल्लर मुका दिया होगा महीने का आखिर होता है पता है महीने के आखिर में चिल्लर कितना इंपॉर्टेंट होता है मुझे पता है मुझे तो कोई चिल्लर भी ना देगा चिल्लर ही ना देगा फयाज भाई कह रहे ये बातें कहाँ से सीख कर आती हैं देखें ये जो है ना बिल्ट इन टैलेंट है अब ये खरीदा नहीं जा सकता मसला ये बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़कर आ गई लेकिन ये टैलेंट किसी ने मुझे मतलब यूं खरीदने के लिए नहीं दिया तो ये बिल्ट इन है सुभान अल्लाह माशाल्लाह कभी गुरूर नहीं किया मेरे भाई कभी गुरूर नहीं किया फैज भाई क्या ही बात है थैंक यू बस देखिए मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे बहुत ज्यादा तारीफ नहीं और ज्यादा तारीफ नहीं कीजिएगा तो भाई साथियों आपको बताते चलूं कि आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं शो में आप मैसेज भेज सकते हैं 6662107 पर और चाहें तो आप जो है वो हमें क्या कर सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं 4434377 इज द नंबर टू कॉल लेकिन अब आप सोच रहे होंगे भाई इसको कौन याद दिलाए किसने मुद्दा बताना था मुद्दा अच्छा बात करने के लिए आज का टॉपिक है ऐसा नहीं देखिए मैं भूली नहीं हूँ टॉपिक है मेरे पास अच्छा भाई चलिए आज का जो है ना आज एक किस्म का ना

आज एक किस्म का कुछ डिफरेंट टॉपिक रखते हैं, मोबाइल से रिलेटेड रख लें, ज्यादा बेहतर है। चलो भाई, आज का ना मैं इसको टाइटल देती हूँ पब्लिक एम्बैरेसमेंट चैलेंज। पब्लिक एम्बैरेसमेंट चैलेंज। जरा सोचिए, आप किसी से बहुत ही सीरियस मीटिंग में बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर उकाती होता है कि हमारी ऑफिस की कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं, या एग्जाम हॉल होता है, या मस्जिद में खामोशी, नमाज पढ़ने जाते हैं ना, मस्जिद में खामोशी वगैरह होती है, या कोई ऐसा सीन है कि भाई आप बैठे हैं, आपकी कोई जो है ना वो शादी की बात चल रही है, एक प्रेशर होता है ना, लोग बैठे हुए हैं आगे पीछे, बड़ा बड़े प्रेशर में होता है इंसान, और फिर आपका मोबाइल ना, मेरी तो बड़ी फनी सी टोन है मोबाइल की, तो जरा सोचें लोगों की बड़ी अजीबोगरीब मोबाइल टोन्स होती हैं। मैं खुद अजीबोगरीब मोबाइल टोन रखने वाला शख्स हूं, तो मुझे पता है लोगों की बड़ी अजीबोगरीब मोबाइल टोन होती है, और फुल वॉल्यूम में भाई, फुल वॉल्यूम में आपका मोबाइल बज पड़ता है, या कह लें कि आप वो जो अक्सर औकात लोगों ने लगाए थे बेबी शक डू डू डू ऐसे करके ना, या वो बज जाए वाली टोन, टैन टैन टैन टैन टैन टैन, मतलब फनी सी टोन है, ठीक है, वो बज जाए, एक तो ये काम हो, या फिर ऐसा हो कि आप, मतलब टोन ऐसी हो कि जिसके ऊपर आपको अपना फोन छुपाना पड़ जाए, आपकी खुद की रूह काम जाए, लेकिन आपके जो, अब ये मामला है कि दो आवाज़ें, या तो फिर आपके मोबाइल की टोन इतनी ज़ोर से बज जाए कि आपको एम्बैरेसमेंट हो ऐसे माहौल में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है, एक और टोन है जो हमारे अंदर से आती है, ये तो मोबाइल की टोन है जो ऊपर ऊपर से मोबाइल की चलो हजम हो जाती है, एक मामला होता है कि हमारे पेट में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं भाई, ज़ोर ज़ोर से गुड़ गुड़ की आवाज़ें। अच्छा, मज़े की बात है कि उस टोन को आप छुपा भी नहीं सकते, अक्सर औकात ऐसा होता है, ये एक नेचुरल इफेक्ट है, मोबाइल की टोन तो चलो फिर भी चल जाती है, लेकिन ऐसे सिनेरियो में जहाँ टोटल खामोशी हो और आपके पेट में से गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो भाई आप उस टाइम क्या करोगे, मतलब किस एम्बैरेसमेंट को आप चूज करोगे? अगर आपकी लाइफ में दो एम्बैरेसमेंट आ रही हैं, या तो फिर मोबाइल टोन फुल ऑन वॉल्यूम में बच पड़े और आपकी मोबाइल टोन कोई बड़ी, मतलब हंसी मजाक वाली कोई मोबाइल टोन हो, या तो फिर आप किसी सीरियस मोड पे, सीरियस जगह पे बैठे हुए और आपके पेट से गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं। सोचो, खा पी कर तो गए नहीं, टेंशन में थे, शादी की बात चल रही है, ससुराल वाले सामने बैठे हुए हैं, आपका भी घर वाले सामने बैठे हुए हैं, और सामने वो रख देते हैं खाना, और खाना तो पेट को एक दफ़ा नज़र आ जाए आँखों के ज़रिए, क्योंकि आपने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है भाई, तो गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ पेट के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाएं सबके सामने, तो क्या करोगे? इस एम्बैरेसमेंट को चुनोगे कि मोबाइल फ़ोन की फ़नी सी टोन बजना शुरू हो जाए, या इस एम्बैरेसमेंट को चुनोगे कि खाना देखकर पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाए? तो भाई जल्दी से बताओ, 4434377 पर हमें कॉल कर या मैसेज भी कर सकते हो 6662107 पर। वैसे अगर कहीं मेहमान बन के जाओ और ऐसी पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाए ना, बड़ा एम्बैरेसमेंट वाला सीन होता है, मेरे साथ हो चुका है। मुझे भूख नहीं लग रही थी लेकिन वो अंदर की आवाज़ें पता नहीं क्यों आना शुरू हो गई पेट में से, गड़गड़, पता नहीं कौन सी तो कोई वैक्यूम मशीन अंदर से चल पड़ी, पता नहीं कौन सी कोई ख़राब हुई भी वॉशिंग मशीन अंदर से चल पड़ी, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ें आना शुरू हो गई पेट में से, और लोग मुझे देख देख के हंस रहे हैं। तो भाई आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? तो अगर चूज़ करोगे तो कौन सी वाली एम्बैरेसमेंट को चूज़ करोगे? सोच समझ के चूज़ करना। तो भाई चूज़ कर हमें बताएं कि आप कौन सी वाली एम्बैरेसमेंट को चूज़ करेंगे, या तो फुल ऑन रिंगटोन आपकी हाई फाई पे चल रही हो किसी ऐसी मौके पर, या आपके पेट में से अंदर की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, पेट में से गड़ा गड़ा गड़ा गड़ टूटी हुई मशीन की आवाज़ें कौन सी वाली एम्बैरेसमेंट को चूज़ करोगे, कौन सी वाली पब्लिक एम्बैरेसमेंट को चूज़ करोगे? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है भाई, ये तो है, लेकिन इस कुएं और खाई में से क्या चूज़ करोगे? 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल, एंड 6662107 इज द नंबर टू मैसेज। सोच समझ के जवाब देना। अच्छा भाई, हमें फयाज भाई का मैसेज आया है, कह रहे हैं मोबाइल ही ठीक है भाई, मोबाइल ही ठीक है, ये पेट वाली बात तक ना जाना पेट वाली बात तक ना जाना। अच्छा, मजे की बात ये कि पता नहीं क्या बाय डिफॉल्ट ना मेरे साथ कुछ इशू है, अक्सर औकात मैं तो जब सुबह को न्यूज़ भी देती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ, दुआएं मांगती हूँ पहले कि ये जो आवाज़ें हैं ना,

0: ना ये जो अंदर की वॉशिंग मशीन बोल रही होती है ये ना बोल पड़े, क्योंकि ये बगैर बताए आती है भाई, ये बगैर बताए आती है। तो भाई आप हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर, और कॉल कर सकते हैं 4343447 पर। मैसेजेस की भरमार जारी है, अभी हम एक दो वॉइस मैसेजेस भी आए हुए हैं। और क्या हो रहा है भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके सफा जी? वालेकुम अस्सलाम अदील भाई। अदील भाई ये जो आपने वॉइस मैसेज किया है ना, ये तो ब्रेक के बाद ही सुनने को मिल सकता है। मतलब मैं ब्रेक पे जाऊंगी, मैं सुनूंगी, फिर मैं इसका जवाब दूंगी, क्योंकि भाई प्रोटोकॉल है ना, वॉइस मैसेज तो भाई कुछ भी आ सकता है वॉइस मैसेज में, तो वो सोच समझ के ही उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा भाई, और क्या कह रहे हैं अदील भाई, क्या कह रहे हैं ये? अच्छा ये आपका ही है, आपका ही, मेरा ही है? अच्छा वॉइस मैसेज सुनूं फिर बताऊं कि ये आपका ही है। तो भाई साथियों एक काम करते हैं, मैसेज आए हुए ढेर सारे तो वॉइस मैसेजेस भी आए हुए हैं, तो एक काम करती हूँ, एक छोटे से ब्रेक पे जाती हूँ और ब्रेक के बाद वापस आकर आपके मैसेजेस भी शामिल करती हूँ। अच्छा पहले तो ये क्या यूसुफ भाई का मैसेज है, यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है पेट वाली आवाज़ ज़्यादा एम्बेरसमेंट करेगी। वैसे ऐसी बात भी मेरे साथ नहीं हुई, ऐसी कभी मेरे साथ हुई नहीं। व्हेनेवर आई हैव अ मीटिंग और एनी ग्रुप डिस्कशन आई डू माई मोबाइल ऑन साइलेंट, आई मेक माई मोबाइल ऑन साइलेंट। ठीक है यूसुफ खान भाई, आपका पेट और आपका मोबाइल बहुत बहुत लॉयल हैं आपसे, यकीन जाने। मुझे ना मुझे क्या होता है, मेरे साथ एक मसला है, जब मुझे एंजाइटी होती है ना किसी चीज़ से, या जब मुझे किसी से डर लग रहा होता है, या जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जाहिर बात है इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी, थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती है ना भाई। यहाँ मेरा नर्वसनेस का स्विच ऑन हुआ, मतलब वो भी पूरा ऑन भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे पेट में से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि जैसे पता नहीं कोई अंदर, पता नहीं क्या माहौल चला, पार्टी हो रही है अंदर, पार्टी, और मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, मैं और नर्वस हो जाती हूं उससे, वो और आवाजें बढ़ जाती हैं, वो इतनी बढ़ जाती हैं कि अगर मैं स्टूडियो में हूं ना तो यकीन जाने माइक पकड़ ले उन आवाजों को। नर्वसनेस से कुछ लोगों को होता है, आप लोगों में से किस किस को होता है नर्वसनेस में, आप लोगों को कुछ होता है कभी, मतलब होता है ऐसा, नर्वस जब आप हो जाओ ना तो मिजानिया दुरुस्त नहीं रहता आपका, और मेरा मिजानिया दुरुस्त इस तरीके से नहीं रहता कि गुरूर की आवाज़ आने शुरू होती है। आप लोगों से किसी के साथ होता है ऐसा? नहीं, मुझे पता है मैं एक आखिरी मखलूक तो नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा होता होगा, सच सच बताओ। सच सच बताओ भाई, सच सच। तो भाई अच्छा भाई ठीक है, एक काम करते हैं, एक छोटे से नहीं कॉल आ रही है, कॉल ले लेते हैं ब्रेक पे, अभी नहीं कॉल पे चलते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, खैर आफियत से। ये बताएं, पहले तो बता दें, इससे पहले मैं भूल जाऊं, पहले बता दें कि कौन बात कर रहा है।
1: हमजा बात कर रहा हूं।
0: हमजा भाई, अच्छा आज हमारी गली कैसे भूल गए हमजा भाई?
1: मैं तो रोज ही कॉल कर लेता हूं तकरीबन।
0: अच्छा कल आपने कॉल की थी, कल तो ना की थी,
1: तुमने बात नहीं की यार।
0: अच्छा जी हमजा भाई, कैसे हालात, खैर खैरियत?
1: अल्हम्दुलिल्लाह। असल में आपका टॉपिक ही ऐसा चल रहा है, आपको
0: मुझे ऐसा नहीं, देखिए मुझे ना आगे बढ़कर कोई बोलता नहीं है, शायद लोगों को एम्बैरेसमेंट होती है या बताना नहीं चाहते अपने सीक्रेट, कोई बोलता नहीं, मुझे कोई तसल्ली नहीं देता कि नहीं सफा इट्स ओके तुम नहीं हो अकेली, हम भी ऐसे हैं, पता नहीं क्यों कोई सामने आगे बोलता नहीं। तो मैंने कहा शायद आज मेरे दिल की तसल्ली के लिए बता दो कि सिर्फ मैं एक आखिरी अजूबा नहीं हूँ दुनिया में, तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता है भाई, होता है, मुझे पता है लोगों के साथ होता है।
1: मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकता इस पर, लेकिन बहुत सारों के साथ होता है और बहुत सारों के साथ नहीं भी होता है, लेकिन जिनके साथ होता है और उनके फेस एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं, जिस वक्त ये काम हो रहा होता है ना, उस वक्त ना आप अगर किसी मैच में बैठे हुए ना तो आपका काम यही होता है, सबसे पहले आपके सबकी आंखों पर नजर
0: जाती है। और यकीन जाने वाकई में ऐसा होता है, ये जो पेट की आवाज़ है ना, मोबाइल की आवाज़ तो चलो है, चलो वो तो आपने अपनी मर्जी से रखी है, मोबाइल की टोन आपको पसंद है भाई, आपको ये वाली टोन पसंद है, और मेरी मोबाइल टोन भी कोई सुनेगा ना तो लोग मुझे पलट के देखते हैं, मैं भाई मुझे पसंद है ना, लेकिन इस पेट की आवाज़ का कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है। अच्छा अगर अगर आपके साथ हो, अगर आपके साथ हो,
1: अगर आप मस्जिद में खड़े हैं ना और मौलवी साहब ने आपको स्पेशली बोला है कि अपने मोबाइल साइलेंट कर ले और नमाज शुरू हो गया तो मोबाइल किसी का बज

0: अच्छा ठीक है, मैं एक से निकल जाऊं और एक में फंस जाऊं, मामला यही ना कुआं और खाई वाला सीन है, तो क्या पकड़ेंगे, कुआं के खाई?
1: कुआं ज्यादा बेहतर है, वापस निकल सकता
0: हूं। तो वो कुआं कौन सा वाला है, वो कुआं किस चीज का है, मतलब वो मोबाइल वाला कुआं है या वो पेट की वॉशिंग मशीन वाला कुआं है?
1: नहीं, मोबाइल वाला ज्यादा बेहतर है, पता है कि हाँ यार ठीक है, हो जाता है,
0: मोबाइल वाला बेहतर है। लोग क्या कहेंगे, कैसा कैसा बेटा है मेरा, ये वाला सीन है। तो मेरे ख्याल से भी दूसरा, आप दूसरे दूसरी मतलब आप उस टीम में हैं जिसको दो वोट मिल चुके हैं, भाई मोबाइल ही अच्छा है, उसके अलावा ना हो कुछ,
1: क्योंकि ये चीज ज्यादा एम्बैरेस करती है बंदे को। अगर मैंने जैसे आपको बताया ना कि अगर ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले नजर जाती है सारों की आंखों पर,
0: ठीक है,
1: और अगर कोई देख के मुस्कुरा दे फिर वो जो एम्बैरेसमेंट आपको फील होती है ना, हाँ सीरियसली ऐसा क्या ऐसा होता कुछ भी नहीं है, ऐसी बात है, इंसान आपको भी पता है कि यार हर किसी के साथ ये मामला है, बट कुछ लोग जो है वो कंट्रोल कर जाते हैं, कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं होता, अपने बस की तो बात होती नहीं है।
0: ये भाई कभी कभी मामला ऐसा होता है कि सिर्फ आपके नर्वस हो जाने की वजह से आपके पेट से सिर्फ आवाज आती है, अब आपको भूख भी नहीं लग रही, आपको एसिडिटी भी नहीं हो रही, अब कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ नर्वसनेस की वजह से ना, जैसे कुछ लोगों की एक सिम्टम होता है कि कुछ लोग नर्वस होते हैं तो वो हकलाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग नर्वस होते हैं तो उनको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों का ये मामला होता है कि जब वो नर्वस होते हैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस उनके पेट में से आवाज आना शुरू हो जाती है, और वो खुद सोच रहे होते हैं कि भाई मुझे तो कोई मसला नहीं है, ये पेट के अंदर कौन सी मशीन चल रही है, कौन सी फैक्ट्री उजागर हुई है अभी।
1: मेरे साथ ऐसा है कि मैं जिस वक्त नर्वस होता हूँ तो मैं अपनी फिंगर्स को ना आगे पीछे मूव करने लग जाता हूँ, मैं अपनी फिंगर्स दोनों हाथ इकट्ठे किए,
0: ये भी होता है नर्वसनेस में, कुछ लोग पाँव हिलाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग हाथों के साथ जो है ना यूं उंगलियों के साथ उंगलियां मसलना शुरू कर देते हैं, कुछ कुछ होता है नर्वसनेस में, तो चले
1: इसमें कुछ नहीं कह सकते,
0: कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर एम्बैरेसमेंट चूज करनी है, पब्लिक एम्बैरेसमेंट चूज करनी है, तो आप मोबाइल का, आप कहेंगे भाई मोबाइल ले लूंगा मैं, मुझे वो वाली एम्बैरेसमेंट नहीं चाहिए,
1: क्योंकि वो इतनी फील नहीं होती, सबके पास मोबाइल है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, और ये वो बात तो नहीं है ना कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं है इसमें,
0: सही सही सही सही,
1: इसमें अपने आप पे कंट्रोल भी आ जाता है कि यार अगला क्या सोचेगा, अपने आप पे इतना कंट्रोल भी नहीं है।
0: चले भाई, आपसे बात करके अच्छा लगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। तो भाई अब जो है ना हम एक छोटे से ब्रेक पे जान लगे, सुनियो तुसी कॉल कर दे पे हो, लेकिन हुण जे का है ना अजान दा टाइम भी हो चुका है, तो भाई अजान का टाइम भी होने वाला है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, अजान के बाद वापस आऊंगी, आप लोगों की कॉल्स भी अटेंड करूंगी, उम्मीद करती हूँ कि जो इतना कॉल कर रहे हैं धड़ाधड़ वो इतना सब्र रखेंगे कि अजान के बाद भी कॉल करेंगे, तो आप अपना मुद्दा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, तो फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं, अजान के बाद मुलाकात होती है आपसे, सुनते रहें FM 107 एंड साउंड विद सफा ऑन FM 107।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड। और कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप लगाते कुछ और हो गाना और लग कुछ और जाता है। चलें, दुनिया है, होता है, चलता है। तो भाई हमने बाजी किसी और चीज की लगाई थी, लग किसी और की गई। तो भाई आगे बढ़ते हैं। आप जो है वो सफा के साथ सुन रहे हैं सन एंड साउंड और इस वक्त हमारी घड़ी में बज रहे हैं 11:47 ऑन द क्लॉक। और मुद्दा हमारा वही चल रहा है साथियों। देखें, जाने से पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था। देखिए, आज का चैलेंज ना थोड़ा सा खतरनाक है। आप कह लें कि इज्जत की बात आ गई, इज्जत की बात। देखिए, सोचिए आप एक बहुत ही सीरियस सी जगह पर बैठे हुए हैं, आपकी कोई ऑफिस की मीटिंग चल रही है, कोई एग्जाम हॉल। बचपन में होता था ना वो इंटर मैट्रिक के हमारे जो एग्जाम थे उसके अंदर भी हमारी हालतें ऐसी होती थी कि भारत पतली हो जाती थी। ठीक है, इंटर मैट्रिक के एग्जाम याद आ रहे हैं ना मेरे, तो अभी तक खाबों में आते हैं तो मुझे डर लगता है उनसे। अच्छा, कोई अच्छा सा ऐसा कोई आपका, आप कह लें कि कोई सीरियस मोमेंट चल रहा हो, ठीक है, बिल्कुल खामोशी हो, पिन ड्रॉप साइलेंस, अचानक से आपका फोन रिंग करता है, ट्रिंग ट्रिंग। लेकिन वो ट्रिंग ट्रिंग नहीं होती, वॉल्यूम उसका फुल पर होता है और वो कोई नॉर्मल रिंग टोन नहीं होती। या तो फिर वो एक बहुत ही कोई क्रिंजी सा म्यूजिक होता है, और या तो फिर आप कह लें कि कोई डांस नंबर होता है, कुछ ऐसा कि जो आपको एम्बेरस कर जाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो आपको पसंद होता है तो आप उसको ऐसी वाली मीटिंग में जाने से पहले या साइलेंट करना भूल जाते हैं या चेंज करना भूल जाते हैं। ठीक है, और होता है जैसे वो बजता है ना फुल वॉल्यूम में, ओ भाई सब आपकी तरफ घूर के देखना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग तो आपकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या चीज़ है। ऐसे जैसे आपने कोई गलती कर दी हो दुनिया की, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। एक ऑप्शन तो आपका ये है चूज करने का कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है, दूसरा डेंजरस ऑप्शन ये है, फोन तो बिल्कुल साइलेंट पर है लेकिन आपका पेट डिसाइड करता है कि भाई आज मैं भी अपनी प्रेजेंस फील कराऊंगा, और एक ऐसी आवाज निकलती है पेट के अंदर से जो सामने वाले को सोचने में मजबूर कर देती है कि भाई ये पेट की ही आवाज है या कोई मिनी अर्थ को एक आया है। अब फैसला आपके हाथ में है भाई, अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने क्या चूज करना है। आपको एक एम्बेरसमेंट अपनी पसंद से एक एम्बेरसमेंट चूज करनी है, या तो फिर रिंग टोन की एम्बेरसमेंट, या तो फिर अनएक्सपेक्टेड पेट की अनाउंसमेंट। और हाँ, मजा तो तब आए जब आप रिंग टोन अगर अपनी बोल भी रहे हैं कि रिंग टोन चलेगी, मजा तब आए। जरा बताना कि कौन सी वाली रिंग टोन रखते हो, जरा बताओ तो, जरा बताओ तो। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल। क्या कर सकते हैं, चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो भाई गोविंदा फुल्लो कहाँ हो, मैसेजेस मैं देख रही हूँ, मैसेजेस धड़ाधड़ आ रहे हैं हमें। और मैसेजेस की तरफ चला जाए तो हमारे पास कौन सा मैसेज आया है, एक मिनट रुको, जरा सब्र करो, क्यों इतनी जल्दी में हो, जरा चश्मा तो पहनने दो मुझे, काला चश्मा निकाला नहीं मेरा तो नजर वाला है। अच्छा भाई, मैं तो रिंगटोन वाली एम्बेरसमेंट चूज करूंगा क्योंकि पेट की आवाज का कोई वॉल्यूम बटन नहीं होता, फोन को तो कम अज कम साइलेंट मोड पे या एरोप्लेन मोड पर डाला जा सकता है। तो ये तो बताया नहीं कि कौन सी वाली रिंगटोन है, कौन सी वाली। कॉल वालों, अभी तक तो कॉल कर रहे थे। अच्छा, ये क्या सीन पार्ट है, जैसे ही मैं कॉल के बटन की

0: तरफ यूँ आंसर करने लगती हूँ, थक करके कॉल गुम हो जाती है. कैसे पता चल जाता है आपको कि मैं कॉल उठाने लगी थी? अच्छा भाई, अब आते हैं इनको, देखो जरा कौन है ये, कौन है हमारे साथ. मोहम्मद यूसुफ खान है हमारे साथ और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई. मेरी मोबाइल रिंगटोन वही डिफ़ॉल्ट वाली है और मैंने चेंज नहीं की. बड़े सिंपल आदमी है भाई यूसुफ भाई, बहुत सिंपल आदमी चल रहे हैं. मतलब आप मोबाइल की रिंगटोन वाली एम्बैरेसमेंट बर्दाश्त कर लेंगे? आपको पेट वाली नहीं चाहिए. देखो पेट की बात ना करना सफा, पेट तक ना जाना सफा ना. चलो भाई कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
1: मैं टोनी बात कर रहा हूँ मैडम.
0: टोनी, टोनी भाई, अरे टोनी ना वो बड़ा कोई वो टोनी द बैड
1: टोनी, टोनी मैडम टोनी.
0: मतलब वो बॉलीवुड का सीन याद करें ना, बॉलीवुड की फिल्मों में वो टोनी को हमेशा विलन पता नहीं क्यों दिखाते थे. पता नहीं क्यों. तो ये बताएं टोनी भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह की रजा में राजी हैं. ये बताएं कि मुझे इतना तो पता है कि गर्मी तो एंजॉय कर ही रहे होंगे, गर्मी के साथ साथ हमारा सवाल एंजॉय कर रहे हैं. लो जी, देखो भाई दो ऑप्शन है लाइफ में, कुछ होने वाला है ठीक है, कुछ होने वाला है जिंदगी में, और इन दोनों में से कोई एक चीज होने वाली है और वो आप चूज करेंगे कि क्या होने वाली है. या आप किसी मीटिंग में किसी सीरियस जगह पर बैठे में फुल ऑन सन्नाटा खामोशी, और एकदम से आपका मोबाइल फोन बज पड़ता है, और मोबाइल फोन की रिंगटोन भी कोई आपने मामूली वाली रखी हुई नहीं है ना, आपने रखी है कोई तड़कती भड़कती कोई फनी सी मोबाइल टोन, और वो बज पड़ता है सीरियस मोड में. अब सोचें कि आप किसी बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग बैठे हुए ना, मीटिंग में, ऑफिस की मीटिंग होती है ना, सब प्रेशर में होते हैं, बॉस के सामने बैठे हुए, बिग बॉस के आगे, और आपका मोबाइल बज पड़े टिंग टिंग टिडरिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग. तो सोचे वो एक एम्बैरेसमेंट है ठीक है. एक ये ऑप्शन हो गया कि ऐसा हो अगर जिंदगी में. दूसरा ऑप्शन ये कि आप बैठे में फुल ऑन बॉस के सामने मीटिंग शीटिंग चल रही है और जो है ना सब सीरियस मोड में है, और एकदम से सन्नाटा होता है और आपके पेट में से आवाज आती है गड़गड़ गड़गड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़.
1: वो तो भूख की आवाज आएगी ना मैडम.
0: मतलब चले भूख की या किसी भी चीज, मतलब पेट में से आवाज आ रही है, तो आप कौन सी एम्बैरेसमेंट ज्यादा, आप कहेंगे भाई ये वाली चल जाएगी इसको बर्दाश्त कर लूंगा, इन दोनों में से कौन सी एम्बैरेसमेंट को बर्दाश्त कर सकते हैं आप?
1: भूख वाली कर लूंगा.
0: अरे भाई ये मेरे वाले भाई हैं, ये मैं कहती हूँ भूख वाली बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि भाई मैं बोल सकती हूँ भाई इंसान हूँ, भूख लगी है भाई, क्या हो गया है, मीटिंग खत्म करो. तो अच्छा आप मतलब चले कोई तो आया अपनी पार्टी में, भूख वाली एम्बैरेसमेंट वाली वो बर्दाश्त हो जाएगी. चलो भाई भूख वाली आवाज थी ठीक है. ये एक किस्म का अलार्म भी होता है ना बॉस के लिए, एक किस्म का मतलब यू नो इनडायरेक्ट अल्टीमेटम होता है, भाई बहुत हो गया, हम इंसान हैं, हमें भूख लगी है. सही है. अच्छा टोनी भाई ये बताएं कि हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे
1: मैडम, करें ओपन आप.
0: लेकिन बॉलीवुड ट्रिविया में अभी तकरीबन 5 मिनट बाकी हैं, क्योंकि हमारा बॉलीवुड ट्रिविया शुरू होता है 12 बजे से. क्या कहते हैं आपके साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलना शुरू कर दें, हम 5 मिनट आगे ले जाएं टाइम को आपके लिए.
1: ले जाए.
0: अरे भाई ने इतने मजे से बोला. वैसे आपसे ना पहली दफा बातचीत हो रही है कि नहीं?
1: पहली दफा हो रही है, फर्स्ट टाइम.
0: भाई देखें फर्स्ट टाइम कस्टमर के लिए तो स्पेशल ऑफर रखी जा सकती है. नहीं फर्स्ट टाइम ऑफर रखी जा सकती है फर्स्ट टाइम कॉलर के लिए. ठीक है चलें पहले आइए पहले पाइए. तो चलें काम करते हैं, आज आपसे 5 मिनट पहले बॉलीवुड ट्रिविया खेलना शुरू करते हैं ठीक है, फिर आपके बाद जो आता जाए. लेकिन देखें क्योंकि भाई जान जो है ना हमारे आए हैं पहली दफा, तो हाँ टोनी भाई एक काम करते हैं, आपको रूल और रेगुलेशन बता देते हैं ठीक है. देखें रूल बड़ा सिंपल सा है, 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा.
1: हाँ जी.
0: उस 1 मिनट में आपको कुछ गानों के ना क्लिप्स सुनाए जाएंगे, मतलब 30 सेकंड 32 सेकंड के क्लिप्स सुनाए जाएंगे. आपने उस 1 मिनट के अंदर अंदर जितने गाने पहचान सके ना पहचान ले, उनके नाम बताने हैं आपने, सिर्फ हमें टाइटल बताना.

0: गानों का, ठीक है?
1: ठीक है।
0: तो भाई टोनी भाई आपके साथ शुरुआत करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ और ये पहचानिए। टाइटल सॉन्ग।

0: हाँ हाँ एग्जैक्टली गाने का नाम क्या है, बड़ी मस्त मूवी थी भाई ये। आमिर खान थे, उनके दोस्त होते हैं साथ में।
1: हाँ यारों के दिन
0: नहीं ना, यारों के दिन नहीं ना, यारों के साथ जो दिन बिताए जाते हैं उसके लिए दिल क्या कहता है। हिंट दे रही हूँ। अरे भाई टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कुछ कुछ दिमाग लड़ाएं, कुछ दिमाग लड़ाएं,
1: कोशिश कर रहा हूँ लड़ाने का दोबारा।
0: मूवी आपने पहचान ली है और ये मूवी के नाम पर ही है गाना। अरे टाइम खत्म कर देता है गोभी दिया फूलों, टाइम खत्म कर देता है, मूवी के नाम पर ही गाना भी था। मैंने इतना इजी पिजी लेमन स्क्वीजी निकाला था, लेकिन हमारे टोनी भाई थोड़ा सा देखिए फर्स्ट टाइम कॉलर है, हो जाता है।
1: हाँ जी मिस हो गया मैडम।
0: चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दुनिया है, होता है, चलता है। कल फिर से कॉल कीजिएगा, फिर खेलेंगे, ठीक है?
1: चलें, थैंक यू सो मच।
0: चलें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
1: ओके बाय बाय।
0: चलो भाई भाई बहनों लाइन लगा लो, गोभी दिया फूल लो, खुशबू लगा के आ जाओ। आज हमने थोड़ा सा पहले खेलना शुरू कर दिया है, मैंने कहा जो जो कॉलर आता जा रहा है उसके साथ खेलते जाते हैं, क्या कहते हो? है ना, अच्छा मजा आता है ना, सवाल भी पूछेंगे और गेम भी खेलेंगे। चलो भाई कौन है हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक जी, तुसी कैसे हो और क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम है आपका।
0: मेरे भाई आपकी आवाज बिल्कुल ऐसे आ रही है जैसे वो आप बैठे हुए चांद पर, और आपके सिग्नल जो है ना आवाज के कट कट के आ रहे हैं, कट कट के। थोड़ा जमीन पर आके ये बात। हाँ जी अब आई ना आवाज, अब बताएं कौन बात कर रहा है?
2: मैं नासिर बात कर रहा हूँ।
0: नासिर भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास।
0: तो जल्दी से मुझे ये बता दें। अच्छा हाँ कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे। हाँ बोले बोले बोले बोले।
2: आप बताएं।
0: नहीं नहीं आप पहले, आप पहले आप।
2: नहीं मैं वो आपका टॉपिक सुन रहा था ना, तो उस वजह से मुझे हंसी आ गई बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मैं और मेरा फ्रेंड था।
0: हाँ
2: हम दोनों गए हुए थे एक वो फूल था ना एक जगह पे। हाँ। तो मौलवी साहब दुआ कर रहे थे पूरा।
0: हाँ।
2: ऐसा यानी पूरा साइलेंट मूड में था,
0: सही, सही,
2: बंदा दुआ कर रहा था। तो उधर मेरा दोस्त है तनवीर नाम है उसको, तनवीर पीला कहते हैं उसको। उसने अपने रिंग पे वो पहले वाले चाइना के फोन आते थे 90s में,
0: सही सही सही।
2: तो वो चाइना का मोबाइल था उसके पास,
0: भाई वो तो इतना हाई वॉल्यूम, ओ भाई वो तो
2: बहुत ज्यादा स्पीकर था उसका।
0: अल्लाह माफ करे, वो कवर में से मुर्दे उखेड़ के ले आए वो मोबाइल की, उसकी आवाज ऐसी होती है।
2: मौलवी साहब दुआ कर रहे थे तो पूरा साइलेंट मूड था, तो तनवीर की रिंग कॉल आ गई उधर। तो वो बोलता है इतना तेज, उसने लाउडली बोला, उसने बोला ला ला ला ला ला।
0: होय होय होय होय,
2: हमारी साइड में देख ना ये क्या कर रहे हैं, तो क्या सीन है।
0: तौबा तौबा
2: तौबा, मुझे आपका आई टॉपिक सुन के तो मेरे से रहा नहीं गया, लेकिन मैं आपका प्रोग्राम को सुनता हूँ, लेकिन वैसे कॉल नहीं की।
0: अरे भाई ये वाकई में होता है, एक तो होता है ना, एक तो जो अब नॉट टू ब्रैग अबाउट इट, लेकिन जो चाइना वाले मोबाइल होते हैं ना उनकी आवाज तो ऐसी होती है कि आप उससे कॉन्सर्ट कर लो, ऐसा लगता है कॉन्सर्ट में बैठे हुए आप। वो डबल ट्रिपल हाई वॉल्यूम की आवाज होती है, वो मैं कह रही हूँ ना, वो तो कवर में से मुर्दे उखेड़ के ले आया आवाज, वो बड़ी खतरनाक आवाज होती है। और उसके स्पीकर बिल्कुल फटे पड़े होते हैं।
2: मौजूद आप कर रहे थे दुआ मांग रहे थे, हर बंदा पूरा फोकस कर रहा था दुआ के ऊपर, और हमारे फ्रेंड साहब लाउड स्पीकर हो गया था उनका,
0: उसके लिए ना जिंदगी भर का एक्सपीरियंस होगा, जिंदगी भर का वो मोबाइल लेकर ही नहीं जाता होगा।
2: हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है।
0: अच्छा भाई ये बताएं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप क्या चूज करेंगे, क्या चीज?
2: नहीं मैं तो ये कार डालूंगा, मुश्किल नहीं है वो।
0: मैं कॉल वाला बंदोबस्त अपना कर लूंगा, कम से कम कॉल साइलेंट पे चली जाती है, पेट साइलेंट पे नहीं जाता।
2: ऐसी बात है,
0: पेट अपनी करता है अपनी अपनी, वो किसी का मोहताज नहीं।
2: ऐसी बात है।
0: चले भाई हमारे साथ
2: इतने खाते हैं दो,
0: भाई ये मोबाइल फिर भी कंट्रोल में आता है, पेट कंट्रोल में नहीं आता, ये तो बात सही है। अच्छा ये बताएं हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे।
2: सिस्टर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका, कोई कुछ नहीं है, मैं आपका सुनता रोज हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल मालूम नहीं
0: है। अरे वाह रोज सुनते लेकिन मुझे मालूम नहीं है क्यों?
2: बस वो गाना सुन लेता हूँ कभी कभी गा के, लेकिन वो मालूम नहीं है कौन सा गाना है।
0: अच्छा,
2: कौन सा नहीं,
0: थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा कॉल की है तो एफर्ट करने में क्या ही जाता है।
2: आपको सुनता हूँ मैं रोज, लेकिन कॉल आज ही की है, बस आपका सिर्फ सुनता ही हूँ।
0: ये आपने इतना मरहला तय कर लिया, इतने फुटस्टेप तय कर कर आ गए हैं, तो थोड़ा सा और दो कदम और चलेंगे, दो कदम और।
2: चलो मुश्किल नहीं है।
0: चलिए भाई ये साइलेंट लिसनर हमारे, आज इन्होंने हिम्मत की है तो चलें आज हम इनका पूरा फायदा उठाते हैं कॉल करने का।
2: तो मेरे दोस्त की आज बात मुझे अचानक याद आ गई, मैंने तो देखी है, तो शाम टाइम ऐसे भी हो जाता है।
0: चलें ये बात तो है, ये बात तो है, हम बातें ऐसी करते हैं कि ट्रिगर हो जाता है कुछ ना कुछ।
2: आप अंदाजा लगे ये बात तकरीबन 10-15 साल पहले की है।
0: उस वक्त जो एम्बेरसमेंट हुई होगी ना वो 15 साल बाद भी फेड ऑफ नहीं हो रही।
2: वही अचानक याद आ रही है, आपके टॉपिक से याद आ गया, वो ये कुछ यादें ऐसी होती है जो नहीं बुलाई जाती।
0: अब एक काम कीजिएगा, अपने दोस्त को वापस से कॉल कीजिएगा आज, और आज उसे खूब एम्बेरसमेंट कीजिएगा, एम्बेरस कर दीजिएगा उसे फिर से याद दिलाकर
2: इंशाल्लाह।
0: चलिए भाई ये वाला गाना सुने, मुझे बताएं कि ये हमारा गाना जो है वो इसका टाइटल बता देना आप। ये मैंने आपके लिए इजी पीजी कर दिया, चलें ये वाला सुनिएगा ठीक है। खेल तो रहे हो भाई, चलो भाई। अच्छा ये वाला ये हमारे वो भाई हैं जो नाक से गाया करते थे।
2: गाना इमरान हकीम मूवी का गाना।
0: हाँ
2: सुनाया
0: कौन सा गाना है, टाइटल बताएं टाइटल।
2: आज सुनाया।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं देखें, फिर से सुने।

0: हाँ, इतना मशहूर, इतना तो पहचान गए किस मूवी का गाना है, ये तो पहचान गए, लेकिन ये पहचान जा रहा कि गाना कौन सा हैगा। चलो जी, तो आधा टाइम अप हो गया, लेकिन नॉट बैड फॉर अ फर्स्ट टाइम कॉलर, नॉट बैड एट ऑल। आपने एक का स्कोर तो कि आज किसी ने तो स्कोर शुरू किया आपने आप पहले बंदे जिसने स्कोर शुरू किया है। चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और नेक्स्ट टाइम जरूर कॉल कीजिएगा। अपनी यादें शेयर करने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये होता है किसी एक दोस्त की एम्बैरेसमेंट, कभी कभी आपके साथ नहीं होता सीन पार्ट, आपके किसी दोस्त के साथ हुआ होता है और आपको वो ऐसा याद रहता है कि अगले 25 से 30 साल बाद भी ना आप उसको याद कर करके इतना हंसते हो। अच्छा मजे की एक बात ये है कि हमें शायद सुनने में ही बात इतनी फनी ना लग रही हो, लेकिन इनके जो दोस्त हैं ना जिनके साथ ही हुआ होगा और इन्होंने साथ बैठ के देखा होगा वो सीन, तो इनको आज भी लोगों के एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेट वाले याद होंगे और उसको याद करके ये जो हंसेंगे ना, जो मुस्कुराएंगे, और आज ये अपने दोस्त को फोन जरूर करके याद दिलाएंगे, है कि नहीं। मैं तो ये काम करती हूँ, मुझे मैं जब अपने दोस्तों से बातें करती हूँ ना तो मैं वो 25-30 साल पुराने निकालती हूँ किससे, और दे हंस हंस के हमारा तो हशर हो जाता है। तो भाई आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, द नंबर फॉर कॉलिंग इज 4434377। और आज बात हो रही है कि किस एम्बैरेसमेंट को चूज़ करना पसंद करेंगे, किस पब्लिक एम्बैरेसमेंट को चूज़ करेंगे आप। एक एम्बैरेसमेंट ये कि आपका मोबाइल ऑन इट्स फुल वॉल्यूम विद अ फनी टोन बज पड़े, या दूसरी एम्बैरेसमेंट ये कि आपका पेट डिसाइड करे कि मैंने लोगों को ये बताना है कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, उसके अंदर से गुड़गुड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाए ऑन अ वेरी सीरियस मोमेंट। ठीक है, तो देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी कौन है हमारे

0: साथ?
1: रईस बात कर रहा हूँ भाई।
0: अरे भाई रईस भाई, अम्मा जान कहती थी।
1: अच्छा लगता है आपका अंदाज, सब लोगों से अलग है बिल्कुल, और होना चाहिए बिल्कुल। बात बिल्कुल आपका जो तेज तर्रार बात होता है ना, एकदम लेडीज की आवाज बिल्कुल ऐसे ही मुझे पसंद है।
0: अरे अरे भाई, अरे भाई देखिए, कभी गुरु नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरु नहीं किया,
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन आवाज है।
0: अच्छा ये बताएं रईस भाई, अम्मा जान क्या कहती थी?
1: अरे भैया वो हाँ वो रईस मूवी का वो शाहरुख खान के उस पर मत ले जाओ।
0: नहीं आप बड़े फेमस हो गए, रईस मूवी ने ना सिर्फ शाहरुख खान को नहीं आपको फेमस कर दिया है।
1: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनका आला हमारे फेवरेट एक्टर है, उनका उनका एक्शन मुझे पसंद है, उनका जो चेहरे का मतलब एक्टिंग जो उनका होता है, बाकी हाँ जी बिल्कुल वो अंदाज उनका कुछ अलग ही, वो उसके जैसा नहीं, बहुत से जो मतलब जो अपना फैमिली के उसमें घरेलू मामले में और प्यार मोहब्बत के उसमें का अंदाज बंदे का कुछ अलग ही है, उसके जैसा शायद बहुत मुश्किल से लोग मिलेंगे अब। उसका बहुत बेहतरीन, मेरे को बहुत पसंद था 90 का, उसमें उसका और काजोल का जोड़ी एकदम
0: मूवी में अच्छी लगती है वो उनका उनका तो अभी भी ऐसा ही है सिलसिला, लोग कहते हैं कि मूवी आए तो अच्छी है। अच्छा मूवी से हटकर बात करेंगे ना, मूवी से तो हट जाए अब। हम मुद्दे पे बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता था सिर्फ मैं गजनी हूँ, मुझे अब पता चला रईस भाई मेरी कंपनी में आते हैं तो हम दोनों गजनी हैं। अच्छा मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर देखिए, मुद्दा ये है आज का कि अगर आपको ऑप्शन मिले दो चीजों का, अब दोनों में से एक चूज करना है, लाजमी करना है, ये कि मोबाइल की रिंगटोन बड़े आप बड़े सीरियस मोड पे बैठे हुए ना, सीरियस मोड वो कुछ भी हो सकता है, वो मीटिंग है, वो किसी की ताजियत के लिए गए हैं, कहीं नमाज पढ़ने गए, कुछ कुछ हो सकता है ठीक है, और आपका मोबाइल फुल आवाज में बज पड़े फनी टोन में ठीक है, या दूसरा ये कि आप बैठे हुए पेड़ में गुड़गुड़ हो जाए भाई, पेड़ और पेड़ की गुड़गुड़ की आवाज भी ना वो ऐसी नहीं हो, वो हो सेट वॉशिंग मशीन वाली कि आप खुद डर जाएंगे भाई भूचाल तो नहीं आ गया,
1: ये क्या हो गया मुझे?
0: तो अब ये बताएं कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज लाइफ में होने वाली हो तो आप क्या चूज करेंगे, क्या हो जाए और क्या ना हो?
1: मैं सोच रहा हूँ कि ये पेट का गुड़गुड़ बाकी मतलब ना हो, मोबाइल
0: का गुड़गुड़
1: ये हाँ ये तो भाई आफत आ जाएगी उससे,
0: पेट पे गुड़गुड़ा
1: करके और मतलब वहां से हटना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ मोबाइल का तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, लोगों को आदत पड़ गया, आदी हो गए हैं लोग,
0: सही
1: तो ख्याल से
0: इजी वे आउट होगा, मोबाइल मोबाइल चल जाएगा भाई, फौरन साइलेंट पे कर दो।
1: जी जी जी जी ये पेट की गुड़गुड़ स्टमक दिक्कत है ना, ये इससे अल्लाह ताला बस महफूज करे।
0: आपने कह रहा है आपने कह रहा है भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, दूसरों से कहां से बर्दाश्त होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज ऐसा है ना कि फौरन आदमी को दूसरे मोड पे कर देता है बिल्कुल,
0: चले भाई
1: अपना जो काम का मोड है वो बिल्कुल रोक देता, बोलता इग्नोर करो भाई बस।
0: अच्छा चले भाई मोबाइल बर्दाश्त हो जाएगा, पेट बर्दाश्त नहीं होगा। चले अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके साथ खेलते हैं बॉलीवुड ट्रिविया, यानी कि हम आपको गाने सुनाएंगे, आपने हमें उनका टाइटल बताना है ठीक है,
1: कोशिश करते हैं थोड़ा एक दो।
0: चले जी ये रहा हमारा, एक मिनट का टाइम होगा, सिर्फ गाने का नाम बताना है आपने ठीक है,
1: इजी देना थोड़ा ताकि हम लोग के 90 के थोड़ा सा
0: इजी है, ये इजी है ठीक है, ये इजी वाले। चले जी अब आपको देते हैं ये वाला गाना, ये वाला तो गाना तो सबने सुना है भाई, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
2: मौसम मौसम था सुहाना बड़ा, मौसम मौसम मैंने देखा उसे,
0: आर माधवन का गाना है।
1: नहीं नहीं नहीं माफ करें भैया, ये
0: अरे भाई बहुत मशहूर गाना है, आर माधवन का गाना है, सैड गाना, रो रहा होता बेचारा।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं बस इससे आगे जाएंगे।
0: अरे भाई आगे तो नहीं जा सकते, एक गाना अगर नहीं बचाना तो आगे नहीं जा सकते ना,
1: थोड़ा
0: सुने शायद कुछ याद आ जाए।

0: अच्छा बताएं
1: हम अंडे लेके
0: हम अंडे लेकर ऑमलेट बनाएंगे पेट भर के खाएंगे
1: ऑमलेट बना के खा जाएंगे गर्मी गर्मी है भाई
0: रईस भाई हम अंडे लेंगे हम फार्म बनाएंगे फार्म उन अंडों से

0: अंडे निकलेंगे, चूजों से मुर्गियां बनेंगी, मुर्गियां और अंडे देंगे।
1: अभी खाब देखना शुरू कर दे भैया, बस पता चल
0: अंडे लेके जाएंगे। बड़े ही बिजनेस रईस भाई, आपके नाम के ऊपर सूट कर गया अंडा। देखिए अम्मी जान कहती थी कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हम अंडे लेंगे, अंडे से चूजे निकलेंगे, चूजे से मुर्गियां बनेंगी, मुर्गियां फिर अंडे, फिर हम बेचेंगे,
1: शादी करेंगे, बीवी लाएंगे, बच्चे होंगे, फिर बच्चे को हुक्म देंगे, ये करो वो नहीं करेंगे, फिर बस सही है। वो चिल्ली की तरह बस उसमें ख्याली पुलाव पकाने में,
0: चले अंडे का ऑमलेट बना के खाएंगे, चले अंडा तो मिल गया, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रईस भाई अरे देखें,
1: बात करना चाहता था, थोड़ा थोड़ा बात करके टाइम पास हो जाता है।
0: कोई नहीं रईस भाई, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं कि नहीं?
1: आप ऐसे उसमें जिसका मतलब मूवी में बहुत कम देखा हूँ, शायद बस कहीं साइड रोल में का दो देख लिया होगा, तो ये सब लोगों के नाम, हम लोग तो बस ये खानों के उसमें थोड़ा सा रहते थे और बाकी उसमें थोड़ा सा कमजोर थे।
0: चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे।
1: भाई से पहले पूछा था आपने, इसके पहले तो मैंने गाने का नाम लिख के भेज दिया, वो थोड़ा उन्होंने मतलब एक तो बताया था और एक का जो कंफ्यूज थे, तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई फिर आपने अभी और अपना जारी रखना है गेम, तो बताना।
0: नहीं नहीं, वैसे जो आपने नाम लिखकर भेजा था ना, वो नहीं था गाना, वो नहीं है, वो नहीं है। आपने आपने आपने लिखा था आशिक बनाया, वो नहीं है, गाना दूसरा है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे फिर इसका मतलब थोड़ा आता है।
0: अच्छा, इमरान हाशमी के गाने जो है वो मिलते जुलते सबको सबको मूवी याद आ जाती है, उनकी उनकी शक्ल याद आ जाती है गाना सुनकर, लेकिन नाम में पता नहीं क्यों लोग गड़बड़ कर जाते हैं।
1: हाँ, वो ये जो सिंगर हैं इनका नाग में गाने वाला,
0: हिमेश रेशमिया, अरे भाई अपने अपना एरा गुजारा उस बंदे ने, अपना एरा गुजारा। एक वो एक हाइप आती है, हर हर सिंगर की एक हाइप आती है, वो उनका टाइम था।
1: हाँ था एक टाइम, तो बहुत बहुत जैसे एक टाइम था हमारे हमारे इलाके में अताउल्ला खान खेलवी का बहुत ज्यादा, देखो वो टेप रिकॉर्डर में जो देखो वही उन्हीं के
0: सेट गाने। अताउल्ला खान तो भाई, क्या याद दिला दिया आपने मुझे,
1: अच्छा सिला दिया तुझे, अरे ये अल्लाह, मैं देखता था यार जिधर देखो उधर इतना ना, उसको पूरा लोग बोलते थे हकीकत पे एकदम है ये बंदा, इसके साथ में ऐसा हुआ वाकई,
0: वो कुछ था। हाँ, उनके गानों में कुछ होता था।
1: हाँ, बच्चे थे हम लोग उस टाइम, तो बड़ा उससे मतलब लोगों की कहानियां सुन के और उनका ये मतलब
0: होता था। हाँ होता था, होता था। हाँ सही बोल रहे हैं,
1: उनका भी तसन था लोगों पास।
0: चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके,
1: बहुत शुक्रिया, ओके, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।

0: साथियों आप सुन रहे हैं FM 107 और FM 107 पर इस वक्त शो चल रहा है कौन सा सन एंड साउंड चल रहा है और आपसे ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं तो मैसेज की तरफ अगर मैं आऊं तो क्या कह रहे हैं भाई रिंगटोन गोलमाल भी गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे हमादर हमाद भाई रिंगटोन तो अच्छी है भाई मुझे तो अच्छी लगी है अच्छी है नॉट एम्बैरेसिंग गोलमाल है भाई सब गोलमाल है हाँ अच्छा ये वाली रिंगटोन ना सुनकर वो याद आ रहा है वो हेरा फेरी वाला सीन था ना मूवी थी हेरा फेरी उसके अंदर जब भी सुनील शेट्टी से कोई झूठ बोलता है तो सुनील शेट्टी को ना वो आवाज़ सुनाई देती है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अच्छा भाई एहतराम भाई ने भी मैसेज भेजा है और एहतराम भाई कह रहे हैं कि भाई पेट में बड़ी गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़ वाली जो चाय पीकर वाली गुड़गुड़ होती है ना अच्छा चाय पीकर होने वाली गुड़गुड़ वो लैक्टोस इंटॉलरेंट या मिर्चे इंटॉलरेंट वो वाला नहीं बोल रही मैं बस एक गुड़गुड़ होती है जो बिना किसी वजह की होती है चलो एक तो हो जाता है ना कि आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाए वो वाली गुड़गुड़ नहीं एक होती है वो अनवांटेड गुड़गुड़ होती है जो वो ना भूख से होती है ना वो कोई ख़राब खाना खाने से होती बस वो होती है पता नहीं कहाँ से आ जाती है वो तो वो भी एक गुड़गुड़ होती है टाइप होती है गुड़गुड़ की अच्छा भाई अगर मैसेजेस की तरफ जाया जाए तो मैसेजेस की तरफ जाया जाए अच्छा साथियों मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि हम लोग जो है वो बॉलीवुड ट्रिविया भी खेल रहे हैं साथ साथ तो अगर कोई बॉलीवुड में भी इंटरेस्टेड है कोई गाने पहचानने में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर हमें कॉल करें 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल 443-443-77 पे आप कॉल कर सकते हैं हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया भी खेल सकते हैं मैं आपको सुनाऊंगी गाना गाने को आपने पहचान कर मुझे बताना है कि ये कौन सा गाना है यानी कि उसका टाइटल बताना है अब भाई इतने आसान आसान गाने मैंने चलाए ये कोई नहीं बता पा रहा आप सोचो हिमेश रेशमिया का गाना हो अपने टाइम का एक भाई नाम रह चुका है चलो हिमेश रेशमिया सिंगर से नहीं याद आ रहा लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको जैसे आप सुनते हो ना आपको मूवी और आपको एक्टर याद आ जाता है तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने गाना चलाया था तो वो सबको याद आ रहा है कि इमरान हाशमी का गाना है लेकिन भाई ये तो बताओ कि गाना कौन सा है गाने का टाइटल केड़ा है गासी तो भाई हमारे पास कॉलर दे दनादन कॉल कर रहे हैं कॉलर से जान चलते हैं अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी
1: कैसी हैं
0: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हैंगा मैं तो आप बताएं कौन बात कर रहा है
1: अदिल बात कर रहा हूँ
0: अदिल भाई अरे वाह मैसेज से निकल के कॉल पे वाह वाह क्या तो टैलेंट है क्या तो टैलेंट है अदिल भाई कैसे
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक
0: अच्छा भाई ये बताएं कि क्या क्या मुसीबत सर पे लेना पसंद करेंगे अपनी पसंद से
1: मुसीबत मेरे ख्याल से मोबाइल वाली मुसीबत जो है ना वो ठीक रहेगी
0: मोबाइल वाली
1: तो हाँ वो मुसीबत आप कभी भी इसको साइलेंट कर सकते हो
0: सही लेकिन जो पेट वाली मुसीबत है उसको ना लेना चाहूंगा
1: पेट वाली मुसीबत जो है ना उसका नहीं कुछ कह सकता
0: उसका उसका मामला ऐसा है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती
1: वो किसी के कंट्रोल में नहीं है उसको कोई नहीं रोक सकता
0: बस ये तो मामला है देखिए डर के आगे जीत है डर के आगे जीत है भाई ऐसा मामला हो भी ना तो हम कहते हैं देखो भाई नेचर है हम कुछ नहीं कर सकते देखिए मैं बहाना बता रही हूँ
1: आपने मुझे वो सॉरी आपने मुझे वो भेजा टाइटल लेकिन उसमें से कौन कौन है ये तो मुझे नहीं पता चलेगा ना
0: टाइटल भेजा है टाइटल अच्छा देखो इसे कहते हैं देखें ये देखें जो सबसे भारी भरकम आपको नजर आ रहा है ना जो सबसे माशाल्लाह से खाते पीते घर से नजर आ रहे हैं बस वो ही है
1: तो ये उनकी पुरानी है ना
0: ये कितनी पुरानी होगी अब ये तो मुझे याद नहीं भाई कजिनी से पूछ रहे हैं कि पुराने और नए का बताओ वाह वाह वाह आदिल भाई वाह ये हाँ कुछ कुछ थोड़ी बहुत हो गया इतनी भी रीसेंट नहीं है लेकिन यही है हमारे पास तो यही है भाई
1: अभी 30 के राउंड बोर्ड में तो होंगे ना सर
0: अब मैंने कभी सर्वर अच्छा जिनको नहीं समझ में आ रही बात कुछ लोग डिस्कनेक्टेड हो गए होंगे क्योंकि उनको बात समझ में आ रही है अच्छा बैकग्राउंड ये है कि आदिल भाई ने पूछा था कि मुझे सर्वर भाई को देखना है तो मैंने एक लॉजिकल सी बात थी, मैंने जैसा कि एक है कि हमारे आप सोशल मीडिया पे भी हमें कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं @FM107 कतर पे आप जाएंगे ना रिसेंटली, चले आपको रिसेंटली सरवर भाई देखने ना, आप @FM107 कतर के सोशल मीडिया पे आप लिखें @FM107 कतर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लिखेंगे ठक करके आपको सब कुछ मुयस्सर हो जाएगा। तो सरवर भाई आपको वहां मिल जाएंगे रिसेंट वाले जो छुट्टी से पहले वाले थे। तो भाई ये बताएं हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे?
1: हाँ जी जरूर खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे।
0: चलिए भाई आपका, आपको दिया जाएगा 1 मिनट का टाइम और उस 1 मिनट के टाइम में आपने हमें बताना है कि कितने, देखते हैं आप कितने कितने सॉल्व कर सकते हैं, आप हमारे ये जो आंसर है कितने दे सकते हैं, ठीक है?
1: ओके
0: ये आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।

0: झलक दिखला गया।
1: अरे भाई झलक दिखला गए, चले भाई वेरी गुड हो गया। अच्छा ये कौन सा वाला है, ये वाला बताएं।
2: मेरा चैन वैन सब उजड़ा
1: था। बड़े शौकीन लग रहे हैं आप तो। अच्छा ये वाला कौन सा, ये वाला
2: को भी है खबर,
0: शाहरुख खान का,
2: मुझको भी।
1: शाहरुख खान सॉन्ग का नाम नहीं है ना, सॉन्ग
0: नहीं।

0: तभी अलविदा ना कहना।
1: अरे भाई ने पहचान लिया भाई, नहीं कह रहे अलविदा, नहीं कह रहे आपको, लेकिन आपने 3 का स्कोर कर लिया है तो आपके लिए तालियां तो बनती हैं। आज के टॉप स्कोरर है भाई, आज के टॉप स्कोरर, इज्जत दो, इज्जत दो। वेरी गुड, वेरी गुड।
0: थैंक यू।
1: जिस रफ्तार से आपने कजरारे को पहचाना ना, आए हाय हाय हाय हाय, पता चल गया कि ऐश्वर्या राय को पसंद करने वाली शख्सियत है।
0: वो इसीलिए पहचाना, इससे पहले जो भाई को पता नहीं चल रहा था ना, तो मुझे पता चल गया था, तो मुझे पता था आपने यही कंटिन्यू करना है।
1: अरे अरे भाई, चीते निकले ये। अच्छा जी, छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा है छोटे। अब देखो नेक्स्ट के साथ कैसे खेलती हूँ मैं। चले जी, अपना ढेर सारा क्यों भाई, ये अब मुझे फिर याद दिला दिया, कोरमा खाने का तो दिल कर रहा है, चले कोरमा खा के फिर वही पेट की वही हालत होनी है, तो सोचेंगे पहले कितना कितना हम जो है ना डैमेज ले सकते हैं कोरमे से, पहले ये सोचेंगे फिर कोरमा बनाएंगे। चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तो भाई आप लोगों की कॉलें मुसलसल जा रही हैं, एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह
1: जी, कैसे हैं आप? वैसे मुझे तो नाम आपका याद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको बता दें।
2: जी यूसुफ बात कर रहा हूँ।
1: यूसुफ भाई आ गए हैं आप रिकॉर्ड कायम करने?
2: नहीं नहीं नहीं, जस्ट खेलने के लिए, जस्ट रिकॉर्ड तो बहुत है यूज करने वाले।
1: ओह माय गॉड, देखिए जो हम्बल इंसान होता है ना, उसकी पहचान ही होती है, दे डोंट ब्रैग अबाउट देयर सेल्फ। वो जो अकलमंद लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को थोड़ा सा यू नो, ये एक स्टाइल है दूसरों से तारीफ करवाने का।
2: नहीं नहीं,
1: चलें यूसुफ भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
1: यूसुफ भाई ने वैसे तो अपना जवाब दे दिया था कि भाई मुझे जो ना रिंगटोन मैं डिफॉल्ट पे रखता हूँ, तो अगर मेरी कहीं रिंगटोन बज भी जाए तो मुझे कोई एम्बैरेसमेंट ना होगी।
2: जी जी,
1: तो भाई ये अच्छा ऑप्शन
2: है। अच्छा नहीं लगता है, वो जो है बस वही है, वो भी लो वॉइस पे रखता हूँ बस।
1: बड़े बड़े सुलझे हुए इंसान है यूसुफ भाई। यूसुफ भाई पता नहीं क्यों आपकी आवाज़ सुन के भी ना मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत कोई सीरियस बंदा होगा।
2: नहीं नहीं ऐसा नहीं
1: ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, कुछ लोगों का बात करने का तरीके का ऐसा होता है ना, या आवाज में भी कुछ ऐसा ठहराव होता है कि उनसे जब आप बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा बहुत बहुत बहुत बहुत सीरियस किस्म का बंदा, सीरियस मोड वाला।
2: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं।
1: चलें जवाब तो आपने पहले ही दे दिया था हमें, अब आपके साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेल लेते हैं, क्या कहते हैं? चलिए जी यूसुफ भाई, आज का हमारे टॉप स्कोरर रहे हैं अभी तक के आदिल भाई, और आदिल भाई ने स्कोर किया 3 का, तो चलें यूसुफ भाई तैयार?
2: जी जी
1: चलें जी, 1 2 3 एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।

0: वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा ये वाला कौन सा है? अरे वाह वाह वाह. अच्छा ये वाला कौन सा है? ये वाला
1: मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम मैंने देखा उसे हुआ
2: ये रहना है तेरे दिल में.
0: ये तो मूवी का नाम है. रहना है तेरे दिल में का एक सॉन्ग है.
2: सच कह रहा है.
0: अरे भाई वाह हो गया वाह हो गया वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह. और ये एक आखिरी गाना ठीक है. नहीं ये वाला नहीं ये वाला.
1: जिस पल सूरज रोज सवेरे उगता
2: ये फिल्म जिस्म का है.
0: और ये एक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स है.
1: इस धरती.
0: अरे टाइम खत्म हो गया हमारा.
2: खत्म हो गया. ये फिल्म जिस्म का है.
0: फिल्म आपने बिल्कुल सही पहचानी है लेकिन हमें गाने का नाम चाहिए था तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो हमारा हो गया तीन का स्कोर. नॉट बैड विच इज गुड विच इज गुड गुड गुड गुड गुड. क्लैपिंग क्लैपिंग. वैसे हमें ये था कि आप चार का स्कोर तो कर ही जाएंगे. अच्छा जो गेम खेलने वाला होता है ना उसके साथ मसला यही होता है कि लोगों को ना उसके साथ एक्सपेक्टेशन बहुत जुड़ जाती है कि भाई ये आ गया ना मैदान में ये तो इतना ही करके जाएगा स्कोर. अच्छा अच्छा प्लेयर होना भी एक मसले का काम है कि नहीं? ये भी एक मसला है. चलें यूसुफ भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अच्छा प्लेयर होने में भी मसला है. मतलब इतना इतना प्रेशर आ जाता है. सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है भाई. तो भाई ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा हाँ ये रहे हमारे पास ऑन एयर और ये गए ऑन एयर. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम जी. मैं उमर बंगट बात कर रहा हूँ.
0: हाँ जी उमर भाई कैसे हैं आप?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह कैसे
0: हैं? अल्लाह का करम है अल्लाह की रजा में राजी हैं. ये बताएं कि कौन सी एम्बैरेसमेंट कौन सी मुसीबत खुद अपनी मर्जी से सर पे लेंगे?
3: नहीं जी ये बाकी बात मनीष से कल मैं कर रहा हूँ. मनीष भाई की बात करो. ये FM है मेरा पहली बार फोन करना किसी भी रेडियो स्टेशन पे. फर्स्ट टाइम है.
0: चलिए गुड हो गया.
3: ओके जी मनीष से बात कर लीजिए.
0: जी जी
4: हरे जिला प्रणाम है.
0: हेलो कौन है हमारे साथ?
4: जी मनीष जी.
0: मनीष भाई. मनीष भाई कैसे हैं?
4: जी ठीक है जी
0: बिल्कुल ठीक ठाक है. तो मनीष भाई हमने एक सवाल किया था. आपने सवाल सुना था?
4: जी जी सुना था.
0: तो मुझे बताएं कि कौन सी मुसीबत सर पे लेंगे? या मोबाइल फोन की लेंगे या पेट में वॉशिंग मशीन चलने की लेंगे?
4: मोबाइल फोन चाहिए.
0: देखिए कोई भी खतरों का उस लेवल तक पहुंचना नहीं चाह रहा. पेट से कोई निमटना नहीं चाह रहा. हर कोई कह रहा है कि बस आसानी से मोबाइल फोन से जान छूट जाएगी. चले जी. अच्छा मनीष भाई ये तो हो गया हमारा सवाल का. अब हम गेम खेलेंगे बॉलीवुड ट्रिविया ठीक है? तो बॉलीवुड ट्रिविया में आपको दिया जाएगा एक मिनट का टाइम और उस एक मिनट के टाइम के अंदर अंदर आपने पहचानना है कि आखिरकार जरा बताओ कि आप जो हो वो एक मिनट के अंदर अंदर कितने सॉन्ग्स गेस कर सकते हैं. आपने हमें नाम बताना है सॉन्ग्स का ठीक है? चलें जी चलें जी. आपको आपका टाइम शुरू होता है नाउ और बताइएगा ये कौन सा वाला गाना है.

0: अच्छा अगर अगर अगर कोई बच्चा घर नहीं जाता, पूरी रात बाहर घूमता रहता है, तो वो जब सुबह के टाइम घर जाता है तो अम्मा उसे क्या कहती हैं? बहुत ही ज्यादा क्या हो गए हो? क्या हो गए हो? क्या हो गए हो?
1: बहुत ज्यादा खाना पड़ता है मैम।
0: बहुत मैं तो हिंट दे रही थी, मैंने कहा चले ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा आपको। चलें, क्योंकि आपने हमें पहली दफा कॉल किया है तो आपको एक और गाना ठीक है, एक और गाना, क्योंकि आपने पहली दफा कॉल किया तो हम नहीं चाहते कि आपका दिल टूटा हुआ जाए। अच्छा ये वाला गाना बताइएगा, ये आतिफ असलम का बहुत मशहूर गाना है, ठीक है?

0: ये नहीं याद आया
1: जी मैम।
0: अरे चले कोई बात नहीं, कल फिर से कॉल कीजिएगा।
1: जैसे बोल कोशिश किया हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, मालूम है गाना तो सुना हूँ।
0: चले कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, हम नेक्स्ट दफा फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अक्सर अगर ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमने सुनी भी होती है लेकिन जब ऑन एयर आते हैं तो बौखला जाते हैं, तो वो याद नहीं आती चीज। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, गोभी दया फुल्लो लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, ठीक है, और ब्रेक के बाद वापस आकर जो है ना वो अपना गेम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो भाई, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107, दिल से देसी। तेरी ओर हाय हाय हाय हाय हाय, वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा। देखिए दिल का मामला जो है ना जोरों शोर से होना चाहिए, और दिल का मामला हो और राहत फतेह अली खान की आवाज और श्रेया घोषाल साथ में शामिल हो तो भाई ठा करके लगता है, ठा करके। आप सुन रहे हैं FM 107, दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर।

0: या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: तो भाई वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड। और इस वक्त अगर FM 107 की घड़ी की तरफ देखा जाए तो हमारी घड़ी कितने बजा रही है भाई, 12 बज के कितने चश्मे का नंबर चेंज कराना चाहिए मुझे, 12:42 हो रहे हैं ऑन द क्लॉक, 12:42। तो भाई आप लोगों से ब्रेक पे जाने से पहले पूछा गया था, एक तो हमारा बॉलीवुड ट्रिविया चल रहा है, देखिए हम दो चीज़ें दो एक के साथ एक फ्री चल रहा है, एक तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई ये बताओ कि जिंदगी में एम्बैरेसमेंट तो सबको होती है किसी ना किसी चीज़ पर, और कुछ एम्बैरेसमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आप बाद में जब उन्हें सोचते हो तो आपको हंसी आती है। कुछ मामला दोस्तों के साथ ऐसे होते हैं, कुछ इवेंट्स दोस्तों के साथ ऐसे होते हैं कि इनको सोच के आप मुस्कुराते हो, कुछ कजन के बीच में बैठकर होते हैं, कुछ घर वालों के साथ होते हैं, लेकिन वो बातें ऐसी होती हैं जो हल्के फुल्के मोड़ पर जब अगर आप उन्हें बाद में सोचते हो तो आपके चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती है। उनके अंदर से एक चीज़ ये होती है कि आपका मोबाइल एक फनी रिंगटोन पर हो और वो कहीं ऐसे अनवांटेड जगह पे बज पड़े जहाँ पे सीरियस मोड चल रहा हो, बाद में जब आप कुछ सालों बाद से याद करते हो तो आप खूब हंसते हो, कहते ये क्या हरकत हुई थी भाई, क्योंकि आपको वो रिंगटोन फनी एक तो थी आपको लोगों के एक्सप्रेशन भी याद आ रहे होते हैं साथ साथ। एक तो ये सिनेरियो कि अगर आपका रिंगटोन फनी वाला कहीं सीरियस मोड में आप सीरियस माहौल में बैठे हुए और वहाँ पे बज पड़े, एक तो मसला ये कि आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप ये ऑप्शन चूज करोगे कि मोबाइल बज पड़े, या दूसरी चीज ये कि आपके पेट में से आप कहीं बैठे हुए हो सीरियस जगह पर और आपके पेट में से गुड़गुड़ की आवाजें आना शुरू हो जाएं, कोई मीटिंग चल रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई रिश्ते की बात चल रही है किसी की, अल्लाह माफ करे किसी की ताजियत के लिए गए हो, तो फिर भाई ये मामला कैसे, पेट गुड़गुड़ कर रहा है आपका और इतनी जोर से गुड़गुड़ कर रहा है कि लोग आपको पलट पलट के देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कोई सुनामी आया है पेट के अंदर, कोई अर्थक्वेक आया है, कोई क्या क्या चल रहा है, मामला क्या चल रहा है, ऐसी भी क्या जल्दी है। तो इन दोनों में से आप कौन सी सिचुएशन कहोगे कि भाई मेरे लिए ये हो जाए ना तो बेहतर है, दूसरी वाली ना हो, ना ना ना ना, ना। जरा हमें मैसेज करके बताएं 666-22107 पर, मैसेज करने के लिए नंबर है 666-22107, और चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करने के लिए नंबर है, कॉल करने के लिए नंबर क्या है भाई गजनी, जरा आप अपना दिमाग लड़ाएं, 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल, क्या नंबर है 443-443-77। मुझे लगता है मुझे ना वो डायरी रखनी चाहिए अपने साथ गजनी वाली, वो भी बोलो डायरी रखना अच्छा काम है, पता है डायरी रखना बड़ा अच्छा काम होता है कि आप जो ना डायरी में सब कुछ लिख लेते हो। अच्छा मुझे सिर्फ ऐसा मसला है कि मुझे डायरी में लिखना पसंद है, वैसे मोबाइल में ना वो नोट्स वगैरह होते हैं, स्टिक नोट्स वगैरह होते हैं कि आप उसके अंदर अपना जो है ना जो भी आपको मेमोराइज करनी चाहिए वो आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे पता नहीं कि अभी वो पेन और पेपर वाली आदत है, शायद स्कूल में इतने तो टीचर ने टॉर्चर किया है लिखने पर कि आज भी मुझसे लिखाई वाले काम ही होते हैं, वो भी पेंसिल और पेपर के साथ, पेंसिल पर्टिकुलरली, पेन भी नहीं चाहिए पेंसिल चाहिए, कुछ मसला है। चले भाई कॉलर की तरफ चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ?
3: शम्सुस्समद। अब्दुल समद।
2: अच्छा अब्दुल समद, ओके अब्दुल समद, अब्दुल समद कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं?
2: अल्लाह का करम है, अल्लाह की रजा में राजी हैं। अब्दुल समद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप या तो फिर पहली दफा कॉल कर रहे हैं या बहुत देर बाद कॉल कर रहे हैं?
3: पहली दफा कॉल कर रहा हूँ।
2: तो भाई
3: लेकिन मैं आपके प्रोग्राम वगैरह सुनता था, मैं कतर में ऑलमोस्ट कोई 4-5 महीने हुए, तो आपके प्रोग्राम मैंने जस्ट ऐसे एज अ ड्राइव करते हुए सुने हैं।
2: तो भाई आपको कैसा लगा प्रोग्राम?
3: अच्छा लगे इसलिए तो सुनते
2: हैं। शुक्र है, मैंने कहा
3: कुछ नया सुनने को मिलता है।
2: बड़ा पता है आपको, पता है मैंने कितना दिल पे यूं करके पत्थर रख के सवाल पूछा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था अभी सामने से कुछ आएगा, अभी सामने से कुछ ऑन एयर कुछ आप ऐसा पूछ लो ना तो दिल धक धक धक मिनी हार्ट अटैक होने लगता है आपको। अच्छा ये बताएं अब्दुल समद कि कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि आप अभी नए आए, आपने मुझे बताया कि आप जो हैं वो आपको कुछ महीने हुए आए हुए, ठीक?
3: जी मैम।
2: कतर कैसा लग रहा है आपको? एक तो मसला ये ना कि आप आए भी गर्मी के मौसम में ना, थोड़ा अच्छे मौसम में आते ना,
3: सब कुछ है, इन लोगों ने छोटा सा मुल्क है सब कुछ है, लेकिन ये है कि गर्मी बहुत है यहाँ पर।
2: हाँ गर्मी, अभी आप टेंशन नहीं लें, अभी अगस्त का महीना गुजरने देखें, हर चीज की ना हर जगह की अपनी एक, मैं मेरा मानना है, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव होकर चलती हूँ जिंदगी में, तो क्योंकि नेगेटिव होने के लिए वैसे दुनिया में जिंदगी में चीज़ें बहुत हैं, तो हमने कहा पॉजिटिव ले लेते हैं। मामला ये ना कि कतर को एक तो सहरा है, ठीक है, सहरा में ऑब्वियसली ये चीज़ है, और कुछ हमारा खजूरों वगैरह का मौसम भी होता है जिसमें खजूरें पकनी होती हैं कुदरती तौर पर। तो ये जो एक नहीं मैं कहूँगी दो से तीन महीने होते हैं ना, ख़ास तौर पर जुलाई और अगस्त का महीना, ये थोड़ा भारी गुजरता है क्योंकि इसके अंदर कुदरती चीज़ें अपनी अल्लाह ताला ने कुदरत रखी हुई है। लेकिन ये जो अगस्त के बाद वाला महीना आएगा ना, मार्क माय वर्ड्स,
3: लेकिन मैं और सोचता हूँ, मैं कहता हूँ इन लोगों के पास इतना पैसे लेकिन ये दरख्त नहीं लगाते, दरख्त होने चाहिए
2: मेरे भाई।
3: यहाँ पर दरख्त नहीं होते लेकिन दरख्त हैं, लेकिन बहुत कम है।
2: अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, सहरा के वर्ड को सुनते के साथ आपके दिमाग में क्या आता है? हाँ, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सहरा का वर्ड सुनते के साथ हमारे दिमाग में क्या आता है? रेतीले पहाड़। वो आप चले ना, वो सी लाइन वाली जगह जो है ना, वो एग्जैक्टली सूट करती है के। और कतर एक्चुअली में, क्योंकि हम तो पैदाइश कतर की है ना, तो हमें पता है कतर कहाँ से कहाँ गया है। और सहरा की मिट्टी में पौधे उगा देना ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, ये जो लगे हुए दरख्त है ना,
3: ये भी के दौर में तो बिल्कुल इजी है।
2: यकीन जाने कि मिट्टी का नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्लाइमेट का भी असर है ना, क्लाइमेट का भी असर है। तो जितना एफर्ट ये माशाल्लाह से सुभानअल्लाह से करते हैं ना, कि जितनी ग्रीनरी लगाई हुई है, यकीन जाने इट्स नॉट एट इट्स मैक्सिमम आई वुड से, लेकिन यकीन जाने उसके अंदर बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है भाई। हमारे पाकिस्तान इंडिया की तो मिट्टी ऐसी है ना कि बीज फेंका और यूं करके खुद ही उग जाता है, कौन देखे उसे। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है, यहाँ पे आप देखेंगे अक्सर वक्त जब आप पार्क्स वगैरह पे भी जाएंगे ना, पार्क्स में आप जाएं तो कितनी ग्रीनरी, मस्त वाली ग्रीनरी नजर आती है,
3: वहीं से तो दिल जलता है, यहाँ पर है यार, और जगह भी होनी चाहिए।
2: तो वो कुछ निजाम के तहत वो चल रहा है, वो इंशाल्लाह और ज्यादा बढ़ेगा। हर चीज को थोड़ा टाइम लगता है। वो अब मैं जब शुरू से देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि भाई, एक दफा मैं एस्पायर पार्क गई थी सुबह सुबह के टाइम, मैं क्या देख रही हूँ वहां पर ना, वो घास के अंदर कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर नुमा कुछ चला रहे थे, वो घास के अंदर कुछ इंजेक्ट कर रहे थे। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, एक दफा देखा, दो दफा देखा, फिर मैंने उस बंदे से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या चीज है? वो कहते हैं ये मिट्टी को स्टेबलाइज करने के लिए उसके अंदर मिनरल्स और जितनी भी क्वालिटी होनी चाहिए स्टैंडर्ड मिट्टी का, वो इंजेक्ट करते हैं बकायदा उसके अंदर। और वो बड़ी मेहनत का काम है भाई, सहरा में आप मिट्टी पूरी पूरी चेंज करो।
3: कतर की जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या कहते हैं हमारी जबान में, खाक का मिट्टी है ना, बहुत कम है जो रेतीली मिट्टी हो, जिस तरह सी लाइन वहाँ पर, मतलब जो रेगिस्तानी मिट्टी जिस तरह के,
2: ये हमें कोशिशों के बाद नजर आ रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये वो वाली मिट्टी नहीं है, ये हमें कोशिशों के बाद नजर आ रही है। अच्छा, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने शुरू से देखा है ना, हमें तो माशाल्लाह से एक, मतलब दो नस्लें तीन नस्लें गुजर गई यहाँ पर, तो हमने कतर को बिल्ड होते हुए देखा है। तो हम कहेंगे नहीं भाई, हमारे लिहाज से हम कह रहे हैं ये फुल ऑन अपनी स्पीड में चल रहे हैं, रातों रात कोई चीज़ नहीं बनती, हर चीज़ को टाइम लगता है। और जितना कतर ने शॉर्ट टाइम लिया है माशाल्लाह से, सुभानअल्लाह से, अपने लेवल पे बहुत हाई फाई टाइम, मतलब बाकी मुल्कों में देख लें।
3: नहीं, वही तो मैंने शुरू में ही कहा, मैंने कहा बहुत सब कुछ है इनके पास, जो नहीं है वो मेरे ख्याल में ये
2: आएगा, आएगा, तो आएगा, आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कमी बेशी है, वो आएगा आएगा वक्त के साथ आएगा।
3: सुरदार लगती है, जिस तरह आप, मैंने सुना आप कराची से हैं, कराची में जिस तरह बिल्डिंग है लेकिन जो नहीं है वो दरख्त है, ऊपर से तो बंदा कहते यार क्या कुछ नहीं, इतनी बिल्डिंगें घर है लेकिन देखो दरख्त नहीं है यार।
2: अच्छा, कुछ जगहें होती है ना मखसूस अपनी भी, अब सिटी के अंदर दरख्त ढूंढेंगे तो वो तो हाँ, आपको मैनग्रोव वाली साइड पे जाना है, मैनग्रोव वाली साइड पे जाना है, मैनग्रोव वाली भी एक साइड है, मैनग्रोव वाली भी एक साइड है कतर में, आप जरा टाइप कीजिए कतर मैनग्रोव, आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया पे जाकर, आप टाइप कीजिए कतर मैनग्रोव, दरख्त भाई मैनग्रोव का मतलब वो ये ना, लोग बहुत जाके पिकनिक वगैरह मनाकर आते हैं,
3: कतर में बहुत से दरख्त देखने में मुझे बहुत पसंद है।
2: चले भाई चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये तो बताएं कि अगर लाइफ में एम्बैरेसमेंट हो, किसी एक चीज को चूज करना हो तो क्या करेंगे? टाइम हमारे पास बहुत कम है तो हम शॉर्ट बात करेंगे, ठीक है? हमारे पास तकरीबन 5 से 6 मिनट हैं, तो आप जल्दी से बता दें एक एम्बैरेसमेंट चूज कर सकते हैं आप, एम्बैरेसमेंट तो है, या तो फिर पेट में गुड़गुड़ की आवाजें हो किसी सीरियस जगह पर बैठकर, या तो फिर किसी सीरियस जगह पर बैठकर मोबाइल फोन आपका फुल वॉल्यूम में फनी टोन में बज पड़े, क्या चूज करेंगे?
3: मोबाइल टोन वाला ले, उसके साथ मैं जाऊंगा।
2: कोई खतरों का खिलाड़ी ना मिला मुझे। आज के शो में कोई खतरों का खिलाड़ी ना मिला।
3: वो बहुत एम्बैरेसिंग है।

0: बात तो सही है,
1: बहाना लगा सकते हैं यार, ये मेरी नहीं है, हौसले लगाती थी यार, वो उसने कोई प्रैंक किया होगा तो उसने तो बंदा कर सकता है, उसमें तो बंदा नहीं कर सकता यार,
0: हाँ,
1: क्या यार
0: हाँ, यही बात है,
1: हंस जाएगा बंदा।
0: लेकिन जिंदगी में एडवेंचर नाम की चीज होनी चाहिए, एडवेंचर नाम की चीज होनी चाहिए, करीब तवा मेरी तवा, ऐसा एडवेंचर नहीं चाहिए। अच्छा चलिए आपके साथ ना बॉलीवुड ट्रिविया खेल लेते हैं जल्दी से, टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया हमारे पास, टाइम टाइम की कमी हो रही, टाइम की कमी।
1: मैं कह सकता हूँ अगर पुराने तो सीटी बाद मेरा स्कोर जीरो ही रहेगा।
0: नहीं पुराने नहीं है, ये 2000 वाले हैं, ये 2000 वाले हैं, 2000 वाले, ये नए ना, नए ना पुराने, ठीक है। अच्छा चलें आपको एक मिनट का टाइम दिया जाएगा, आतिफ असलम को तो पहचान ही लेंगे भाई, इतना भी कौन सा पुराना हो गया, आतिफ असलम के दाढ़ी के बाल भी सफेद नहीं हुए, रुक जाए भाई। चलें 1 2 3 आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।

0: अब क्या पूरा गाना सुनेंगे क्या? सो गए?
1: सुना तो है, बहुत सुना है।
0: आते फसल में इतना भी पुराना ना हुआ। देखो ऐसा ना करीना,
2: तेरा बन बैठा है मेरा जिया।
0: आतिफ असलम
2: जाने क्या हो,
0: अपना भाई, अपना भाई
1: है आतिफ असलम, लेकिन सॉन्ग का नाम है
2: इस पल को मिलके।
1: कोई हिंट थोड़ा सा दे दे।
0: रेस मूवी का गाना है।
2: मैं हूं यहां
0: तू है कहां चले भाई, हमारा टाइम तो खत्म हो गया भाई, हमारा टाइम। चले जाते जाते आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि आप आखिरी प्लेयर हैं। तो ये था पहली नजर में। अरे भाई की कर देता है गोभी दिया फुल्लो, की कर देता है। चले नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह आप एक कॉल का इंतजार करेंगे, कल भी ट्राई मारिएगा, ठीक है? अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, अल्लाह हाफिज। भाई अब जो है ना हमारे जाने का टाइम आ गया है। मुझे कोई खतरों का एक दो के अलावा मुझे कोई खतरों ने एक ही मैं थे और एक और कौन से भाई थे मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था भाई पेट की गुड़गुड़ संभाल लूंगा, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन कोई खतरों का खिलाड़ी ना मिला आज। सबने कहा मोबाइल फोन। चले भाई देखें दोस्तों, आज के चैलेंज की एक बात तो क्लियर हो गई इससे कि इंसान दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकता है, बस अनएक्सपेक्टेड रिंगटोन भी संभाल सकता है, लेकिन पेट के मसलों का हल नहीं संभाल सकता। ये तो क्लियर हो गई। तो भाई अगली बार जब आप किसी सीरियस मीटिंग में हो, किसी एग्जाम हॉल में हो या किसी भी इंपॉर्टेंट जगह पर हो ना, तो भाई अपना मोबाइल साइलेंट करना नहीं भूलना। और हाँ, जहाँ तक पेट की बात ठहरी तो पेट को भी थोड़ा समझा बुझा कर जाना, यानी कि जब किसी मीटिंग में किसी इधर उधर जा रहे हो तो उल्टा सीधा खा पी कर मत जाना, नहीं तो पेट ने बहुत शोर मचाना है, ये किसी की नहीं सुनता। इसको जितना भी समझा लो ये नहीं सुनेगा फिर किसी की, ठीक है? और भाई इसी के साथ आप सुन रहे थे FM 107 पर सफा के साथ सन एंड साउंड। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी में एम्बैरेसमेंट के मोमेंट्स जो आपको हंसाते हैं ना वो बहुत सारे आएंगे, तो बस कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी ये जो हरकतें ना ये वायरल ना हो, क्योंकि आजकल वायरल होने का ज़माना बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो भाई मेरी तरफ से अपना ख्याल रखिएगा, याद रखें फ़ोन का वॉल्यूम कम हो सकता है लेकिन हंसी का वॉल्यूम हमेशा हाई रहना चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और ये भी याद रखें कि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा भाई। तो भाई आज जो ना मुझे अताउल्लाह खान बड़ी शिद्दत से याद आ गए, और ये वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स। वैसे ये गाना मुझे लगता है कि सबको, तकरीबन जितने लोगों ने सुना होगा ना उनको अच्छा लगता होगा। इस गाने के साथ आपको छोड़े चले जा रही हूँ, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। वॉल्यूम थोड़ा हाई करके सुनना,
3: क्यों
0: दिल पे लगता,
3: अच्छा
0: है
3: लगता है। वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है। वक्त मिला तो सोचेंगे, और हमने उसको

0: लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे, और मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है वक्त मिला सोचेंगे, और या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है वक्त मिला तो सोचेंगे, क्यों तू अच्छा लगता है वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
3: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो प्रोग्राम जहां हम खेलों की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे टेनिस के अजीम खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के बारे में। इनफैक्ट उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ जितने भी रिकॉर्ड्स उसने कायम किए हैं टेनिस के दुनिया में और टेनिस के स्पोर्ट में, उसके बारे में भी हम थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम है रिकॉर्ड्स के बारे में, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो नोवाक जोकोविच के पास क्या क्या रिकॉर्ड है उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। नोवाक जोकोविच नाम मॉडर्न टेनिस में अगर हम बात करें तो जाना पहचाना नाम है, इसमें कोई शक नहीं है कि ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स ऑफ मॉडर्न टेनिस। जी हाँ दोस्तों, लीडिंग लेजेंड मतलब समझ जाइए आप कि लीडिंग लेजेंड का मतलब होता क्या है।

कि इक्का दुक्का टूर्नामेंट जीतने का मतलब नहीं है, वो स्टार भी नहीं बनते हैं, वो तो होता है कंसिस्टेंसी की बात। और इस कंसिस्टेंसी कि अगर मैं यहाँ पे यू नो ये वर्ड ये अल्फाज अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी, तो नोवाक जोकोविच एक ब्राइट एग्जांपल है। और दुनिया के जितने भी अजीम खिलाड़ी आए हैं और यू नो उन्होंने अपना जितना भी टैलेंट सबके सामने दिखाया है, तो उन टैलेंटेड प्लेयर्स उन अजीम खिलाड़ियों में नोवाक जोकोविच को शुमार किए जाते हैं। जोकोविच की पैदाइश सर्बिया में, और सर्बिया यूरोपियन कंट्री है, और ऑब्वियस बात है कि टेनिस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर स्पोर्ट अदर देन फुटबॉल। सो जोकोविच ने अपनी मेहनत डिसिप्लिन सब्र और मेंटल स्ट्रेंथ की बुनियाद पर टेनिस की दुनिया में वो मकाम हासिल किया जो बहुत कम प्लेयर्स को नसीब होता है। अच्छा पिछले फ्रेंच ओपन मैं पिछला क्यों कह रहा हूँ, अभी हाल ही में जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट तो ख़त्म हुआ है, इसमें थर्ड राउंड तक पहुँचने में नाकाम रहा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें पूछा गया कि आप क्या अगली दफ़ा फ्रेंच ओपन में खेलेंगे, तो नोवाक जोकोविच ने पता है क्या कहा, आई डोंट नो। दूसरी मरतबा उनसे पूछा गया क्या आप दूसरी मरतबा रोला गारो में आएंगे, तो उन्होंने दोबारा वही जवाब दिया, आई डोंट नो, सर को खुजलाते हुए, यू नो कुछ अजीब तरह से नोवाक जोकोविच जो है लोगों को ही बताया, मीडिया को ही बताया कि उनको भी नहीं पता है कि वो अगली दफ़ा फ्रेंच ओपन में आएंगे, या मैं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ या टेनिस से मैं अलविदा कह रहा हूँ, बस उन्होंने हल्का फुल्का कह दिया कि आई डोंट नो आई डोंट नो। अच्छा ये मैच जो उनको इस मैच में जिनके सामने उनको हारना पड़ा, वो एक ब्राज़ील के नौजवान खिलाड़ी और उनका नाम है फोंसेका। फोंसेका के साथ हारने का मतलब है कि नोवाक जोकोविच थोड़ा सा तो आई थिंक डाउन हो गए हैं, एंड आप बता नहीं रहे हैं मीडिया के सामने या पब्लिकली, ही हैज़ नॉट सेइंग दैट वेदर ही कैन कंटिन्यू विद टेनिस। लेकिन अगर आज मॉडर्न स्पोर्ट्स की बात करूं मैं, तो मॉडर्न स्पोर्ट्स में चंद ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे लेजेंड्स हैं जो कि उम्र का बिल्कुल यू नो उम्र मैंने अपनी उम्र को नज़रअंदाज करते हुए दे आर कंटिन्यूइंग। फुटबॉल में रोनाल्डो मेसी, और यू नो क्रिकेट में अगर बात करूं तो विराट कोहली या रोहित शर्मा, तो इस तरह के खिलाड़ियों के साथ नोवाक जोकोविच भी उस तरह के खिलाड़ी जो कंसिस्टेंसी फिटनेस और एक अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो चल रहे हैं। और आज भी दुनिया के जितने भी नौजवान टेनिस खिलाड़ी हैं तो उनको मुसलसल चैलेंज दे रहे हैं कि आओ खेलो, हारना जीतना ये तो एक पार्ट ऑफ द गेम है। तो इसमें नोवाक जोकोविच को हार का सामना करना पड़ा इन द फ्रेंच ओपन रिसेंटली। उनका नाम आज दोस्तों बता दूं, हार जैसे मैंने कहा हार और जीत एक यू नो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट है, लेकिन उनका नाम आज ग्रैंड स्लैम टेनिस के साथ लाजमी तौर पर जुड़ा हुआ है। हल्के में मत लीजिए नोवाक जोकोविच को, क्योंकि उन्होंने सिंगल्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। सो ये दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आप लोग सुन लीजिएगा, दिस इज जनरल नॉलेज फॉर ऑल योर यू नो स्पोर्ट्स एक्सपर्टीज या स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज जिनको भी पसंद है, ये बात जो है ये जो फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था नोवाक जोकोविच ने। 25वां टाइटल जो है आज भी वो तलाश कर रहे हैं कि 25th टाइटल मैं जीतूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है उनसे। अच्छा ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी प्रेशर हैंडलिंग और डेकेड्स तक टॉप लेवल परफॉर्मेंस देने की मिसाल है। यही बात है कि लेजेंड हमेशा यू नो इक्का दुक्का मैच जीत के हम उसको लेजेंड नहीं कह सकते या स्टार हम नहीं कह सकते हैं। जोकोविच की पैदाइश 22 मई 1987 को बेलग्रेड में हुआ। उनका बचपन आसान नहीं था। जब वो छोटे थे तब सर्बिया सियासी और माशी मुश्किलात का सामना कर रहा था, और इस मुश्किल माहौल के बावजूद दोस्तों जोकोविच के वालिदैन ने उनकी सलाहियतों को पहचाना और उन्हें टेनिस की तरफ रागिब किया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने रैकेट उठाया और कोर्ट्स पर अपनी काबिलियत का इजहार करना शुरू कर दिया। टैलेंट को कभी छुपा नहीं सकते आप, टैलेंट को छुपाना मुश्किल है। अगर किसी बच्चे में टैलेंट है वो उनके माँ बाप ही देख लेते हैं, या पड़ोसी कोच होते हैं तो वो देखते हैं, या कोई भी उनके रिश्तेदार नोट कर लेते हैं भाई इस बंदे में तो दम है। तो जोकोविच वॉज वन ऑफ द काइंड ऑफ अ प्लेयर
जिनको उनके पेरेंट्स ने नोट किया कि भाई इनमें कुछ तो बात है। जोकोविच बचपन से ही गैर मामूली फोकस रखते थे। जब उनकी उम्र सिर्फ चंद साल थी तो कोचेस ने महसूस कर लिया था कि ये बच्चा मामूली टैलेंट नहीं रखता। उनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त थी और वो रोजाना घंटों प्रैक्टिस करते थे। हर सेशन के बाद वो अपनी कमजोरियां नोट करते और उन पर काम करते। इसी आदत ने उन्हें बाद में दुनिया का नंबर वन प्लेयर बनने में मदद दी। आज भी मैं बता रहा हूँ, आप भी सोशल मीडिया में अगर नोवाक जोकोविच को थोड़ा फॉलो करेंगे तो उनकी जितनी भी बातचीत है, कई पॉडकास्ट हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट भी मैंने सुना और देखा भी कि जोकोविच की कुछ बातें जो हैं इज नथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी और इट्स रिलेटेड टू हिज मेंटल प्रिपेयर्डनेस, कि किस तरह वो बैटल यानी मैच को किस तरह वो लेते हैं। जैसे मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बता रहे थे, ब्रीदिंग कि मैच पॉइंट के दौरान वो अपने आप को वो जो एक मिनट दो मिनट का जो वो ब्रेक, उसमें वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके। इनके साथ सिर्फ टैलेंट और टेक्निक की बात नहीं है दोस्तों, इनके साथ भी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी या ना जाने तमाम चीज़ें हैं जिससे जोकोविच को आज जोकोविच बनाया। प्रोफेशनल सर्किट में कदम रखने के बाद जोकोविच को शुरू में काफ़ी चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ा, ये होता है, स्ट्रगल तो है ही, लाजमी है। और उस वक्त टेनिस की दुनिया पर दो अजीम नाम हुक्मरानी कर रहे थे, रॉजर फेडरर और राफेल नदाल। फेडरर अपनी एलिगेंस और एफर्टलेस गेम के लिए मशहूर थे, जब उनके नदाल क्ले कोर्ट्स, यही फ्रेंच ओपन में क्ले कोर्ट्स के बादशाह समझे जाते थे। बहुत से लोगों को लगता था कि इन दोनों के दरमियान किसी तीसरे खिलाड़ी के लिए जगह बनाना नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों जोकोविच आ गया। आज जोकोविच ने सबको गलत साबित कर दिया था, तो ही बिकेम द थर्ड प्लेयर इन दैट ट्रॉयका, इन दैट पिरामिड। 2008 में जोकोविच ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में कामयाबी हासिल की, हिज फर्स्ट विन इन ग्रैंड स्लैम, और ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। अब आपको मैं बता दूं कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है। ग्रैंड स्लैम दरअसल चार टॉप टेनिस इवेंट्स हैं जिसको हम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कहते हैं। आप समझ लीजिए कि बेसिकली आई वुड से कि मास्टर्स के बाद अगर पीएचडी है तो ये पीएचडी टूर्नामेंट्स समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलियन ओपन फॉलोड बाय द फ्रेंच ओपन जो कि मई में और फ्रेंच यानी पेरिस में होता है, और थर्ड जो है विंबलडन जो कि इंग्लैंड में है, लंदन में, और फोर्थ नंबर पर यूएस ओपन जो कि न्यूयॉर्क में। सो ये टाइटल्स, ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स है, इसको जीतने का जो रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा सिंगल्स, वो नोवाक जोकोविच के पास है, 24 इन नंबर। तो उनका पहला, अगर मैं देखूं कि सक्सेस वाज इन 2008, ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, और इस जीत ने दुनिया को बता दिया कि टेनिस में एक नया सुपरस्टार आ चुका है। इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में लगातार बेहतरी आती गई और वो एलिट लेवल के खिलाड़ियों में शामिल हो गए। तीन साल के बाद यानी 2011 का साल जोकोविच के करियर का सबसे यादगार साल माना जाता है। यहाँ इस साल उन्होंने लगभग हर बड़ा टूर्नामेंट जीता और फेडरर और नदाल दोनों को कई मर्तबा शिकस्त दिया, और यहीं पर एक्सपर्ट समझने लगे कि हाँ, दिस इज द प्लेयर हु कैन रियली चैलेंज द टू ऑलरेडी सुपरस्टार्स, फेडरर एंड राफेल नदाल। जोकोविच की फिटनेस, मूवमेंट, डिफेंसिव स्किल्स ने टेनिस के स्टैंडर्ड्स ही बदल दिए। कोर्ट्स पर उनकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बेहतरीन थी कि नामुमकिन लगने वाले पॉइंट्स भी वो जीत लेते थे। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में भी जोकोविच के कई मैचेस में सेट पॉइंट्स या मैच पॉइंट्स में भी हमने ये नोट किया है कि ये बंदा झुकने वालों में से नहीं था, ये बंदा वो है जो कि डटा रहेगा, खड़ा रहेगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। सो दिस इज व्हाट जोकोविच इज ऑल अबाउट, फिटनेस। जोकोविच की सबसे बड़ी खूबी उनकी मेंटल स्ट्रेंथ मानी जाती है। जब भी मैच प्रेशर में होता है और फैसला कुन लम्हात आते हैं, वो अक्सर अपना बेहतरीन टेनिस खेलते हैं। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, साइकोलॉजी, यू नो द माइंड गेम्स, द मेंटल प्रिपेयर्डनेस। कई दफा ऐसा हुआ कि वो मैच हारने के करीब थे मगर उन्होंने कमबैक करके जीत हासिल की, और इसी वजह से उन्हें टेनिस हिस्ट्री के सबसे मेंटली टफ एथलीट्स में शुमार किया जाता है। रिकॉर्ड ऐसे नहीं बनते दोस्तों,
हाथ में रैकेट उठा लिया या हाथ में बल्ला उठा लिया।

0: अपने सेंचुरीज मारने की सोच ली कि मैं जो है रिकॉर्ड सेंचुरीज कर लूँ, और इस तरह के हर कोई हर दिन सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली पैदा नहीं होते। और वैसे ही अगर देखा जाए कि जोकोविच जैसे खिलाड़ी या फेडरर जैसे खिलाड़ी कभी नहीं आते हैं, दे यू नीड सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन यू, सम एक्स्ट्रा कैरेक्टर। सिर्फ टेक्निक, टेक्निक तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स दिखा चुके हैं, लेकिन टिकना इतने देर तक, इतना यू नो 18 साल तक टेनिस खेलना डिफिकल्ट, इज नियर इम्पॉसिबल। ऑस्ट्रेलियन ओपन उनका सबसे कामयाब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रहा है। मेलबोर्न के हार्ड कोर्ट पर जोकोविच ने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने इस इवेंट को इतनी मर्तबा जीता कि लोगों ने इसे उनका घर समझना शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनकी डोमिनेंस ने उन्हें हार्ड कोर्ट का बादशाह बना दिया। विंबलडन में भी जोकोविच ने लाजवाब परफॉर्मेंसेस दी हैं। ग्रास कोर्ट पर खेलना हर खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, मगर जोकोविच ने अपनी एडेप्टेबिलिटी से साबित किया कि वो हर सरफेस पर कामयाब हो सकते हैं। विंबलडन के फाइनल में उनकी कई यादगार जीतें टेनिस हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं। फ्रेंच ओपन में अगर रफाल नडाल की डोमिनेंस था, इसके बावजूद जोकोविच ने खुद को साबित किया है। क्ले कोर्ट उनकी फेवरेट सरफेस नहीं थी, इसमें मिट्टी वाले जो सरफेस हम कहते हैं मिट्टी के, लाल मिट्टी, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत और स्ट्रेटजी के जरिए फ्रेंच ओपन का टाइटल भी कई मरतबा जीता। अच्छा, नडाल को फ्रेंच ओपन में हराना टेनिस की सबसे मुश्किल अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है, और जोकोविच ने ये करके दिखाया कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि आप इनवेंसिबल हैं, मैं हरा सकता हूं आपको, और जोकोविच ने करके दिखाया। नाउ मूविंग ऑन टू यूएस ओपन, जो कि लास्ट ग्रैंड स्लैम है इस साल का, और उस यूएस ओपन में भी उनकी कंसिस्टेंसी काबिले दाद रही। न्यूयॉर्क के एनर्जेटिक क्राउड और इंटेंस एटमॉस्फेयर में परफॉर्म करना आसान नहीं होता। द रोरिंग क्राउड, द रोरिंग फैंस, उनके सामने आप परफॉर्मेंस करते हुए अगर मतलब प्रेशर आपका अगर गिर गया, द मेंटल प्रेशर, जो प्रेशर वो उसको अगर आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो ना आप गए। मगर जोकोविच ने कई मरतबा प्रेशर को हैंडल करते हुए टाइटल अपने नाम किया। और हाँ, ये जो टाइटल्स, ये जो मैच जीतना, इसके पीछे फिटनेस का भी एक रोल है। ये मैंने आपसे शुरू में कह दिया था, टेक्निक हर एक के पास होता है, टैलेंट हर एक के पास होता है। क्या आप फिट हैं स्पोर्ट्स में? नहीं है तो फिर आप बैठ जाइए। लेकिन जोकोविच के फिटनेस रूटीन अगर देखें तो उनकी कामयाबी की अहम वजह है। वो अपनी डाइट पर बहुत तवज्जो देते हैं और फिटनेस को अपनी परफॉर्मेंस का बुनियादी हिस्सा समझते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी तब्दीलियां की जिनसे उनकी एनर्जी और रिकवरी बेहतर हुई, और इसी वजह से वो 30 साल की उम्र के बाद भी नौजवान खिलाड़ियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, करते रहे नहीं बल्कि कर रहे हैं। दोस्तों, उनकी जो राइवलरी थी अगेंस्ट रॉजर फेडरर और रफाल नडाल, उनके साथ ये फेडरर के साथ और नडाल के साथ ये राइवलरी टेनिस हिस्ट्री की सबसे मशहूर राइवलरीज में शुमार होती है। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा दौर पैदा किया जो शायद दोबारा देखने को ना मिले। हर मैच में स्ट्रेटजी, स्किल और इमोशंस का बेहतरीन कॉन्कॉक्शन नजर आता था। फैंस दुनिया भर में इन मुकाबलों के इंतजार करते थे। अब तो चलिए वो हिस्ट्री है, अब सिर्फ जोकोविच ही अकेला रह गया है। लेकिन दोस्तों, आज भी हम याद करते हैं जोकोविच के मैचेस अगेंस्ट रॉजर फेडरर और अगेंस्ट रफाल नडाल। इनफैक्ट अभी जो फ्रेंच ओपन में उनका जो हार, जिस मैच में अगेंस्ट द सेकंड राउंड ऑफ फ्रेंच ओपन अगेंस्ट ब्राजील फोंसेका, उस मैच को भी हम याद करेंगे आगे जाकर कि क्या ये बंदा था जिन्होंने नौजवान हाफ ऑफ द एज उनके मुकाबले में उन खिलाड़ियों के अगेंस्ट भी डटकर बैटल करते रहे, लड़ते रहे, और वो सरफेस पर जो उनका फेवरेट नहीं था लेकिन वहां पर भी ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। सो ये थी कहानी नोवाक जोकोविच के वर्ल्ड रिकॉर्ड इन टेनिस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगल्स टाइटल वन बाय अ टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच। दोस्तों, लेते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर हम मजीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस प्रोग्राम में आप सभी का दोबारा इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और आप अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो पसंद आ चुका हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप नंबर 666-22107 पर, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो आवर सोशल मीडिया पेजेस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑन ट्विटर, जिसको हम एक्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड और नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पर हम क्विक फायर रिकॉर्ड्स अक्रॉस ऑल द डिसिप्लिन्स के बारे में हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं। आज एथलीट्स की दुनिया के एक मशहूर खिलाड़ी के बारे में हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली वन ऑफ द टॉपिक उनके नाम पर भी है, अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जमैका के लेजेंडरी स्प्रिंटर उसैन बोल्ट। या दोस्तों, दुनिया के अगर सबसे तेज तरीन इंसान अगर कोई है तो वो उसैन बोल्ट है। बोल्ट ने 2009 में बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान मर्दों की 100 मीटर रेस सिर्फ 9.58 यानी 9.58 सेकेंड्स में कंप्लीट करके दुनिया को हैरान कर दिया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है और इसी वजह से उनको द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। जब ये रिटायर हो गए थे, ये बोल्ट साहब, वो फुटबॉल में भी थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने फुटबॉल में भी अपना थोड़ा सा जमाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ही ट्राई टू प्ले इन द ऑस्ट्रेलियन सॉकर लीग, तो वहाँ पर थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा यू नो समझाने की कोशिश की, मैं फुटबॉल भी खेल सकता हूँ बिकॉज मेरे पास स्पीड है। लेकिन दोस्तों, हमेशा जो आपके पास जो टैलेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्पोर्ट में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ उसैन बोल्ट का, अभी ही इज़ एन एंटरटेनर, बिग एंटरटेनर। जो उनका वो जो स्टाइल था, जो विक्ट्री ट्रायम्प या विक्ट्री पोडियम में जो वो पोज देते थे, आज भी वो मशहूर हैं, आज भी लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। तो उसैन बोल्ट द फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ये आप याद रखिएगा, अपने बच्चों को बताइएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट उसैन बोल्ट। मूविंग ऑन टू क्रिकेट, और क्रिकेट की तारीख का एक लाजवाब वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, किसके नाम? हाँ, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ना ना ना ना ना ना ब्रायन चार्ल्स लारा के नाम है। यहाँ वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी बैट्समैन ब्रायन लारा ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 400 रन नॉट आउट बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर का रिकॉर्ड कायम किया। सो नो सचिन तेंदुलकर, नो विराट कोहली, नो बाबर आजम, नो सौरव गांगुली, नो राहुल द्रविड़, मैन नॉट इवन सुनील गावस्कर। तो ब्रायन लारा के नाम ये रिकॉर्ड है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट 400 नॉट आउट, और ये हिस्टोरिक इनिंग्स एंटीगा में खेली गई थी, और आज तक कोई भी बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में इस स्कोर को क्रॉस नहीं कर सका। याद रखिएगा, किसी भी बल्लेबाज में इतना दम तो नहीं है कि इस रन को क्रॉस कर सके। और आज 2026 है और 2004 की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स, तो आप ये समझ लीजिए कि 22 साल हो चुके हैं और आज भी ये रिकॉर्ड अनब्रोकन है। लारा की स्टाइलिश बैटिंग और लॉन्ग इनिंग्स खेलने की सलाहियत ने उनको क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में शामिल कर दिया। अब आ रही है फुटबॉल में, देखते हैं फुटबॉल में क्या रिकॉर्ड है। जी, फुटबॉल की दुनिया का एक और लेजेंडरी वर्ल्ड रिकॉर्ड लियोनल मेसी के नाम है। मेसी साहब अपना 6th वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। जी हाँ, ये जो 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है, इसमें मेसी अपना 6th, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अपीयरेंस, अलोंग विथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन ये रिकॉर्ड कुछ और है, और इस रिकॉर्ड में कि एक कैलेंडर ईयर यानी 2012 में क्लब और कंट्री के लिए मिलाकर 91 गोल स्कोर किए, जो फुटबॉल की तारीख में एक साल में सबसे ज्यादा गोल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार ने अपनी ड्रिबलिंग, क्रिएटिविटी और फिनिशिंग से दुनिया भर के फुटबॉल फैंस को मुतासिर किया और यह हिस्टोरिक रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम हमेशा के लिए फुटबॉल हिस्ट्री में लिखा दिया। दिस इज ऑल अबाउट लियोनेल मेसी। आप टेनिस के बारे में बात कर लेते हैं, और टेनिस की तारीख का अजीम खिलाड़ी जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले बताया था, रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर के नाम एक रिकॉर्ड है। फेडरर ने विंबलडन मेन सिंगल्स टाइटल 8 मर्तबा जीतकर दुनिया का हिस्टोरिक रिकॉर्ड कायम किया। ग्रास कोर्ट पर उनकी एलिगेंट

स्टाइल, परफेक्ट फुटवर्क और आउटस्टैंडिंग शॉट मेकिंग ने उन्हें किंग ऑफ विंबलडन बना दिया। स्विट्जरलैंड के इस लेजेंडरी खिलाड़ी को टेनिस हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट स्टार्स में शुमार किया जाता है। अब बास्केटबॉल को थोड़ा टटोल लेते हैं। बास्केटबॉल में किनका क्या रिकॉर्ड है? बास्केटबॉल की तारीख का एक

दोस्तों विल चैम्बरलेन ने 1962 में NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अमेरिका में मुनाकिद किया जाता है और इसके एक मैच में 100 पॉइंट स्कोर करके दुनिया का हिस्टोरिक रिकॉर्ड कायम किया और ये मैच फिलाडेल्फिया वॉरियर्स और न्यूयॉर्क निक्स के दरमियान खेला गया था। आज तक कोई भी बास्केटबॉल प्लेयर एक NBA गेम में 100 पॉइंट्स का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। जस्ट लाइक ब्रायन लारा, उनके 400 रन का ये रिकॉर्ड किसी भी नहीं तोड़ पाया, किसी बल्लेबाज ने नहीं कर पाया। तो वैसे ही ये रिकॉर्ड जो कि विल चैम्बरलेन के नाम है, एक मैच में 100 पॉइंट्स एक बास्केटबॉल प्लेयर का ये रिकॉर्ड आज तक नोबडी हैज ब्रोकन इट। अब एक इम्पोर्टेंट एक कैटेगरी है, इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वेट लिफ्टिंग। और वेट लिफ्टिंग के दुनिया का एक हिस्टोरिक वर्ल्ड रिकॉर्ड नईम सुलेमानोग्लू के नाम है। तुर्की के लेजेंडरी वेट लिफ्टर नईम सुलेमानोग्लू को पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। छोटी हाइट के बावजूद उनकी एक्स्ट्रॉडिनरी स्ट्रेंथ ने दुनिया को हैरान कर दिया और उनको वेट लिफ्टिंग हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एथलीट्स में शामिल कर दिया। नईम सुलेमानोग्लू, छोटा पॉकेट हरक्यूलिस, देखिएगा। वो अभी भी है सोशल मीडिया पे, उनके कुछ शॉट्स हैं जो आपको देखने में बड़ा ताज्जुब लगेगा कि ये इतना छोटा सा बंदा, इतना छोटा सा कद में आप मतलब किस तरह से इतना हेवी वो वेट उठाना, हमें नामुमकिन लगता है। कभी कभार बहुत ही अजीब लगता है कि भाई हम तो देखते हम खुद हैरान हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे या तो बेहोशी हो जाएंगे। ये वेट कैटेगरी उठाना, समथिंग इज कहते हैं कि इनर स्ट्रेंथ, समथिंग कॉल्ड इन बॉर्न टैलेंट। ये कुछ खिलाड़ियों में जैसे हमने बताया कि रॉजर फेडरर, जैसे ब्रायन चार्ल्स लारा, चैम्बरलेन और नोवाक जोकोविच, ये सारे मशहूर नहीं बल्कि लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनका नाम कुछ और सलाहियत थी है। इट्स जस्ट नॉट टेक्निक, इट्स जस्ट नॉट टैलेंट, कुछ और भी, मेंटल प्रिपेयर्डनेस। मैं हमेशा कहता हूँ जिनका दिमाग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, हर स्ट्रगल को ओवरकम करने की सलाहियत रखता है, वो बंदा ही आगे जाके कुछ ना कुछ आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट बंदा, देयर

0: जितने भी लेजेंड्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो परफॉर्म करके हमें बता दिया कि देयर आर समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ एनीबडी. बहुत कम लोग ये सब यू नो मकाम हासिल कर सकते हैं. चलिए लेट्स मूव ऑन टू साइकिलिंग. जी हाँ दोस्तों, साइकिलिंग की दुनिया का एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड मिगेल इंडुरियन के नाम है और ये स्पेन के लेजेंडरी साइकिलिस्ट थे और इन्होंने लगातार 5 मरतबा टूर डे फ्रांस जीतकर साइकिलिंग हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड कायम किया था. उनकी एक्स्ट्रॉडनरी स्टैमिना, स्पीड और माउंटेन स्टेजेस में कंसिस्टेंसी ने उनको दुनिया के ग्रेटेस्ट साइकिलिस्ट में शामिल कर दिया. 1990s के दौर में इंदुरियन ने प्रोफेशनल साइकिलिंग पर जबरदस्त डोमिनेट की. एंड सैल्यूट टू दिस ग्रेट ग्रेट साइकिलिस्ट जिन्होंने बताया कि जिन्होंने दिखाया यू नो यू नीड नॉट ओनली जस्ट स्टैमिना, यहाँ पर भी वही बात है, मेंटल प्रिपेयरनेस, योर मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड शुड बी दैट स्ट्रॉन्ग. अब एक मोटर स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लें. जी हाँ, मोटर स्पोर्ट्स सबको पसंद होगा, सबको पसंद भी है. और मोटर स्पोर्ट्स की तारीख का एक शानदार रिकॉर्ड एलन प्रोस्ट के नाम है. फ्रांस के लेजेंडरी फॉर्मूला 1 ड्राइवर एलन प्रोस्ट ने अपने करियर में 51 ग्रां प्री रेसेस जीतकर एक वक्त में सबसे ज्यादा फॉर्मूला 1 विंस का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था. उनको द प्रोफेसर कहा जाता था क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट और स्ट्रैटेजिक ड्राइविंग के लिए मशहूर थे. प्रोस्ट ने अपने काम अप्रोच और कंसिस्टेंसी की वजह से फॉर्मूला 1 हिस्ट्री में एक खास मकाम हासिल किया. यहाँ पे हम एक छोटा सा मैं पर्सनल एनेक्डोट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा. जब मैं स्कूल में था, एक स्पोर्ट्स मैगजीन को फॉलो करता था और हमारे उस टाइम में स्पोर्ट्स मैगजीन वॉज इक्वली टीवी से ज़्यादा. अभी टीवी तो हर टाइम आप कलर फोटो तो देख नहीं सकते थे, हर एक के घर पर तो कलर टीवी तो उस टाइम होता नहीं था. तो ये स्पोर्ट्स मैगजीन, कलर मैगजीन, और मैं आपको बताऊं, एलन प्रोस्ट फर्स्ट टाइम मैंने उनको उसी मैगजीन पे नोट किया था. एलन प्रोस्ट आज भी मुझे याद है और उसी दिन मैं याद कर रहा था जब ये लिख रहा था ये स्क्रिप्ट. और इत्तेफाक की बात है, अगले दिन मैंने इनके बारे में एक न्यूज़ नोट की. वो न्यूज़ क्या है कि इनके घर पर एक यू नो बर्गलरी यानी चोरी हुई है और एलन प्रोस्ट को बहुत बुरी तरह घायल करके वो चोरों ने उनका जितने भी तमाम घर के जितने भी कीमती चीज़ें थी और सब लेके भाग गए. तो एलन प्रोस्ट को वहाँ पर मैंने याद किया. तो अगले दिन देखिए ये क्या होगा. एनीवे, नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेजेडीज, नॉट टॉकिंग अबाउट बैड थिंग्स, बट टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट इन मोटर स्पोर्ट्स. दोस्तों आखिर में कतर एंगल के बारे में बात करना लाजमी है और कतर के एक जो स्टेडियम है जिसके बारे में हमने पिछले बार भी जिक्र किया था, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम. जी हाँ दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम दोहा का एक मशहूर स्टेडियम है जहाँ 1970 की दहाई से ही कई फुटबॉल इवेंट्स हुए हैं और हाल ही में अमेरिका का 50th एडिशन का फाइनल भी होस्ट किया गया था. और इसके साथ साथ सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खलीफा स्टेडियम ओनली होस्टेड अमेरिका, इट ऑल्सो होस्टेड 2019 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप. और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कई मैचेस भी यहां पर मुनक्किद किए गए थे. दैट मेक्स खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम वन ऑफ द पायनियर, वन ऑफ द लेजेंडरी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइकॉनिक स्टेडियम्स इन दिस रीजन, इस अरब खत्ते में, जो कि एक यू नो हिस्ट्री लेकर आज भी खड़ा हुआ है, बताता है. हाँ, भूल गया मैं यहाँ पे कहना, 2006 का एशियन गेम्स भी शामिल है इसमें. तो दोस्तों आज के स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने जाना कि किस तरह नोवाक जोकोविच बने दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग टेनिस स्टार्स. ये रिकॉर्ड दोस्तों सिर्फ नंबर्स का नहीं, ये है लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और एक्सेलेंस का रिकॉर्ड. मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन. अगले किस्त में हम किसी और अजीम स्पोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं.
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक, टाइम
3: चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30, यानी इट्स टाइम फॉर,
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
3: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? यस जनाब, एस्केप रूम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है एंड दिस इज द टाइम जब आप पूरी एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और एक नए चैलेंज को लेकर उस चैलेंज को पूरा करते हैं। वेल आई नो अभी हमें बहुत सारी सिचुएशंस मिल चुकी है, कभी हम किसी कमरे में कैद हो गए, कभी म्यूजियम में कैद हो गए, कभी लाइब्रेरी का चक्कर लगाते लगाते वहीं फंस गए, या फिर समुंदर, आसमान, स्पेस, रेगिस्तान, ऐसी बहुत सारी जगहों पर हम कैद हुए हैं। आज हम एक बड़ी कमाल की जगह में कैद होने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग नेचर के एडवेंचर को पसंद करते हैं, लाइक पहाड़ों में जाना या फिर नए नए जो केव्स होते हैं उसे एक्सप्लोर करना। इफ़ यू लाइक ऑल दैट, तो आज का एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। आज हम जाने वाले हैं एक बेहतरीन सी गुफा में। हाँ, ये ट्रिप है, एक एडवेंचरस ट्रिप है और हम एक्सप्लोर करने के लिए गए हुए हैं, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि हम वहाँ पर फंस जाते हैं एंड देन वहाँ से निकलने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्लूज मिलते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और 3 लेवल्स को पार करके आज के हम लकी विनर बन जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड क्योंकि एस्केप रूम बड़ा ही खास है। तो फिलहाल ये नंबर नोट कीजिए 6622107, 6622107। इस नंबर के जरिए आप और मैं बस जुड़े रहने वाले हैं और अभी थोड़ा सा रिफ्रेश होते हैं, कुछ बड़े ही कमाल के गाने हमारे लिए लाइंड अप है। इस गाने को सुनकर एनर्जी अलग लेवल पे ही हो जाती है। सो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग एंड स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है. इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे.
3: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
5: यस, वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. और आज के एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की है. आप आज गहरी अंधेरी गुफा में फंस गए हैं. तो कैसे हुआ ये सब, चलिए अब शुरू करते हैं आज के हमारे स्पेशल चैलेंज को. तो जनाब, आज आप एक स्कूल ट्रिप पर गए थे, ठीक है. चारों तरफ खूबसूरत चट्टाने थी, वादियाँ थी, लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली. तूफान, बारिश. हालांकि जब बारिश होती है और हम किसी ऐसी खूबसूरत ट्रिप में होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाओ अब मज़ा आने वाला है. बट देन ये बारिश हो रही थी और आप एक बहुत ही खूबसूरत गुफा के अंदर अपनी टीम के साथ गए थे, ठीक है. कि वहाँ पर आप गए हैं एंड यू चेकिंग कि भाई ये कितनी खूबसूरत गुफा है. एंड डेफिनेटली जब केव्स होते हैं, पुराने एंशिएंट केव्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ स्पेशल वहाँ होता है ना, और वो देखकर बड़ा अच्छा लगता है. सो ये ट्रिप आप इंजॉय कर रहे थे और बारिश ने थोड़ी सी तबाही मचा दी. आप इस केव के अंदर हो और गुफा में धीरे धीरे करके पानी भरने लगा. अब जब पानी भरने लगा तो जो मेन एंट्रेंस है वहाँ मिट्टी और पत्थरों ने मिलकर गुफा का जो मेन एंट्रेंस था, दरवाज़ा था, वो हमेशा के लिए बंद कर दिया. उफ, अब आप थोड़े से घबरा रहे हैं. अब ना रास्ता दिख रहा है ना रोशनी, बस एक पुराना सा मैप और 3 क्लूज जो आपको इस मौत के कुएं से बाहर निकालेंगे और तेज धूप में वापस से आप रोशनी महसूस कर पाएंगे. वेल, हम गुफा की गहराइयों में अब आगे बढ़ने लगे. जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई एस्केप का जरिया ढूंढना है. अंधेरा इतना गहरा है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस अंदाजन हम इधर उधर करके जहाँ जहाँ जगह मिलते जा रही है हम बढ़ते जा रहे हैं. पाँव कहाँ रखना है थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा है. फिर आपने क्या किया,

आपके पास जो बैग है उसमें आपने अपना हाथ डाला और कुछ टटोलना चालू किया, कुछ ढूंढना शुरू किया, और यहीं पर आपका क्लू नंबर वन आपको सॉल्व करना है। तो आपको बताना है, मैं एक छोटा सा टूल हूं जो आपके हाथ में फिट हो जाता है। जैसे ही आप मेरा बटन क्लिक करते हैं, एक तेज रोशनी की किरण निकलती है जो रास्ता दिखाती है। बताइए मैं कौन हूं? ये कौन सी चीज है जो बटन दबाते ही रोशनी देती है? ठीक है, इस चीज का नाम लिखें 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ। एंड लेट्स सी कि क्लू नंबर वन आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, लेवल वन को पार कर पाते हैं। आई रिपीट अगेन, मैं एक छोटा सा टूल हूँ जो आपके हाथ में फिट हो जाता है। जैसे ही आप मेरा बटन क्लिक करते हैं, एक तेज रोशनी की किरण, ब्राइट बीम निकलती है जो रास्ता दिखाती है। बताइए मैं कौन हूँ? So come on guys, सोचिए सोचिए और सोचिए। 666-22107 पर अपने सही जवाब अपने नाम के साथ दीजिए। और अभी आपको सोचने के लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक मैं देती हूँ, और उसके बाद आपकी मेरी मुलाकात होने वाली है। तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना हमारे साथ on FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखें।
1: So yes, my desi audience, क्या हाल चाल है? Welcome once again on FM 107. मैं हूँ आपकी A for Amita. और जनाब आज escape room की situation बड़ी कमाल की है. शुरुआत बहुत खुशी के साथ हुई कि हम एक स्कूल ट्रिप पर हैं, ठीक है, और वो ट्रिप ऐसी है कि जहाँ पर हमें खूबसूरत केव्स को एक्सप्लोर करना है और उस ट्रिप में हमें ले जाया गया है, ठीक है. हम बड़े अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं, नेचुरल ब्यूटीज़ को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. बट सडनली कुछ गड़बड़ हो जाती है कि बाहर का जो मौसम है वो बदल जाता है, बारिश शुरू हो जाती है थंडर स्टॉर्म्स के साथ. और पहले तो हमें खुशी होती है, लेकिन हम क्योंकि एक गुफा के अंदर हैं और धीरे धीरे वहाँ पानी भरना शुरू हो गया. और जब पानी भरना शुरू हुआ तो मिट्टी और पत्थरों ने मिलकर जो गुफा है उसका एंट्रेंस बंद कर दिया. अब हम उस अंधेरी गुफा में बस बढ़ते जा रहे हैं एग्जिट की तलाश में कि किसी तरह यहाँ से बाहर निकला जाए, क्लूज ढूंढे जाए एंड बस निकला जाए, मतलब बचाया जाए खुद को अब, ठीक है. तो अंधेरे में आप बढ़ते जा रहे थे एंड सडनली आप रुके, आपने अपने बैग को उतारा और बैग में हाथ डालकर आपने कुछ टटोलना शुरू किया और वहाँ पर आपका क्लू नंबर वन, क्योंकि जैसे ही इस क्लू नंबर वन को आप सॉल्व करेंगे जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो आपके हाथ में आ जाएगी. एंड दैट इज़ मैं एक छोटा सा टूल हूँ जो आपके हाथ में फिट हो जाता है. जैसे ही आप मेरा बटन क्लिक करते हैं एक तेज रोशनी की किरण निकलती है जो रास्ता दिखाती है, बताइए मैं कौन हूँ. ओके, सो हमारे लिसनर्स ने हमें क्या मैसेजेस किए हैं, आइए जरा इसकी तरफ रुख करते हैं. तो कुछ ने लिखा है मोबाइल की लाइट, कुछ ने लिखा है वॉच, कुछ ने लिखा है टॉर्च, कुछ ने लिखा है फ्लैश लाइट. ओके, मोबाइल में मोबाइल की लाइट नहीं कह सकते, मोबाइल में भी एक चीज होती है जिसके जरिए अगर लाइट रोशनी निकलेगी तो वो हेल्प करेगी. ओके, सो द राइट आंसर इज टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट. और जिन्होंने ये लिखा है उन्हें भाई बहुत सारी मुबारकबाद, आपने क्लू नंबर वन सॉल्व कर लिया है, क्या बात है, बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि लेवल वन क्रॉस करना बहुत जरूरी था. और जिन्होंने हमें सही जवाब दिए उनके नाम, रमेश ने हमें सही जवाब दिया है, मिस्टर खान ने हमें सही जवाब दिया है, सैयद हुबैश जी ने भी सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान जो कि वन ऑफ आर रेगुलर लिसनर हैं उन्होंने भी सही जवाब दिया है, रहीम ने भी सही जवाब दिया है, उमर, मोहम्मद एंड राइद. तो आप सबने सही जवाब दिया, अब अपनी पीठ को थपथपा लीजिए क्योंकि लेवल वन पार हो गया है. और जैसे ही आपने क्लू नंबर वन सॉल्व किया तो सुपर वाले का आपने शुक्र किया क्योंकि अब हम रास्ता देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में वो फ्लैश लाइट, वो टॉर्च लाइट जो है वो आ गई है, वो आराम से अपने टॉर्च जलाया, हमें दिख रहा है. हम इस रोशनी के पीछे पीछे एक बड़े कमरे में पहुंच गए हैं, ठीक है. अब गुफा के अंदर भी बड़े बड़े कमरे होते हैं, हम वहाँ पहुँचे. अब आपकी नज़र छत पर गई, छत में ना कुछ अजीब गरीब से जानवर लटके हुए हैं. अरे बाप रे, ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी संगीन है और थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि टॉर्च लाइट, अब ये कमरा, क्योंकि जो गुफा का ये जो कमरा है ये बहुत ही ऊंचा है और आपको दिखाई दे रहा है मतलब थोड़ा धुंधला कि कुछ अजीब और गरीब जानवर लटके हुए हैं, पर ये सो रहे हैं, लेकिन हमें इनको पहचानना होगा. सो हियर कम्स योर क्लू नंबर टू. मैं एक छोटा सा परिंदा हूँ, ठीक है, मैं एक छोटा सा परिंदा जैसा जानवर हूँ जिसके पास पंख हैं. मैं गुफाओं में रहता हूँ, उल्टा लटक कर सोता हूँ और सिर्फ रात को उड़ता हूँ. आहा, बताओ मेरा नाम क्या है. कम ऑन, पहचानिए क्लू नंबर टू को, जल्दी से सॉल्व कीजिए ताकि हमारा लेवल टू पार हो, हम आगे बढ़े और एग्जिट डोर की तरफ पहुँच जाएँ, वरना बड़ी मुश्किल होने वाली है, ठीक है. तो एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी कि मैं एक छोटा सा परिंदे जैसा जानवर हूँ जिसके पास पंख हैं. मैं गुफाओं में रहता हूँ, उल्टा लटक कर सोता हूँ और सिर्फ रात को उड़ता हूँ. बताओ मेरा नाम क्या है. कम ऑन गाइस, इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत आसान सा क्लू है जिसे आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं. तो सॉल्व कीजिए 666-22-107, 666-22-107 इस नंबर पर अपने नाम के साथ. ये सही जवाब हमें भेजिए और देखते हैं कि आज आप में से कितने लोग हैं जो इस दूसरे पड़ाव को सॉल्व कर पाते हैं। और सोचने के लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक काफी है, थोड़ा सा रिफ्रेश होइए एंड मुझे जवाब दीजिए, ठीक है? और बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। एस्केप रूम का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:02। देखो दो दो लाइन पर आ चुके हैं। मेक अ विश कि आज आप इस वाइल्ड केव से बाहर निकल पाए।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन FM 107। सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और आज एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की है, बड़ी चैलेंजिंग है।

शुरुआत बहुत ही खुशी के साथ हुई थी कि आप एक स्कूल ट्रिप में गए हैं नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, आप केव के अंदर गए हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी गुफा है, लेकिन वहाँ जाके आप फंस गए क्योंकि मौसम ख़राब हो गया, बारिश शुरू हो गई और जो केव का मेन एंट्रेंस है वो बंद हो गया। अब यहाँ पर आपके पास एक पुराना सा मैप है और तीन क्लूज आपको सॉल्व करने हैं और आप एग्जिट तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्लू आप सबने सॉल्व किया, सही जवाब था टॉर्च, फ्लैशलाइट। दूसरा क्लू आपके सामने कि मैं एक छोटा सा परिंदे जैसा जानवर हूँ जिसके पास पंख है, मैं गुफाओं में रहता हूँ, उल्टा लटक कर सोता हूँ और सिर्फ रात को उड़ता हूँ, तो मैं क्या हूँ? वेल, सही जवाब इज बैट या फिर चमगादड़। आ जाओ भाई, जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें ये जवाब दिया। पेट थपथपा लो, क्लू नंबर टू सॉल्व हो चुका है। That's so nice. And जल्दी से हम जान लेते हैं कौन कौन है जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब दिए हैं। That is अकबर, रईद, मोहम्मद, then फैज है और उमर है, रहीम है, रमेश है, मोहम्मद यूसुफ खान है, इरफान है, सरताज है और अहमद साहब भी हैं, वेरी गुड, साद नूर है, मिस्टर खान है, सैयद हुबैश है, अब्दुल रहमान है, नसीर है, मोईद खान भी हैं, क्या बात है। सेकेंड लेवल पार हो चुका है, वंडरफुल। तो चलिए, दो क्लूज आपने सॉल्व किए और बैट्स जो है जैसे आपने जवाब दिया वो अब उड़ने लगे। आप थोड़ा सा घबराए कि भाई अब क्या करें, बट आपके पास एटलीस्ट टॉर्च लाइट है तो थोड़ा सा आप सहमे हुए हैं, लेकिन हौसला नहीं आपने जाने दिया, आप हौसला नहीं हारे हैं। आपने देखा ये बैट्स कर क्या रहे हैं, बैट्स उड़ने लगे और उन्होंने हमें एक छोटा सा टनल दिखा दिया। ओके, अब आपने गहरी लंबी सांस ली कि चलो भाई अब यहाँ से निकला जाए इससे पहले कि ये गुफा पानी से भर जाए। अब आप रेंगना शुरू करते हैं, पीछे आपकी टीम भी है वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ फोकस आप पर है क्योंकि अगर आपने रास्ता ढूंढ लिया तो आपकी टीम भी बच जाएगी। ठीक है, तो आप रेंगते हुए एक भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुँच गए। ओ हो, मतलब ये जो गुफा है, ये जो केव है, इसके मल्टीपल एंट्रेंस भी हैं, पर ये किसी को पता नहीं था। और आज आप एक्सप्लोर करने गए, एक नए चैलेंज को लिया और फिर आपने देखा कि वाह क्या बात है, एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा, वहाँ तक आप पहुँच गए हैं। लेकिन ये जो गेट है ये नहीं खुल रहा है, आपसे नहीं खुलेगा, ठीक है, और इसे खोलने के लिए आपको थाईलैंड के उस मशहूर सॉकर टीम का नाम याद करना होगा जो एक बार गुफा में फंस गई थी। हाँ, ये बहुत ही मशहूर किस्सा हुआ है, इनफैक्ट इट्स एन इंसिडेंट जिसके ऊपर OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं। यस, एंड हैट्स ऑफ टू दैट टीम। ओके, तो अब अगर आपको नहीं पता तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, थोड़ा सोचें और सही जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है, थाईलैंड की उस मशहूर सॉकर टीम का नाम हमको बताना है। एंड क्लू नंबर थ्री इज, हमारा नाम एक ऐसे वाइल्ड जानवर पर है जिसके बड़े दांत होते हैं और जो एक हैरी पिग जैसा दिखता है। ठीक है, हमारी टीम का नाम क्या है ये आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर वाइल्ड बोर्स, वाइल्ड डियर्स, वाइल्ड टाइगर्स। अब इन तीनों में से क्या वो नाम है जो आपको क्लू नंबर थ्री का जवाब देगा और आप इस थर्ड लेवल को पार कर पाएंगे? सोचिए, इत्मीनान से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब भेज दीजिए। देखो, एग्जिट तक पहुंच गए हो, अब एक स्टेप पीछे हो, तब स्टेप आगे लो, जवाब दो 666-22-107 पर। और अभी बने रहो हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: Yes, welcome once again on FM 107. मैं हूँ आपकी A for Amita. तो कैसे लगा आपको ये musical break? I'm very certain कि थोड़ा सा आप relax हो गए होंगे और जो challenge आपको मिला है कि आज आप एक cave के अंदर बिल्कुल फंस गए हैं, वहाँ से escape होना है. अब इसके लिए आप और भी refreshed तरीके से जवाब ढूंढेंगे. देखिए जनाब, कभी कभी ज़िंदगी में जब खुशी आती है तो खुशी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं, और यही हमारे साथ हुआ कि आज एक स्कूल ट्रिप में हम गए और बड़ी खुशी से हम केव के अंदर गए. वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी को हमें एक्सप्लोर करना था एंड सडनली मौसम ख़राब, बारिश की शुरुआत और फिर केव का मेन एंट्रेंस बंद हो गया. अब यहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भाई, जान का खतरा है. तो निकलने के लिए हम रेडी हुए, हमने कहा चलो अब क्लूज हम सॉल्व करेंगे. पहले क्लू को हमने सॉल्व किया, सही जवाब था फ्लैशलाइट, टॉर्च. दूसरा क्लू भी हमने सॉल्व किया, सही जवाब था बैट. और तीसरा क्लू, यस, उस पर अभी हमें फोकस करना है. तो जब हमने बैट्स बोला तो ये जो चमगादड़ थे, ये जो बैट्स थे उस केव के कमरे में, ये उड़ने लगे. और जब ये उड़े तो उन्होंने आपको एक टनल दिखा दिया. अब आप उस टनल में रेंगते हुए आगे गए तो एक भारी लकड़ी के दरवाजे से एक एंट्रेंस, या यूँ कहें एक एग्जिट बंद है. वहाँ तक पहुँच गए लेकिन गेट खोलें कैसे, अब तो क्लू नंबर 3 की बहुत ज़रूरत है. एंड क्लू नंबर 3 ये है कि हमें थाईलैंड की उस मशहूर सॉकर टीम का नाम याद करना होगा जो एक बार गुफा में फंस गई थी एंड फिर उन्होंने सर्वाइव किया, और उनका चैलेंज बहुत ज़्यादा खतरनाक था. ठीक है, तो क्लू नंबर 3 आपके लिए. हमारा नाम एक ऐसे वाइल्ड जानवर पर है जिसके बड़े दांत होते हैं और जो एक हैरी पिग जैसा होता है. ठीक है, वैसा दिखाई देता है. तो टीम का नाम बताइए क्या हो सकता है. यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस भी दे रही हूँ और भी इजी करने के लिए. वाइल्ड बोर्स, वाइल्ड डियर्स, वाइल्ड टाइगर्स. ठीक है, वाइल्ड बोर्स, वाइल्ड डियर्स, वाइल्ड टाइगर्स. अब सोचिए इनमें से सही ऑप्शन क्या है, सही जवाब क्या है. 666-22-107, 666-22-107 ये हमारा नंबर है. इसमें अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए, क्योंकि क्लू नंबर 3 इज जस्ट द लास्ट स्टेप. आई मीन, इसे सॉल्व करने के बाद वो जो भारी लकड़ी का दरवाज़ा बंद है वो खुल जाएगा और आप इस डरावनी गुफा से बाहर निकल जाएंगे. कम ऑन, सोचिए एस्केप करना है कि नहीं. जल्दी से मुझे मैसेजेस भेजे 666-22-107 पर, 666-22-107.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दीप।
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और बिल्कुल आखिरी मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं हमारे शो के। भाई एस्केप रूम की सिचुएशन आज आपका केव चैलेंज, अब ये पूरा हो पा रहा है या नहीं ये तो अभी हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो जनाब आज आप एक स्कूल ट्रिप में थे, केव के अंदर गए, वहाँ जाके फंस गए, तेज़ बारिश ने मेन एंट्रेंस को बंद कर दिया, धीरे धीरे पानी भर रहा है गुफा में। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और एक एक करके क्लूज सॉल्व करते गए। पहला क्लू आपने सॉल्व किया, सही जवाब था फ्लैश लाइट या टॉर्च, दूसरा था बैट्स, तीसरे पे आके थोड़ी सी गाड़ी अटकी हमारे लिसनर्स की, और तीसरा क्लू ये था कि आपको थाईलैंड की उस मशहूर सॉकर टीम का नाम बताना था जो एक बार गुफा में फंस गई थी एंड दे सर्वाइव्ड द चैलेंज। ठीक है, तो क्लू था कि हमारा नाम एक ऐसे वाइल्ड जानवर पर है जिसके बड़े दांत होते हैं और जो एक हेरी पिग जैसा दिखता है। हमारी टीम का नाम क्या है आपको बताना है, आई गेव यू ऑप्शंस, वाइल्ड बोर्स, वाइल्ड डियर्स, वाइल्ड टाइगर्स। ठीक है, तो कुछ लोगों ने वाइल्ड टाइगर्स लिखा है, कुछ ने वाइल्ड बोर्स लिखा है, किसी ने वाइल्ड डियर्स नहीं लिखा, थैंक गॉड। देखो अगर आपने वाइल्ड बोर्स लिखा है ना तो चलो भाई आप तालियों के हकदार हैं क्योंकि आपने दिया है सही जवाब। वेरी वेल डन, क्या बात है क्या बात है, मानना पड़ेगा। और जैसे ही आपने वाइल्ड बोर्स कहा आप एक भारी लकड़ी के गेट के सामने थे, वो खुल नहीं रहा था लेकिन जवाब देते ही आपने जब धक्का मारा तो वो टनल का जो गेट था, लकड़ी का जो भारी गेट, वो खुला। सामने एक हरा भरा खूबसूरत जंगल आपको दिखाई दिया सुनहरी धूप के साथ और अब आप महफूज और सेफ हो गए हैं। शानदार जानदार, आपने तो बिल्कुल जान ही डाल दी। वैसे आज जिन्होंने बिल्कुल हमें सही जवाब दिए हैं आइए जरा उनके नाम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले जिन्होंने सही जवाब दिए हैं इनका नाम क्या है भाई, इनका नाम है अहमद, अहमद ने सही जवाब दिया है, रमेश ने सही जवाब दिया है, सैयद हुबेश ने सही जवाब दिया है एंड ताकिब ने भी सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने भी हमें सही जवाब दिया है, रायद ने भी सही जवाब

दिया है एंड रहीम मोहम्मद उमर. यस, आप सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन आज का लकी विनर तो कोई एक ही होगा. तो आज के लकी विनर कौन है? आज के लकी विनर है सैयद हुबेश. हाँ जी, मुबारका मुबारका, क्या बात है. आज तो बिल्कुल आप शाइनी सर्वाइवर बन गए हमारे. हाँ, वेल डन, आपने सच में कमाल किया और हमारे सारे लिसनर्स ने भी कमाल किया जिन्होंने नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़े रहकर सही जवाब देने की कोशिश की. वैसे जनाब, जिंदगी भी ना एक इसी तरह का चैलेंज है कि कभी लाइफ में अगर अंधेरा हो जाए, चाहे वो जितना भी गहरा हो, अगर छोटी सी भी उम्मीद की किरण होगी ना, तो वही लाइट की तरह हमारी लाइफ में काम करेगी. सो आई होप कि आज का एपिसोड आप सबने इंजॉय किया. एंड ऑन दिस नोट, अब मुझे जाना होगा. कल आपकी मेरी मुलाकात होगी 1:30 बजे, तो बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि वीकेंड स्पेशल होने वाला है. और अभी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं ऑन FM 107, और अपनी आरजमीता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं. तो जाते जाते कहना बनता है, हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. Stay tuned to FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस की जो एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाती हैं। तो भाई हमारा आज का टॉपिक ये है, क्या है भाई, बैल्कनी गार्डनिंग। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है भाई, यानी अपनी छोटी सी बैल्कनी को एक मिनी गार्डन में बदल देना। साथियों अक्सर हम ये सोचते हैं कि गार्डनिंग के लिए जमीन या बड़ा स्पेस चाहिए होता है, लेकिन इको स्विच हमें ये बताता है कि सिर्फ थोड़ी सी जगह पर भी थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी केयर से आप अपने घर को एक छोटा सा ऑक्सीजन हब बना सकते हैं। जरा सोचिए, आपके घर की बैल्कनी है जो मोस्टली कपड़े या एक्स्ट्रा बॉक्सेस रखने के लिए काम आ जाती है, अब इको स्विच अप्रोच से वही बैल्कनी एक ग्रीन स्पेस बन सकती है, जहां आप तुलसी, मिंट, हाय वो हरा धनिया भी अक्सर औकात में उगाती हूँ, ये छोटे मोटे जो प्लांट्स है ना, आप उगा सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 पॉट्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए भाई, आप अपनी बैल्कनी को ना एक रिफ्रेशिंग सा कॉर्नर बना सकते हैं। अक्सर औकात गर्मियों में चलने वाले फूल भी होते हैं भाई, वो भी आप वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं। जब आप सुबह उठकर वहाँ फ्रेश एयर और ग्रीनरी देखते हैं ना, और वो रंग बिरंगे फूल, तो ओए होए होए भाई, क्या तो मेंटल पीस आपका इम्प्रूव होता है, मेरा तो होता है भाई। देखिए जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, ये इंडोर एयर को 5 से 25% तक इम्प्रूव कर सकते हैं बाय फिल्टरिंग पोल्यूटेंट्स। एक और बात ये कि एक छोटा सा प्लांट डेली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो एक इंसान की ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए, उसके साइकिल के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, ये जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में सिर्फ 10% ग्रीनरी इंक्रीज करने से टेम्परेचर में 1 से 3 सेल्सियस तक रिडक्शन हो सकती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हमारा नासा है ना, जिसके बारे में सब बात करते हैं, नासा की रिसर्च के मुताबिक कुछ इंडोर प्लांट्स हार्मफुल टॉक्सिंस को भी एब्जॉर्ब करते हैं और एयर क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। साथियों, इको स्विच का यहाँ आइडिया बड़ा सिंपल सा है, बैल्कनी गार्डनिंग सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि इको सॉल्यूशन है। जब हम अपनी बैल्कनी को ग्रीन स्पेस बनाते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कराते हैं और ऑक्सीजन रिलीज इंक्रीज होता है। इसी के साथ ही अर्बन हीट को रिड्यूस भी करती है ये चीज। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हर अपार्टमेंट बिल्डिंग में 30% बैल्कनीज ग्रीन हो जाएं,

0: सराउंडिंग टेम्परेचर नोटिसिबली रिड्यूस हो सकता है, स्पेशली समर सिटीज में। अच्छा साथियों जरा सोचिए, आप हर हफ्ते मार्केट से फ्रेश पुदीना और धनिया खरीदते हैं ना, लेकिन वो 2 से 3 दिन में क्या होता है, खराब हो जाता है। अब अगर वही हर्ब्स आप अपनी बैल्कनी में ग्रो करें, मैं तो करती हूँ भाई तभी बोल रही हूँ, तो आपका पता है क्या होगा, आपको फ्रेश सप्लाई मिलती रहेगी, पैकेजिंग वेस्ट भी कम हो जाएगा और आपकी कॉस्ट भी ना धनिया पुदीना खरीदने की कम हो जाएगी। तो भाई इको स्विच अप्रोच ये कहता है कि फार्म टू टेबल सिर्फ रूरल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि बैल्कनी टू किचन भी हो सकता है भाई। अच्छा अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ले लेते हैं, अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स जो हर कोई फॉलो कर सकता है। पहली टिप ये कि इजी प्लांट्स से स्टार्ट करें साथियों, जैसे कि पुदीना हो गया, बेसिल हमें जिसे तुलसी कहते हैं, या वो जो मनी प्लांट होता है जो लो मेंटेनेंस होता है वो आप अपने पास लगा कर देखें। दूसरी चीज ये कि रिसाइकल कंटेनर्स यूज करें, जैसे ओल्ड बॉटल्स हो गई, कैंस हो गए या बकेट्स हो गए, उनको प्लांटेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि भाई डेली 10 से 15 मिनट वाटरिंग रूटीन बनाएं। चौथी चीज ये कि वर्टिकल गार्डनिंग यूज करें, अगर स्पेस कम हो वॉल्स और रेलिंग्स का भी यूज आप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपोस्टिंग स्टार्ट करें, किचन वेस्ट से नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथियों इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हर एम्प्टी स्पेस एक अपॉर्चुनिटी होती है। बैल्कनी गार्डनिंग हमें पेशेंस, केयर और सस्टेनेबिलिटी सिखाती है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग गार्डनिंग एक्टिविटीज करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव होती है। मतलब ये कि सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी ये चीज बहुत बेनिफिशियल है। आखिर में साथियों इको स्विच का मैसेज बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि हर बेल्कनी एक छोटा सा इको सिस्टम बना सकती है। आपका 3 से 4 पॉट का छोटा सा गार्डन भी एनवायरमेंट के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है भाई। हर प्लांट सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप अपनी बैल्कनी देखें, एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन करें। कैन दिस स्पेस बिकम ग्रीन टुडे? मेरे लिए तो हमेशा यस होता है, आपके लिए क्या होगा? मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर पॉट एक फ्यूचर ग्रो करता है और हर लीफ एक नई सांस देता है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे

0: इम्पोर्टेंट बात है हमारी और आपकी समझने के लिए, वो है डिपेंडेंसी। लोग नेचुरल क्लाइमेट को फिक्स करने की बजाय आर्टिफिशियल सिस्टम्स पर डिपेंड क्यों हो रहे हैं? ये सवाल बड़ा ही तकलीफ दे सवाल है। देखिए, एथिकल इश्यूज है, किसका कितना कंट्रोल होगा? क्या कोई एक कंट्री या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे क्लाइमेट को कंट्रोल करेगी? फिर क्या फेयरनेस को मेंटेन कर पाएंगे? अगर एक रीजन को बेनिफिट हो और दूसरे को नुकसान हो तो क्या ये फेयर है? वहीं आने वाली जनरेशन पर इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, क्लाइमेट इंजीनियरिंग इजी नहीं है। साइंटिस्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक्यूरेट प्रेडिक्शन मुश्किल है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अननोन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है, रिसर्च अभी भी चल रही है। कुछ लोग क्लाइमेट इंजीनियरिंग को जरूरी समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये लास्ट ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज को रोकने का। ओपोनेंट्स कहते हैं कि ये डेंजरस है और नेचुरल सिस्टम को हार्म करेगा। अब फ्यूचर क्या कहता है? फ्यूचर में हो सकता है एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप हो जाए, वेदर कंट्रोल में एक्यूरेसी आ जाए, ग्लोबल एग्रीमेंट्स भी बन जाए, लेकिन इसका यूज केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल वेदर कंट्रोल एक पावरफुल टूल हो सकते हैं जो कि अर्थ को डिजास्टर से बचाने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इनके रिस्क और एथिकल इश्यूज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंसान को बैलेंस मेंटेन करना होगा टेक्नोलॉजी में और नेचर को भी रिस्पेक्ट करना है। अगर सही प्लानिंग और कोऑपरेशन हो तो ये टेक्नोलॉजीज ह्यूमैनिटी के लिए या ह्यूमंस के लिए फ्यूचर में सिक्योर हो सकती हैं, और अगर सही तरीके से ना की जाए तो बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। चलिए, मेरा काम तो था कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा प्रिपेयर कर दूं कि आपको समझ में आ जाए कि ये चीजें हैं क्या और फ्यूचर में किस तरह से ये डोमिनेट करेंगी। फिलहाल डराना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको एजुकेट करना है, आपको अवेयर करना है कि आप भी इन चीजों से अवेयर रहें, और हो सकता है तो अपने बच्चों को भी उसी की उन चीजों को किस तरह से अडॉप्ट करना है, वो स्किल्स और गुड बैलेंस के साथ आप सिखा पाए। फिलहाल मुझे नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

तो तैमूर उनसे इज्जत के साथ पेश आया और तारीख ने अपनी तमाम दुनियावी हिकमत और अदबी तारीफों को इस्तेमाल करके उस शिद्दत पसंद फतह करने वाले को खुश कर लिया। शायद नए फतह के ख्वाब देखते हुए तैमूर ने नॉर्थ अफ्रीका की तफसीली वजाहत मांगी और इब्न खल्दून ने सिर्फ इस मामले पर एक मुख्तसर रिपोर्ट दी, बल्कि कैलिफेट और असाबिया पर भी एक वसी रिपोर्ट भी दी। इब्न खल्दून ने तैमूर की अच्छी नियत का फायदा उठाया। दमास्कस में फिर उनको छोड़ दिया गया सिविल मुलाजमीन के लिए अमन का पैगाम और अपने लिए इजिप्ट वापस जाने की इजाजत हासिल की, मगर इससे पहले उन्होंने शहर की लूट और उसकी अजीम मस्जिद में आग लगने का मंजर देखा। तैमूर के साथ तवद्दो और तोहफे का तबादला करने के बाद वो जनूबी रुख में रवाना हुए, लेकिन रास्ते में एक गिरोह ने उन्हें लूट लिया और उनके कपड़े भी उतार लिए। बहुत ही मुश्किल से वो समुद्री किनारे तक पहुंच पाए, जहां इब्न उस्मान सुल्तान रूम का एक जहाज आया जो मिस्र के सुल्तान के लिए एक अम्बेसडर लेकर जा रहा था। उन्होंने इब्न खल्दून को गजा तक पहुंचाया, जहां उनका पहला और आखिरी ताल्लुक उस्मानी सल्तनत से हुआ। उनका बाकी सफर कैरो तक पुरसुकून गुजरा, जैसे के बाकी जिंदगी के साल भी पुरसुकून गुजरे। वो 1406 में वफात पा गए और बाब अल नसर के कब्रिस्तान में दफन किए गए, जो कैरो के एक अहम दरवाजे के बाहर है। दोस्तों, इब्न खल्दून की जिंदगी का सफर काफी मुश्किल था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई शहरों और मुल्कों का सफर किया, लेकिन उनकी आखिरत का सफर 19 मार्च 1406 का हुआ, जब वो कैरो मिस्र में इंतकाल कर गए। उनका काम आज भी इल्मी दुनिया में बहुत अहम है और उनकी किताबें अब भी मुख्तलिफ जमात में पढ़ाई जाती हैं। इब्न खल्दून का काम ना सिर्फ उनके दौर तक महसूस किया गया, बल्कि आज तक दुनिया के इल्मी रिसर्च और तहकीकात में इस्तेमाल करा जा रहा है। उन्होंने अपने काम से ये साबित किया कि तारीख को समझने के लिए सिर्फ वाकयात की नुमाइश नहीं, बल्कि उनका असर और उस वक्त का समाजी और सियासी कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी है। इसलिए इब्न खल्दून को ना सिर्फ तारीखदान बल्कि एक ग्रेट फिलोसोफर और सोशल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए एफएम 107। दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। एफएम 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ।
इब्न खल्दून अपने अदालती फराइज को बहुत संजीदा तौर पर लेते थे। उन्होंने ये दावा किया कि उनके फैसले सिर्फ हर मामले की बेस पर मबनी थे और उन्होंने इंसाफ के इदारों में जो बहुत सी बुराइयां फैल गई थीं, उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की। उनका ये रवैया मिस्रियों को कुछ ज्यादा ही सख्त लगा होगा। उन्होंने कहा, ये मिस्री ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। खैर, मुश्किलात ने हर जगह से मुझे घेर लिया और हुकुमरान के साथ मेरा ताल्लुक खत्म होता गया। समईन, जिंदगी के आखिरी लम्हों में फिर एक दफा उन्हें चीफ जज बना दिया गया और उन्होंने अपना वक्त तालीम देने, लिखने और अपने मुकदमा को दोबारा से तहकीकात करने में गुजार दिया। उन्हें मक्का का हज करने का मौका भी मिला, जहां उन्होंने अलतौर से सफर किया और अपर इजिप्ट के रास्ते वापस आए। कुछ साल बाद उन्होंने दमास्कस और फिलिस्तीन के मुकद्दस शहरों का सफर किया। इस तरह उन्होंने मशरिकी अरब दुनिया के बारे में अपना इल्म और बढ़ा लिया। दोस्तों, ये दिलचस्प बात है कि उन्होंने हेब्रू में हजरत इब्राहिम का मकबरा और बैथलेम में चर्च ऑफ द नेटिविटी का दौरा किया। दोनों हजरत इब्राहिम और हजरत ईसा को इज्जत देने वाले पैगंबरों के तौर पर। तो दोस्तों, इब्न खल्दून को 1379 में एक कसर के इनकलाब में छोटी सी हिस्सादारी करनी पड़ी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये उन पर दबाव था और बरकूक ने उनके साथ कोई दूसरी नफरत नहीं रखी। तो सामईन, हमने इब्न खल्दून के इल्म और उनके कामों पर एक गहरी नजर डाली। उन्होंने जो थ्योरीज और आइडियाज दिए, वो ना सिर्फ अपने जमाने में बल्कि आज भी इल्म और सोच को बढ़ाने में मददगार हैं। उनकी किताब मुकदमा ने इल्मी दुनिया को एक नए नजरिए से रोशन किया जो हर जमाने के लिए रेलेवेंट है। इब्न खल्दून ने हमें ये सिखाया कि इल्म सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं, बल्कि हर चीज को समझने का एक तरीका है जो ना सिर्फ फैक्ट्स बल्कि उनके असरात को भी समझता है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हमने इब्न खल्दून की इल्मो फिक्री दावत और उसकी तारीख को समझने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें सोशल मीडिया में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो अगली मुलाकात तक के लिए साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी। दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है।
وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ای گیٹ سروس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بھیڑ کم ہوتی ہے, کیوز چھوٹی ہوتی ہیں اور ہر ایک مسافر کا ایکسپیرینس اسموتھ اور اسٹریس فری بن جاتا ہے.

0: 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

राज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा

0: FM 107. Time check. Time check.
1: जिंदा हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ भाई साहब, मैं बच गया। मैं पीछे वाले गेट से निकला था कल, मैं बच गया हूँ शानिया वाले भाई से। हाँ मतलब अभी आपकी मर्जी, गाने चलेंगे। सलाम अलैकुम। टाइम देखो मेरा तो अच्छा चल रहा है क्योंकि मैं जिंदा बच गया हूँ। 4:01 हो रहे हैं और यहाँ FM 107 पे आ गए, इसका मतलब सब भला चंगा है।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, Only on FM 107, दिल से देसी।
1: तो भाई देखो, अपन क्या है कि जब जिंदा है तो खुश है, और खुश है तो फिर आज कॉल उठाऊंगा पक्का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 4:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और ये शो द रिक्वेस्ट शो। नए लोगों के लिए बता दें, ये शो जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने चलते हैं। तो होता यह है कि हर दिन एक थीम होती है, हर दिन किसी कभी एक्टर, कभी किसी सिंगर, कभी किसी राइटर के गाने यहाँ पर प्ले होते हैं। यार पूरे दिन आप सुनते रहते हैं FM 107, आपसे लोग बातें करते हैं, आप कॉल करते हैं, आप गेम खेलते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको इंटरटेन करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो इन सब के बीच एक चीज़ ये भी है कि आपकी अपनी मर्जी के गाने तो चले, तो एक घंटा पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेट किया गया है, और ये वही शो है जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। तो आपके अपने मर्जी के गाने। कल सलमान खान की बात हुई थी, कल सलमान खान के गाने चले थे, लेकिन यार जब सलमान खान की बात हो और शाहरुख खान की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दो बड़े स्टार, आमिर खान भी हैं, किसी दिन उनके भी गाने प्ले करेंगे, लेकिन जब सलमान खान की बात हो तो साथ ही साथ शाहरुख खान की बात भी होनी चाहिए, शाहरुख खान के गाने भी होने चाहिए। उनके मूवी के एक से बढ़कर एक गाने रहे हैं। तो आज की थीम अब तक आपको पता चल गई होगी, आज की थीम है शाहरुख खान के गाने। क्या लाजवाब ये एक्टर हैं, सीरियल से शुरू किया, बहुत ही लंबी एक हिस्ट्री इनके अपने काम की, इनके अपने मेहनत की, और आज भी उस मेहनत पे ये कहते हैं कि इनसे बढ़कर कोई एक्टर नहीं है। इसलिए नहीं कि कोई अच्छा एक्टिंग करने वाला हो, लेकिन इसलिए कि इनसे ज़्यादा मेहनत करने वाला और कोई एक्टर नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस है ये आता है शाहरुख खान की तरफ से कि भाई मुझसे बेहतरीन एक्टर तो कोई नहीं, और बिल्कुल सही बात भी है। जिस तरह की मेहनत वो आज भी करते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई एक्टर मुझे नहीं लगता होगा। अब तो प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया है, उनकी वाइफ भी जो है कभी कभार फिल्मों में काम करती हैं, ऑल दो मेन उनका जो काम है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है। लेकिन इन सबसे परे हम बात करेंगे आज उनके गानों के बारे में, आज उनके गाने प्ले होंगे, यानी कि शाहरुख खान के मूवी के गाने, शाहरुख खान ने जिसमें एक्टिंग करी है, शाहरुख खान ने जिसमें गाना गाया या डांस किया है, तो उनके गाने FM 107 पे प्ले होंगे ये शो में जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: तो जिंदा होने की खुशी में आज कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा मेरा भाई यूसुफ भाई, ऐसे क्या प्राइस किस बात की? अच्छा नहीं, ये सुबह वाला मैसेज मैं पढ़ गया, किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ गया। खैर सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरा भाई, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? नाम देख लेंगे तो अदील, अदील इनका नाम है कि आदिल है, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ? अदील नाम नहीं सुना, आदिल सुना है मैंने, डबल ई लगाया तो मैंने सोचा। रईस ने कहा है दिल तो पागल है दीवाना है, ओम जल्दी से ये गाना प्ले करो, नहीं तो मैं भी शाहनिया वाले भाई की तरफ फोन करता हूँ आपको। अरे धमकी, डर लगता है भैया, पता नहीं कब लाठी चार्ज करते हैं। रईस भाई कोड़े चार्ज करते, सॉरी कोड़े वाली बात चल रही थी ना। मैं घूम के आ रहा हूँ, अब अगर पकड़ लो तो पकड़ लो, मैं डायरेक्ट नहीं बहुत बात करता, ठीक है? मैं ऐसा घुमा के बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट अगर बात करूँगा तो पकड़ जाऊँगा। बाकी रईस भाई सलाम अलैकुम, दिल तो पागल है, चलो तो ये गाना मैं ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ भाई साहब। दिल तो पागल है दिल दीवाना है, 1997 का ये गाना जिसे गाया है लता और उदित ने, और ये मूवी है दिल तो पागल है। तो सबसे पहला गाना रईस भाई की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि मुझे कोड़ों से बचना है। आगे फिर एक और ये मैसेज है यूसुफ भाई का, कहते हैं सूरज हुआ मद्दम, क्या गजब का गाना है, फिल्म K3G अच्छा बाकी सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। फिर ये है तू है मेरी किरण। आज यार मतलब मुझे लगा था कि लोग रिक्वेस्ट करेंगे झूमे जो पठान, लेकिन ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। किरण किधर हो तुम, देखना पड़ेगा। देखो यार तू है मेरी किरण से तो नहीं आ रही। तू है मेरी किरण, कभी कभार एच ए आई एन को है इसमें लिखा जाता है। ओके तू है मेरी मंजिल, तू है मेरी, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं सर्च करता हूँ भाई, आप चिंता ना करें सरताज साहब, आपकी बातें सरताज पे। लाइन बनी नहीं लेकिन ठीक है। आकाश के हम होश में अब आए ना आए। अरे उस्मान साहब ये क्या दर्द छलक रहा है आपका, मैं देखता हूँ अगर ये गाना मिल जाता है। बिल्कुल कैन यू प्ले सूरज हुआ मध्यम, हाँ बिल्कुल लिखा है कैन यू सूरा हुआ मैडम। असीम भाषा की रिक्वेस्ट पे और हमारे यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट पे दूसरा गाना हमें मिल चुका है दोस्तों, सूरज हुआ मध्यम। अरे यार एक तो स्पेलिंग का बड़ा चकल्लस है, एस डबल ओ नहीं है, एस यू से होगा सूरज, हाँ ये है। चलो मिल गया, तो दूसरा गाना भी हमें मिल गया और ये गाना गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने, कभी खुशी कभी गम 2001 की मूवी का ट्रैक है। तो ये दो गाना तो अपने को मिल गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और लोगों के देख लेते हैं। आसिफ कमाल का है ये ऑडियो मैसेज कुछ देर में। रमेश कहते हैं फिल्म बादशाह से सॉन्ग है हम तो दीवाने हुए यार, ये भी अच्छा गाना यार, कुछ भी कहो यार। नए ज़माने के भी हों और चाहे पुराने ज़माने के, गाने तो भाई लाजवाब है शाहरुख खान के। तो यासिर देसाई आर्टिस्ट हैं, ये गाना आई गेस मिल तो गया है बट चेक करना पड़ेगा, है ना। वो एक ये भी होता कि अरे वो रिमिक्स वर्जन है या नए कुछ अलग भी आर्टिस्ट गाते रहते हैं, लोकल आर्टिस्ट कोई गाते थे। तो रमेश भाई आपकी रिक्वेस्ट पर भी बाकी और मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम, आज एक अरेबिक सॉन्ग भी ऐड कर दो बड़ी मेहरबानी होगी। अरेबिक सॉन्ग एक ही है जो शाहरुख खान का है, झूमे जो पठान, ठीक है। अगर ये मिल गया मुझे तो अरेबिक वर्जन है। चलो यार आज मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे कुछ लोग कहते थे ना यार वो नेपाल का गाना प्ले कर दो और थीम है सलमान खान की या मीका सिंह की, नेपाली गाना तो गाया नहीं है, लेकिन अरेबिक का झूमे जो पठान हमारे पास है, जमीला एल बदौनी और ग्रीनी ने गाया है, ये गाना प्ले करेंगे। लेकिन इन तीन गानों के बाद, दिल तो पागल है, सूरज हुआ मध्यम और हम तो दीवाने, इन तीन गाने के बाद ये अरेबिक वर्जन आएगा। फिलहाल सबसे पहला गाना इलियास भाई की रिक्वेस्ट कुछ देर में, लेकिन आप भी अपने मर्जी के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर है हमारा व्हाट्सएप का 666-221-07।

आए हाय क्या बात है हाला हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे फजील के साथ 4:23 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। इतने सारे रिक्वेस्ट है, शायद मैं कंप्लीट मुकम्मल ना कर पाऊँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाते हैं यार। देखो यही वजह है कि वो शानिया वाले भाई फिर कॉल कर देते कि बाहर मिलो तो मैं बताता हूँ। तो माजरत के साथ, अगर आपकी रिक्वेस्ट रह जाए तो बाहर कोड़े लेकर मत खड़े होना मुझे। और आपको तो पता भी नहीं है कि हमारे ऑफिस का दूसरा पीछा बैक डोर भी है तो आप बेवजह आएंगे, खड़े होंगे, फिर आपका टाइम भी ज़ाया होगा और मैं गाने फिर से किसी और के प्ले कर दूंगा। ठीक है, मैं बैक डोर से निकल जाऊंगा। तो बाकी ये है कि कई बार आपके अपने मर्जी के गाने प्ले हो जाते, कई बार नहीं होते। जब नहीं हो तो समझ लेना कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, बाकी मैसेज, ये सबसे पहले जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो अरेबिक वर्जन का है, जो रिक्वेस्ट किया था इलियास भाई ने, बड़ी मेहरबानी होगी। तो यही एक गाना है जो झूमे जो पठान यानी कि शाहरुख खान का गाया हुआ, शाहरुख खान का नहीं, शाहरुख खान के मूवी का है, जो अरेबिक वर्जन में भी है। फिर दूसरे नंबर पर है कल हो ना हो, जिसे रिक्वेस्ट किया है राहुल रैन ने, इनके गाने को अपन प्ले करेंगे। और फिर सरताज की रिक्वेस्ट पे जादू तेरी नज़र भी मुझे मिल गया है। तो ये तीन गाने बैक टू बैक आ रहे हैं। फिर बाकी लोगों के मैसेज, आसिफ कमाल ने कहा था एक गाना प्ले करने को, लेकिन वो उस मूवी में है नहीं, मुझे दिखा नहीं। जो उन्होंने कहा था फजल भाई तुम कैसे हो, मैं एक सॉन्ग के लिए बोलता हूँ संजय दत्त का। भाई संजय दत्त का है लेकिन आज नहीं। संजय दत्त का जन्मदिन आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, और ये जुलाई एंड में आएगा। ऑब्वियसली जुलाई एंड अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, तो तब आप रिक्वेस्ट करिएगा, अपन जरूर प्ले करेंगे। उस्मान दारविश आपका नाम है। और अक्जई, प्यार प्यार मेरे यार हो गया, वल्ला वल्ला तुमसे प्यार हो गया। ओहो क्या बात है, उस्मान भाई की अपनी ये रिक्वेस्ट बिल्कुल मैं कहता हूँ संजो के रखो भाई, अपन जरूर प्ले करेंगे। हाय ब्रो कैन यू प्ले तुमको पाया है तो जैसे खोया है। आय हाय इसरार जान, क्या जबरदस्त गाने की रिक्वेस्ट की है। मैं ये गाना जरूर प्ले करूंगा अगर मिल जाता है तो। पहला तो क्राइटेरिया यही है कि मिल जाए, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि समय तो बचे। फिर उसके बाद आमिर सुल्तान है और सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम आमिर सुल्तान भाई। फिर मुमताज़ का भी मैसेज देख रहा हूँ, नसीम कह रहे हैं वीर ज़ारा का कहीं प्यार ना हो जाए, काइंडली प्ले तुझ में। ये वाला तो नहीं है हमारे पास, शफीउल्लाह साहब जो आप गाना कह रहे हैं, सलाम किया वालेकुम अस्सलाम, आई हैव बीन लिसनिंग योर प्रोग्राम, इट्स एक्सेलेंट, बहुत शुक्रिया, कीप गोइंग, मैं जाता रहूं, कीप गोइंग, जज़ाकअल्लाह दिल से देसी। फिर आखिर में इतनी तारीफ करने के बाद जो गाना आपने कहा है वो गाना हमारे पास नहीं है। सूरज हुआ मध्यम मैंने प्ले कर दिया असीम बादशाह की रिक्वेस्ट पे। फिर क्या वॉज ड्राइविंग नोटिस, थोड़ी बहुत तो गलती चलती है मेरा भाई, कोई बात नहीं है। हेशाम साहब का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, हाउ आर यू, मैं बहुत अच्छा हूँ मेरा भाई, पैरों में बंधन है ये गाना अबू सिदरा की रिक्वेस्ट पे, पैरों में बंधन है। ये यार बहुत ही ज्यादा पुराना तो है लेकिन ये है कि नहीं, मोहब्बतें, हाँ ठीक है 2000 का ये गाना है, अच्छा सॉन्ग है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम बचा तो अपन ज़रूर प्ले करेंगे क्योंकि बाकी लोगों की रिक्वेस्ट भी हमारे साथ है। ठीक है, तो अगर ये गाना हमें मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा, तो अपन प्ले करेंगे। फिर उसके बाद हमज़ा कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, बच लिए मेरे भाई हाँ भाई अपन बच लिए, बैक डोर से गायब हो गए थे हम, तो इतना तो आता है कि कैसे बचना है, डक करना बहुत सही तरीके से आता है। रईस खान ने नेक्स्ट सॉन्ग दिल की तन्हाई को आवाज़ बना लेते हैं। अरे मेरा भाई ऐसे जले कुकड़े गाने हैं, एक दिन तेरी बाहों में, हाँ ये भी गाना तो है लाजवाब। रमजान खान, सही नाम मैंने पढ़ा है, ये वाला गाना भी अपन ढूंढेंगे अगर मिल जाता है तो, क्यों नहीं, बिल्कुल अपन प्ले करेंगे। और फिर उसके बाद ये दिल आशिकाना, उफ हाय हाय, एमडी शेख मोहम्मद शेख अस्सलाम वालेकुम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, क्या आप एक सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल मैं ढूंढता हूँ फिर प्ले करता हूँ। अभी फिलहाल ये तीन गाने एंजॉय करिए, सबसे पहले झूमे जो पठान, फिर है कल होना हो और तीसरा है जादू तेरी नजर। इन तीन गानों के बाद वापस आते हैं और फिर कोशिश पूरी रहेगी, अगर गाना मिल गया टाइम बचा तो प्ले जरूर करेंगे। FM 107 पे फजील के साथ हैं आप दिल से देसी।

हां जी हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे फजील के साथ हैं आप, और ये गाना मुझे मतलब ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा लग रहा है। आपने देखा वो लाइन कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी का। अरे कंसेंट नाम की भी चीज होती है, ये कोई बात है? अगले से पूछो तो कि हाँ नहीं ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो आप मैं आपकी ही हूं किरण। ये तू हाँ कर या ना कर, तू मेरी है, ये कंसेंट भी होता भाई साहब, कुछ जबरदस्ती कोई नहीं होएगा, वरना फिर लाठी तैयार है। कड़वा तेल लगा के और जबरदस्ती, अगर आजकल तो जबरदस्ती करना भी नहीं, नीला ड्रम पूरा तैयार रखा हुआ है मेरे घर में, तो बड़े वाली वेबसाइट से नीले ड्रम का ऑर्डर भी हो गया है। जबरदस्ती का मैंने अगर इधर उधर कुछ किया तो नीले ड्रम में पैक। जिनको पता है नीले ड्रम क्या, उनको पता है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, आप पहाड़ से धक्के वाली बात भी समझ सकते हैं। मेरी वाइफ कहती है अगर पहाड़ों पे चलो, पहाड़ों पे तो मैं डर के नहीं जाता भाई, पहाड़ों पे मगर ना पहाड़ों पे नहीं जाऊंगा, समतल जगह चलो, कतर, कतर में जहां कहोगे वहां घूमेंगे, पहाड़ों पे तो नहीं जाऊंगा मैं। ला ला ला ला, और उधर पुणे मुंबई साइड वाले पहाड़ पे तो बिल्कुल लोरावना की तो बात ही मत कर लेना। पहाड़ी जगह पे तो नहीं जाऊंगा मैं, बीच चल चलो वो अच्छा है, समंदर पानी तैर भी लेता हूँ मैं। ये जगह ठीक है मेरे को चलेगा, लेकिन इधर उधर की बात नहीं। खैर दोस्तों, जल्दी से और दो गाने अपन प्ले करते, दो गाने ये छोटे छोटे गाने हैं, अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा का गाना गाया हुआ जन्म जन्म, क्योंकि ये रिक्वेस्ट किया एक भाई ने, और फिर भोली सी सूरत लता और उदित नारायण की आवाज़ में। जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पहचान कौन गेम खेलेंगे एक्चुअली, और मुमताज भाई की रिक्वेस्ट है भोली सी सूरत, ये दूसरे नंबर पर आएगा, लेकिन पहला गाना जो आ रहा है वो आ रहा है अहमद की रिक्वेस्ट पे, आई गेस। नहीं नहीं अहमद भाई माजरत, आपका गाना मुझे मिला नहीं। ये है जन्म जन्म, और AS7 लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ है इनका, फुटबॉल के ये शौकीन है, नाम नहीं लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन इनके रिक्वेस्ट पे जन्म जन्म ये गाना एंजॉय करें FM 107 पे दिल से तैसी।

लता और उदित नारायण की आवाज में ये ट्रैक सुना आपने एफएम 107 पे। हेलो हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या है हाल चाल। और अब वक्त आ गया है पहचान कौन गेम खेलने का। और एक गाना मैं बहुत देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा था, भाई ने लाइन लिखी थी और फिर जब मैंने थोड़ा सर्च रिसर्च और उंगलियों की मेहनत करी ऐसा तो पता चला ये 2007 की एक मूवी है, ओम शांति ओम, इसका गाना प्ले करने को कह रहे थे। और इस गाने का नाम है मैं अगर कहूँ। बहुत ही अच्छा गाना है, अहमद भाई की रिक्वेस्ट पे, और इन्होंने लिखा था तुमको पाया है तो जैसे खोया हो। तो मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ऐसा होता ना कभी कभी लोगों की राइटिंग नहीं समझ में आती, तो वो मैं देख रहा था ये कौन सा गाना है। फिर मुझे याद है ये कहीं बीच की लिरिक्स होंगी, और फिर रिसर्च वगैरह करने के बाद पता चला ये गाना है मैं अगर कहूँ। ठीक है, तो ये गाना लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा ही प्ले होगा, लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह प्ले होगा। लेकिन उससे पहले चलिए खेलते हैं गेम जिसका नाम है पहचान कौन। नए लोगों के लिए बता दूँ, ये गाना ऐसा है या ये गेम ऐसा है कि गाने से बीच से मैं लिरिक्स काटता हूँ और यहाँ पर प्ले करता हूँ, और आपको गाने का हुक या गाने का नाम बताना होता है। बड़ा सिंपल सा ये गेम है, ठीक है। तो आप इसे व्हाट्सएप पर खेल सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 666-22-107। तो सबसे पहले होगा ये कि एक गाना, एक हुक या कहीं बीच से म्यूजिक जो है, लिरिक्स, वो मैं प्ले करता हूं। आपको गेस करना होगा गाने का असली नाम क्या है या हुक में गाने का असली नाम क्या है। तो सबसे पहला गाना, और मुझे लगता है कि आज 100% लोग पहचान जाएंगे, बहुत ही आसान है क्योंकि ऑब्वियसली शाहरुख खान है, उनके इतने बड़े फैंस हैं। सबसे पहला गाना जो आ रहा है वो है ये।

0: हाँ जी बताइए गाने का नाम क्या है। इसमें गाने का नाम जल्दी से आपको बताना है, व्हाट्सएप है 6662210007 666221107। और मैं यहाँ हूँ, लिखा है यूसुफ भाई ने, नहीं मेरा भाई ये गाना सही नहीं है। हेशाम भाई ने बिल्कुल सही पहचाना, बहुत ही उम्दा, क्या बात है। लिखा है वीर जारा, गाने का नाम बताओ। दानिश आज़ाद ने बिल्कुल सही पहचाना है, बहुत ही उम्दा, क्या बात है। मोस्टली लोगों ने तो सही पहचान लिया है, और एक्चुअली में गाने का नाम आप लोगों ने सही बताया, जिनको मैंने कहा गलत तो गलत, जो सही है वो गाने का नाम बिल्कुल सही बताया, ये है वो गाना।
1: का कारवां और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां।
0: यार सुर निगम की आवाज यार आप दिन भर सुन सकते हैं, दिन भर। शाहरुख खान के दूसरे गाने की तरफ आते हैं और आपको ये गाने का नाम गेस करना है, दूसरा गाना कौन सा है। वेल, थोड़ा सा हिंट दे दूं, शिल्पा राव और केरलिसा ने गाया है इस गाने को, नए जमाने का ये ट्रैक है। पहचानिए इस लिरिक्स को और बताइए गाने का नाम।

चलिए पुराने गाने तो आप पहचान ले रहे हैं बड़े आसानी से, नए जमाने के इस गाने को पहचानिए। वेल, कई लोगों का पहले गाने का भी अभी तक आ रहा है जवाब। फलक ने जवाब दिया है बिल्कुल सही, दूसरे गाने का। फिर ये लिरिक्स बीच की पढ़ दी है, ये है मोहम्मद इमरान, गाने का नाम बताना है। शेख इरफान ने भी गाने की बीच की लिरिक्स पढ़ दी है, मंसूर ने भी बीच की लिरिक्स पढ़ दी।

दी है। साबिर ने भी बीच की लिरिक्स पढ़ दी है, गाने का असल नाम बताइए। बिल्कुल, ये पठान मूवी का ट्रैक है। फिर एक और ये जवाब है, सबसे पहले जो गाने मैंने प्ले किए, सबसे पहला जो गाना था वो था दो पल, बिल्कुल वीर ज़ारा मूवी का ट्रैक। और फिर एक ये जवाब किसने दिया है, नाम है सैयद शाह सैयद, और शाह सैयद ने पहला तो ही बताया, दूसरा अगेन बीच से आपने लिरिक्स जो है वो पढ़ दी है। नाम याद नहीं आ रहा है, दानिश आज़ाद का कहना है। और सही अगर किसी ने पहचाना है तो वो सिर्फ एक बंदा है, नाम है उनका हिशाम। क्या बात है, हिशाम भाई ने ही बिल्कुल सही पहचाना, और यूसुफ भाई ने भी। गाने का असली जो नाम है वो है बेशरम रंग।

गाने की जो आपने बीच के लिरिक्स पढ़ी है वो है ये जो शिल्पा कह रही है। हाँ, लेकिन गाने का असली नाम है बेशरम रंग। वो ऑल दो बीच में आता मैं क्योंकि अपन जल्दी जल्दी में तो काट नहीं पाए, लेकिन तीसरा गाना अगर आपने पहचान लिया जो कि 100% पहचान लेंगे तो बादाम तुम्हारे भाई की तरफ से।

भाईजान मैं बता रहा हूँ, ये तो इतना आसान है जैसा उन बच्चों के लिए जो नीट का पेपर देते हैं। खैर बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, ये बेहद आसान है। ये अब आप बताइए, क्या ये आप पहचान पा रहे हैं? बिल्कुल सही पहचाना है एक भाई ने, जिनका नाम है अदील। आए हाय, बहुत ही उम्दा। फिर दानिश आज़ाद ने भी बिल्कुल सही पहचाना, हिशाम ने सही पहचाना है, और साबिर ने बिल्कुल सही पहचाना, यूसुफ ने बिल्कुल सही पहचाना है, फलक ने सबसे पहले जवाब दिया था, इन्होंने भी सही पहचाना है। बेशरम रंग उस्मान ने काफ़ी देर बाद जवाब दिया तो ले नहीं सकते, और यूएसए से सुन रहे हैं सैयद शाह सैयद। वो माशाल्लाह, दूर दूर से लोग आए। फिर उसके बाद मुमताज़ ने कोई जवाब नहीं दिया है, सिर्फ हंसी हंसी है। फिर उसके बाद ये मैसेज है, सारा जमाना, अरे सारा जमाना नहीं है, गाने का असली नाम ये है।

में अहमद भाई ने भी कोशिश करके बिल्कुल सही जवाब दिया है और बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा। बहुत कम लोग थे जो गलत जवाब बता रहे थे, लेकिन मोस्टली 99% लोगों ने सही जवाब ही बताया। अब इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, क्योंकि जाते जाते एक गाना प्ले करना है जिसका नाम है मैं अगर कहूं, अहमद भाई की रिक्वेस्ट पे, जिसे गाया है सुर निगम श्रेया घोषाल ने। बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक है। ऑल दो अगर ये और शाम के 8-9 बज रहे होते, आप अपने घर की तरफ जा रहे होते, तो ये गाना बहुत ही खूबसूरत लगता। बट ये वक्त भी जब सूरज ढल रहा है तो भी ये गाना बहुत ही प्यारा लगेगा आपको। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, टॉप 10 की लिस्ट में नहीं लेकिन टॉप 15 बिल्कुल हो सकता है। ये गाना है सुर निगम का गाया हुआ, श्रेया घोषाल का गाया हुआ, मैं अगर कहूं, 2007 की मूवी ओम शांति ओम से। एंजॉय करें और फिर सुनते रहे FM 107। फजील के साथ थे आप दिल से देसी। होगी मुलाकात कल शाम 4 बजे।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी सर, का हमारा हो चुका है। अब शेर को हम आग के छल्लों के बीच में से कुदाएंगे। आइए आइए, प्लीज स्वागत है आपका।

0: ठीक है, तो फिर एक छोटा सा ब्रेक, आपको तो पता ही है शो का जो फॉर्मेट है। शाम साहब वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मिलते हैं 11 मिनट 2 सेकंड के बाद शाम के अधिकार, फिर होगी आपसे मुलाकात। जाना अपने यहीं नहीं, बेस्ट जगह पर है, सब यहीं मिलता है भाई, बढ़िया सा जाना नहीं। हाँ,
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. اور بھائی کدھر گیا میوزک کا بٹن؟ ہاں جی हाँ जी, तो मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड. 5:16 हो लिया भाई साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया. हमजा भाई ने मैसेज किया बहुत ही मोहब्बत से, और हमजा भाई कह रहे हैं कि हाल है ब्रो कबीर, थैंक यू फॉर सेंडिंग स्टोरीज. सिंपल स्टोरीज में भी जान डाल देते हैं आप आपके अंदाज से. सईद भाई को बहुत सारा प्यार किया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार. हमजा भाई लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्या ह्यूमन जंगल. अजस की बात कर रहे हो क्या? ये हमारी बातों का सरका थे. आइए, अब शेर जो है आग वाले छल्ले के बीच में से कूदेगा. 50 रियाल है इसको देखने का प्राइस. ये सारे साउंड इफेक्ट्स मैंने अमिता से चुराए हैं. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आप भाई गए तो हमसे भाई, थैंक यू सो मच. कबीर भाई 10 रुपये का ढोल बजा दो. ठीक है मेरे को भाई, ये मुझे सर्विस करने बहुत मज़ा आता है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल बजाऊंगा भाई, कोई टेंशन को नहीं भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं. ये लो, ये हमारे जो भाई हैं इनका नाम क्या है? मकसूद भाई. भाई मकसूद के लिए भाई सारे आ जाओ या खड़े हो जाओ सामने. 10 रियाल दिए इन्होंने. आहा, भाई मकसूद के लिए. हाँ जी, मैं क्या व्हाट्सएप दे आ जाओ. बस 10 ही दिए. मकसूद भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें 10 रियाल दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एक मैसेज एंड बी स्टोरी. ओके, या प्रोग्राम गुड माशाल्लाह. खलील भाई ने, खलील फराशा ने मैसेज किया, इनका अस्सलाम वालेकुम, कैन यू सेंड मी ए स्टडी स्टोरी. मैंने नहीं भेजी है, मैं भाई भेज दूँगा, कोई टेंशन नहीं है. ये लो जी मैं भेज देता हूँ. नाजिया बहन वालेकुम अस्सलाम, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया. एक मैसेज है, मज़ा आ गया भाई, थैंक्स. थैंक यू, कोई बात नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं है. अच्छा, आज की जो कहानी है बहुत ही नॉर्मल कहानी है, लेकिन ये नॉर्मल होने के साथ साथ बड़ी खास भी है. छोटी कहानी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर आपको ये कहानी भी हैरान परेशान कर देगी जब मैं सुनाऊंगा आपको. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आज पता लगने वाली हैं, यू विल लव इट. पर उससे पहले मेरा एक सवाल है. मैं पता है मैं एक वेबसाइट पर गया, और वेबसाइट पर गया तो क्या मेरे सामने आ गई, और ये वेबसाइट जो है कतर में भी ऑपरेट करती है. इसमें क्या ये लोग पता क्या दे रहे हैं? मैं आप सुन के हैरान होने वाले हैं. एक इसमें ना एक अंडे की क्रेट मिल रही है, स्टोरेज क्रेट है, मतलब उसको आप घर पे रखें उस पर अंडे स्टोर करने के लिए. कितने रियाल की होगी आपके हिसाब से? मैं बता रहा हूं आप बता ही नहीं पाएंगे कितने रियाल की होगी. अंडे की क्रेट है, वो मामूली अंडे की क्रेट है, प्लास्टिक का उसका ढक्कन है, नीचे वो शेप लगा हुआ है जिसमें अंडे आप रख सकते हैं. ये एक स्टोरेज बॉक्स है अंडे रखने का, 15 अंडे रखने का. पहले आप बताओ कितने की होगी, फिर मैं बात करूंगा इस बारे में. मैसेज करो आप 666-22107 पर. आई वुड लव टू नो कि आपके हिसाब से अंडे की क्रेट घर पे रखने की कितने की मिल रही होगी इस वेबसाइट पर. नाम नहीं बता सकता वेबसाइट का फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन आप मेरे को एक ऐसी प्राइस बताओ आपके हिसाब से कितने की होगी. मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, कल वाली स्टोरी नहीं मिलेगी आपको मेरी जान. ये कैसे मिस हो रही है लोगों से यार, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार ये लो मैंने भेज दी है. हाँ तो बताइए ज़रा 666-22107 पर. आई वुड लव टू नो. 2 रियाल कह रहे हैं खलील भाई. अच्छा 2 रियाल कह रहे हैं. तबसुम बहन कह रही है 15-20 रियाल. वालेकुम अस्सलाम बहन, अस्सलाम वालेकुम बहन. और एक और मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, 60 रियाल की. अब मैं एक्चुअल प्राइस बताऊं आपको, दिल पे हाथ रखो पहले तो. रेडी हैं आप? तो ये जो अंडे की क्रेट मिल रही है, एक और मैसेज है 18 रियाल. यूसुफ भाई कह रहे हैं अंडे रखने की क्रेट है, अंडे नहीं मिल रहे उसमें साथ में. तो एक भाई 100 रियाल भी कह रहे हैं, ये इरफान हुसैन साहब कह रहे हैं. अब मैं आपको एक्चुअल प्राइस बताता हूँ, इस वेबसाइट पे एक्चुअल प्राइस है

0: 699 रियाल। कितने सही सुने आपने, 699 रियाल। भाई प्लास्टिक के अंडे की क्रेट है 15 अंडे रखने की। मजाक नहीं कर रहा मैं, सही में बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा आपसे। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप खुद देख लेना, कोई टेंशन नहीं। मैं कहूं भाई ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है यार, अंडे ही तो रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है साथ में मुर्गी भी दे रहे हैं। रख लो इसको मुर्गी को, ये एक अंडा सोने की देगी, बाकी जो 14 अंडे हैं वो सारे के सारे बढ़िया एकदम देसी। तो मैं इतना खतरनाक हैरान था, आई एम नॉट किडिंग राइट नाउ, मैं सही बता रहा हूं। मैं बहन पूछ रही ऐसा क्या खास है उसमें, बहन कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। क्या 699 जोकिंग। मैं देखो मैं अभी इन लोगों का जब फोटो भेजूंगा तब इन्हें समझ में आएगा, रुको मैं जरा भेजता हूँ, ठीक है। कोई यकीन ही नहीं कर रहा, मैं इसके बाद सवाल ही पूछ लेता हूँ, पहले मैं इन हैरान परेशान लोगों को कुछ भेज दूंगा तब इन्हें यकीन होगा। मान नहीं रहे ना मेरी बात को, रुको तुम सबको भेजता हूँ मैं, अभी मानोगे, सबके सब मानोगे मेरी बात को। ये और हमारी बहन किधर गई, तब उसमें बहन को भेजा क्या, मैंने नहीं भेजा। हाँ देखिए आप लोग फिर मेरे से बात करना इस बारे में। मोहम्मद भाई ने मैसेज किया है, भाई भेजो भाई, भेज दी मैंने भाई। मकसूद भाई कह रहे हैं हाउ कम बेबी, मे बी इट्स ईरान करेंसी। भाई ईरान करेंसी नहीं है भाई, QAR लिखा हुआ है। क्या है, ब्रिंग रियल मुर्गी, ईट एवरी डे फॉर इयर्स। वही मैं कह रहा हूँ भाई, असली मुर्गी के प्राइस में ये लोग अंडे की क्रेट दे रहे हैं, कह रहे हैं पोर्टेबल है, किधर भी ले जाओ। अरे यार हद हो गई। शाहनवाज भाई वालेकुम अस्सलाम। तो ये मैंने डिस्कवर करी एक वेबसाइट और मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, मैंने कहा ये लोग यार कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं यार, कमाल हो गया, मतलब कोई शर्म लिहाज नहीं है। कह रहे हैं उस ट्रे में अंडे रखने पर उस ट्रे में अंडे रखने पर चूजे अपने आप निकल आते हैं। भाई मुझे भी ऐसे लगता है रेहान भाई, टेक्निकली तो ये होना चाहिए। एक कॉल भी आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मेरा भाई, क्या हाल है भाई के?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपके क्या हाल है? ठीक हो?
0: बढ़िया भाई एकदम।
1: अभी तक
0: भाई? अभी तक तो नहीं, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये आपने सुना होगा अभी किस बारे में बात कर रहा था
1: मैं कब से आपका जो ही सुन रहा हूँ। मैं खुश है कि वेलकम टू द ह्यूमन जंगल।
0: हाँ।
1: और आपकी ये बात सुनकर ना मैं शॉक नहीं हुआ, आपको पता है क्यों?
0: क्यों
1: भाई, ये ऐसे कृष्ण में पहले भी बहुत तरफ देख चुका हूँ।
0: अच्छा ऐसे देख चुके हैं आप? मुझे भाई पहली मरतबा ये साइट मेरे सामने आई, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, मैं कहा ये कोई बात होती है, जस्ट बिकॉज वो पोर्टेबल है तो 700 रियाल की प्लास्टिक की क्रेट भाई।
1: की तो अंदर समेत मिल जाती है,
0: तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब देख रहे हो क्या क्या हो रहा है मार्केट में भाई,
1: 700 रियाल के अंडों समेत मिल जाती है।
0: अरे मैं 700 रियाल है, मुर्गा बांध के देंगे वो, ले जाओ ये बड़ा मुर्गा है, और इनफैक्ट 2 मुर्गे देंगे, कहे इन दोनों की लड़ाई करवाओ, देखो ही नहीं।
1: 700 रियाल में बकरा आ जाता है।
0: हाँ तो अब देख लो। हाँ तो वही तो। ये यूसुफ भाई कह रहे हैं मिसप्रिंट। भाई मिसप्रिंट नहीं है, इस वेबसाइट पे और भी चीजें हैं, तो आपको लग रहा है मिसप्रिंट इसमें। और अच्छा आप चूंकि लाइन पे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना वो मिल रहे हैं वो जो अंडे फेंटने के होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, अरे कुछ तो कहते हैं यार, उन्हें अंडे फेंटने के होते ना यार,
1: फेंटने वाले ही कहते हैं उसको,
0: कुछ भी कहते हो, 10 पीस मिल रहे हैं भाई 500 रियाल के। समझ रहे
1: भाई, ये लोगों के लिए
0: है,
1: प्रीमियम लोगों के लिए
0: सर। अरे भैया प्रीमियम लोग ऑब्वियसली कोई तो खरीद रहा है, तभी चल रही है वेबसाइट ये। मैं इसके बैकग्राउंड में गया पूरी तरह से और मुझे पता लगा ये चल रही है, एंड इट इज एक्चुअली वर्किंग भाई। समझ रहे हैं आप, मैं बहुत हैरान था भाई।
1: चलो किसी गरीब का तो भला हो रहा,
0: पता नहीं कौन से गरीब है जिनका भला हो रहा है भाई। मैं क्या बताऊं मैं, पर ठीक है आज
1: है? मैं पिछले दिनों ना देख रहा था मीन्स के कतन में जो है, कतन में क्या हर जगह पे वैसे ऐसा होता है कि मैं खाने पीने का शौक करता हूँ, खाने पीने के लिहाज से ना चीजें मैं वो देखता हूँ। मैं पिछले दिनों देख रहा था, मैंने यार जिंगर कितने तक का जा सकता है ना, यानी कि एक बर्गर अगर देखा जाए नॉर्मल प्राइस कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पर खत्म हो रही है।
0: अच्छा
1: ठीक है, तो मैंने ये निचोड़ निकाला था कि 6 रियाल से शुरू होकर और एक नॉर्मल बर्गर जो है वो 72 रियाल तक जा रहा कतर के अंदर।
0: भाई साहब ओके ओके,
1: 6 रियाल से स्टार्ट है और 72 रियाल तक का भी एक बर्गर मिल रहा है कतर में।
0: देखो मैं एक बात बताऊं, देखो सिंपल बात है, बर्गर पिज्जा के प्राइस मैं मान सकता हूं, मान सकता हूँ।
1: मैंने आपको बताया कि मैं खाने का देख रहा था।
0: हाँ वहाँ
1: मैं चीज बताई,
0: देखो कोई कोई होटल कह सकता है भाई हम तो मिशेलिन 5 स्टार हैं, 3 स्टार हैं, व्हाटएवर, और वो लोग 100 रियाल का भी बर्गर भेज देंगे, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं क्योंकि मैं वहां जाने वाला नहीं हूँ पहली बात तो। पर ये अंडे की क्रेट भाई, अंडे की क्रेट है यार।

0: उसको तुम 5 सितारा होटल में भी दोगे तब भी 700 रियाल की नहीं हो सकती, समझ
1: रहे? मुझे वही ये इन्होंने बाद में बोलना है ट्रे को आप रूम में लेके जाएं और उसको रगड़े फिर इसमें से जीनी निकलेगा।
0: जीनी निकलेगा, मुर्गा निकलेगा, बढ़िया 4 फीट का मुर्गा निकलेगा कुकड़ू करता हुआ। तो भाई ये सीन है, पर
1: क्या था आपका आज का
0: भाई? यही मौजू था, मैं कहने वाला था कुछ ऐसी चीज आपने खरीदी है जो आपने खरीदी हो ये समझ के बड़ी अनमोल है मेरे लिए, लेकिन वो घर में ऐसी खाली पड़ी हुई है किसी काम की नहीं है।
1: माफ करे, ऐसे काम नहीं करते भाई,
0: नहीं करते
1: हम लोग, खास करके लड़के हम लोग ऐसे काम नहीं करते भाई, हम तो घर की चीजों के इंजर पिंजर खोल देते हैं।
0: वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू भाई।
1: अभी तक का कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया कि चीज लेकर आए हो घर पे, घर वालों ने ये बोल दिया होगा भाई महंगी ले आया क्या, ये हमारे काम की नहीं थी तो ले आया, ऐसा कोई सीन नहीं होता।
0: नहीं भाई बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, फिर तो नहीं हुआ, ऐसी बना के रखिए, बढ़िया है ये, ठीक है मेरा भाई। चलो फिर सुनना फिर आज की कहानी, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको।
1: और कल का भी सुनी मैंने बाद में, मैं चला गया फोन लेकिन बाद में सुनी, मजा आया लेकिन कुछ तजस्सुस थे बस।
0: क्या जैसे
1: क्या क्या तो बाद में दोबारा सुनेंगे तो फिर आपसे मैसेज
0: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर मेरा भाई, जरूर जरूर प्लीज करना मैसेज। ओके मेरा भाई, ओके मेरा भाई, ओके अल्लाह हाफिज़। तो हमजा भाई की बात जो है, खलील भाई को अभी मैं कॉल करता हूँ, खलील भाई थोड़ा सा रुक जाओ, एक और कॉल है उसके बाद मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगा मेरी जान, जरा सा रुक जाओ बस, एक और कॉल कर लें जरा, ये जरा फवाद भाई है मेरे, इनको जरा कॉल कर लिया उसके बाद फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ माय गॉड, कोई तो यूके से वापस आ गया है यूरोप घूम के, आई एम सॉरी यूके बोल दिया मैंने, छोटे लोग हूं ना मैं, यूरोप के ट्रिप मार के आया कोई। Oh, sorry. और फवाद भाई?
2: बस सर, आ गए हम आखिर।
0: आ गए, बड़े खुश लग रहे हो यार, बड़े खुश लग रहे हो।
2: तो बड़ा अच्छा गुजरा सर, दो दोस्तों के साथ।
0: अच्छा, कितना अच्छा गुजरा तो बताना चाहेंगे? बैचलर्स गए थे ट्रिप पे यूरोप पे, ये तो हम सब ने जान लिया था, पर आप क्या अपनी खुशी का राज बताना चाहेंगे या फिर ये बताने लायक नहीं?
2: सर खुशी है कि काम पे भी आके मजा आ रहा है सर।
0: हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस, कमाल है।
2: अभी तक हम वहाँ पे हैं, इटली, वेनिस और मिलान, आगे जिक्र करूँ सर थोड़ा सा?
0: बस मेरा तो इतना ही खून जल सकता है, ज्यादा जलेगा तो उबल जाऊंगा मैं, समझ रहे हो, इतना काफी है, जला लिया आपने।
2: स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर जर्मनी,
0: ये मेरे पता नहीं कानों में गान साफ नहीं है ना बहुत टाइम से, तो कुछ दिक्कत सी हो रही है ऐसे कुछ अजीब सा, और कुछ बोला फवाद भाई?
2: 20 साल बाद ऐसे जाते हुए बड़ा अजीब सा लगा लेकिन बड़ा मजा है।
0: अजीब सा तो कुछ नहीं लगा, ड्रामे कर रहा हूँ, कुछ नहीं है भाई, ड्रामे है, ड्रामे, सिर्फ ड्रामे। अच्छा फवाद भाई, आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी है जो खरीद तो लियो लेकिन घर में ऐसी पड़ी है फालतू में, किसी काम की नहीं आई, जोश जोश में लिया है आप कोई चीज?
2: शायद वो एक कॉफी मशीन थी जो ले ली थी,
0: कॉफी मशीन,
2: बहुत कम इस्तेमाल।
0: क्या बात है, कहता ही फैंसी फैंसी काम हो रहा है भाई, कॉफी मशीन आदमी घर ले आया है। तो बाजी में लेके आए थे ना,
2: काफी अच्छा पड़ी रही, फिर बाद में ऑफिस में लाके रख दी मुफ्त में ऑफर करके ताकि लोग इस्तेमाल करें।
0: भाई ये सच्ची बताओ, ये आपने शोखी के लिए लेके आए होंगे ना, समझ में आ रहा है मुझे, ऐसी दिखाने के लिए? क्यों
2: नहीं दिखाने के लिए, नहीं बस लग गई अच्छी उसको उठा ली बस, फिर उसके बाद नहीं।
0: अच्छा,
2: और एक दफा जूते के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
0: अच्छा वेरी गुड, तो आप
2: तो बहुत अच्छा लगा, उसके बाद पहनना तो अच्छा ही लगा, बस फिर तो
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये देखो। और यूरोप की ट्रिप पे जो खर्चा हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
2: सर इटली कम खर्चा हुआ,
0: अच्छा,
2: स्विट्जरलैंड बहुत एक्सपेंसिव है, फ्रैंकफर्ट भी अच्छा है।
0: अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड,
2: लेकिन इट्स गुड, आपको जाना चाहिए तो अगले ट्रिप में साथ चलेंगे।
0: अरे आपको जाना चाहिए, खुद तो बैचलर्स ट्रिप पे सारे के सारे निकल लिए, अभी हमें 10 साल और लगेंगे मेरे भाई।
2: नीदरलैंड और इस साइड के एरिया के चलते
0: हैं। भाई मेरे को मना किया गया आपके साथ जाने के लिए, पहले वार्निंग दे दी गई है।
2: लिटरली शरीफों वाला ट्रिप था।
0: हाँ
2: ठीक है,
0: अरे मेरे घर वाले नहीं मान रहे भाई, आपके साथ जाने के लिए घर वाले नहीं मान रहे।
2: मेरे पास सबूत है सर, नमाजें सब कुछ चलती रही,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या
2: करें, कोई हेरा फेरी नहीं की, कहीं गलत जगह नहीं गए सर,
0: वेरी नाइस।
2: बस सिर्फ ये कि 25,000 कदम, 23,000 कदम एवरेज ये चलता रहा।
0: अच्छा फिर तो बिल्कुल नहीं।

0: हूँ आपके साथ भाई, इतना नहीं चलने वाला मैं। ये तो बहुत हो गया। अच्छा 23,000 28,000 का तो
1: ट्रेनें बहुत महंगी है सर।
0: हाँ वो तो
1: पैदल से गुजारा करेंगे।
0: थैंक यू सो मच, आप जाइए अकेले, मैं पहाड़ियों में चला जाऊंगा, इंडिया में कोई टेंशन नहीं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे लोग थे दुनिया में। हाँ। हमारे दोस्त ने फोन को घुमा दिया, सोचे इटली में घुमा दिया,
0: फोन गोदी खो दिया इटली में,
1: मिल भी गया,
0: मिल भी गया,
1: और वो बंदे ने खुद दिया कॉल कर उठा के।
0: क्या बात है, क्या बात है यार, एक बार ऐसा पाकिस्तान या इंडिया में ट्राई करवाओ उनसे, तब मानूंगा, तब चमत्कार मानूंगा।
1: कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा, यूके में ना आए।
0: हाँ तो वही तो,
1: आपका फोन ले जाएंगे वो।
0: नहीं लेकिन
1: वहां पे लाइन लगी हुई है, इससे उस साइड पे फोन पे बात ना करें।
0: But I'm really happy के आपने अब rejuvenate होके आए हैं, that's the best part, and I'm really happy for you मेरे भाई, thank you so much। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और फवाद भाई के बाद एक मैसेज आया मेरे पास, कबीर मैंने वो एक ऐसा हैंडल की तरह एक टूल होता है ना शूज़ के, हाँ शू जूते पहनने के लिए, उस शू के पीछे साइड में रख के, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, वो लिया था बहुत पहले लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया भाई, मेरे घर पर पड़ा हुआ है वो, फालतू में पड़ा हुआ है फालतू में। एक मैं एक और सामान बताता हूँ आपको, मैंने ना पीठ खुजाने वाला वो लिया था एक वेबसाइट से, वो हाथ है पीठ खुजाने वाला भाई, सबसे बढ़िया मेरा इन्वेस्टमेंट है वो। पूरे 11 रियाल का आया था, पूरे 11 रियाल का, उससे बढ़िया चीज मैंने जिंदगी में ली, इतनी सही चीज है ना वो। एक कॉल आ रही है, रुको। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया भाई, आप सुनाए क्या हाल है?
2: अल्लाह का शुक्र है भाई, आप बताओ।
0: बस भाई शानदार चल रहा है भाई, एकदम शानदार। तो बताइए कोई ऐसी चीज खरीदी है आपने, जो खरीद तो ली उसके पास ऐसी पड़ी हुई है वो घर पे?
2: ऐसी चीजें बहुत सारी, क्योंकि ऑनलाइन हो जाती हैं कभी कभी मिस्टेक।
0: ऑनलाइन मिस्टेक, क्या बात है, क्या मिस्टेक हुई भाई, बताना चाहेंगे?
2: मतलब वो सीन है ना कि जैसे कि जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है।
0: हाँ हाँ।
2: अब ऑनलाइन जो चीजें दिखती हैं कि मतलब भाई वाओ वेरी गुड, ये तो ये इसको लेते ही ऐसा लगेगा कि जिंदगी का असली मजा आने वाला हो, लेकिन जब वो आती है सामने तब पता चलता है वो दा बाहर निकली चुकी है।
0: क्या मंगाया गया था, मंगाया गया था?
2: मैंने बताऊंगा नहीं वेबसाइट, वेबसाइट का नाम, एक बहुत सारा आइटम मंगाए थे, जैसे कि कार में एक अपना वो परफ्यूम लगाने वाला, वो दूसरे दिन खत्म हो गया। एक
0: और क्या मंगाया?
2: और एक फिशिंग रॉड मंगाई थी जो दिख बहुत बड़ी रही थी, उस पर लिखा हुआ अभी तक साइज, पर जब आके देखा तो पता चला वो तो बहुत छोटी है यार, मतलब 4-5 साल के बच्चों के लिए थी।
0: कि मच्छी भी हाथ पकड़ के बोले अरे इधर आ यार, यहाँ से पकड़। अच्छा
2: अभी सुनो, और क्या था, और एक आइटम और था यार, कुछ उससे देख के तो मैं बहुत हंसा था। हाँ दरअसल उस पे लिखा हुआ था एक टैबलेट।
0: अच्छा।
2: और उसके प्राइस भी अराउंड 110-130 रियाल थे।
0: ठीक है।
2: और जब वो आया तो जब मैं उस पर वेबसाइट पर चेक कर रहा था, जब उसको मैं शॉप कर रहा था, तो वहां पे पूरी एग्जैक्टली डिटेल नहीं थी। लेकिन जब वो आ गया उसके बाद पता चला वो टैबलेट का कवर था भाई, टैबलेट तो था ही नहीं।
0: बेहतरीन बेहतरीन। एक साथ इतने सारे धोखे भाई, ये जो भी वेबसाइट से आपने लिया है आपको टारगेट किया होगा उन्होंने, क्योंकि इतने सारे धोखे एक साथ तो एक आदमी के साथ नहीं होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा हो गया।
2: मतलब वो था तकरीबन 300-400 रियाल का वो पूरा एक पैकेज था, 5-6 आइटम थे।
0: अच्छा।
2: उनमें भाई साहब एक भी आइटम ऐसा ही नहीं था। हाँ, हाँ, एक आइटम निकला था काम का।
0: हाँ,
2: जो कार का जो वैक्यूम क्लीनर होता है ना।
0: हाँ, बस वो काम का निकला,
2: वो काम का निकला, उसको मैंने 1 साल तक रगड़ा अच्छे से।
0: वेरी नाइस भाई, चलो कुछ तो काम आया, वेरी गुड।
2: बाकी सारी चीज बेकार।
0: अरे यार कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम भाई, और तो क्या ही कह सकते हैं, कम से कम आपके साथ वो नहीं हुआ कि लोगों ने फोन ऑर्डर किया साबुन मिल गया, ऐसा भी हुआ है भाई पहले तो, पर अच्छी बात है कि साइज
2: में अभी भी होता है,
0: अभी भी होता है, अग्री अभी भी होता है भाई, करेक्ट। पर थैंक यू सो मच भाई, बोलो।
2: सुन तो लो, वो क्रेट का क्या मतलब था?
0: भाई एक क्रेट है, एक वेबसाइट मिल रही थी उस पर मैंने देखा, अंडे की क्रेट है पोर्टेबल, सिर्फ अंडे रखने के लिए, और वो 600-700 रियाल की है।
2: अच्छा एक चीज बताओ, मैं उस इंसान की हिम्मत को दाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ यार, उसने 700 रियाल का सामान मतलब ऑनलाइन, मतलब उसने बिल्कुल ही कस्टमर्स को बोल दिया कि तुम बेवकूफ हो, पागल हो, तुम्हें खरीदनी है। हाँ।
0: भाई लेने वाले हैं तभी तो बिक रहा है माल, कोई तो होगा, अल्लाह का बंदा तो कह रहा होगा नहीं मैं तो 700 रियाल दूंगा अंडे के क्रेट के लिए, तो कोई तो है ना, तभी बिक रहा है माल, वरना कहां से बिक रहा होता। तो ये आया वेबसाइट, तो मैंने
2: भाई वही खरीद।

0: मेरा होगा जो VVVIP या फिर जो अल्ट्रा प्रो मैक्स
1: रिच। हाँ, फालतू के जैसे आप पढ़ोगे वही ले रहा होगा, ये तो फैक्ट है भाई, फालतू के एकदम। हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा था।
0: चलो भाई, ध्यान रखो मेरा भाई।
1: आप भी ख्याल रखिए मेरा भाई, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। और शेर भाई का मैसेज क्या है, यूसुफ भाई ने कह रहे हैं या कबीर मेरे पास भी है पीठ खुजाने वाला वुडगा। अच्छा, वुडगा आपके पास? अब बहुत ही यूजफुल है ना, बहुत मज़ेदार चीज़ है वो, पीठ खुजाने का मिलता है, उसको हाथ लगा होता है कोने में और डंडा सा होता है वो। कह रहे हैं मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, इट्स रियली यूजफुल। और भाई मैंने एक सर पे मसाज करने वाली एक वो वाइब्रेटिंग मशीन मंगाई थी, ओ भाई साहब, अगर वो लगा ली टीवी देखते हुए 2 मिनट में गए आप, ऐसे जली वली जैसी आवाज़ निकलेगी आपकी, एकदम फैल जाओगे बिस्तर पे। वैसे सर जी मैंने गिटार लिया फिजूल, अरे गिटार ले लिया भाई, गिटार के साथ क्या है पहले सीख के लेना चाहिए, ये मैंने भी एक बार कर चुका हूँ मैं। ये रिजवान भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो भाई, रात का ख्वाब में FM 107 का ऑफिस और आप दिखे सच्चे में। भाई रिजवान भाई मैं ख्वाब में आने लगा, मैं तो सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखता, आपके ख्वाब में पहुंच गया मैं, मुझे अपनी विजिबिलिटी को और घटाना पड़ेगा। तो बस मैं लिखती है, मैं एक फ्रूट एंड वेजिटेबल स्लाइसर चॉपर लिया था पाकिस्तान फेस्टिवल से और वो कोने में पड़ी हुई है, कभी वैसे ही डिज़ाइन नहीं बने मुझसे जैसे उस सेल्समैन ने फटाफट बनाकर दिखाए स्टॉल पे। ये स्कैम आपने बहन अपने साथ किया है, ये उसने नहीं किया, ये आप उस पर नहीं डाल सकती। एक भाई ने बहुत ही कॉमन चीज़ जो लोग गलतियाँ करते हैं, भाई ने ट्रेडमिल ली 2 साल से पड़ी है प्लास्टिक लपेट के। हिम्मत करो, हिम्मत करो, ये चीज़ें बिक भी जाती हैं भाई, भेजिए करो। अरसलान भट्ट साहब मेरा भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एम के भाई कहते हैं स्टार्ट द स्टोरी अभी करूँगा, एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम। मलिक वकास साहब कहते हैं कल की स्टोरी बड़ी कमाल की थी, मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया, आप स्टोरी दे देते हैं याद से। ऑफकोर्स मेरे भाई, एक मैसेज है आप लोग हमारा मैसेज नहीं देखते, कौन लोग नहीं देखते, उस्मान और अजय साहब आपका मैसेज देखते हैं, अगर नहीं देख रहे होते तो दिक्कत हो जाती, आपको कभी रिप्लाई नहीं मिलता, तो आपको बीच में कहीं ना कहीं रिप्लाई मिल रहा होगा तभी आपने ये मैसेज किया है। तो अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है मैसेज देखने और पढ़ने में, सीधा मेरी ऐसी तैसी मत किया करो, थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। कमाल भाई, करीम भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, स्टोरी के बाद अभी कॉल उठाऊंगा मैं, क्योंकि मैं स्टोरी की तरफ बढ़ने वाला हूँ। बस एक कॉल मुझे लेनी है, क्योंकि खलील भाई से मैंने वादा कर लिया था, उनकी मैंने कॉल नहीं उठाई थी और उनकी कॉल को हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, सो मैं पहले उनको कॉल कर लूँ उसके बाद स्टोरी की तरफ बढ़ूंगा मैं। खलील भाई बस कॉल उठा लें। बाकी एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाई, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कबीर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं?
1: एक नंबर भाई, एक नंबर, आप सुनाइए मेरे भाई।
2: वो मैं ये सोच रहा था वो सोने के अंडे ना हो,
1: मैं क्या, मुझे लग रहा है मुर्गा वुर्गा दे रहे हैं वो साथ में भाई, अंडा वंडा तो छोड़ो, कह रहे इसको पाल
2: नहीं, 600-700 रियाल में तो सोने के ही अंडे होंगे।
1: अंडे भी नहीं दे रहे ना, कमाल की बात तो ये है, वो तो कह रहे सीधा ही प्लास्टिक की क्रेट है और उसमें बड़ा बड़ा लिखा है पोर्टेबल, कहीं पर भी ले जाओ अपने साथ। अरे यार अब
2: तो
1: भाई
2: तस्वीर में तो अंडे भी है ना।
1: हाँ वो तो उन्होंने रख के दिखाए कैसे रखे जाएंगे उसमें। अब आप सोचिए ऐसी चीजें
2: हैं। अल्हम्दुलिल्लाह,
1: अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बढ़िया,
2: माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैं जिस दिन मिस करूँ बड़ा मुझे महसूस होता है यार, आज कुछ रह गया।
1: थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत खलील भाई, इस प्यार के लिए
2: बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, स्टोरी जरूर भेजिए।
1: बिल्कुल खलील भाई, बिल्कुल, बेशक बेशक, बिना आपके कहे मिल जाएगी आपको, बिल्कुल फिक्र मत करें आप।
2: थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
1: ओके, नो प्रॉब्लम खलील भाई, ख्याल रखिए बस अपना,
2: अल्लाह
1: हाफिज, अल्लाह हाफिज। और भाई की बात, अब मैं सीधा कहानी की तरफ बढ़ जाता हूँ, तो आज की कहानी के बारे में मैं कहूँगा कि ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, छोटी कहानी है, लेकिन है बड़ी कमाल की। सो जस्ट वन प्रोमो आपके और कहानी के बीच में, देन वील प्रोसीड, शुरू करें। इकरम भाई वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट, ये रोजी प्रोमो,
3: ये

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी। हाँ जी, तो जो लोग कहानी लाइव सुन रहे हैं हाथ खड़े कर लो भाई साहब, आप सुन रहे हैं ना, मतलब जो लोग मैसेज कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बिकॉज एक एक अंदाज़ा लग जाता है कि कितने लोग लाइव सुन रहे हैं। तो मैं आज की स्टोरी शुरू करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, बट मैं इसे स्किप नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश करी कि चलो इस कहानी को बाद में सुना देंगे कभी, बट नहीं हुई भाई स्किप। आज मैं सुना ही देता हूँ फिर आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो प्रमोट करता है ना ही कभी करेगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है।

सर्दियों का महीना, और इस वक्त एक जगह पर न्यू इंग्लैंड में, बेसिकली छोटा सा टाउन न्यू इंग्लैंड के नाम से, वहां पे एक ट्रेलर घर देखे आपने, छोटे से घर होते हैं वो, बहुत छोटे से घर होते हैं वो, जब कुछ नहीं रहता दुनिया भर में, जगह नहीं मिलती, लोग कमा नहीं पाते, तो ट्रेलर होम्स में रहते हैं। और न्यू इंग्लैंड में भी एक ट्रेलर होम के अंदर एक 23 साल की माँ, मतलब बहुत कम एज में उनकी शादी हुई थी, तो 23 ईयर्स ओल्ड एक लेडी जिनका नाम था टैबी, टैबी अपने 8 महीने के एक बच्चे को, जो लड़का था, और 2 साल की उनकी बेटी थी, दोनों को नींद के लिए तैयार करती है, बस ये सो जाएं जल्दी से। शी वॉज वेरी वेरी टायर्ड, एंड उनका दिन काफ़ी टायरिंग जाता भी था, क्योंकि एक तो काम नहीं चल पा रहा था, ऊपर से जो काम हो रहा था उससे कुछ ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी। टैबी वॉज रियली रियली इम्पेशेंट, वो बड़ी कोशिश कर रही थी कि बस जिंदगी जैसे जैसे जैसे तैसे चलती रहे। ये डबल वाइट ट्रेलर था, यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी जगह पर था, मैं आपके सामने तस्वीर पेंट करना चाहूँगा कि एक होता है मेन रोड पर घर होना, एक होता है गलियों में घर होना, फिर एक जो इनका घर था वो ऐसी जगह पे था कि आपको कच्चा रास्ते पे जाना होगा, कच्चे रास्ते पे आप जाएंगे, 2-3 पेड़ दिखेंगे आपको, चारों तरफ हरियाली, थोड़े से मुरझाए हुए पेड़ पौधे, झाड़ियां, और उसके बीच में ये ट्रेलर होम। काफी आइसोलेशन तो नहीं है, लेकिन दुनिया से फिर भी कटा हुआ सा। तो बच्चों के सो जाने के बाद टैबी जो थी वो फिर घड़ी की तरफ देख रही थी, वो घड़ी की तरफ इसलिए देख रही थी क्योंकि उनके हस्बैंड के घर आने का टाइम हो रहा था। टैबी के जो हस्बैंड हैं, टैबी के हस्बैंड हाई स्कूल में टीचर थे, और वो लेट हो रहे थे क्योंकि इतना देर उन्हें होनी नहीं चाहिए, बट घड़ी को देखते हुए साफ पता लग रहा था टैबी को दैट ही इज़ लेट, और उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। वो सोच रही थी कि इतनी देर कैसे हो गई, मैं क्या करूं? और वो बेचैनी इसलिए भी बढ़ रही थी क्योंकि वो तुरंत कॉल नहीं कर सकती थी हाई स्कूल में पूछने के लिए कि उनके हस्बैंड वहाँ पे हैं क्या, वो क्या कर रहे हैं। उसकी परेशानी दो थी, एक तो 1973 है तो मोबाइल फोन्स नहीं थे, और जो लैंडलाइन फोन्स थे वो बहुत महंगे थे, और टैबी के पास, उनके हस्बैंड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक लैंडलाइन फोन अपने घर पे रख सके, दे कुड नॉट अफोर्ड इट। टैबी के जो हस्बैंड थे वो राइटर बनना चाहते थे, और उसी के ख्वाब वो बहुत सालों से बुन रहे थे, पर मियां बीवी दोनों को समझ में आ रहा था कि राइटर बनने का जो सपना है अमेरिका में 1970s में, राइटर बनना और फिर कमाना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक दो कहानियां मियां बीवी ने बनाई थी, तैयार करी थी, वो पब्लिश हो गई थी, लेकिन वो बस पब्लिश हो गई थी, पढ़ा किसी ने नहीं, और ऊपर से इतने रिजेक्शन मिले कि बचा कुचा जो इनके पास अमाउंट था, जो थोड़ी बहुत सेविंग थी, वो सब उसी में लग गए, और किसी ने पूछा भी नहीं। आलम ये था कि टैबी और उसके हस्बैंड, उन्होंने तकरीबन 500-600 पन्ने लिखे थे, पेजेस लिखे थे, और उनके हिसाब से वो कहानी बहुत अच्छी थी, उन्हें लगा था ये उनकी ज़िंदगी बदल देगी। एंड वो 500-600 पन्ने लिखने के बाद दोनों के दोनों 8 घंटे इंतज़ार कर रहे थे एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे, उन्हें बिठा दिया था रिसेप्शन पे कि कहा कि अभी बड़े साहब आएंगे, मिलेंगे, वो पब्लिशर थे बहुत बड़े, लेकिन वो आए नहीं। 8 घंटे बीतने के बाद जब दोनों को लगा कि अब आवाज उठानी चाहिए, उन्होंने बोला कि देखिए प्लीज समझिए, 8 घंटे से हम यहां बैठे हैं, तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकती, इतने में

आप मिलने वाले हैं? अभी तो मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ, एक काम कीजिए आप मुझे वो जो आपने लिखा है दे दीजिए, मैं पढ़ लूंगा, जैसा अमूमन होता है। तो मियाँ बीवी क्या करते, बात करने का मौका ही नहीं मिला। जो उनके हाथ में वो 600 पन्ने थे उन्होंने हाथ में दे दिए, सर ये लिखा था। वो ले गए और उन्होंने गाड़ी के अंदर रखे, क्या किया कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं क्या हुआ उसका, कोई आइडिया नहीं। और वो जो 600 पन्ने लिखे थे उनका कोई ऐसी फोटो कॉपी भी नहीं हुई हुई थी कि उनके पास रखी हो। सो वो सब चला गया बस, यूं समझ लीजिए। दोनों के दोनों, टैबी और उनके हस्बैंड, रियली हार्ट ब्रोकन। कोई उनको पूछ नहीं रहा था, चारों तरफ से रिजेक्शन आ रहा था। और इसीलिए ये जो राइटर बनने का सपना था ये धीरे धीरे टूटता चला जा रहा था। बट बस लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात थी। दोनों के दोनों जॉब्स कर रहे थे, एक नहीं दो तीन जॉब्स करने की कोशिश कर रहे थे। टैबी जो थी वो दोपहर में बच्चों को संभालती थी घर पे, और शाम में वो एक डोनट बनाने वाली फैक्ट्री में जाके काम करती थी। और उनके हस्बैंड जो थे वो टीचिंग तो करते थे लेकिन टीचिंग के बाद लॉन्ड्री मैट में भी काम करने जाते थे। तो इन मियाँ बीवी के बीच तीन जॉब्स थी, पर कमाई फिर भी इतनी नहीं थी कि इनका घर बार ठीक से चल सके। टैबी अभी भी उम्मीद में थी कि क्या पता कब कुछ बदल जाए, लेकिन हस्बैंड उनके उम्मीद खो चुके थे। ही बिकेम पेसिमिस्टिक, कुछ नहीं होगा, मैं फालतू में लिख रहा हूं। और एक बात याद है आपको, शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में की थी कि मुफलिसी में क्रिएटिविटी नहीं होती है। जब आपकी जिम में रोकड़ा नहीं होता ना, तो आपसे क्रिएटिविटी नहीं होती है। मैं आपको अगर ये बोलूं कि भाई मैं तुमको पता नहीं दूं, दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा पैसे, और आपकी जेब में ना हो और मैं आपसे कह दूं लिखने के लिए, तो आप नहीं लिख पाएंगे। आपके दिमाग में आइडियाज़ भले ही आएंगे पर वो शायद उतने रिफाइंड उतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि जेब में खनक नहीं है तो कहाँ से होगा। इस वजह से भी टैबी के हस्बैंड पूरी तरह से टूट रहे थे। बहरहाल अपने हस्बैंड का इंतज़ार करते करते टैबी जो थी दिसंबर की 14 इस शाम को वो अपने लॉन्ड्री वाले हिस्से में गई, जो इस ट्रेलर हाउस के पीछे की तरफ था। वहाँ पे अंदर गई, उन्होंने देखा कि बिल्कुल मैस। वहाँ पे जा रही थी कि कपड़े निकालें वॉशिंग मशीन से और सुखाने के लिए लगाएं, लेकिन ये जगह सिर्फ एक लॉन्ड्री की जगह नहीं थी, वहाँ पे एक छोटी सी डेस्क थी, बहुत ही टूटी फूटी सी लकड़ी का एक बेंच सॉर्ट ऑफ, एक छोटा सा ऑफिस एरिया टैबी के हस्बैंड ने बनाया था लिखने के लिए। और वहाँ पर एक लिया हुआ सेकेंड हैंड थर्ड हैंड टाइपराइटर था। उन्होंने देखा कि चारों तरफ सब कुछ फैला हुआ था, खाने पीने का सामान, बर्तन ऐसी पड़े हुए हैं, जो कागज़ हैं इतने सारे कागज़ों पे ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है,

एंड उनकी आंखें नम हो रही थी टैबी की वो सीन देख के, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि उनका हस्बैंड स्लोली डिप्रेशन में जा रहा है, वो चीज़ें संभाल नहीं पा रहा है. और जब आदमी इतना बिखरने लगता है तभी वो चीज़ों को संभालने की कोशिश नहीं करता, और वो सामने नजर आ रहा था. खैर, उन्होंने अपने आंसू पोंछे और सामान को लपेटने लगी. सारे कूड़ेदान को उन्होंने खाली किया एक जगह पे, एक बड़ी सी पन्नी में उसको भरा और फेंकने के लिए जा रही थी. और जैसी जब वो फेंकने के लिए जा रही थी तब एक चीज बड़ी बड़ी अजीब सी हुई. दरअसल जिस पन्नी में वो ये सब कुछ भर रही थी, सारे के सारे कागज, कूड़ा, खाने पीने सब कुछ, जो टिन कैन से सब कुछ, उस पे से तीन कागज जो थे वो जमीन पे गिर गए. एंड वो उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बोला यार क्या हो रहा है मेरे साथ. अब उन्होंने उसको कचरे की उस पन्नी को साइड में रखा, झुकी वो तीन कागज उठाने के लिए. और वो तीन कागज उठा रही थी, उनमें तो एक किसी काम का नहीं था, वो खराब हो चुका था, उस पर बहुत कुछ गिरा हुआ था खाना पीना. दो जो कागज थे वो मुड़े मुड़े से थे, लेकिन उन पर नजर गई टैबी की, और ये कागज कुछ अलग लग रहे थे. और टैबी ने सब कुछ छोड़ के उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया. वो जमीन पर बैठ गई. अब साइड में उनके डस्टबिन वाली जो पन्नी होती है वो थी, और वो जमीन पर बैठी हुई थी और इन दोनों कागजों को पढ़ रही थी. एक दो सेंटेंस पढ़े और वो रुक गई. उन्हें ये पता है कि उनके हस्बैंड जो कुछ भी लिखता है उन्हें पढ़ाता है, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ाया. एंड शी कुडंट बिलीव इट. मतलब क्लियरली उनका हस्बैंड एक सीक्रेट रखा हुआ है उनसे. शी वॉज कंफ्यूज और साथ में क्यूरियस भी कि ये क्यों किया. उन्होंने उन दो कागजों को कूड़े में ना फेंक कर अपनी पॉकेट में रखा. इतने में बाकी कचरे को बाहर फेंका और उनके हस्बैंड उन्हें आते हुए दिखे. वो आए बात करने के लिए बहुत थके हुए, वेरी टायर्ड. फिर उन्होंने बस हाय किया, इज फीलिंग डाउन, और सीधा टैबी ने अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट किया. बोले कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ. तो बोले मैंने क्या किया, तुमने ये क्यों नहीं दिखाया. दोनों कागज हाथ में निकाले और बोली ये क्यों नहीं दिखाया तुमने, मुझसे क्यों छुपाया ये. और टैबी के हस्बैंड करीब आए, उन्होंने दोनों कागजों को देखा और बोले यार टैबी मैं सच बताऊं, आई वॉज एम्बेरस्ड. मैं मुझे इसमें कुछ मजा नहीं आया. मैं लिखने बैठा था, बट आई क्विकली रियलाइज मैं टैलेंटेड नहीं हूं यार. ये तुम्हें भी मान लेना चाहिए, आई एम नॉट टैलेंटेड. अरे कितना वियर्ड लिखा है ये, फेंक दो इसे. और इसलिए मैंने भी फेंक दिया था, तुम भी ज्यादा ध्यान मत दो इस पे. और वो क्या के घर के अंदर चला गया. लेकिन टैबी हार मानने वाली नहीं थी ना. टैबी ने बोला नहीं, मैं आज तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी. और टैबी के हस्बैंड बहस कर रहे थे, अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे यार, मैं और तुम एक फेल्ड राइटर हैं, हमें फोकस करना चाहिए कमाने में. और वो जो लिखा है तुमने पढ़ा, वो कौन छापेगा, कोई नहीं छापेगा टैबी, हम पे लोग हंसेंगे. बट टैबी इस बार कुछ अलग फील कर रही थी. शी वॉज वेरी वेरी सीरियस. शी सेड नो, बिल्कुल नहीं. तुम सुनो, ये जो दो तुमने कागज ये भरे हैं, जो भी तुमने लिखा है, इसे मैं ले जाऊंगी पब्लिशर के पास. और टैबी के हस्बैंड ही वॉज रियली डिसइंटरेस्टेड. उन्होंने बोला हाँ जाओ यार, तुम किसी को भी दे आओ, कुछ नहीं होने वाला टैबी, तुम खामखा टाइम वेस्ट कर रही हो. और अगली सुबह को ही टैबी एक पब्लिशर के पास गई और उन्होंने उन्हें कागज दिए. और इस बार वो हटने के लिए राजी नहीं थी. कोई कितना भी कह ले कि यहाँ छोड़ जाओ, पढ़ लेंगे बड़े साहब, नहीं. इस बार टैबी ने कहा नहीं, आप पढ़िए, पहले पढ़िए इन्हें. और जो पब्लिशर था पहले तो डिसइंटरेस्टेड था, लेकिन फिर उसने देखा उसको, और जब उसने पढ़ा उन दो कागजों को तो दो सेंटेंस के बाद ही वो पढ़ता रह गया बहुत ध्यान से. जो भी भागने वाला था वो पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते जब दोनों कागज खत्म हो गए तो बोला क्या नाम बताया आपने. उसने बोला मेरा नाम टैबी है. तो बोले या मिसेस एक बात सुनिए, ये आगे का कहाँ है, आगे की कहानी कहाँ है. तो बोली अभी बताइए आपको कैसा लगा ये. और कह रहे आगे की कहानी कहाँ है, लगा कैसा, छोड़िए आगे कहाँ है. तो बोली है मेरे पास. तो बोला अरे तो फिर वो लेकर आइए. और नतीजा ये हुआ

कि ये कूड़े में से दो इत्तफाकन गिरे कागज जो थे, जो आधे अधूरे थे, पूरे भी नहीं थे, ये उस पब्लिशर को इतने अच्छे लगे उसने कहा कि आप आगे लिखिए। और अभी तक कोई रकम डिसाइड नहीं है कितनी दी जाएंगी, क्या किया जाएगा, उसने बोला बस लिखिए। वो अपने हस्बैंड के पास लेके गई, उन्होंने बोला कि वो कह रहे हैं लिखने के लिए, और टैबी के हस्बैंड उन्होंने बोला अरे कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें बस ऐसे ही कह रहा है आगे लिखने के लिए यार, वो अपने आप ले लेंगे तुमसे और छाप देंगे, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा, क्या कर लोगी तुम। बोले नहीं हम लिखेंगे। दोनों मियां बीवी इसमें लिखने बैठे और ये पूरी की पूरी नॉवल लिखने के बाद वो ले गए उनके पास। एंड उस पब्लिशर ने ना सिर्फ इस पूरे की पूरी नॉवल को छापा, बल्कि टोटली आउट ऑफ द शॉक इन दोनों को $400,000 दिए। 4 लाख आज की तारीख में $2.5 मिलियन। दोनों के दोनों, इन दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बुक पब्लिश हुई, घर बदला और सबसे पहले लैंडलाइन फोन अपने घर पे लगाया। इस किताब का नाम था कैरी। ये एक हॉरर नॉवल है और टैबी के हस्बैंड आज की तारीख में भी सिर्फ वो एक किताब लिख के नहीं रुके, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम। ये थे स्टीफन किंग, टैबी के हस्बैंड। स्टीफन किंग ने तब से लेकर अब तक ना जाने कितने हॉरर नॉवेल्स लिखे हैं, ना जाने कितने हॉरर नॉवेल्स पे ना जाने कितनी मूवीज बनी हैं, एंड ही हैज बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम, सिर्फ एक किस्से की वजह से जो इत्तफाकन हुआ। उस कूड़े के कचरे में पड़े वो दो कागज जिन पे स्टीफन किंग को भरोसा नहीं था, लेकिन उनकी वाइफ टैबी को पूरा पूरा यकीन था, एंड द लाइफ चेंज्ड फॉरएवर। अपने एक इंटरव्यू में भी स्टीफन किंग ने इस बारे में बात करी और उन्होंने खुद बताया कि मैं तो ये कहूंगा कि जहां पर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, आप हार चुके हैं और आप अब आपके बस का नहीं है, वही पॉइंट है जब आपको रुकना नहीं चाहिए। आप भले ही कुछ ना करें, एक दो कदम बढ़ाएं और रुक जाएं, बात दूसरी है, लेकिन आप जब बिल्कुल हार मान लेते हैं, जब आपको लगे कि आगे कुछ नहीं हो सकता, तभी वो पॉइंट है जब आपको बढ़ते रहना चाहिए, एंड यू शुड नॉट स्टॉप। तो कहानी कहने को छोटी थी, बट आई होप आपको अच्छी लगी हो। 666-22-107 नंबर और एक कहानी आपके हवाले। 666-22-107 पर जरूर बताइएगा कि ये किस्सा आपको कैसा लगा। आई वुड लव टू नो इट फ्रॉम यू। और एक दो मैसेज मेरे पास अभी से आ गए हैं, चलो शुक्रिया बहुत बहुत इतने सारे मैसेज करने के लिए। बट एक सेकेंड ना, हाँ तो इसका बताने के लिए 666-22-107 है भाई। एक भाई कह रहे हैं नंबर स्लो बता दीजिए, आपने किया तो मैसेज स्लो कैसे बताऊँ। 666-22-107। और ये गाना इसलिए क्योंकि बनता है यार ये गाना हर उस शख्स के लिए जो शायद मुझे सुन रहा है और शायद कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई जिद्दी बनना भाई, रुकने का ना है भाई, यार बहन भी। तो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप कहीं तो दिमाग के किसी ना किसी कोने में टकराई तो होगी ये कहानी। बताइएगा अगर ऐसा हुआ है तो। दिल ये जिद्दी है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक
2: हाँ जी अस्सलाम वालेकुम दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आज की कहानी मैंने कहा ना अगर दिमाग से टकराई है तो मुझे बताइएगा क्योंकि क्या होता है कि हर कहानी में लोग कहते हैं मोटिवेशन कहाँ है इतना मोटिवेशन दिया ना आज की कहानी में बरबर गए कुछ मैसेजेस हैं एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग कबीर भाई आज की स्टोरी ने दिमाग को टकरा के दिल को छू लिया आपकी स्टोरी हमेशा बहुत अच्छी होती है जज़ाकअल्लाह मेरे भाई बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण भाई का मैसेज है इनके बाद अरबाज भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कारी मौलाना कबीर साहब एक मैसेज और है परवेज अहमद साहब का थैंक यू सो मच भाई और फॉर स्टोरी थैंक यू सो मच ये मोहम्मद बहन ने मैसेज किया है फिर मैसेज किया है तबसुम बहन ने वो लिखते हैं वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी कबीर भाई थैंक यू सो मच बहना इनके बाद है बहुत ही सुपर्ब स्टोरी थैंक यू सो मच जुमराती रहन साहब जकी भाई ने मैसेज किया है अमेजिंग स्टोरी सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी खादिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया इनके बाद हमारे जी एस के सामने मैसेज किया स्टोरी सुपर ब्रदर भाई अमेजिंग स्टोरी थैंक यू सो मच भाई रहूब रहन साहब और करीम साहब वालेकुम अस्सलाम अम्मार यासर साहब बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया क्या अच्छा स्टोरी भेज दूंगा भाई एक और है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब क्या है तुहाडा की हाला भाजी मैं तो वधिया तुसी दसो एक और मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई ये कहानी के बारे में इतना ही कहूँगा कि मैं भी एक जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे आया हुआ जहाँ पे मुझे भी लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा पर इस स्टोरी ने मुझे पुश किया भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ ऐसा होता है यार किसी के साथ है कोई ऐसी मैं ज्ञान नहीं दे रहा आपको मैं कोई यहाँ पे टेड टॉक शुरू कर दूँ आपको बताऊँ कि ओ कल एक ही रात में सब बदल जाए कुछ नहीं बदलेगा बट एटलीस्ट क्या होता है कि आधे काम ना हमारे इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया क्या बोलेगी तो जितने भी क्रिएटिव स्पेस वाले काम हैं वो इसलिए रुके रहते हैं कि दुनिया क्या बोलेगी आप में से कितने सारे लोग होंगे भर भर के जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं करना चाहते हैं और वो कर नहीं रहे उन्हें लगता है पता नहीं लोग क्या क्या बोलेंगे यार शर्म आ रही है आ रही है वो आ रही है भाई कुछ नहीं आएगी और कुछ नहीं होने का एक बार कर लोगे ना आप हो जाएगा जिसको भी करना है आई एम जस्ट सेइंग क्रिएटिव लाइन के हिसाब से क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ बाकी आपके जो भी आपके सपने मैं दिल से दुआ करता हूँ जाए सपने जो है अल्लाह ताला आपके पूरे करे पर हिम्मत तो ऑटोमेटिकली भाई आपको ही करनी है वो ना तो मैं आपका हाथ पकड़े करवा सकता ना कोई सैयद फर साहब वालेकुम अस्सलाम नाइस स्टोरी भाई थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम हीरो भाई वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम तो भाई डट जाओ जो भी आपने सोच रखी है ना भाई डट जाओ मैं सही बता रहा हूँ हो ही जाता है फैक्ट है ये अब ज़रा मूड चेंज करता हूँ ज़्यादा ज्ञान वाली बातें मेरे पास सूट नहीं करती भाई मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ मैं इसीलिए प्रैक्टिकलिटी के साथ मूड बदलते हुए एक वैसे सर सारी कहानी देखकर मोटिवेशन नहीं करता सब लोग कहेंगे ये सोचता हुआ समय चोरी करूँगा हाई अरे वैसे व्हाट इज दिस आशिक बनाया इस गाने के उस पार हिमेश भाई आशिक बनाया ये मेरी तरह जिनको अगर साइनस है हमारे लिए गाना ही है

भाई साहब 6:08 हो गए, सिगवन आया आशिक आशिक आशिक आशिक आशिक आशिक आशिक।

शाबाशी देगा क्या है? शाबाशी आपने दे दी है, माशाल्लाह काफी अच्छे रिस्पॉन्स आए। सदीकी साहब लिखते हैं, गुड स्टोरी, रियली अ लेसन, किस्मत कभी बदल सकती है इसलिए हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। भाई वही बात है, ये लॉटरी टिकट वाला सीन है, स्क्रैच करते रहो कार्ड को, कभी ना कभी तो लग ही जाएगा, सिंपल सीधी बात। तौकीर अहमद भट्ट साहब, वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं, गुड इवनिंग, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल मेरे भाई, स्टे ब्लेस्ड, वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है यूसुफ भाई ने लिखा था, वो कहते हैं कि सिंपल एंड अच्छी स्टोरी, वो कहते हैं ना कि एक तिनके से किनारा मिलता है, गुड वन, और वो हॉरर नॉवल में एक्चुअली में ऐसी क्या यूनिक स्टोरी थी जिसकी वजह से इतनी शोहरत मिली, एंड क्या उस नॉवल पर कोई फिल्म है? फिल्म नहीं बनी थी इस पे, पर कैरी, के ए आर आर आई ई, ये नाम है, स्टीफन किंग की नॉवल है और बड़ी ज़बरदस्त कहानी, रिवेंज स्टोरी है, एक लड़की के पास टेलीकिनेटिक पावर्स होती हैं, तो उस पर उन्होंने लिखा था। 1970s के दौर में रिवेंज स्टोरी ज़रूर थी, मगर वो हॉरर जॉनरा में इतनी ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं हुई थी, तो इट्स जस्ट अमेजिंग। सो डेफिनेटली उनकी बहुत सारे और भी काम है, वो ज़रूर देखिएगा, फिल्म नहीं बनी है उस पर, पर बाकी उनकी उस पर फिल्म बनी है। फयाज़ भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हैं, डैडी बन गए आप? नहीं भाई, इंशाल्लाह बनेंगे, लेकिन अभी नहीं बने, ये खबर कहाँ से मिली आपको? आए और डीपी भाई, वालेकुम अस्सलाम, टुडे स्टोरी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या है, सुन पाया कल आने की वजह से? भाई सुनो सुनो, आज की कहानी सुना करो, बहुत काम की कहानी है मेरा भाई, ये कहानी सुननी चाहिए। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गोल्ड एग भाई, वो ऐसा ही है मामला मेरे भाई। तो एक और मैसेज है आपसे, ही मैंने रेडियो बताया था, मैंने रेडियो पे कब बताया यार? फैज़ भाई आपने किसी और को सुना होगा मेरा भाई, मैंने कुछ नहीं बताया। फैज़ भाई कह रहे हैं कि मैंने बताया कि मैं पिता बन गया हूँ, मैंने नहीं बताया, ये कैसी कन्फ्यूजन है? चलो थोड़ा बहुत तो मशहूर हो रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम शहराज अंजु भाई, जब अफवाहें बनने लग जाए ना आपके बारे में तो अच्छा लगता है कभी कभार जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और एक भाई कह रहे हैं, भाई हर किसी को शोहरत और हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती मेरे भाई। मैं एक बात बताऊं, एक मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, मगर एक शख्स है, उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया में आधे लोग, आपके इर्द गिर्द भी मोस्टली, आधे लोग क्या, मोस्टली लोग एवरेज ही सोचते हैं और एवरेज ही काम करते हैं। मैं चलो आज आपको एक टास्क देता हूँ, क्या नाम है आपका? रवि नाम है, रवि भाई ऑफिस में या फिर आपके रिश्तेदारों में या फिर व्हाटएवर आपके दोस्तों में दिखेगा, आप कितने लोग ऐसे हैं जो एम्बिशन रखते हैं, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते, जिनका एम्बिशन है। भाई मेरे आसपास नहीं है लोग, मैं क्या बात करूं आपको, एम्बिशन नहीं है लोगों के पास। आप पूछ के देखिए कि उसे क्या करना चाहते हो, बस जी कट जाएगी जिंदगी, चल तो रही है बढ़िया, उनको कोई मतलब नहीं है तो मोस्टली सोच ही हमारी एवरेज उस पर ट्रैक पे, तो क्या करें। एक मैसेज है, भाई मुबारक हो, अरे मैं डैडी नहीं बना भैया यार तो ये किसने फैलाई ये बात, मैं नहीं बनाऊँ भाई, अरे कमाल हो गया। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, स्टोरी तो ज़रूर सेंड करूँगा, क्या क्या अफवाह फैलते रहती है मेरे बारे में, बनेंगे इंशाल्लाह, जब बनेंगे तो खुल के बताएंगे आपको, टेंशन मत लो, लेकिन अभी नहीं बनाऊँ मैं। क्या है, सॉरी भाई व्हाट इज़ पर्सनल, अरे पर्सनल नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ बनूंगा, तुम खुद बताऊंगा, अरे कॉन्ग्रेट्स मेरे को नहीं बोलो, मैं नहीं बना भाई ये क्या हो रहा है, अभी नहीं बनाऊँ मैं, इंशाल्लाह जब बन जाएंगे तो बता देंगे आपको, ये किसने मेरे बारे में अफवाह फैलाई भाई ऐसा अभी नहीं हुआ है, इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह जब होगा तो मैं खुद बताऊंगा कमाल हो गया भाई, खैर बन ट्राई की पब्लिक ये

0: काली काली।
1: सुनो सुनो सुनो, अरे क्या बात है अंजलि, मेरा म्यूजिक कहाँ पर है, चला दो।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते,
1: समझे।

आओ समाजी दे ये अरबाज मैंने मैसेज किया है, क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सर क्या जो बड़ा जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं लोगों को फिर कहूंगा कि कभी सर की वजह से मैं बन नहीं भाई, आप मेरी वजह से कुछ नहीं बनेंगे, अपनी वजह से बनेंगे अरबाज भाई, बड़े आदमी है भाई, पहले आपको मानना पड़ेगा बड़े आदमी है दुनिया।

0: हद मानेंगे मेरी जान। आगे लिखते कराली क्या कारी मौलाना साहब, मुझे कोई वजीफा बताएं, मेरी शादी नहीं हो रही। देखो बच्चे, ये तो हाथ से बताकर नहीं होते हैं, आपको तो पता ही है। है अच्छा ओके, एक और मैसेज आया मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम, ये कह रहे हैं भाई अभी अब्बू नहीं बने आप, कोई बात नहीं कभी तो बनेंगे, पहले ही बधाई ले लो। थैंक यू भाई। शुक्रिया पहले ही। हुसैन अहमद साहब जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, ले लेते हैं, बधाई तो लेनी है, बधाई में क्या है, कोई नुकसान नहीं है। चलो ज़रा कुछ खबरों की तरफ बढ़ जाते हैं। उससे पहले एक कॉल उठा लेता हूँ, कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: क्या हाल है भाई? अरे क्या क्या क्या
1: कांग्रेचुलेशन,
0: किस बात के लिए भाई? किस बात के लिए
1: भाई? बताया भी नहीं हो, बड़े छुपे रुस्तम निकले हो भाई।
0: अरे कौन?
1: अरे ऐसा नहीं होता है भैया, अगर शादी कर लिए हो चलो ठीक है, चुप चुप के कर लिए,
0: हाँ
1: मुश्किल नहीं।
0: हाँ दूसरा पार्ट, अरे समझ
1: ये काम बन गए हो चुपके चुपके, ये
0: नहीं भैया, अरे नहीं भैया, मैं सबसे पहले उछल कूद के बताऊंगा जब ऐसा होगा, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा। तो दुआ करें,
1: वो क्या नाम है, सब मैम वाली बात कहना सही हो रही है।
0: हाँ।
1: कि चुपर उत्तम बंदा है भाई ये।
0: अरे नहीं, वो तो मैं हूँ, पर इस मामले में नहीं हूँ, बता देता मैं। खुद ही बता देता
1: हूँ। क्या बात हो गई यार, तरफ से मुबारकबाद इकट्ठे आने शुरू हो गई,
0: पता नहीं
1: ऐसा क्या हो गया,
0: आई डोंट नो।
1: और कल वाला जो आपने सिम बताया था, वो नीले कुर्ते वाला,
0: कौन सा कुर्ते वाला?
1: आपको हेट भी करता है?
0: हाँ भाई है,
1: मेरे को लग रहा है दुश्मन की साजिश है।
0: अच्छी बात है, अब देखो अफवाह फैलने लग जाए तो आदमी बड़ा हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है, फैलाओ फैलाओ। तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, पर ये वाली खबर तो
1: अच्छा, मजे की लगी कहानी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी लगी।
1: ये था कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो उन्होंने नहीं हारी।
0: हाँ नहीं भाई, क्या मैं बताऊँ, मुझे एक जो कोटेशन बड़ी अच्छी लगी थी, आई नो बहुत लोगों को ये कोटेशन बोरिंग लगेगी, लेकिन बार बार वो कोटेशन मेरे दिमाग में आती है। किसी ने तो कहा था कि आधे लोग ना एवरेज सोचते हैं, मतलब एक टाइम के बाद आगे लगता है अरे छोड़ो यार, कट रही है ना जिंदगी, वहाँ आगे आदमी रुक जाता है।
1: ये हकीकत है भाई।
0: हाँ।
1: और ये वो तल्ख हकीकत है जो हम लोग मानने को तैयार नहीं।
0: हाँ एग्जैक्टली, तो ये आधे लोग मानते ही नहीं है,
1: कोई भी मानता नहीं है कि नहीं यार ठीक है, किसी से भी आप पूछ लो ना, हाँ यार आपकी जिंदगी की गोल क्या है, आपका एम क्या है, किसी को नहीं मालूम।
0: हाँ हाँ, तो वो इसीलिए मतलब गोल की तरफ लोग एक टाइम के बाद बढ़ना छोड़ देते हैं, अगर छोड़ा यार कट तो रही जिंदगी ठीक है। तो वो
1: भाई मैं दूसरों के बारे में क्या बोलूँ, मैं अभी तक मैं अपना खुद डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि क्या बनूंगा, क्या करूंगा लाइफ में, बस ठीक है धक्का चला रहा हूँ, चल रहा है ठीक है।
0: हाँ मतलब आ जाती है एक पॉइंट के बाद, पता होता क्या है, एक टाइम के बाद आपको लगता है कि जिस दिन मैं इंशाल्लाह 2 लाख कमाने लग जाऊंगा तो वहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। मैं दिल्ली वाले सोच बता रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है ऐसा कि 2 लाख मिल जाए मुझे, जब 2 लाख मिलने लग जाते हैं फिर कहते हैं अरे ठीक है आ तो रहे हैं 2 लाख, बढ़िया भाई कट रही जिंदगी, कौन लोड ले। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस, तो वो वाली चीज है और आधे लोगों में है, आधे ज्यादा लोगों में प्रॉब्लम। सो
1: अल्लाह पाक की
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: यही कह सकते हैं।
0: बिल्कुल भाई, आमीन आमीन,
1: एक बार फिर कांग्रेचुलेशन।
0: अरे भैया यार काहे बात का कांग्रेचुलेशन, मुझे आधे लोग कांग्रेट बोल रहे हैं भैया, काहे कांग्रेचुलेशन
1: यार, आपकी आपकी बात जानने किंगर मुंह मीठा कर लिया।
0: काम का मुंह मीठा,
1: मैंने कुछ जुड़े न्यू कर ली, मैं लेकर आया था, मैं स्पेशल कॉल का काई, मैंने चलो
0: खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा आना भाई, खामा खा के लोग पार्टी ले रहे हैं। क्या बात है
1: भाई,
0: बात तो सही है।
1: बात तो सही
0: है, खा लो मेरे से चॉकलेट खा लेना, ठीक है भाई आप भी पूछ रही है। ओके मेरा भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। फयाज भाई भी अरे कांग्रेचुलेशंस किस बात के लिए, मुझे ये तो बता दो क्या रहा है। वालेकुम अस्सलाम भाई, ये अमन भाई ने मैसेज किया, अमन भाई थैंक यू सो मच। यूसुफ भाई आपकी बात बहुत प्यारी लगी मुझे, आमीन उस बात पे, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आपको। अरे अरबाज भाई कह रहे थे कारी मौलाना साहब कोई वजीफा बताओ, हमारी शादी नहीं हो रही है। इस बात पे रिस्पॉन्स किया एक भाई ने, इनका नाम है हुसैन अहमद, वो कह रहे हैं मस्जिद में जाके झाड़ू लगाओ अरबाज भाई, शादी हो जाएगी। अरबाज भाई देख लो, आपको आइडिया दे रहे हूँ, कह रहे कल शाहनिया वाले चाचा ने अच्छा क्लास लिया फजील का, इतना डाटा पूछो मत। वो जो शाहनिया वाले चाचा है ना, उनका मैंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया भाई। वो फिर ना वो बंसी बजाने लग जाते तो फिर ज़्यादा हो जाता है। ए भाई कह रहे भाई वायरल हो गया, सीरियसली वायरल हो गया, खाम खाम। अरे नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन, अरे बाप रे भैया, वकास भाई भी कह रहे हैं। खैर खबरों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कतर की पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो आ चुकी है, जो लेटेस्ट रैंकिंग है, इट हैज बीन रैंक्ड एट 48th पोजीशन ग्लोबली और ये सेकंड पोजीशन पर है इन गल्फ रीजन। ये जुलाई 2026 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के तहत मैं आपको बता रहा हूं।

और ये रिलीज किया गया है डेटा ट्यूसडे को, सो बेसिकली कल ही रिलीज किया गया है। उस डेटा के मुताबिक ये रैंकिंग आई है 48th, और ये जो रैंकिंग पब्लिश की गई है वेबसाइट के थ्रू है, तो कतर पासपोर्ट होल्डर्स जो है ऑब्वियसली दे हैव फ्री वीजा, वीजा ऑन अराइवल अक्रॉस 112 डेस्टिनेशंस अराउंड द ग्लोब, जिसमें यूरोप का शंगन वीजा भी, शंगन एरियाज भी शामिल है। और ये इंडेक्स जो है रिवील करता है जो एवरेज पासपोर्ट अभी है विद कतर का, इट प्रोवाइड्स फ्री वीजा एक्सेस टू 108 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड, और 58 इंडेक्स पे आता है जब क्योंकि लॉन्च किया गया था 20 साल पहले। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है कतर के हिसाब से, वैल्यू हर चीज़ की बढ़ती है, इस चीज़ की बढ़ती रहनी चाहिए। सो कतर एब्सोल्युटली किल्ड इट, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल माय फेलो कतरीज लोकलाइट्स। अब एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक नई सर्विस ऐड करी है मित्राश ऐप पे, जिसके जरिए मिनटों में आपकी जो एक क्वेरीज हैं, कुछ चीज़ें आप पूछना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, वो पूछ सकते हैं जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी से। ये कम्युनिकेट विद अस नाम का एक ऑप्शन आपको मित्राश में दिख जाएगा, जिसके जरिए आप डिपार्टमेंट पे कोई भी अपनी एप्लीकेशन, मतलब सॉरी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप रेज कर सकते हैं। लॉग इन कीजिएगा मित्राश एप्लीकेशन पर, फिर कम्युनिकेट विद अस, फिर स्पेसिफाई कीजिएगा डिपार्टमेंट, फिर अपने सवाल कोई भी क्वेरी हो, और उसके बाद आप देखिएगा कि सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बाकी तो भाई आप समझदार हैं, फोन में दिखी जाएगा आपको। एक और मैं जरा खबर बता दूं कि पीएससीसी जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ने लॉन्च किया एक समर प्रोग्राम जिसका नाम है केयर समर, और ये शुरुआत होगी इसके अगस्त के पहले ही दिन से। और ये प्रोग्राम जो है इसका मकसद है कि फ्री फील्ड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस दिए जाए मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स को। इसमें सिर्फ सिटीजन शामिल नहीं है, सिटीजन और रेजिडेंट्स के लिए है। दिस इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 18 फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स पूरे कतर में, अक्रॉस कतर। और इसमें 6 हेल्थ केयर जो है अलग अलग एरियाज में जो लोकेटेड है वहां पर ये प्रोग्राम रन किया जाएगा। सो बेसिकली जो प्रोग्राम है वो मंडे से शुरुआत होगी इसकी, 3 अगस्त के मंडे से, और वेंसडे तक चलेगा, और बेसिकली 26 अगस्त तक। उसके बाद ऑपरेटिंग 3 दिन ये चलेगा, मंडे ट्यूसडे ते वेंसडे। ओके, और इसी के साथ ये तो मैंने कह दिया, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन कहना मत करो यार परेशान हो गया भाई मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा चलो जरा मूड को सेट करते हैं भाई, अगला गाना डंडा भाई का सिद्धा हरियाणा थे मेरा भाई, एक नंबर लिरिसिज्म है, एक नंबर गाना भाई, छा जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा ली जाए। मगा जी 6:24 हो रहे हैं, सीधा हरियाणा थे मेरा भाई, और आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड इधर ही आज रहे मेरा भाई।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हाँ जी जैसे भी मैं कहा जी ये मुबारकबाद देना बंद करो, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ घर पे जो मुबारकबाद दे, कमाल हो गया।

2221107 पर। और आज कुछ दिन है जो इंटरनेशनली मार्क्ड किए गए हैं उनके बारे में बता दूं। आज है जी मैंगो डे, फेस्टिवल तो खत्म हो लिया मैंगो का, आज मैंगो डे भी है। इसके अलावा आज है ये कौन सा दिन है, वर्ल्ड ब्रेन डे, वर्ल्ड ब्रेन डे, दिमाग का दिन है भाई आज, दिमाग खोलो दिमाग। और इसके बाद है ये कौन सा दिन है, बी अ गुड टीममेट डे, ये तो अपने ऑफिस वालों को और जो आपके ऑफिस में कुछ एक दो सांप नुमा होंगे उनको विश कीजिएगा, आज बी अ गुड टीममेट डे है। इसके अलावा आज है नहीं बाकी अपने मतलब का दिन नहीं है, रॉयल वेल्श शो का आप क्या करेंगे जान के और मैं क्या करूँगा जान के। बाकी एक मैसेज आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, जब आप कहानी सुनाते तो ऐसा लगता है कि आप जो है आंखें बंद करके खुद कहानी में चले गए हैं और आपके चक्कर में हमें भी वो इमेजिन होने लगती है, ये कला हर किसी को नहीं आती। आई रियली विश कि आप वो कहानियाँ वीडियो के फॉर्म में भी हमें दें और हमें यकीन है कि आप क्या आप छा जाएंगे, आप बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगे। भाई ऐसा मेरे बारे में सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है मेरी जान, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया इतना इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस खुशी में एक बढ़िया सा गाना चला जाएगा, 666-22-107 नंबर है, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। बाकी तो ट्रैफिक का हाल बता दीजिएगा प्लीज। तुम शाकलाका डांडा और क्या डोला साइन 6:38 मैजी दो आला कबीर।

देखो क्या है कि अभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शो बिल्कुल खत्म होने पे आ गया तो मैं तो नहीं करूंगा मैसेज, अब तो हो गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्टिल मैसेज। कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि भाई मैं क्या आपको मैसेज, भाई पूछना कैसा है इसमें, करते रहिए। अच्छा अभी कुछ ट्रैफिक हल मुझे बताया लोगों ने, ये अगर आप, मैं खुद बताता हूँ, कल जामिया स्ट्रीट की तरफ अगर आप जा रहे हैं अलहमद स्ट्रीट अली स्ट्रीट से बढ़ते हुए तो आपको ट्रैफिक मिलेगा सिग्नल के पास। इसके अलावा अगर आप मूव करें अलजामिया स्ट्रीट से आगे की तरफ तो एकदम रास्ता क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर। इसके अलावा अगर आप वेस्ट बे की तरफ हैं तो भी मामला एकदम क्लियर है, ज़्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली हैं। इफ़ यू आर मूविंग ये अल कॉर्निश की तरफ से मोहम्मद बिनतानी स्ट्रीट से कनेक्ट होंगे तो भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अल रयान रोड पर हालांकि ठीक ठाक जाम है, इतना कुछ नहीं है। मेन जो आपको मिलने वाला है वो है वादी मुशारिफ स्ट्रीट के पास, और ये जो रास्ता यहाँ से निकलता है अल दीवान स्ट्रीट की तरफ तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। रौदतुल खैल स्ट्रीट की तरफ है तो ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। बाकी एक मैसेज आया है, क्या कह रहे हैं भाई, बाइक वालों को बोलो जरा आराम से। भाई ये मैं बात करना चाह रहा था, इस बारे में कल शो करूंगा अभी मैं। ये भाई जो बाइक पे डिलीवरी करने के लिए निकल रहे हैं मेरे भाइयों, अगर कानों में आपके हेडफोन लगा हुआ है ना, बहुत ही करीब से आगे बिल्कुल बेस आवाज में बोल रहा हूँ, ज्यादा ही सरसराते हुए सांप की तरह सड़कों पे बाइक मत चलाओ मेरी जान। मैं समझ रहा हूँ सामने वाले ने आपको फोन करके हो सकता है धनिया बो रखा हो, मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर कहाँ है, मगर आप अपना जरा ध्यान रखें, इतना कट मार के कहाँ जाओगे हैं। हमें भी तकलीफ होती है जब आपकी बाइक साइड में रुक जाती है, बुरा लगता है भाई, प्लीज ड्राइव सेफली। ये सांप सीढ़ी का खेल सड़कों पर मत खेलो हैं। थोड़ी सी लेट पहुंचोगे कोई बात नहीं यार, पर ऐसे सनसनाते हुए मत निकलो, ये बड़ा सेफ्टी इशू बन चुका है। मैं बहुत प्यार से आपको बताना चाह रहा हूं, प्लीज अपना भाई समझो यार, आराम से चलाओ हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी डर लगता है साइड में कोई बाइक वाले, तुम लोग बाप रे थोड़ा दूर चलाऊंगा मैं, कायदा प्लीज कायदा अपने लिए। और ये जो लोग कॉल करते हैं मेरा ऑर्डर कहाँ है, मेरा ऑर्डर कहाँ है, इतनी जल्दी तो घर पे बना लेते खाना हैं।

फांसी देने का टाइम जा चुका है, 6:50 के 50 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब 51 भी हो चुके हैं, मेरे जाने का वक्त हो गया है। आपसे ज्यादा चाहूंगा लेकिन कल क्योंकि वीकेंड भी है और आप उम्मीद कर रहे होंगे कुछ बड़ा तड़कती भड़कती हुई कहानी आएगी, भाई ढूंढनी पड़ेगी, रिसर्च अभी से करेंगे साइंटिस्ट कबीर साहब और आपको इंशाल्लाह कल बढ़िया कहानी मिलेगी, आज वाली आपको मिल जाएगी कुछ देर में, टेंशन नहीं है। सोशल मीडिया की तरफ जरूर आइएगा, 666-22-107 ये तो व्हाट्सएप है और जो हमारा सोशल मीडिया है FM107 कतर, और अगर आप मुझसे रابطہ कायम करना चाहें बड़ा आसान है, दोहा वाला कबीर, कबीर की स्पेलिंग रहेगी KABIR.FM107, ठीक है। टिकटॉक इंस्टा पर जाइएगा, आसानी रहती है, उससे क्या है ना आने वाले वक्त में कुछ भी आपको वहाँ पे सरप्राइज मिल सकता है, सो जस्ट बी रेडी, आप जुड़ जाइए, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ भाई सब मैं। तो अभी तो आपसे चाहूँगा इजाजत, 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मासरामा Chill out, so drop it low.

सख्त मजम्मत की है। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ मुजाकरात करना चाहता है, ताहम बातचीत का आगाज तेहरान की उस आमादगी पर मुनहसिर है कि वो उनके बकौल बामानी मुजाकरात के लिए तैयार है। जबकि अमरीकी वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीका अब भी ईरान के साथ जारी बहरान का हल मुजाकरात के जरिए निकालने के लिए तैयार है, ताहम तेहरान इस हवाले से संजीदा दिखाई नहीं देता। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान पर जोर दिया है कि वो मुकम्मल तहम्मुल और एहतियात का मुजाहरा करें, क्योंकि मज़ीद इकदामात मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम को बढ़ा सकते हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ और अब समाअत कीजिए मुफस्सल नशरिया।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
2: हम भी वो हैं जो कभी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

0: बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इलाज सिर्फ दवा नहीं,
2: परहेज और रोजमर्रा की देखभाल भी जरूरी है। प्रोग्राम हेल्थ गाइड में डॉक्टर फौजिया शफीक देती हैं वाज़े रहनुमाई,
1: मिथ्स की खोल, प्रैक्टिकल टिप्स, हर उम्र के लिए सेहत के मशवरे,
2: कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ।
1: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।

0: सकते हैं, तो यूजली 5-10 मिनट्स के अंदर जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है. तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है वो हमने ये करना है कि ब्लीडिंग को रोकना है.
1: जी ठीक, जो ब्लीडिंग हो जाती है और उसमें जैसे आपने कहा कि बच्चों में भी आमतौर पर जैसे उन्हें चोट लग जाती है और ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर जब ब्लीडिंग हो तो फिर एकदम से पैनिक भी हो जाते हैं पेरेंट्स भी, और जो बड़े अफराद हैं उन्हें अगर हो तो वो तो कुछ फिर भी जैसे आपने कहा कि प्रेस करने से या 10 मिनट्स के अंदर अंदर जो ब्लीडिंग है वो कम होनी चाहिए. जी डॉक्टर साहब, इसमें एक ब्लीडिंग हो गई, इसके अलावा दर्द भी बाज़ औक़ात बहुत सीवियर जैसे होता है, तो वो भी क्या इमरजेंसी है?
0: जी बिल्कुल, जो भी इस तरह की कोई भी ट्रॉमा होता है तो वो एक काइंड ऑफ इमरजेंसी ही होती है. फॉर एग्जांपल अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले बोला कि आपको वो ब्लीडिंग रोकना है. उसके बाद एक तो पेरेंट्स के लिए खासतौर पर अगर किसी बच्चे को लगता है तो वो पैनिक नहीं करना, सबसे पहले घबराना नहीं है. तो ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद आपने थोड़ा सा उसको क्लीन करना है, आप किसी भी कॉटन के साथ कर सकते हैं या अगर सलाइन आपके पास है आप उसके साथ क्लियर कर सकते हैं. फिर आप थोड़ा सा सिचुएशन देखें कि ब्लीडिंग रुक गई है या नहीं. अगर आफ्टर 10-15 मिनट्स जो है वो खून नहीं रुक रहा तो फिर आपको उसको किसी हॉस्पिटल या कोई भी डेंटल इमरजेंसी क्लिनिक पास है तो आपको वहाँ पे लेके जाना है. और इन केस अगर ब्लीडिंग रुक जाती है तो आपने उस जगह को असेस करना है कि मज़ीद कोई दांत वहाँ से हिला तो नहीं है या दांत वहाँ से निकला तो नहीं है, क्योंकि जो डेंटल ट्रॉमा है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें दांत जो है आपका जो सॉकेट होता है उससे कभी कभी निकल भी आता है, या अक्सर होता है कि जो दांत है वो हड्डी के अंदर चला जाता है. वो टाइप ऑफ ट्रॉमा डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का हुआ है. अक्सर औकात जो है वो दांत का सिर्फ जो एक कॉर्नर होता है, एक हिस्सा होता है, वो टूट जाता है. तो ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करता है किस टाइप का वो फ्रैक्चर हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है.
1: जी ठीक, ये उस पर डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात जैसे कहा कि दांत निकल जाते हैं, ये टूट भी जाते हैं, ये भी देखने में आता है कि ये तो हम पूछेंगे कि उसको मैनेज कैसे किया जाता है, क्योंकि ये मेरा ख्याल ज़्यादा मुश्किल है जब टूट जाते हैं दांत ना. तो अच्छा, इसमें और कौन कौन सी ऐसी इमरजेंसी हो सकती हैं या कोई ख़ास वजूहत जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
0: देखिए, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, जो ट्रॉमा होते हैं, वो मोस्टली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं
1: जी.
0: या ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है, जो एडल्ट्स और टीनेजर्स काफ़ी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो इसमें ये चीज़ बहुत कॉमन होती है. किसी का एल्बो लग जाए या कोई भी चीज़ हिट कर जाए तो बाज़ औक़ात जो है वो हॉर्न जो है वो फट जाता है, दांत जो है वो टूट के बाहर आ जाता है. तो ये काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है जिसको आपको खुद से टैकल करना होता है एट द स्पॉट. जैसे आपसे पहले अर्ज किया कि ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, और इन कुछ केसेस में अगर आपका दांत फॉर एग्जांपल मुंह से बाहर आ जाता है तो सबसे पहले आपने उस दांत को उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो जिसे हम क्राउन कहते हैं, इनेमल कहते हैं, ऊपर वाले जो हिस्सा है उसको आपने वहाँ से पकड़ना है. कभी भी अगर दांत आपके मुँह से निकल जाता है उसकी जो जड़ होती है वहाँ से आपने कभी भी नहीं पकड़ना, सबसे पहली चीज़. उसके बाद आपने उसको जल्दी से अगर पानी है उसके साथ आपने सिर्फ क्लीन कर लेना है कुछ सेकंड्स के लिए. अगर सलाइन है तो सलाइन से अच्छी तरह कर लें, लेकिन फ्यू सेकंड्स के लिए. ना आपने उस पे वहाँ पे उसको रगड़ना है, ना कोई वहाँ पे ब्रश यूज़ करना है उसकी, खास तौर पे जो रूट है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं कि अगर कुछ इंजरी ऐसी होती है कि बाज़ औक़ात वही दांत हम दोबारा ओरल कैविटी में रखते हैं तो वो दोबारा से अपनी जो पकड़ होती है वो वापस ले आता है.
1: अच्छा
0: जी, तो ये टाइप ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहले आपने उसको पकड़ के क्लीन करना है, जो कि ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि हमारे मुंह के अंदर नजर आ रहा होता है
1: जी,
0: वाइट पार्ट. क्लीन करने के बाद आपने उसको अब स्टोर करना है. तो स्टोर आपके लिए डिफरेंट टाइप्स हैं. सबसे जो मेन नंबर वन पे आता है वो आपका अपना सलाइवा होता है. अगर तो एडल्ट पेशेंट है वो अपने मुंह के अंदर रख सकता है, जिसको खतरा नहीं होता कि निकलने का, तो क्योंकि सलाइवा मुंह के अंदर होता है तो फर्स्ट स्टेप पे सलाइवा के अंदर रख सकता है. ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है
1: जी.
0: इसके अलावा कोई अगर चाइल्ड है तो वो निकलने का डर होता है तो आप इसको या तो सलाइन में रख सकते हैं या जो कोल्ड वाटर मिल्क होता है, दूध जो होता है, आप उसमें भी रख सकते हैं.
1: अच्छा
0: जी. और अगर अडल्ट लोग हैं या अडल्ट पेशेंट है तो वो कोशिश कर सकते हैं कि एक दफ़ा उसको क्लीन करने के बाद डायरेक्ट अगर मुंह में लगा सकते हैं खुद से तो कई दफ़ा वो भी कारामद होता है, तो वो भी लगा सकते हैं.
1: अच्छा, ऐसे पॉसिबल है कि लगा सकते हैं
0: तो? जी बिल्कुल. फॉर एग्जांपल अगर सॉकेट से ही दांत बाहर आ गया, उसकी रूट जो है जड़ है बिल्कुल साथ आ गया
1: जी,
0: तो वो उसको क्लीन करने के बाद आप दोबारा अपने मुंह के अंदर रख सकते हैं और उसको थोड़ा सा बाइट करके रखें. और सबसे जो

0: इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आता है टाइमिंग का. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है उसके बाद एक एक मिनट बहुत ज़रूरी होता है. असूलन जो है आइडली जो है 20-30 मिनट्स के अंदर आपको अपने डेंटिस्ट के पास लाजमी जाना है. कोई भी एमरजेंसी डेंटल क्लिनिक हो आपने वहाँ पर लाजमी तौर पर विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर पहुँचना है ताकि वो सारी चीज़ को असेस कर सकें और उस कंडीशन को चेक करके उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जा सके. क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट उतना कारगर नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर आप अर्ली जाते हैं और कोशिश करें कि अगर आपका जो दांत है वो अगर टूटा है या उसका कोई भी हिस्सा है उसको संभाल के रखें, उसको साथ अपने लेके. ये जो मैंने 2-3 सॉल्यूशंस बताए, एक सलाइवा हो गया, एक इसके अलावा दूध हो गया, इसके अलावा सिलाइन या पानी में आप रख के उसको जा सकते हैं डेंटिस्ट के पास. तो ये डिपेंड करता है आप कितना जल्दी जाते हैं. जितना जल्दी जाएंगे उतना जो उसका ट्रीटमेंट है वो अच्छा हो सकेगा.
1: ठीक ठीक. और स्पेशली ये से आपने बताया कि सॉल्यूशन जो है वो उसमें रखना बहुत ज़रूरी है. एक तो सलाइवा है और ठंडा दूध आपने बताया था. बिल्कुल ये नई, मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन है. ज़ाहिर है आप डेंटिस्ट हैं, आपका फील्ड है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम जैसे कि दांत निकल गया या दांत टूट गया तो हम उसी पे परेशान हो जाते हैं.
0: जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सुनने वाले हैं वो थोड़ा सा उनको टेंशन देनी पड़ेगी क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये खासतौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है.
1: जी.
0: क्योंकि जैसे ही वो 2-3 साल के होते हैं चलना स्टार्ट करते हैं तो वो
1: कभी गिरते हैं
0: कोई चीज़ लग जाती है क्योंकि वो बेफिक्र होकर भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं.
1: जी.
0: तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ये इंजरी हो सकती है, दांत टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके दांतों के साथ.
1: ठीक. ये बहुत अहम पॉइंट है लिसनर्स, और ये मेरा ख्याल है हम सब के लिए भी कि बच्चों के तो अक्सर कुछ ना कुछ जो है ना वो कोई ना कोई जो छोटा सा पार्ट है वो भी बाजू का टूट जाता है, तो उसे भी आपने
0: जी बिल्कुल मैंने जैसे पहले फरमाया कि कुछ अगर पार्ट टूट जाए दांतों का तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉर्नर टूट गया है, कोई पार्ट टूट गया है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कॉम्पोजिट फिलिंग कर सकते हैं.
1: जी जी.
0: वो एक आप समझे सिंपल सी इंजरी है जो कि मोस्ट कॉमन है. ये इमरजेंसी में नहीं आती. ठीक है. लेकिन अगर उसका कोई शार्प एज है वहाँ पे उसको आपको स्मूथ आउट करवाना है क्योंकि वो जो शार्प एज है वो आपकी जुबान को भी इंजर करेगा, आपके होंठों को कर सकता है और बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी कर सकता है. इसलिए इसके अलावा भी अगर आपको कभी भी शार्प एज आपके दांतों में फील हो रहा है जुबान से या गाल से किसी भी चीज़ के साथ उसको आपने जाके स्मूथ आउट करवाना है. इंजरी किसी किस्म की भी हो आपने फौरी तौर पे अपने डेंटिस्ट के पास जाना है या जो भी करीब आपको हॉस्पिटल पड़ता है लाजमी आपने जाके चेक करवाना है.
1: ठीक ठीक. इस तरह से आपने डॉक्टर साहब बताया कि दांत जो है टूट गया या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई और उसमें यह कि पहले थोड़ा सा उसको मैनेज करना है, मगर अगर नहीं हो रहा खासतौर ब्लीडिंग की बात है तो फिर इमरजेंसी में जाना बहुत ज़रूरी
0: है. जी बिल्कुल. अगर ब्लीडिंग रुक गई है तो आपने कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा आइस अप्लाई करें. ठीक है. और बस ये कोशिश करनी है कि जो बर्फ़ है, जो आइस है, वो डायरेक्टली स्किन के साथ अटैच ना हो. अगर फॉर एग्जांपल कोई लिप इंजरी हो जाती है या कोई भी दांत पे होता है तो आपको उसको थोड़ा सा जो है आइस के साथ उसको थोड़ा सा मसाज करना है 10-15 मिनट के लिए. अच्छा. उससे जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ी सी कम होगी.
1: ठीक ठीक. बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ये तो बता दिया कि दांत निकल गया चोट से या ट्रामा से कुछ भी, तो उसका हल जैसे है डॉक्टर के पास यानी आप लोगों के पास पहुंचने से पहले पहले हमें क्या करना है. तो उसके बाद जो आप इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वो रूट कैनाल कराई है और इसी तरह से अगर वो चोट लग जाए उसमें तो फिर क्या हम कर सकते हैं उसमें. बाजू का तो उस पर जो क्राउन लगा होता है वो भी टूट जाता है या फिर बहुत मुश्किल आ जाती है.
0: जैसे आपने क्राउन की बात की और अगर आपने पहले ही कोई प्रोसेसेस लगवाई हुई हैं जो कि क्राउन है, ब्रिज है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो निकल गया तो आप अगर वो जिस वट एवर कंडीशन में वो आपके पास है आपने उसको संभाल के रखना है.
1: अच्छा
0: जी. किसी कंडीशन में ऐसे होता है कि वही जो आपका क्राउन या ब्रिज बना हुआ है वो दोबारा भी लग सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है. ठीक है.
1: अच्छा,
0: तो उसकी उसकी फिटिंग चेक करते हैं, अगर फिटिंग सब कुछ नॉर्मल हो क्योंकि अक्सर अवकात जिस तरह की उसका शेप होती है क्राउन वैसे ही बाहर निकल आता है तो उसको हम दोबारा से लगा सकते हैं. इसके अलावा अगर जैसे मैंने बताया कि कोई पार्ट या कॉर्नर टूट गया वो हम फिलिंग से ठीक कर सकते हैं. सारा जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि किस टाइप का फ्रैक्चर है. किस टाइप की इंजरी हुई है, किस टाइप का ट्रॉमा है दांत के साथ। अच्छा। अगर ऊपर वाले पार्ट में है तो फिलिंग से ठीक हो जाएगा, और अगर उसकी कुछ डीप लेयर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे दांत के अंदर डेंटिन होता है और जो उसकी नर्व सप्लाई होती है उसको हम पल्प कहते हैं
1: जी।
0: तो अगर जो है वो ट्रॉमा आपके पल्प तक पहुँच गया तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमें काफ़ी हद तक रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो भी दांत की कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो बाज़ औक़ात दांतों के सिलसिले में ऐसा होता है कि स्टार्ट में ऐसा पेन उस तरह से नहीं होता
1: जी।
0: लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जो है वो अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है। इसमें अच्छा। कलर चेंजेस भी आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो लोग होते हैं उनको सेंसिटिविटी भी होती है, ठंडा गर्म स्टार्ट हो जाता है ज़्यादा लगना, तो ये कुछ दिनों के बाद जो अपने सिम्टम्स हैं वो शो करता है।
1: इसमें डॉक्टर साहब आपने कलर चेंज की बात की, तो क्या वो जो ब्लैक सा हो जाता है
0: जी जी बिल्कुल,
1: या और कोई
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे कोई इंजरी हुई तो उसके बाद जो उसका कलर चेंज होता है, इसका मतलब है कि उसकी जो नर्व और ब्लड सप्लाई है उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं।
1: अच्छा
0: जी, तो बाजू का जो है वो दांत वाइट से पहले हल्का सा पिंक कलर का होता है और उसके बाद फिर वो ग्रे और ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है, जो उस पल्प होता है वो इन्वॉल्व हो चुका है, उसमें चेंजेस आ रही हैं। वो नेक्रोसिस हो सकती है जो कि शो करता है कि दांत जो है वो ऑलमोस्ट डेड है। तो ऐसी कंडीशंस में आपने कभी भी घर में खुद से ट्रीटमेंट नहीं करने, आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो उनको अच्छी तरह क्लिनिकल असेस करेंगे, और हमेशा एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरे में चीज़ क्लियर होती है कि नीचे आया जो रूट है उसके सराउंडिंग्स, उसकी कंडीशन कैसी है। ये एज पे भी डिपेंड करता है, अगर फॉर एग्जांपल एडल्ट एज है तो उसमें हम क्योंकि नीचे वाले दांत आ चुके होते हैं जो परमानेंट दांत होते हैं, तो फिर उसको हम डिफरेंट ट्रीट करते हैं एज कम्पेयर टू जो बच्चों में उसका ट्रीटमेंट होता है ना
1: जी।
0: क्योंकि वो मिल्की टीथ होते हैं और नीचे जो है परमानेंट दांत आ रहे होते हैं, तो उनका थोड़ा सा सेपरेट ट्रीटमेंट होता है।
1: तो इसमें डॉक्टर साहब जैसे कि कोई भी ट्रामा है और ज़्यादा हो गया है, या उसमें पूरा जो उसका टीथ है वो इन्वॉल्व है दांत, तो उसमें रूट कैनाल करनी ज़रूरी होती है हर ट्रामा में या
0: नहीं? नहीं, देखिए ये काफ़ी लोगों की मिथ बनी हुई है कि कोई भी ट्रामा हो या कुछ भी हो तो वो या तो दांत या बिल्कुल वो या तो वो रूट कैनाल करवाएंगे या वो ये समझते हैं कि अब दांत को निकालना पड़ेगा
1: जी।
0: इससे मैंने पहले कहा कि अगर दांत किसी ट्रॉमा में वो बाहर भी निकला था अपने सॉकेट से, तो बाज़ औक़ात वो जो दांत है वही अपनी अगर हम दोबारा लगा दिया जाए, अगर वो जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी क्लिनिक पहुंच जाए,
1: बिल्कुल
0: लेट ना करे, और उसने रूट को जो है जड़ है उसकी उसको साफ ही रखा हो, उससे ना क्लीन किया हो, तो बाज़ औक़ात जो है वही दांत दोबारा रीइम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कभी इंजरी में दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है और वो कुछ टाइम के बाद उसको स्प्लीन कर दिया जाता है, वो अपनी जो ग्रिप है पकड़ है वो दोबारा से पकड़ लेता है, तो वो डिफरेंट उसमें सिनेरियो आ जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें रूट कैनाल की जाए। जैसे मैंने कहा कि जो अगर बच्चों के दांत हैं जो मिल्की टीथ होते हैं उनमें अगर इस तरह का कोई इशू हो जाए, अगर दांत बाहर निकलाए, तो मिल्की जो दांत है जो डिसीडियस टीथ जिसे हम कहते हैं वो हम कभी भी वापस दोबारा नहीं लगाएंगे। ये जो दोबारा लगाने वाली बात है ये सिर्फ अडल्ट पेशेंट में होगी जो परमानेंट दांत होता है। दूध का दांत हम कभी भी दोबारा नहीं लगाते क्योंकि नीचे जो है वो एक परमानेंट दांत आ रहा होता है। ठीक है, तो हम उसमें कभी भी वो नहीं लगाते, इसलिए बच्चों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स का।
1: ठीक है, डॉक्टर साहब आपने कहा कि वो जब दांत से लगाते हैं उसी सॉकेट में और वो ऐसे ही जैसे इम्प्लांट हो जाता है, तो क्या वो रूट्स समेत बाहर आ जाता है कि रूट्स जो है वो अंदर ही होती
0: है? ये ट्रॉमा पे डिपेंड करता है।
1: अच्छा,
0: बाजू का आधी रूट अंदर ही रह जाती है बाकी बाहर आ जाता है, उस केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और अगर वो परमानेंट दांत है तो वो फिर हम रूट को निकाल के तो वो इम्प्लांट जो एक सेपरेट ट्रीटमेंट है वो करना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: इन केस अगर कोई परमानेंट टूथ जो है वो पूरा निकला है तो उसको हम एज इट इज सॉकेट के अंदर दोबारा लगाते हैं, उसको रीइम्प्लांट किया जाता है। कई बाज़ औक़ात में जो टेम्परेरी स्प्लिंट होते हैं वो पहना दिया जाता है पेशेंट को, ताकि जो दांत अपनी जगह पे है वो उसी जगह पे कुछ अरसा रहे, ताकि अगर उसकी नेचुरली ग्रिप बन सकती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर उसको तारों के साथ कभी लगा दिया जाता है ताकि टाइम के साथ उसको असेस किया जाता है।
1: ठीक, अभी ये तो आपने बता दिया कि बच्चों में जैसे कि बहुत ज़्यादा एक पैनिक भी हो जाते हैं पेरेंट्स के दांत निकल गया है, और अगर मिल्की टीथ है आपने कहा कि मिल्क टीथ हुई तो वो अगर हैं तो फिर आप नहीं उसको कर
0: जी बिल्कुल जी। अगर मिल्की टीथ हैं और उनमें कोई ट्रॉमा हुआ है वो दांत निकल आए, तो फिर हम ऐसा है कि उसको दोबारा से वो इम्प्लांट नहीं करते क्योंकि नीचे जो हमारा नेचुरल टूथ हार होता है वो उसको अफेक्ट कर सकता है. अगर हम वो लगाएंगे नीचे इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी जो नीचे वाला दांत है उसको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जो मिल्की टीथ होता है उसने वैसे भी टाइम के साथ निकल जाता है. तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि एज क्या है बच्चे की, जब वो ट्रॉमा हुआ है उसके जो नीचे दांत आ रहा है उसकी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है.
1: अच्छा.
0: ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है, और इसके लिए जो है वो पेरेंट्स को बच्चों को क्लिनिक लाना पड़ेगा. घर से ये खुद से वो ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कुछ एक्सरसाइज करने पड़ते हैं उस पर ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि नीचे डेवलपमेंट हुई है, जो नीचे परमानेंट दांत था, और कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है. तो ये क्लिनिकल सारा एग्जामिन किया जाता है.
1: ठीक है. इसमें ये सारी जो चीज़ें, इसमें यही कि उसमें एक्सरे कराना और ये जो है मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं. अब तो इसमें बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि खुद से ही जो टीथ है बगैर किसी चोट के, ट्रामा भी नहीं है, फिर भी वो दांत गिर जाते हैं, जैसे कुछ एजेस पे जैसे आपने कहा डिपेंड करता है, तो वो क्या किस तरह से?
0: देखिए वो जो नेचुरली है वो डिफरेंट उस पर आ जाती हैं कंडीशंस. जैसे फॉर एग्जांपल उनके मसूड़े कमज़ोर हैं किसी भी एज में हो सकते हैं. अगर कोई दांत उस तरह से साफ नहीं करता तो सबसे पहले पेरियोडोंटाइटिस होता है, जो मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है. क्योंकि जो हमारे मसूड़े हैं वो बेसिकली एक कवर है हड्डी का, हड्डी के अंदर हमारा दांत है. तो जैसे हम क्लीन नहीं करेंगे वहाँ पे फूड पार्टिकल्स आएंगे, ऐसा ऐसा जो हमारी पकड़ है उस दांत की वो कम होने लग जाती है. तो जिसको भी मसूड़ों का मसला हो, गम्स का मसला हो, तो उनकी जो ग्रिप जैसे कम होगी तो वो दांत खुद से बाहर आ जाते हैं. ये मोस्टली उन एजेस में होता है, खासतौर पर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या उन्हें कोई भी मेडिकल रीज़न हो, इशू हो, तो उनमें जो है दांत ऐसा ऐसा कमज़ोर हो जाते हैं, विद एज भी ये चीज़ जो है वो सामने आती है.
1: ठीक. तो इसमें भी फिर आप उसमें इम्प्लांट करते हैं या किस तरह से, जैसे पेशेंट आपके पास आए तो कोई एग्जांपल हमें दीजिए कि किस तरह के जो पेशेंट हैं वो इस तरह के जो ट्रामा हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं?
0: ज़रूर. सबसे पहले जो डेंटल ट्रीटमेंट है ये पेशेंट्स की एज ठीक है और उसकी जो लिविंग हैबिट है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस के, ठीक है, और सबसे जो मेन है वो जो उसके मुंह के अंदर बोन है वो उसकी कंडीशन कैसी है. अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट हेल्दी है, बाय एनी चांस उसका दांत जो है वो निकलना पड़ गया, अगर हमने उस पर इम्प्लांट करना है तो एक तो उसको मेडिकल कोई इशू नहीं होना चाहिए, सबसे जो आइडियल सिनेरियो होता है, और एक अच्छी वहाँ पे जो बोन है उसका मौजूद होना ज़रूरी है. जब वो होता है तो वहाँ पे हम इम्प्लांट कर सकते हैं. इम्प्लांट के लिए डिफरेंट टाइमलाइन होती है. कम से कम जब हम स्टार्ट करते हैं दांत निकालने के बाद, एक इम्प्लांट जो स्क्रू होता है वो हम हड्डी के अंदर रखते हैं, उसके बाद 2 से 3 महीने उसका वेट करते हैं जब तक उसकी पकड़ बन जाती है, तो उसके बाद ऊपर उसका जो कवर होता है वो हम लगा देते हैं. तो ये तकरीबन 3 से 6 माह का टाइम होता है, लेकिन ये हम ट्रॉमा के अंदर काउंट नहीं करेंगे. इन केस फॉर एग्जांपल अगर कोई हादसा होता है और दांत जो है बिल्कुल 2 हिस्सों में हो जाता है, या दांत गिर के निकल जाता है और वो मिलता नहीं है या वो दोबारा लग नहीं सकता, फिर उस सिनेरियो में हम इम्प्लांट करते हैं, या कोई भी फिक्स ब्रिज कर सकते हैं, जो भी पेशेंट की टाइप होती है उस पर डिपेंड करता है.
1: अच्छा. ठीक. और ये जो ख़ासतौर पर जैसे आपने डायबिटीज़ का जिक्र किया, तो उसमें बहुत सारे जैसे गम्स के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो इन्फेक्शन है वो हो जाती है, तो ये भी एक वैसे तो हो जाती है मगर ये कि इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं.
0: जी बिल्कुल.
1: ठीक.
0: ये तो क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं से आपका दांत निकला है किसी जगह से और आप वहाँ पे नहीं लगाते, तो वो टाइम के साथ क्या होता है, जो आपकी जो बोन होती है, हड्डी होती है, वो रिजॉल्व होने लग जाती है, वो नीचे की तरफ जाने लग जाती है, जिसकी वजह से जो आपके बाकी दांत हैं वो भी इफेक्ट करते हैं, जो क्योंकि वहाँ पे जो स्पेस बनती है वो बाकी दांतों में भी स्प्रेड कर जाती है.
1: ठीक. डॉक्टर साहब और कोई वजूहत हो सकती हूँ, जैसे कि हम बात करते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी जो हैं वो या रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आप हमें बता सकते हैं?
0: जी, रिस्क फैक्टर खास तौर पे अगर हम ट्रॉमा की बात करें तो जो हमारे चिल्ड्रंस आ जाते हैं, जो कि बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा देखभाल उनकी करनी है, क्योंकि वो जब खासतौर पे स्कूल में होते हैं या वो वैसे प्ले ग्राउंड में जब खेल रहे होते हैं, तो कोई भी किसी भी इंजरी की वजह से उनके दांतों को नुकसान हो सकता है. तो एक तो उनको थोड़ी सी एहतियात भी बतानी है, साथ साथ इंस्ट्रक्शन देनी है, और उनका जो खास तौर पे टोटलर्स हैं उनको आपने 24/7 जो देख के रखना है, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए भी पेरेंट्स आगे पीछे होते हैं तो वो कभी बेड से या कहीं से भी गिर सकते हैं, तो उनको वो ये चोट लग सकती है। और मोस्टली जो है ये इंजरीज जो है ये बच्चों में ही ज्यादा देखी जाती हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो टीनएजर्स हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स इंजरी होती है, और इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी जो फॉर एग्जांपल विद एज जो है वो कभी हो जाए, उनसे गिरना हो जाए, तो वो भी दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। या इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा होता है ऐसा, और उसमें क्योंकि सबसे ज्यादा सीवियर इंजरीज होती हैं, जिसमें आपका लिप इन्वॉल्व हो सकता है, जी कोई भी टिश्यू जो है वो इंजरी हो सकती है उसकी।
1: डॉक्टर, जैसे कि ये ब्रेसिस लगाए जाते हैं, वो भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस में हो जाती हैं, वो उस पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या उसकी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है या क्या है, या तो अक्सर जो ब्रैकेट्स हैं जैसे हमने पहले भी आपसे बात की थी कि वो टूट भी जाती हैं, कभी वो बिल्कुल शार्प एजेस हो जाते हैं, तो वो
0: जी ब्रेसिस में भी ऐसे इमरजेंसी हो सकती है, जैसे आपने खुद बताया कि कोई ब्रैकेट टूट गया है या कोई वायर ब्रेक हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डाइट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने बहुत एहतियाती खाना खाना है, तो अगर इन केस वो अगर उसको इग्नोर करें और फास्ट फूड खाएं, बर्गर या कोई भी इस तरह की सख्त चीज़, तो ब्रैकेट या वायर टूटने से शार्प एज जो होता है वो आपको लिप पे या टंग पे या चीक पे लग सकता है, तो जितना प्रोलोंग होगा वहाँ पे वो ज़्यादा वहाँ पे मसला करेगा। इसलिए जैसे ही आपको ऐसा कोई सिनेरियो सामने आए तो आप फौरन अपने डेंटिस्ट के पास जाएं।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: ये जो हमारा टीथ दांत है उसके अंदर फ्रैक्चर होगा या जैसे जाहिर है सॉकेट है बोन है तो वो भी एक बोन है तो होता ना हस्ता वहां पर भी
1: जी ये जो ट्रॉमा है ना ये उसकी डिपेंड करते हैं कि कितनी ये फोर्स के साथ हुआ है ट्रॉमा की टाइप क्या है
0: के
1: ट्रॉमा में आपका जो पूरे मुंह की हड्डी है वो टूट जाती है जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं बाज़ुकात बहुत ज्यादा वो खतरनाक किस्म के होते हैं जिसमें आपका जो जबड़ा है वो टूट सकता है यहाँ पे जो हड्डी होती है जो हम TMJ कहते हैं वो डिसलोकेट हो सकती है इवन आपकी जो बाइट है वो बंद करना मुतासिर हो जाती है क्योंकि ट्रॉमा में तो आपके जो वो हड्डी जैसे मैंने बोला यहाँ पे लॉक हो जाती है आप मुंह नहीं खोल सकते तो ये बहुत ज्यादा सवेर इंजरीज हो जाती हैं और इस केस में जो आपका ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है उसको दिखाना आपने लाजमी है
0: ठीक ठीक और ये कि वो तो अगर इमरजेंसी में गए हैं तो वो खुद ही रेफर कर देते हैं
1: जी जी बिल्कुल वो टाइप ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है और जैसे ये मैंने जो चीजें बताई हैं ये जो हमारे सुनने वाले ये घबराना चाहें कि ये बहुत ज्यादा सवेर है लेकिन ये होता है खासतौर पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स में कोई बहुत सवेर इंजरी हो जाती है तो ये चीजें होती हैं ये जो आपके दांत हैं वो बिल्कुल ही बाहर आ जाते हैं खाली एक नहीं मल्टीपल टीथ डिपेंड करता है कैसी आपको इंजरी हुई है तो इस केस में वो जो है रेफर कर देते हैं कि आप जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है आप उसको जाके दफा दिखा दें क्योंकि वो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं ये बहुत ज़्यादा सवेर केसेस में होता है जिसमें अक्सर आपके जो जॉज हैं जो उनकी सर्जरीज करनी पड़ती है जब आप मुंह ज़्यादा ना खोल सकें या आपकी जो TMJ है या फिर जो हड्डी है वो ज़्यादा अफेक्ट हुई है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं
0: ठीक ठीक इसमें लोग सब बाज बच्चे बाजू का ऐसे होता है कि उनके जो मिल्क टीथ हैं वो शेड नहीं हो रहे होते ज़्यादा तो क्या ये कभी कहीं चोट लगी होती है उस वजह से वो अंदर को प्रेस हो जाते हैं या और क्या वजह हो सकती है
1: अच्छा ये डिपेंड करता है उनकी हिस्ट्री पे अगर उन्हें कोई ऐसा कभी चोट लगी हो या कहीं पे टक्कर हो सकती है लगी हो सिर्फ उस जगह पे और सिर्फ उसी जगह पे दांत जो है वो निकल नहीं रहे अपने टाइम पे बाकी जो दांत है वो अपने टाइम पे निकल भी रहे हैं और आ भी रहे हैं तो फिर उसको हम चेक करवाया जा सकता है अदरवाइज जो आपने बात की दांत निकलने का और आने का ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है कुछ बच्चों में इसकी डिलेड इरप्शन होती है कुछ बच्चे जो है उनमें दांत जल्दी गिर जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं और कुछ में जो है वो लेट गिरते भी हैं और लेट आते भी हैं
0: अच्छा।
1: तो ये जो है थोड़ा सा वेरी करता रहता है
0: इसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि बस का ये समझा जाता है शायद बच्चे कहीं गिरे हैं और वो जो प्रेशर से वो जो टीथ हैं वो अंदर ही हो गए हैं और बाहर नहीं निकल रहे
1: बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हर वक्त बच्चे तो आपके सामने नहीं रहते इस तरह का कभी भी कोई डाउट हो तो आप एक दफ़ा जाके क्लिनिकल असेसमेंट करवा सकते हैं अदरवाइज ऐसा उस तरह से कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है बच्चों के दांत जो है आजकल जो मैं देख रहा हूँ आजकल थोड़ा सा लेट ही आ रहे हैं कि शायद हमारी डाइट ऐसी है बिल्कुल बिल्कुल ये वो वाले फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है कभी जो है दांतों की डेवलपमेंट है वो लेट होती है तो यूजली जो है
0: नॉर्मली जो है आपके पास है हम तो ये समझते हैं या सारे ही अच्छा इनकी फैमिली में जो दांत हैं इस एज में आए हैं तो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो
1: ये हेरिडिटी
0: है तो ऐसा भी है या फिर जैसे आपने कहा कि डायट्री
1: जी जी बिल्कुल ऐसा भी होता
0: भी
1: है हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है अगर बिल्कुल
0: कुछ बिल्कुल 5 months में भी मतलब आते हैं
1: एक्चुअली इसमें एक और टर्म होती है न्यू नेटल टीथ
0: जी
1: फॉर एग्जांपल बच्चा अगर पैदा हुआ तो वो उसके मुंह में तब भी दांत होता है तो ये डिफरेंट कंडीशन होती है लेकिन मोस्टली जो है वो 6 months टू 1 year के अंदर जो है वो दांत आना स्टार्ट होते हैं
0: ठीक है
1: जो आइडली है और वरना अगर कोई कुछ सिनेरियोस में ऐसा भी होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में एक या दो दांत होते हैं तो वो एक डिफरेंट केस आ जाता है लेकिन ऐसा जिस तरह से कोई भी परेशानी या टेंशन लेने वाली बात नहीं होती अगर 1 साल तक भी दांत नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है आप थोड़ा सा वेट कर लें लेकिन अगर 2 साल तक नहीं आ रहा फिर आप जाके चेक करवा लें क्योंकि अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि लेट हो रहा है तो फिर आपको असेसमेंट जरूरी है आपने बिल्कुल 1 से 1.5 साल तक या 2 साल तक वेट करें नहीं आता तो फिर आपने लाजमी चेक करवाना है और अगर आ जाए तो वेल एंड गुड
0: जी तो सब अपने डाइट की बात की कि मतलब डाइट जो है वो भी डिपेंड करता है थोड़ा सा मैं बताइएगा क्योंकि हमारे लिसनर्स जो हैं माएँ उसमें शामिल हैं कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के जैसे 6 months का हो गया है और उसकी डाइट में मतलब डाइटरी क्या क्या हेल्पफुल डाइट हो सकती है
1: जी बिल्कुल आपने बहुत अहम सवाल किया इसमें सबसे जो

0: मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है बच्चों के दांतों की हमने हिफाजत करनी है और वो सबसे पहले तो पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी आती है क्योंकि जो बच्चे उनमें फीडर्स की जो है वो बहुत ज्यादा आदत होती है और आजकल जो है वो ज्यादा ट्रेंड ये है कि बल्कि शुरू से चलता आ रहा है कि फीडर्स के अंदर जो हम शुगर ऐड करते हैं एक वो ऐड करते हैं, इसके अलावा जो बच्चे हैं वो रात को फीडर पीते पीते सो जाते हैं और जो वो फीडर है वो उनके मुँह के अंदर रहता है। इसका मतलब है जितनी देर वो मुंह के अंदर रहेगा वो शुगर जो है वो सारा एक्सपोज होता रहेगा दांतों के साथ और वो जितना देर एक्सपोज होता रहेगा दांतों के साथ उसका कॉन्टेक्ट रहेगा वो उतने ही दांतों को खराब करेंगे जिसे हम बोटल बेबीज केरी कहते हैं। ठीक है, बेबी बोटल केरीज जो है ये बहुत ज्यादा आजकल कॉमन है बच्चों में जो कि फीडर लेके सो जाते हैं और उनके दांतों पे वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होने लग जाते हैं। तो जितना एक्सपोजर होगा मीठे के साथ उतना जल्दी ही आपके दांत खराब होंगे और कोशिश करें कि कोई भी मोटिवेशन दे के बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनको ब्रशिंग की आदत डालें।
1: अच्छा,
0: ब्रशिंग शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि किस टाइम से ब्रशिंग हमें स्टार्ट करनी है।
1: उससे पहले एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि जो उसमें शुगर भी ऐड करते हैं पेरेंट्स, तो फार्मूला मिल्क अगर दे रहे हैं तो क्या उसमें भी यूज करते हैं?
0: जी, शुगर जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो ऑलमोस्ट हर चीज में ही होते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे ही बच्चा अपना जो डाइट है जो उसका लंच बनता है ब्रेकफास्ट जो भी बनता है जब पूरा हो जाए फीडर कंप्लीट हो जाए आप उसके मुंह से निकाल लें। रात को सोने से पहले अगर आपने दिया उसको जब भी आप फीड कर दें उसको जैसे ही कंप्लीट होता है आप निकाल के रख लें। ठीक है, ये आपने आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो हैबिट बनाएंगे वो डिवेलप होती रहेगी।
1: ठीक, इसमें पूछना चाहूंगी, जाहिर है माएं सुन रही हैं और जो कि कोई भी मिल्क दूध फार्मूला है तो उसमें भी ऐड कर दी जाती है एक्स्ट्रा जो शुगर है, तो क्या बच्चों के लिए ये नुकसानदेह? तो आपने कहा कि उसके टीथ प्रॉब्लम है, मगर क्या ये ज़रूरी है कि ऐड की जाए? मतलब उसमें जो पेरेंट्स हैं या कोई नुकसान हो सकता है हाँ, ये पूछना ये चाह रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा इस्तेमाल की जाती है शुगर तो क्या वो बच्चे की हेल्थ के लिए या उसके दांतों के लिए तो ऑलरेडी आपने बता दिया, मगर क्या ये जरूरी है?
0: देखिए, जो बच्चों की आदत है वो हम जैसे ही वो डेवलप करते रहेंगे वो वैसे बन जाएगी। अगर हम स्टार्ट से ही शुगर ऐड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में तो उनको उस चीज़ का टेस्ट पता ही नहीं चलेगा और वो यूज टू नहीं होंगे। तो कोशिश की जाए कि विदाउट जो है वो हम शुगर खासतौर पे मिल्क दें और इसके अलावा जितनी देर तक हो सकता है, क्योंकि जैसे उनका एक्सपोजर मीठे के साथ होता है चॉकलेट्स के साथ या डिफरेंट किस चीज़ों के साथ तो वो उनको फिर उस चीज़ की आदत लग जाती है। लेकिन कोशिश ये की जाए कि स्टार्ट में बिल्कुल कोई भी स्वीटनर ऐड ना किया जाए, कोई भी शुगर किसी भी फॉर्म में हो वो अपना ऐड करें और वो बच्चा जो है उसी आदत में डल जाएगा।
1: जी, और बिल्कुल आप जो कहा जा रहा है कि एक साल तक बच्चे को सॉल्ट भी नहीं दें और शुगर जो है वो एक्स्ट्रा मतलब वो भी नहीं दें, नेचुरल जो फ्रूट्स में है या कुछ है वो तो ठीक है, ऐसा ही है?
0: जी बिल्कुल, नेचुरल चीज़ें जितनी दी जाएँ वो दांतों के लिए अच्छा है तो, और जितना मीठे से कम एक्सपोज करवाया जाए वो भी उसके लिए बेहतर है। क्वांटिटी की मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्वांटिटी जो है वो आप जितनी मर्जी रख लें, जो एक्सपोजर टाइम है वो कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ही अगर आप मैं एग्जांपल देता हूँ जो चॉकलेट है वो अगर आप एक टाइम में बच्चे को खिला देंगे वो इतना नुकसानदेह नहीं है कि अगर वो एक ही चॉकलेट बार बार हाफ हाफ करके दी जाए। फॉर एग्जाम्पल वही जो चीज़ है वो तीन चार दफ़ा आप डिफरेंट टाइम में देते हैं तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर एक ही टाइम पे मीठा कंज्यूम कर लिया जाए।
1: ठीक डॉक्टर साहब, इसी से एक और बात, जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो इसमें जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या जो फ्लेवर्ड कोई भी जूसेस हैं, फ्लेवर्ड ही होते हैं जो बाहर से जो मिलते हैं, तो वो कितने किस हद तक जो है बच्चों को देने चाहिए?
0: जो सीजनल फ्रूट होता है, सीजनल फ्रूट होता है वो जो फ्रेश होता है वो ही हमेशा देना चाहिए। जितने भी जूसेस होते हैं जो हमारे ग्रोसरी स्टोर में पड़े होते हैं ये इतने फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। ठीक है, ये बच्चे जो हैं वो जितनी बुरी चीज़ होती है वो उतने इसके शौकीन हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: क्योंकि जो आप घर में खुद से दे सकते हैं उससे अच्छी कोई चीज़ भी नहीं है। आप फ्रेश फ्रूट लेके आए जो भी सीजनल होता है उसका बच्चों को आदि बनाए कि वो ले सकें। उसके अगर वो जूस पीते हैं तो जूस वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो आप उसको बाइट्स में डिफरेंट शेप्स में बना के अब तो मिल जाते हैं ताकि उनको वो उतना अट्रैक्ट करे और वो खा सकें।
1: ठीक ठीक जी, सर जी बहुत अहम जो सवाल था आपकी तरफ से भी जाहिर है सबके जहनों में होता है, ख़ासतौर पर जो माएँ हैं वो सुन रही हैं कि किस तरह से हमें करना है, तो डॉक्टर ने बड़ा हमें

0: अगर ट्रीट ना किया जाए या इग्नोर कर दिया जाए तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं?
1: सबसे पहले तो स्केरी स्टार्ट होती है, दांत को कीड़ा लगना। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, शायद वो हमारा जो सवाल है वो मिक्स हो गया
0: जी।
1: वो पूछना शायद अंदर हो गया कि दांत को जो ब्रशिंग है वो हमने कब से स्टार्ट करनी है।
0: जी जी,
1: तो वो अभी अगर कोई सुनने वाला हो तो उसके वो वेट कर रहा हो इसके जवाब का
0: जी।
1: तो ये है कि जब भी बच्चों के मुंह के अंदर दांत आना स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक भी दांत आ जाता है, तो हमने ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी है। आपने वेट नहीं करना 6 months का, 1 year का या 2 year का कि और मजीद दांत आए या बच्चा जो है वो खुद से स्टार्ट करे, ऐसा नहीं है। एक भी दांत आता है ऊपर नीचे कहीं भी, तो आपने उसको ब्रशिंग स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है
0: जी।
1: अब जैसे आपने कहा कि क्या इसका सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो केरी दांत को जो कीड़ा लगना है वो स्टार्ट हो जाता है,
0: ठीक है।
1: क्योंकि अगर मीठा लगता है और उसको हम क्लीन नहीं करते तो ऐसा ऐसा वो दांत को बुढ़ना स्टार्ट कर देगा, वो ऊपर से स्टार्ट करेगा, वो अंदर डीप

0: जाएंगे जी। और इसके अलावा अगर वो डीप जाता जाए और अगर आप ब्रशिंग हैबिट्स नहीं रखते तो वो फिर पेन में डेवलप हो जाते हैं। और इसके ट्रीटमेंट भी जो है वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है
1: जी।
0: अगर केरीज है और वो बहुत ही सुपरफिशियल है तो हम वो फिलिंग से ठीक कर लेते हैं, अदरवाइज उसके डिफरेंट फिर ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं।
1: ठीक,
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड,
7: हेल्थ गाइड
6: डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: पेरेंट्स जो हैं वो भी थोड़ा डिले कर देते हैं अगर पहले हैं कि बाद में ठीक हो जाएंगे.
1: बिल्कुल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल परमानेंट टीथ टेढ़े आ रहे हैं या कोई भी कंडीशन हो सकती है डिफरेंट आपको लग रहा है तो सारे दांतों को निकलने का आपने वेट नहीं करना, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमें ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है जिससे हम दांत सीधे करते हैं वो एज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. जितना आप उसको अर्ली ट्रीट करवाएंगे उसके जो ट्रीटमेंट और रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू लेट स्टेज में, क्योंकि अगर आप टीन एज गुजर जाए तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पहले जैसे उतने नहीं रहते. तो एज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप किस टाइम पे चेक करवाते हैं. तो इसलिए पेरेंट्स के लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए एक मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि जैसे ही परमानेंट दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं एक आप रेगुलर जो चेकअप है ऑर्थोडोंटिस्ट को वो लाजमी करवाएं ताकि दांत को असेस किया जाए कि वो जो बच्चा है उसके कैसे आ रहे हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेस है उसको स्पेस मेंटेन करनी है हमने या कोई टेढ़ा है उसको अर्ली ट्रीट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है.
0: ठीक ठीक बिल्कुल. इसमें लक्ष्य अगर हम बिल्कुल ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें देखनी भी है और देख रहे भी होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर पेरेंट्स जो हैं बच्चों में ही ज़्यादातर इस तरह के ट्रामा और वो चीज़ें जो हैं हो सकती हैं. इसमें लोग सब कुछ रूल्स आपने हमें पहले भी एक बताए थे कि ब्रशिंग के क्या रूल्स हैं, और स्पेशली बच्चों में पूछना चाहूँगी कि कितनी देर के बाद या कितने टाइमिंग्स, आमतौर पर तो टाइमिंग्स की भी बात होती है तो क्या बच्चों में भी कोई ऐसी है स्पेसिफिकली कि कितनी देर तक आपने ब्रश करना है?
1: देखिए सबसे पहले तो मेन ये चीज़ है कि हम कितनी दफ़ा ब्रश किया जाए.
0: जी
1: कम से कम जो है वो दिन में दो दफ़ा होनी चाहिए ब्रश.
0: ठीक है, ये हम आम एडल्ट्स की बात कर रहे हैं.
1: ये एडल्ट्स की भी बात है और आप मतलब टोडलर्स को छोड़ के जो चिल्ड्रन छोटे हैं जो के बात सुन सकते हैं और जो के कर सकते हैं उनके लिए भी
0: ठीक है.
1: आइडली दो टाइम ब्रशिंग होनी चाहिए, एक दफ़ा रात सोने से पहले और सुबह के टाइम कर सकते हैं, नाश्ते से पहले भी नाश्ते के बाद. इसमें थोड़ी सी वो आ जाती है अपनी अपनी चॉइस, लेकिन एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा रात को सोने से पहले लाजमी करना है.
0: आमतौर पर डॉक्टर ये कहा जाता है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप नाश्ता करने के बाद जो है फिर वो ब्रश करें तो ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है.
1: बिल्कुल, ये डिबेट अभी तक चल रही है लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आप ब्रश करें वो बेशक नाश्ते से पहले करें या बाद में, लेकिन आप लाजमी करें. ठीक है,
0: ठीक है.
1: जैसे मैंने बताया आइडली दो दफ़ा होना चाहिए. रात को जब ब्रश कर लिया लेकिन उसके बाद कुछ खाना नहीं है. कुछ लोगों की ये रूटीन होती है कि वो स्नैक्स जो है वो रात को लाजमी लेते हैं. ठीक है, और ब्रश वो पहले कर चुके होते हैं, इसलिए जब आप ब्रशिंग कर लें तो उसके बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है. यस, पानी पी सकते हैं लेकिन कोई भी आप जूस कोई भी स्नैक अगर लें तो उसके बाद दोबारा फिर ब्रशिंग करें.
0: अच्छा।
1: सोने से पहले आपने ब्रशिंग लाजमी करनी है लेकिन उसके बाद कुछ खाना नहीं है. क्योंकि
0: जी कुछ लोगों में हैबिट होती है कि सोते हुए वो जो है मिल्क दूध है वो कंज्यूम करते हैं, मतलब ज्यादा. तो ये याद है जो इसमें भी ब्रश फिर दोबारा लाजमी
1: बच्चों में है? तो ये थोड़ा सा
0: बच्चों में नहीं, आम एडल्ट्स की बात कर, बच्चों तो मेरा
1: अगर देखें वो
0: अवॉइड करना जरा मुश्किल.
1: बिल्कुल ऐसी है, एडल्ट्स में भी होता है लेकिन वो अच्छी तरह रिंस कर लें, कुल्ली कर लें तो अच्छी बात है. और अगर कुछ स्वीट है या कुछ ऐसा लिया है तो उसके बाद ब्रशिंग लाजमी कर लें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं करते तो उसका जो एक्सपोजर है वो पूरी रात वो दांत के साथ लगा रहेगा तो उसके रिजल्ट्स फिर उसके अकॉर्डिंग ही होंगे.
0: ठीक है, बिल्कुल. और इसमें जो है हम अगर जैसे आपसे पूछना चाहें कि ये तमाम जो इमरजेंसीज हैं उसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं? वैसे तो हम खुद भी गेस कर सकते हैं इन इमरजेंसी से कैसे बच रहे हैं, मगर हम आपसे पूछा चाहेंगे.
1: नहीं, जरूर. सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज जिसको आप लगता है कि काफी अग्रेसिव चीज है, उसमें आप स्प्लिंट्स यूज कर सकते हैं. दांतों की जो प्रोटेक्शन होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अगर आप यूज कर लें तो एक तो आप इससे बच सकते हैं. इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनमें ज्यादा ये देखा जाता है उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो आपको 24/7 नजर रखनी ही पड़ेगी.
0: ठीक.
1: इसके अलावा जो थोड़े से बड़े हैं उनको आप समझाना पड़ेगा कि किसी भी चीज के साथ आपने कोई शार्प चीज है या जहाँ पे आपकी टक्कर हो सकती है वहां से आपने बच के रहना है. इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाते हुए जो हमारी स्टील की अक्सर स्पून होता है, चम्मच होता है, अगर हम तेजी में खा रहे हैं अगर वो भी कभी जोर से लग जाए तो उससे भी दांत का जो है वो हिस्सा टूट सकता है. तो इंजरीज किसी भी किस्म की हो सकती है.
0: ठीक ठीक. और जैसे कि वो शार्प है जैसे ब्रेसिस हैं या कुछ, उनका खास ख्याल जो है वो रखना है. जी डॉक्टर, इसमें कोई जैसे

0: और दांत जो हैं वो मैसेज आया हो सकता
1: है। जी बिल्कुल, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक डेंटल ट्रॉमा था, तो मैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक मैसेज दूंगा कि एक तो आपने कोशिश करनी है हिफाजत करें, और इन केस अगर खुदा ना खासा अगर ऐसा कोई इशू होता है, किसी इंजरी को फेस करना पड़ जाता है, तो आपने दांत को संभाल के रखना है उसको, और इसके अलावा उसको साफ करना है सलाइन के साथ और ठंडे दूध के साथ, या अपने मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर आपने रखना है। और तीसरी चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपने टाइमिंग की, वो आपने 20 से 30 मिनट के अंदर अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, या कोई भी इमरजेंसी डेंटल क्लिनिक है आपने वहां से रिजू करना है। उसको डिले नहीं करना कि आप उसको छोड़ दें या कोई भी चीज़ हो। इसके अलावा अगर आपको स्टार्ट में सिम्टम्स नहीं शो करे, फिर भी आप एक दो दिन के वक्फे के बाद एग्जामिन जाके करवाएं, वो उस केस में कि अगर दांत मुंह के बाहर नहीं निकला, इन केस अगर निकलता है तो फिर आपको उसी टाइम जाके चेक करवाना है।
0: ठीक, और बिल्कुल जो है आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और इमरजेंसी में बिल्कुल जरूर जाना है, जो भी आपके पास इमरजेंसी है।
1: जी बिल्कुल, जैसे दांत अगर मुंह से निकलता है तो अब वो एक इमरजेंसी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें इसलिए क्योंकि जो आपका अपना दांत है वो भी दोबारा लग सकता है, ये सारा आपकी वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है।
0: जी ठीक, आपने सुना कि बहुत ही डिटेल में डॉक्टर ने हमें बताया कि अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसे किस तरह से हैंडल करना है, और इसके साथ ही अपने दांतों की हिफाजत बहुत करनी है आपको, मगर इसके साथ ही हम प्रोग्राम हेल्थ गाइड से जाना चाहेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद रेहाब खान जो कि डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, और फौजिया शफीक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, खुश आमदीद आप सबको विमेन इन स्पोर्ट्स में. ये वो प्रोग्राम है जहां हम सिर्फ स्कोर बोर्ड और स्टेडियम की रोशनी तक महदूद नहीं रहते, बल्कि उन कहानियों तक जाते हैं जो मॉडर्न स्पोर्ट्स कल्चर को शेप करती हैं, या कह लें कि रीशेप कर रही हैं, जहां हर गोल, हर विक्ट्री और हर परफॉर्मेंस के पीछे एक जर्नी होती है जो हिम्मत, स्ट्रगल और ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई होती है. भाई अच्छा, आज का हमारा एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर बहुत गहरा राबता रखता है विमेन इन स्पोर्ट्स की दुनिया से. क्योंकि भाई आज हम बात करने लगे हैं स्पोर्ट्स, परफॉर्मेंस और एंटरटेनमेंट के उस इंटरसेक्शन की, जहां एथलेटिसिज्म सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं रह जाता, बल्कि यूं समझ लें कि कहानी बन जाता है, जहां हर मूव एक एक्सप्रेशन होती है और हर मूवमेंट एक नैरेटिव क्रिएट करती है जो ऑडियंस के दिल में उतर सी जाती है. भाई क्योंकि वो ऐसी है, एंटरटेनमेंट के साथ भरी हुई. ये वो दुनिया है जहां स्ट्रेंथ सिर्फ मसल की नहीं होती, ना ना ना ना, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस भी होती है, जो परफॉर्मर्स को एक अलग ही लेवल पर ले

जाती है। और भाई इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज एक ग्लोबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट फिगर को स्पॉटलाइट में ला रहे हैं, जिसने रीडिफाइन किया है कि विमेन हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस स्पेस में किस तरह रिप्रेजेंट हो सकती हैं। भाई ये वो दुनिया है जहाँ स्ट्रेंथ सिर्फ मसल की नहीं होती बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस भी होता है, जो परफॉर्मर्स को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है भाई। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज एक ग्लोबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट फिगर को स्पॉटलाइट में ला रहे हैं, जिसने रीडिफाइन किया है कि विमेन हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस स्पेसेस में किस तरह रिप्रेजेंट हो सकती हैं। तो साथियों हम बात कर रहे हैं रिया रिफ्ले की, एक प्रोफेशनल रेसलर जिन्होंने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी प्रेजेंस से ये साबित किया कि विमेन सिर्फ पार्टिसिपेशन तक महदूद नहीं होती बल्कि डोमिनेंस और अथॉरिटी का भी सिंबल हो सकती हैं। अच्छा इन्होंने बड़ा मेंटेन किया भाई, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स। उनकी एंट्री रिंग में सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं होती बल्कि एक स्टेटमेंट होती है, जहां कॉन्फिडेंस, एग्रेशन और कंट्रोल एक साथ नजर आते हैं। और ये चीज ना यंग गर्ल्स के लिए एक पावरफुल मैसेज बन जाता है भाई कि स्ट्रेंथ और फेमिनिटी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा आज के जमाने में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सिर्फ कंपटीशन नहीं रहे ना, ये सोशल चेंज के प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, जहां जेंडर नॉर्म्स रीशेप हो रहे हैं और सोसाइटी का परसेप्शन ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा है। अच्छा जब कोई लड़की किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है ना या विक्ट्री हासिल करती है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीत रही होती, ना ना ना ना, बल्कि अपने घर, अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी के लिए एक नया नैरेटिव लिख रही होती है, जहां प्राइड और रिकॉग्निशन टैंजिबल फॉर्म में सामने आते हैं। ये वो मोमेंट होता है जहां चेंज थ्योरी से निकलकर रियलिटी बन जाता है। देखिए जब एक लड़की मेडल जीतकर या स्टेट रिप्रेजेंट करके ये साबित करती है ना कि शी कैन स्टैंड इक्वल, कंपीट इक्वल एंड शाइन इक्वल, इसी तरह रिया रिफ्ली जैसी पर्सनालिटीज ग्लोबल स्टेज पर ये प्रूव करती हैं कि विमेन हाई प्रेशर, हाई परफॉर्मेंस एनवायरमेंट्स और सिर्फ सर्वाइव नहीं कर सकती बल्कि थ्राइव भी कर सकती हैं। और उनकी सक्सेस यंग गर्ल्स के लिए इंस्पायरेशन का एक लाइव एग्जांपल बन जाती है भाई, जो उन्हें स्पोर्ट करियर परस्यू करने की हिम्मत देती है। अच्छा जब हम इन टूर्नामेंट्स और परफॉर्मेंसेस को देखते हैं ना, तो जाकर ये समझ में आता है कि भाई ये सिर्फ फिजिकल गेम्स नहीं है बल्कि माइंडसेट का गेम है, जहां डिसिप्लिन, डेडिकेशन और मेंटल टफनेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। देखिए हर मैच, हर अपीयरेंस और हर परफॉर्मेंस एक स्टोरी होती है, जो ऑडियंस को ये फील करवाती है कि पावर सिर्फ विनिंग में नहीं बल्कि पार्टिसिपेटिंग में भी होती है भाई। अच्छा पता है आज के दौर का मामला क्या है, आजकल के दौर में हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का गैप कम हो रहा है और एक नई हाइब्रिड कल्चर डेवलप हो रही है, जहां गर्ल्स अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ स्टेडियम तक महदूद नहीं है बल्कि घरों, स्कूल्स और कम्युनिटीज तक इनका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जहां पेरेंट्स अब अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं खुद, क्योंकि अब सक्सेस विजिबल है भाई, रिलेटेबल है और अचीवेबल लगती है। साथियों रिया रिफ्ली जैसी एथलीट इस विजिबिलिटी को और स्ट्रांग बनाती हैं, जहां हर मूव एक मैसेज देती है कि विमेन स्ट्रांग भी हो सकती हैं, फियरलेस भी हो सकती हैं और लीडरशिप भी शो कर सकती हैं। तो अगर आप आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं ना, तो जरा सोचिए आप अपने दिमाग से कि जब स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बन जाता है ना और परफॉर्मेंस पावर बन जाती है, तो सोसाइटी किस तरह इवॉल्व होती है। अच्छा अपनी राय जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर जिसका हैंडल है @FM107Qatar, या हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 666-22107 पर, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है, जहां हर आवाज मैटर करती है और हर स्टोरी चेंज का हिस्सा बनती है। और साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम बात करते हैं कतर के स्पोर्ट्स लैंडस्केप की, खास तौर पर एक ऐसे डिसिप्लिन की जो पहले सिर्फ लिमिटेड सर्कल में देखा जाता था, मगर आज आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड आइडेंटिटी बन रहा है, जो कि है रेसलिंग। अच्छा और वो भी विमेन के प्रस्पेक्टिव से, जहां स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और

करेज एक नई कहानी लिख रहे हैं। अच्छा, एज अ कतर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अगर बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कतर ने पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ एक्सपेंड नहीं किया बल्कि डाइवर्सिफाई किया है, जहां ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के साथ साथ कॉम्बैट स्पोर्ट्स, परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स और विमेन फोकस्ड एथलेटिक प्रोग्राम्स को भी एक्टिवली प्रमोट किया जा रहा है। देखें, रेसलिंग जो एक फिजिकली डिमांडिंग और मेंटली इंटेंस स्पोर्ट है ना, अब कतर के यूथ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में विमेन का रोल एग्रेसिवली ज्यादा विजिबल होता जा रहा है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है साथियों, जहां स्कूल्स, एकेडमीज और नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स मिलकर ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां लड़कियों को सिर्फ पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा बल्कि उन्हें ट्रेन्ड एथलीट्स बनने का स्ट्रक्चर्ड पाथवे भी दिया जा रहा है। अच्छा, अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात करें ना, तो कतर में स्कूल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के अंदर गर्ल्स की इन्वॉल्वमेंट पिछले 5 से 7 सालों में नोटिसिबली इंक्रीज शो कर रही है, जहां फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में लड़कियों की पार्टिसिपेशन रेट कुछ इंस्टीट्यूशंस में 30 से बढ़कर 55% यानी 55% तक रिपोर्ट की गई है, स्पेशली फिटनेस ट्रेनिंग और एथलेटिक बेस्ड मॉड्यूल्स में। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स तक महदूद नहीं है बल्कि माइंडसेट शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करती है। साथियों, रेसलिंग और कॉम्बैट बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अब कुछ प्राइवेट एकेडमीज और यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जहां फोकस सिर्फ चैंपियनशिप का नहीं है बल्कि डिसिप्लिन, बॉडी कंट्रोल और कॉन्फिडेंस बिल्ड पर भी होता है। देखिए, नेशनल लेवल पर कतर की स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी विजन 2030 के फ्रेमवर्क के अंडर इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जा रहा है, जहां विमेन एथलीट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड पाथवेज डेवलप किए जा रहे हैं ताकि ग्रास रूट्स लेवल से लेकर इलीट कॉम्पिटिशन्स तक सेफली और प्रोफेशनली प्रोग्रेस की जा सके। अच्छा, रेसलिंग जैसा जो स्पोर्ट है ना, वो कतर में अभी इमर्जिंग स्टेट पर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी विजिबल है, खास तौर पर उन ट्रेनिंग एनवायरमेंट्स में जहां गर्ल्स को स्ट्रेंथ बेस्ड कंडीशनिंग, एगिलिटी ड्रिल्स और सेल्फ डिफेंस ओरिएंटेड एथलेटिक ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि एम्पावरमेंट टूल बन रहा है भाई, जहां यंग गर्ल्स अपनी फिजिकल और मेंटल बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर रही हैं। अच्छा, दोहा और सराउंडिंग एरिया में ना कम्युनिटी फिटनेस प्रोग्राम्स का एक्सपेंशन इस बात का सबूत है कि सोसाइटी ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर रही है कि विमेन सिर्फ रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि हाई इंटेंसिटी और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में भी परफॉर्म कर सकती हैं। कुछ कम्युनिटी सेंटर्स में लड़कियों के लिए डेडिकेटेड स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग सेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जहां पार्टिसिपेशन रेट हर साल इंक्रीज हो रहा है और ट्रेनर्स रिपोर्ट करते हैं कि यंग गर्ल्स में कॉन्फिडेंस लेवल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो रहा है। जब वो स्ट्रक्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सपोजर लेती हैं ना, तो भाई उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथियों, ग्लोबल ट्रेंड को अगर हम कतर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो विमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स पिछले डेकेड में 40% से ज्यादा इंक्रीज हुई है, इंटरनेशनली वो भी, और कतर इस ट्रेंड को अपने लोकलाइज्ड स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अडेप्ट कर रहा है। अच्छा, रेसलिंग जहां ट्रेडिशनली मेल डोमिनेंस ज्यादा था ना, अब स्लोली इंक्लूसिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, ये चेंज सिर्फ पॉलिसी लेवल पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी विजिबल है, जहां पेरेंट्स और स्कूल्स का माइंडसेट चेंज हो रहा है। अच्छा, पहले जहां गर्ल्स के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को डिस्करेज किया जाता था ना, अब वहां स्ट्रक्चर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जहां गर्ल्स सेफली ट्रेन कर सकती हैं। साथियों, कतर स्पोर्ट्स फेडरेशन और रिलेटेड यूथ डेवलपमेंट बॉडीज का फोकस सिर्फ मेडल्स और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पार्टिसिपेशन बेस को वाइडन कर रहा है, जहां गर्ल्स को अर्ली एज से स्पोर्ट्स एक्सपोजर दिया जा रहा है। अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि रेसलिंग और सिमिलर स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल डेवलप करते हैं, जो यंग गर्ल्स के लिए उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक की रोल प्ले करते हैं। यही वजह है कि स्कूल्स में स्ट्रक्चर्ड

शुड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के जरिए गर्ल्स को ग्रेजुअली हायर इंटेंसिटी स्पोर्ट्स की तरफ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जहां उनका प्रोग्रेशन मॉनिटर्ड और सपोर्टेड होता है. अच्छा, अगर हम इंस्पिरेशनल एंगल से बात करें ना, अगर इसको इंस्पिरेशनल एंगल से समझने की कोशिश करें, तो कतर में अब एक नई जनरेशन ग्रो कर रही है जो स्पोर्ट्स को सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि करियर ऑप्शन के तौर पर भी देख रही है. देखिए, रेसलिंग जैसा स्पोर्ट उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां वो अपनी स्ट्रेंथ को नेगेटिविटी नहीं बल्कि पॉजिटिविटी और अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकती हैं. ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ स्पोर्ट्स फील्ड तक लिमिटेड नहीं है, नो, बल्कि सोशल परसेप्शन को भी चेंज कर रहा है, जहां कम्युनिटी अब स्लोली एक्सेप्ट कर रही है कि विमेन भी फिजिकल डिमांडिंग स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकती हैं. और यही वो पॉइंट है जहां हम समझते हैं कि मॉडर्न स्पोर्ट्स में इन्फ्लुएंस सिर्फ मेडल से मेजर नहीं होता बल्कि इम्पैक्ट, प्रेजेंस और स्टोरी टेलिंग से होता है. देखिए, जब एक लड़की रेसलिंग मैट पर स्टेप अप करती है ना, तो वो सिर्फ एक मैच नहीं खेल रही होती बल्कि एक नैरेटिव चैलेंज कर रही होती है, एक परसेप्शन ब्रेक कर रही होती है और एक न्यू आइडेंटिटी बिल्ड कर रही होती है. कतर में ये जर्नी अब इनिशियल स्टेज से इवॉल्व होकर ग्रोथ फेज में एंटर कर रही है, जहां अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और बैरियर्स ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहे हैं. मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर, और शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स, जहां हम हर कहानी को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि फील करते हैं.

0: आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी स्टोरी ऑफ द वीक की तरफ, जहां हम सिर्फ एक एथलीट की कहानी नहीं सुनते बल्कि एक ऐसे सफर को समझने की कोशिश करते हैं जो स्ट्रगल, आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल इम्पैक्ट से भरा हुआ है। अच्छा, आज का फोकस है एक ऐसी फीमेल एथलीट जिन्होंने स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ अपनी जगह नहीं बनाई बल्कि उस पूरे नैरेटिव को रीडिफाइन कर दिया जहां वुमेन स्ट्रेंथ को पहले लिमिटेड समझा जाता था और लिमिटेड रखा जाता था। हम बात कर रहे हैं रिया रिफ्ली की, एक ऐसी परफॉर्मर जिनकी जर्नी ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है, जहां एक यंग एथलीट के तौर पर उनका एक्सपोजर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग और कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट से होता है। उनका अर्ली बैकग्राउंड ही ये सिग्नल देता था कि ये सिर्फ एक नॉर्मल स्पोर्ट्स करियर नहीं होगा बल्कि एक ऐसा पाथवे होगा जहां फिजिकल डोमिनेंस और परफॉर्मेंस की कहानी एक साथ चलेगी। साथियों ऑस्ट्रेलिया में ग्रो करते हुए रिया रिफ्ली ने अर्ली एज से ही स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स और एथलेटिक कंडीशनिंग में इंटरेस्ट शो किया। उनका नेचुरल इंक्लिनेशन सिर्फ स्पीड या एगिलिटी तक लिमिटेड नहीं था बल्कि पावर, एंड्योरेंस और बॉडी कंट्रोल पर फोकस था। ये वो फाउंडेशन था जहां से उनका फ्यूचर शेप होना शुरू हुआ था। अच्छा, नॉर्मल स्पोर्ट्स ट्रेजेक्टरी से हटकर उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग का रुख किया, जो एक ऐसी फील्ड है जहां स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का फ्यूजन होता है। यहां सिर्फ जीतना या हारना मैटर नहीं करता बल्कि कैरेक्टर, प्रेजेंस, टाइमिंग और ऑडियंस कनेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं होता बल्कि ये एक मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस आर्ट है जहां एथलीट को अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को भी प्रेजेंट करना होता है। रिया रिफ्ली ने जब इस दुनिया में एंट्री ली तो उनका इम्पैक्ट इमीडिएटली नोटिसेबल था। उनकी फिजिकल प्रेजेंस, उनका फियरलेस एटीट्यूड और उनकी डोमिनेंट एनर्जी ने एक यूनिक आइडेंटिटी दी उनको, लेकिन इस आइडेंटिटी तक पहुंचना आसान नहीं था। नेवर, जैसा हर इलीट एथलीट को फेस करना पड़ता है, उन्हें भी इंटेंस कंपटीशन, शदीद ट्रेनिंग स्केड्यूल्स और कांस्टेंट परफॉर्मेंस प्रेशर का सामना करना पड़ा। अच्छा, रेसलिंग इंडस्ट्री में ना हर परफॉर्मर को अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन रिंग स्किल और ऑडियंस एंगेजमेंट पर कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां हर मैच एक ऑडिशन होता है और हर अपीयरेंस एक इवैल्यूएशन। रिया रिफ्ली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं बल्कि मेंटली कंसिस्टेंट भी रहना था। देखिए, कंटिन्यूस ट्रैवल, हाई इंटेंसिटी मैचेस और ग्लोबल ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस ने उनकी जर्नी को और भी डिमांडिंग बना दिया था। यही उनकी स्ट्रेंथ भी डिफाइन हुई। उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बल्कि उसी को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। अच्छा, फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करें तो उन्होंने काम किया WWE में। WWE जैसी ग्लोबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फीमेल परफॉर्मर्स का रिप्रेजेंटेशन पिछले डेकेड्स में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। आज विमेन मैचेस सिर्फ अंडर कार्ड तक लिमिटेड नहीं है बल्कि मेन इवेंट स्लॉट्स तक पहुंच चुके हैं। रिया रिफ्ली उन एलीट परफॉर्मर्स में शामिल हैं जिन्होंने मल्टीपल इंटरनेशनल चैंपियनशिप टाइटल्स जीते हैं और ग्लोबल ऑडियंस के सामने अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की है। उनका WWE विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप विन एक मेजर माइलस्टोन था जो उन्हें टॉप टियर फीमेल एथलीट्स की लिस्ट में इंक्लूड करता है। अच्छा, रिया रिफ्ली की जो हम कहते हैं ना राइज, सिर्फ टाइटल तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उनका रियल इम्पैक्ट विजिबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन में है। उन्होंने ये नैरेटिव चेंज किया कि भाई औरतें, विमेन रेसलिंग सिर्फ टेक्निकल या सपोर्टिव रोल नहीं है बल्कि मेन अट्रैक्शन भी हो सकता है। उनकी इन रिंग स्टाइल एग्रेसिव, पावरफुल और हाईली कंट्रोल्ड है जो उन्हें क्राउड में इंस्टेंटली डिस्टिंग्विश कर देती है। ये कॉम्बिनेशन उन्हें एक मॉडर्न एथलेटिक आइकन बना जाता है जहां स्ट्रेंथ और एंटरटेनमेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उनकी जर्नी में एक डीप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। देखिए रेसलिंग जैसी दुनिया में हर एथलीट को अपनी इमोशनल रेजिलियंस को स्ट्रांग रखना होता है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल भी होता है। हर परफॉर्मेंस के साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और हर सक्सेस के बाद नए स्टैंडर्ड सेट होते हैं। रिया रेफले ने इस प्रेशर को सिर्फ हैंडल नहीं किया बल्कि इसे अपनी मोटिवेशन बनाया। उनका माइंडसेट ये रिफ्लेक्ट करता है कि फेलियर एक एंड नहीं बल्कि एवोल्यूशन का पार्ट है। अच्छा, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में ना ऑडियंस कनेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रिया रेफले इस एस्पेक्ट में भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। उनकी ऑथेंटिसिटी उन्हें क्राउड से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। वो आर्टिफिशियल पर्सोना क्रिएट नहीं करती बल्कि अपनी रियल कॉन्फिडेंस और नेचुरल डोमिनेंस को रिंग में लेकर आती हैं। इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ विंस की वजह से नहीं बल्कि उनकी प्रेजेंस की वजह से भी है। अच्छा, आज हम अगर बॉर्डर पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो रिया रेफले का करियर एक लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है जो वुमेन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में हो रहा है अभी। आज फीमेल एथलीट सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स तक के लिए लिमिटेड नहीं रह गई हैं बल्कि हेडलाइन इवेंट सेंटर बन रही हैं। ये शिफ्ट सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पर नहीं है बल्कि कल्चरल लेवल पर भी विजिबल है। लोग अब विमेन स्ट्रेंथ को एक स्पेक्टिकल के तौर पर नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, ग्लोबल रेसलिंग प्लेटफॉर्म्स पर खातीन का होना ये प्रूव करता है कि ऑडियंस प्रेफरेंस इन्वॉल्व हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स अब सिर्फ एक्सेप्शन नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन बन चुकी हैं। रिया रेफले इस ट्रांसफॉर्मेशन की एक लिविंग एग्जांपल हैं जिन्होंने अपनी करियर से ये साबित किया है कि डोमिनेंस जेंडर से डिफाइन नहीं होती बल्कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन और माइंडसेट से डिफाइन होती है। उनकी अचीवमेंट्स में मल्टीपल चैंपियनशिप रीजन्स हैं, आप कह लें कि हाई प्रोफाइल मैचेस और ग्लोबल रिकॉग्निशन शामिल हैं जो उन्हें इलीट कैटेगरी में प्लेस करती हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट शायद ये है कि उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है कि विमेन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में किसी लेवल तक भी जा सकती हैं। अच्छा, अगर हम इमोशनल और इंस्पिरेशनल एंगल से देखें ना, तो रिया रेफले की स्टोरी हर उस यंग गर्ल के लिए एक मैसेज है जो स्पोर्ट्स या परफॉर्मेंस फील्ड में अपनी जगह बनाना चाहती है। उनकी जर्नी ये बताती है कि चैलेंजेस तो आते जाते रहते हैं लेकिन आइडेंटिटी स्ट्रांग हो तो हर बैरियर ब्रेक किया जा सकता है। और इसी पॉइंट पर हम ये समझते हैं कि मॉडर्न एथलीट सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं होते बल्कि एक कहानी भी होते हैं जो अपनी जर्नी से सोसाइटी को नए पर्सपेक्टिव्स देते हैं। रिया रेफले ने ये प्रूव किया है कि स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं होती बल्कि मेंटल और इमोशनल भी होती है। तो साथियों, अगर हम रिया रेफले की जर्नी को सिर्फ एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट स्टोरी समझकर देखें ना, तो हम इसकी असल गहराई को मिस कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रेसलर की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे माइंडसेट की जर्नी है जो हर उस इंसान के लिए लेसन रखती है जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी जगह और अपनी आवाज दुनिया में बनाना चाहता है। बियॉन्ड द गेम में अगर हम देखें तो बियॉन्ड द गेम का मतलब यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स से आगे जाना नहीं बल्कि ये समझना है कि हर एथलीट, हर परफॉर्मर और हर अचीवर के पीछे एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल स्टोरी होती है जो उन्हें डिफाइन करती है। रिया रेफले की जर्नी हमें सबसे पहले और सबसे जो पावरफुल मैसेज है वो ये देती है कि कॉन्फिडेंस, वो हमें कॉन्फिडेंस देती है। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ रिंग में या स्टेज पर नहीं होता बल्कि उस लम्हे से शुरू होता है जब इंसान अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। रिया रेफले ने दुनिया को ये बता दिया कि कॉन्फिडेंस किसी से परमिशन लेकर नहीं मिलता बल्कि ये अपनी प्रेजेंस से बिल्ड होता है। जब वो रिंग में एंटर करती है ना, तो वो सिर्फ एक रेसलर नहीं होती, वो एक स्टेटमेंट होती है। ये स्टेटमेंट ये होता है कि मैं यहाँ हूँ और मैं अपनी जगह खुद बनाती हूँ। अच्छा, ये माइंडसेट हर यंग एथलीट के लिए एक लेसन है कि दुनिया से अप्रूवल लेने से पहले सेल्फ बिलीव को स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिसिप्लिन है इसमें। देखिए, रिया रेफले का करियर हमें ये समझाता है कि टैलेंट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ना, असल जर्नी डिसिप्लिन से शुरू होती है। साथियों, रेसलिंग जैसे फिजिकल डिमांडिंग दुनिया में हर दिन का रूटीन, हर ट्रेनिंग सेशन और हर परफॉर्मेंस लिटरली एक टेस्ट होता है। ये सिर्फ मसल का गेम नहीं है बल्कि कंसिस्टेंसी का गेम है। उनकी फिटनेस, उनकी एड्योरेंस और उनका परफॉर्मेंस कंट्रोल, ये सब कुछ, ये सब इस बात का सबूत है कि सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती भाई, इसके लिए काम करना पड़ता है, बल्कि रिपीटेटिव डिसिप्लिन का रिजल्ट होती है। जब हम उन्हें परफॉर्म करते हुए देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ पावर नजर आ रही होती है, लेकिन उसके पीछे जो हजारों आवर्स की ट्रेनिंग होती है ना, पेन मैनेजमेंट होती है, मेंटल कंडीशन होती है, वो किसी को नजर नहीं आती। साथियों, तीसरा एंगल है पब्लिक विजिबिलिटी का। अच्छा, आज के मॉडर्न स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में विजिबिलिटी सिर्फ एक आप कह लें कि फेम नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंस है। रिया रेफले ने वुमेन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को ग्लोबल लेवल पर एक नई विजिबिलिटी दी है, जहां वुमेन सिर्फ बैकग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर रही होती, बल्कि मेन इवेंट पर्सनालिटीज बन चुकी हैं। उनकी प्रेजेंस ने ये नैरेटिव चेंज किया है कि स्ट्रेंथ सिर्फ मेल एथलीट्स की मोनोपोली होती है। ना, ऐसा नहीं है। आज दुनिया के हर कोने में यंग गर्ल्स उन्हें देख कर ये सोचती हैं कि भाई कि वो भी एक दिन उस स्टेज पर हो सकती हैं। ये विजिबिलिटी एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो मीडिया स्क्रीन्स के थ्रू सोशली सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज कर रही है। अच्छा, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट भी रिया रेफले की जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लीडरशिप सिर्फ टाइटल नहीं होती साथियों, नो, ये सिर्फ टाइटल लेकर नहीं आती, बल्कि इम्पैक्ट से आती है। उनका स्टाइल, उनकी कंसिस्टेंसी और उनका फियरलेस होना उन्हें एक नेचुरल लीडर के तौर पर परफॉर्म करने पर मजबूर कर देता है। वो सिर्फ अपने मैचेस नहीं खेल रही होती, बल्कि एक एग्जाम्पल सेट कर रही होती हैं कि कैसे प्रेशर्ड सिचुएशंस में काम रहना चाहिए, काम रहकर डोमिनेंस मेंटेन की जा सकती है। ये लीडरशिप उन्हें उन एथलीट से अलग करती है जो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं। अच्छा, हेल्थ और स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट भी उनकी स्टोरी में रीडिफाइन होता है। देखें, ट्रेडिशनली स्ट्रेंथ को सिर्फ फिजिकल पावर समझा जाता है, लेकिन रिया रेफले ने इस डेफिनेशन को भी एक्सपेंड कर दिया। भाई देखें, आज स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ वेट उठाना नहीं होता, बल्कि अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होता है, अपने इमोशंस को मैनेज करना होता है, अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन करना होता है। रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में आप कह लें कि इंजरी रिस्क जो होता है ना, फटीग हो गया, मेंटल प्रेशर हो गया, आप कह लें कि कॉन्स्टेंट रहती हैं ये चीज़ें, ये प्रेशर कॉन्स्टेंट रहते हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी, लेकिन उनका एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर ये शो करता है कि रियल स्ट्रेंथ बैलेंस में होती है, एक्सट्रीमिटी में नहीं होती। अच्छा, रिस्पेक्ट एक और पावरफुल आउटकम है जो उनकी जर्नी से सामने आता है। देखिए, रिस्पेक्ट सिर्फ जीत से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी, ऑथेंटिसिटी और इम्पैक्ट से मिलती है। रिया रेफले ने अपनी परफॉर्मेंस से ग्लोबल ऑडियंस का रिस्पेक्ट अर्न किया है। वो हर मैच में सिर्फ ओपोनेंट से नहीं लड़ती, बल्कि एक्सपेक्टेशंस, स्टीरियोटाइप्स और लिमिटेशंस से भी लड़ती हैं। और जब एक एथलीट ने इन सब को ओवरकम करना स्टार्ट कर लिया होता है ना, तो भाई वो सिर्फ चैंपियन नहीं रहता, वो सिंबल बन जाता है। अगर हम और ज़्यादा गहराई में जाकर बात करें तो रिया रेफले की जर्नी एक फिलोसफिकल मैसेज देती है। मॉडर्न स्पोर्ट अब सिर्फ फिजिकल कॉम्पिटिशन नहीं रहा, ये कहानी बन गया है, ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ हर एथलीट अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है। रिंग, एरीना या स्टेज सिर्फ एक स्पेस नहीं है, बल्कि एक कैनवस बन चुके हैं जहां ह्यूमन एम्बिशंस, स्ट्रगल्स और एम्बिशंस पेंट होते हैं। रिया रेफले इस कैनवस पर एक बोल्ड पेंट की तरह नजर आती हैं, जहां हर मूव एक मैसेज देती है। साथियों, ये समझना जरूरी है कि आज के दौर में स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है और कल्चर का इंटरसेक्शन बन चुकी है। देखिए, रिया रेफले जैसे एथलीट इस इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां स्ट्रेंथ को रीडिफाइन किया जा रहा है और जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज किया जा रहा है। उनकी जर्नी ये बताती है कि मॉडर्न एथलीट सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंसर भी होती हैं जो सोसाइटी की परसेप्शन को चेंज करती हैं या रीशेप करती हैं। और यहाँ हम एक और रियल थॉट के साथ एक रियलाइजेशन तक पहुँचते हैं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ टाइटल्स या चैंपियनशिप नहीं होता, बल्कि इम्पैक्ट होता है। रिया रेफले का इम्पैक्ट सिर्फ रेसलिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उन्होंने ग्लोबल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में विमेन रोल को रीडिफाइन किया है। ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये माइंडसेट चेंज करता है और माइंडसेट चेंज होना ही असली रेवोल्यूशन होता है। साथियों, आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी विमेन इन स्पोर्ट्स के अगले एपिसोड में। जहां हम दुनिया के और भी पावरफुल स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे, जहां विमेन अपनी आइडेंटिटी, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी स्ट्रगल के जरिए स्पोर्ट्स को रीडिफाइन कर रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए सफा को दीजिए इजाजत। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम FM 107 कतर। याद रखिए कि हर अरीना एक कहानी सुनाता है और हर कहानी के अंदर चेंज की ताकत होती है। इसी नोट के साथ सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی بر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
5: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی ہر جمعہ شام 4 PM سے صرف FM 107 پر
6: دوستو ٹریفک کے ریگولیشنز کی پابندی کرنا ہر ڈرائیور کی ذمہ داری ہے خاص طور پر اسکول زونز کے آس پاس ڈرائیورز کو روڈ مارکنگز جیسے لینز اور اسٹاپ لینز اور پیڈسٹرین کراسنگز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے یہ رولز نہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی حفاظت کے لیے بھی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اسکولز کے آس پاس ٹریفک سلو ہونا چاہیے اور ڈرائیورز کو اسٹوڈنٹس کے کراسنگ کے وقت رکنا چاہیے پیڈسٹرین کراسنگز اور اسکول سائنز کی ریسپیکٹ کرنا اور اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا ایکسیڈنٹس اور چوٹوں سے بچاتا ہے ہر ایک شخص کا فرض ہے کہ وہ ان رولز کی پابندی کرے پیرنٹس ٹیچر اور لوکل کمیونٹی سب مل کر اسٹوڈنٹس کی سیفٹی کو بڑھاوا دے سکتے ہیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم ٹریفک ریگولیشنز فالو کریں تو اسکول کے آس پاس کا ماحول زیادہ سیکیور اور اسٹوڈنٹس کے لیے سیف بن جاتا ہے FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے سیف رہیں اور خوش رہیں
7: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے ریڈیو

0: की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी,
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। और जैसे आप लोगों को पता है कि ये प्रोग्राम जो है इस पे हम कतरी स्पोर्ट्स स्टार्स, एथलीट्स और लेजेंड्स के बारे में हम बताते हैं, आप लोगों को शेयर करते हैं नॉलेज अबाउट दी कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स और स्टार्स। आज हम बात करें अब्दुल अजीज अल कुवारी के बारे में। अब्दुल अजीज अल कुवारी कतर के मशहूर मोटर रैली ड्राइवर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी टैलेंट और मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के जरिए मोटर स्पोर्ट की दुनिया में खास मकाम हासिल किया है। हम तो नासिर अल अतिया के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन नासिर अल अतिया तो एक सुपरस्टार, सुपर लेजेंड के स्टेटस में है। उनके साथ साथ ऐसे कई ड्राइवर्स हैं, रैलिस्ट हैं, जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, आप लोगों को बताना मैं फर्ज समझता हूँ। तो अब्दुल अजीज अल कुवारी, उनका नाम FIA मिडल ईस्ट रैली चैंपियनशिप के सबसे कामयाब और मुकाबलेबाज ड्राइवर्स में शुमार होता है। रैली रेसिंग एक इंतहाई मुश्किल खेल है, जहां रफ्तार के साथ साथ स्ट्रेटजी, हिम्मत और गाड़ी पर मुकम्मल कंट्रोल की जरूरत होती है। और अब्दुल अजीज अल कुवारी ने इन तमाम सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया है। अब्दुल अजीज ने सालों तक मिडल ईस्ट रैली चैंपियनशिप में कतर की नुमाइंदगी की और कई मरतबा पोडियम फिनिशेस हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने रीजनल सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक्वामी क्रॉस कंट्री रैली इवेंट्स में भी अपनी काबिलियत साबित की। चैलेंजर कैटेगरी में उनकी कामयाब परफॉर्मेंसेस ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन ऑफ रोड ड्राइवर्स की सफ में ला खड़ा किया। कतर में मोटर स्पोर्ट्स के फरोग में अगर किसी की बात होती है तो अब्दुल अजीज अल कुवारी की बात होती है, और उनका अहम किरदार आज भी हम याद करते हैं। उनकी कामयाबियां नए ड्राइवर्स के लिए हिम्मत और रहनुमाई का जरिया बनी है। रेगिस्तानों, पथरीले रास्तों और सख्त मौसमी हालात में रेस करते हुए उन्होंने दिखाया कि कतरी एथलीट्स मोटर स्पोर्ट के सबसे मुश्किल मुकाबलों में भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकते हैं। आज अब्दुल अजीज अल कुवारी कतर के मोटर स्पोर्ट के एक नुमाया एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी मेहनत, जज्बा और कामयाबियां उन्हें कतरी खेलों की दुनिया का एक रोशन सितारा बनाती है।

0: अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क के हादसों को बढ़ा देता है। ये सिर्फ आपकी अपनी जान को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए दरख्वास्त है कि हमेशा एहतियात बरतें, ड्राइव करते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि जिम्मेदार ड्राइवर बने अपनी और दूसरों की सेफ्टी को पहली तरजीह दें। FM 107

0: आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, दी अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. FM 107
3: par har gana hit. Har dusra gana super hit.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम वर्जिश के बाद की जो स्ट्रेचिंग है उस पर बात करेंगे कि उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बहुत से अफराद जो एक्सरसाइज है वो मुकम्मल होते ही फौरन बैठ जाते हैं या अपनी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उसमें मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन माहिरीन सेहत एक्सरसाइज के बाद चंद मिनट स्ट्रेचिंग करने का मशवरा देते हैं। एक्सरसाइज के दौरान हमारे मसल्स मुसलसल काम करते हैं और सुकड़ते रहते हैं। एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद स्ट्रेचिंग मसल्स को आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामूल की हालत में वापस लाने में मदद देती है। एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग का एक अहम फ़ायदा ये है कि ये मसल्स की अकड़न और सख्ती को कम कर सकती है, ख़ास तौर पर अगर आपने रनिंग की हो।

0: साइकिल चलाई हो, वजन उठाया हो, तो स्ट्रेचिंग जिस्म को आराम पहुंचाती है। स्ट्रेचिंग ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे मसल्स तक ऑक्सीजन और गजाई अज्जा बेहतर अंदाज में पहुंचते हैं। ये अमल जिस्म की बहाली या रिकवरी में मददगार साबित होता है। एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग जिस्म की लचक बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है, और अगर स्ट्रेचिंग को रोज़मर्रा का मामूल बना लिया जाए तो फिर हमारे जिस्म की हरकत बेहतर रहती है और रोज़मर्रा के जो काम है वो आसानी से सर अंजाम आप दे सकते हैं। स्ट्रेचिंग ज़हनी सुकून भी फराहम करती है। वर्जिश के बाद चंद मिनट गहरी सांसों के साथ स्ट्रेचिंग करने से जिस्म और दिमाग दोनों को आराम मिलता है। ये तनाव कम करने और मुस्बत एहसास पैदा करने में मददगार साबित हो सकती है। लिसनर्स, जैसे कि आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो कोई भी जो आप स्ट्रेच कर रहे हैं किसी भी मसल पर, तो 15 से 30 सेकंड तक उसको बरकरार रखिए और झटके देने से गुरेज कीजिए। अगर किसी शख्स को जॉइंट्स का मसला हो, शदीद दर्द हो या कोई और तिबी बीमारी हो, तो इसे स्ट्रेचिंग शुरू करने से पहले अपने मॉलेज या फिर फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। लिसनर्स, वर्जिश या एक्सरसाइज सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी का नाम नहीं है, बल्कि इसके आगाज़ और इख्तिताम को सही तरीके से सर अंजाम देना बेहद अहम है। एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग जिस्म को तैयार करती है, जबकि एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग जिस्म की बहाली में मदद करती है। तो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज ही स्ट्रेचिंग को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamualaikum साथियों, welcome back to Eco Switch with Safa on FM 107, जहां हम बात करते हैं उन simple lifestyle changes की जो environment को green बनाती हैं। तो भाई हमारा आज का topic ये है, क्या है भाई? Balcony gardening। ये मेरा सबसे favorite topic है भाई। यानी अपनी छोटी सी balcony को एक mini garden में बदल देना। साथियों अक्सर हम ये सोचते हैं कि gardening के लिए जमीन या बड़ा स्पेस चाहिए होता है, लेकिन इको स्विच हमें ये बताता है कि सिर्फ थोड़ी सी जगह पर भी थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी केयर से आप अपने घर को एक छोटा सा ऑक्सीजन हब बना सकते हैं। जरा सोचिए, आपके घर की बैल्कनी है जो मोस्टली कपड़े या एक्स्ट्रा बॉक्सेस रखने के लिए काम आ जाती है। अब इको स्विच अप्रोच से वही बैल्कनी एक ग्रीन स्पेस बन सकती है, जहां आप तुलसी, मिंट, हाय वो हरा धनिया भी अक्सर औकात में उगाती हूँ, ये छोटे मोटे जो प्लांट्स है ना, आप उगा सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 पॉट्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए भाई, आप अपनी बैल्कनी को ना एक रिफ्रेशिंग सा कॉर्नर बना सकते हैं। अक्सर औकात गर्मियों में चलने वाले फूल भी होते हैं भाई, वो भी आप वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं। जब आप सुबह उठकर वहाँ फ्रेश एयर और ग्रीनरी देखते हैं ना, और वो रंग बिरंगे फूल, तो ओए होए भाई, क्या तो मेंटल पीस आपका इम्प्रूव होता है, मेरा तो होता है भाई। देखिए, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, ये इंडोर एयर को 5 से 25% तक इम्प्रूव कर सकते हैं बाय फिल्टरिंग पोल्यूटेंट्स। एक और बात ये कि एक छोटा सा प्लांट डेली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो एक इंसान की ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए, उसके साइकिल के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा, ये जो अर्बन एरियाज में सिर्फ 10% ग्रीनरी इंक्रीज करने से टेम्परेचर में 1 से 3 सेल्सियस तक रिडक्शन हो सकती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हमारा नासा है ना, जिसके बारे में सब बात करते हैं, नासा की रिसर्च के मुताबिक कुछ इंडोर प्लांट्स हार्मफुल टॉक्सिंस को भी एब्जॉर्ब करते हैं और एयर क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। साथियों, इको स्विच का यहाँ आइडिया बड़ा सिंपल सा है। बैल्कनी गार्डनिंग सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि इको सॉल्यूशन है। जब हम अपनी बैल्कनी को ग्रीन स्पेस बनाते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कराते हैं और ऑक्सीजन रिलीज इंक्रीज होता है। इसी के साथ ही अर्बन हीट को रिड्यूस भी करती है ये चीज। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हर अपार्टमेंट बिल्डिंग में 30% बैल्कनीज ग्रीन हो जाए, तो सराउंडिंग टेम्परेचर नोटिसेबली रिड्यूस हो सकता है, स्पेशली समर सिटीज में। अच्छा साथियों, जरा सोचिए, आप हर हफ्ते मार्केट से फ्रेश पुदीना और धनिया खरीदते हैं ना, लेकिन वो 2 से 3 दिन में क्या होता है, खराब हो जाता है। अब अगर वही हर्ब्स आप अपनी बैल्कनी में ग्रो करें, मैं तो करती हूँ भाई, तभी बोल रही हूँ, तो आपका पता है क्या होगा, आपको फ्रेश सप्लाई मिलती रहेगी, पैकेजिंग वेस्ट भी कम हो जाएगा और आपकी कॉस्ट भी ना धनिया पुदीना खरीदने की कम हो जाएगी। तो भाई इको स्विच अप्रोच ये कहता है कि फार्म टू टेबल सिर्फ रूरल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि बैल्कनी टू किचन भी हो सकता है भाई। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ले लेते हैं। अब कुछ सिंपल इको स्विच टिप्स जो हर कोई फॉलो कर सकता है। पहली टिप ये कि इजी प्लांट्स से स्टार्ट करें साथियों, जैसे कि पुदीना हो गया, बेसिल हमें जिसे तुलसी कहते हैं, या वो जो मनी प्लांट होता है जो लो मेंटेनेंस होता है, वो आप अपने पास लगा कर देखें। दूसरी चीज ये कि रिसाइकल कंटेनर्स यूज करें, जैसे ओल्ड बॉटल्स हो गई, कैंस हो गए या बकेट्स हो गए, उनको प्लांटेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि भाई डेली 10 से 15 मिनट वाटरिंग रूटीन बनाएं। चौथी चीज ये कि वर्टिकल गार्डनिंग यूज करें, अगर स्पेस कम हो वॉल्स और रेलिंग्स का भी यूज आप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपोस्टिंग स्टार्ट करें। किचन वेस्ट से नेचुरल फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथियों, इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हर एम्प्टी स्पेस एक अपॉर्चुनिटी होती है। बैल्कनी गार्डनिंग हमें पेशेंस, केयर और सस्टेनेबिलिटी सिखाती है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग गार्डनिंग एक्टिविटीज करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव होती है। मतलब ये कि सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी ये चीज बहुत बेनिफिशियल है। आखिर में साथियों, इको स्विच का मैसेज बड़ा सिंपल सा है, और वो ये है कि हर बैल्कनी एक छोटा सा इकोसिस्टम बना सकती है। आपका 3 से 4 पॉट का छोटा सा गार्डन भी एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है भाई। हर प्लांट सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप अपनी बैल्कनी देखें, एक छोटा सा इको स्विच जरूर ऑन करें। कैन दिस स्पेस बिकम ग्रीन टुडे? मेरे लिए तो हमेशा यस होता है, आपके लिए क्या होगा? मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहाँ हर पॉट एक फ्यूचर ग्रो करता है और हर लीफ एक नई सांस देता है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
0: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज हम बात करेंगे कम बोलने और ज्यादा सुनने की अहमियत पर। अक्सर हम जल्दी में ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन असल हिकमत ये है इंसान ज्यादा सुने और कम बोले। सुनना एक ऐसी स्किल है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब हम किसी की बात गौर से सुनते हैं और हम उसे अहमियत देते हैं और उसका दिल जीत लेते हैं, दूसरी तरफ बिना समझे सोचे बोलने से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि चुप रहें, बल्कि ये है कि सिर्फ वो ही बात की जाए जो जरूरी और फायदेमंद हो। इस आदत से इंसान ज्यादा समझदार और बैलेंस्ड नजर आता है। आज का अमल ये है कि गुफ्तगू के दौरान दूसरों को पूरी तवज्जो से सुने और जवाब देने से पहले थोड़ा सोच लें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
2: One Step to 2030.
1: आज के इस एपिसोड में, इस सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ एक नए टॉपिक पे, और ये टॉपिक है क्लाइमेट इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल वेदर कंट्रोल. जो 2030 यानी आने वाले दिनों में हमें समझना बड़ा जरूरी है. तो पहले तो ये जान लें कि क्लाइमेट इंजीनियरिंग का मतलब क्या है. देखिए, क्लाइमेट इंजीनियरिंग का मतलब है ह्यूमन टेक्नोलॉजी यूज करके अर्थ के क्लाइमेट को कंट्रोल करने की कोशिश करना. इसका पर्पस ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स हैं या फिर ड्राउट्स हैं उन्हें कंट्रोल करना है. अब क्लाइमेट इंजीनियरिंग है क्या? क्लाइमेट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट भी हमें समझना है. बेसिकली दोस्तों, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जहां साइंटिस्ट अर्थ के एनवायरमेंट में चेंजेस लाकर टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कराना या सनलाइट को रिफ्लेक्ट करना, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना, इससे ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड स्लो हो सकती है. अब हमें यह भी समझना है कि कितने तरह के क्लाइमेट इंजीनियरिंग है. SRM, ये नाम तो आपने सुना होगा. नहीं सुना तो चलिए मैं आपको बताती हूँ. SRM का मतलब है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट. इस मेथड में सनलाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट किया जाता है ताकि अर्थ कूल रहे. एग्जाम्पल के तौर पे, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स छोड़ना जो कि सनलाइट रिफ्लेक्ट करे, कार्बन को कैप्चर करना, इसमें CO2 को हवा से निकाल कर स्टोर किया जाता है, स्पेशल मशीन्स जो कि कार्बन एब्जॉर्ब करती हैं, ट्रीज लगाना. अब एक और कॉन्सेप्ट जो हमें और आपको समझना है वो है आर्टिफिशियल वेदर कंट्रोल. तो इसका मतलब है कि ह्यूमंस बारिश, स्टॉर्म्स और टेम्परेचर कंट्रोल कर सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल, क्लाउड सीडिंग, ये तो आपने सुन रखा है ना. बारिश बढ़ाने के लिए क्लाउड्स में केमिकल स्प्रे करना, विच इज कॉल्ड क्लाउड सीडिंग. वहीं पे स्ट्रॉम वीकनिंग टेक्नोलॉजी, कुछ कंट्रीज ऑलरेडी क्लाउड सीडिंग यूज करती हैं और कुछ कंट्रीज स्ट्रॉम वीकनिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती हैं. वैसे इसके फायदे भी हैं. एक तो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो रही है, टेम्परेचर को स्टेबल रखा जा सकता है. दूसरा है डिजास्टर प्रिवेंशन, यानी फ्लड्स और ड्राउट्स कम हो सकते हैं. तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्रीकल्चर इम्प्रूव होती है, फार्मर्स को बेटर वेदर मिल सकता है, मिलेगा. प्रोटेक्शन, मतलब अब पूरी तरह से डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ चीज़ें उनके हाथ में भी आ जाएंगी. वहीं पर चौथी इम्पोर्टेंट बात है वाटर सप्लाई. बारिश कंट्रोल करके पानी की शॉर्टेज को सॉल्व किया जा सकता है. देखिए, वहीं जहाँ इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वहीं कुछ रिस्क और प्रॉब्लम्स भी हैं. एक तो अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स. क्लाइमेट सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं दैट नोबडी नोज नाउ. वहीं पर हमने नेचर के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी कि एनवायरमेंटल डैमेज इतना बड़ा है, उसे रिपेयर करना

0: भी उतना आसान लगता नहीं है। नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है और हो चुका है। वहीं पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। अगर एक कंट्री वेदर कंट्रोल करे तो दूसरी कंट्री को उसका नुकसान हो सकता है। इसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े भी हैं काफी कंट्रीज। चौथी इंपॉर्टेंट बात है हमारी और आपकी समझने के लिए, वो है डिपेंडेंसी। लोग नेचुरल क्लाइमेट को फिक्स करने की बजाय आर्टिफिशियल सिस्टम्स पर डिपेंड क्यों हो रहे हैं? ये सवाल बड़ा ही तकलीफ दे सवाल है। देखिए, एथिकल इश्यूज हैं। किसका कितना कंट्रोल होगा? क्या कोई एक कंट्री या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे क्लाइमेट को कंट्रोल करेगी? फिर क्या फेयरनेस को मेंटेन कर पाएंगे? अगर एक रीजन को बेनिफिट हो और दूसरे को नुकसान हो तो क्या ये फेयर है? वहीं आने वाली जनरेशन पर इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, क्लाइमेट इंजीनियरिंग इजी नहीं है। साइंटिस्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक्यूरेट प्रेडिक्शन मुश्किल है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अननोन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है, रिसर्च अभी भी चल रही है। कुछ लोग क्लाइमेट इंजीनियरिंग को जरूरी समझते हैं जबकि कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये लास्ट ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज को रोकने का। ऑपोनेंट्स कहते हैं कि ये डेंजरस है और नेचुरल सिस्टम को हार्म करेगा। अब फ्यूचर क्या कहता है? फ्यूचर में हो सकता है एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप हो जाएं, वेदर कंट्रोल में एक्यूरेसी आ जाए, ग्लोबल एग्रीमेंट्स भी बन जाए, लेकिन इसका यूज केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल वेदर कंट्रोल एक पावरफुल टूल हो सकते हैं जो कि अर्थ को डिजास्टर से बचाने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इनके रिस्क और एथिकल इश्यूज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंसान को बैलेंस मेंटेन करना होगा टेक्नोलॉजी में और नेचर को भी रिस्पेक्ट करना है। अगर सही प्लानिंग और कोऑपरेशन हो तो ये टेक्नोलॉजीज ह्यूमैनिटी के लिए या ह्यूमंस के लिए फ्यूचर में सिक्योर हो सकती हैं, और अगर सही तरीके से ना की जाए तो बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। चलिए, मेरा काम तो था कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा प्रिपेयर कर दूं कि आपको समझ में आ जाए कि ये चीजें हैं क्या और फ्यूचर में किस तरह से ये डोमिनेट करेंगी। फिलहाल डराना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको एजुकेट करना है, आपको अवेयर करना है कि आप भी इन चीजों से अवेयर रहें, और हो सकता है तो अपने बच्चों को भी उसी की उन चीजों को किस तरह से अडॉप्ट करना है, वो स्किल्स और गुड बैलेंस के साथ आप सिखा पाए। फिलहाल मुझे नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2020.
1: Maximum music, maximum fun. On FM 107, दिल से देसी।

0: कतर में आकर एक्सपेक्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर।
1: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वो मसला है जो हर शख्स को मालूम होना चाहिए। हाँ है तो ये एक मसला ही, मगर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आसानी से सॉल्व हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस की। बहुत से लोग इससे गुजरते हैं, ये कोई अजीब चीज नहीं है। आजकल के दौर में बहुत से लोग मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार होते हैं। तो दोस्तों कैसे आप इस मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकते हैं, क्या चीजें इस मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस को हवा देती हैं, और कैसे आप इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे, रोशनी डालेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में, ताकि आप इस तरह के पिटफॉल से बच सकें। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप

0: दोस्तों इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां हम फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107
1: कतर में आकर एक्सपेक्ट तो बन गए पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है
0: दोस्तों हर प्रोग्राम की तरह कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे तो चलिए पहले थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं भाई सबसे पहले रिटायरमेंट गैप ये वो शॉर्टफॉल है जो एक शख्स ने रिटायरमेंट के लिए सेव किया होता है और जो उसे अपनी लाइफस्टाइल को रिटायर होने के बाद मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है वहीं इमरजेंसी फंड की बात करें तो ये वो सेविंग्स होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए रखी जाती हैं जैसे मेडिकल बिल्स जॉब लॉस या फिर कार रिपेयर मिडलाइफ इंडिविजुअल्स अक्सर देखते हैं कि उनका इमरजेंसी फंड डिप्लेटेड हो चुका होता है मल्टीपल ऑब्लिगेशंस की वजह से और वहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो ये एक कॉम्पेरेटिव मेजर है जो मुख्तलिफ इलाकों में जिंदगी गुजारने के खर्चे का अंदाजा देता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का बढ़ना मिडलाइफ फाइनेंशियल स्ट्रेस में इजाफे से जुड़ा होता है दोस्तों क्या आप एक नॉन रेसिडेंट हैं जो अपनी होम कंट्री से 10 साल से ज्यादा के अरसे से बाहर रह रहे हैं क्या आपने कभी अपनी होम कंट्री में एक खूबसूरत घर और अपनी पसंद की लाइफस्टाइल के साथ रिटायर्ड लाइफ का ख्वाब देखा है तो इंशाल्लाह ये ख्वाब तभी पूरा हो सकता है दोस्तों जब आप कुछ सिंपल और इफेक्टिव एक्शंस लें आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए ले जाऊंगा ताकि ये ख्वाब हकीकत बन सके सामीन मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसी सूरत हाल है जो अक्सर लोग फौरन समझ जाते हैं ये क्राइसिस आमतौर पर 40 या 50 साल की एज के दरमियान लोगों को हिट करता है और रिटायरमेंट एज तक जा सकता है मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस के 10 में से 9 केसेस सेल्फ इन्फ्लेक्टेड वाउंड्स होते हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप हो जाए हाँ कुछ बहुत कम केसेस हो सकते हैं जो कंट्रोल से बाहर हो इसका मतलब ये है कि जिस शख्स के साथ ये हो रहा है वो खुद इस सिचुएशन का जिम्मेदार होता है भाई ये एक अहम टॉपिक है चाहे आप वर्कफोर्स में अभी नए आए हो सैलरी अर्न करना शुरू की हो या आप 30 35 40 45 या 50 किसी भी एज बैंड में हो ये हर किसी पर अप्लाई करता है अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो इन पॉइंट से मिलता जुलता है तो ये वक्त है कि आप बैठकर इस पर गौर करें और देखें कि आप किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और कैसे इनसे बाहर आ सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सरवर मिर्जा के साथ आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ तो कहीं भी मत जाइएगा जुड़े रहिए हमारे साथ सुनते रहिए FM 107

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए 8 पॉइंट्स लेकर आया हूं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहला मसला होता है करियर के शुरुआती मरहले में बड़ी प्रॉपर्टी लेना। अक्सर पेरेंट्स और दोस्तों का मशवरा होता है कि पहला काम घर या जमीन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि रियल एस्टेट से पैसा बना है। लेकिन दोस्तों, ये एक ट्रैप है जिससे बचना चाहिए। आपके पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए बड़ा लोन लेना पड़ता है जिसका ईएमआई आपकी सैलरी और फैमिली एक्सपेंसेस के साथ मिलकर कैश क्राइसिस क्रिएट करता है। इस वजह से क्रेडिट कार्ड यूज, लोन्स और फैमिली डिस्प्यूट्स तक हो सकते हैं। ये सब मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का बीज बो सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना जरूरी नहीं है करियर के स्टार्ट में ही, इसे पोस्टपोन भी किया जा सकता है, या जरूर करें जब सैलरी और सेविंग बढ़ जाएं तो इसके बारे में सोचिएगा। याद रखें, ये एक स्लो प्रोसेस है जो 40 से 50 की एज में आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जिससे बचना बेहतरीन स्ट्रेटजी है। दूसरा पॉइंट है बच्चों के दरमियान कम एज गैप। मिसाल के तौर पर अगर आपके दो बच्चे हैं तो बेहतर है कि उनके दरमियान एज गैप हो। आजकल एक बच्चा भी एक फुल टाइम प्रोजेक्ट जैसा है, एजुकेशन, कोचिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, हॉलीडेज, सब कुछ महंगा हो गया है। अगर दोनों बच्चे छोटी एज गैप के साथ हों तो उनकी स्कूलिंग और एक्सपेंसेस एक साथ आती हैं। भाई, बच्चों के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर बजट क्लियर ना हो तो ना रिटायरमेंट प्लानिंग होती है ना प्रॉपर एजुकेशन। इसलिए एज गैप और बजट प्लानिंग दोनों पे गौर करें। तीसरा मसला होता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल करना। आजकल लोगों के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ऑफर्स, मेंबरशिप्स और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में, लेकिन क्रेडिट कार्ड असल में सबसे महंगा लोन होता है। यह आपकी फ्यूचर सैलरी को आज खर्च करने का जरिया बनता है। अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं डिनर, ज्वेलरी, वेकेशंस, तो ये सब एक स्नोबॉल बनकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ को मैस करते हैं। सैलरी लिमिटेड होती है और अगर इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो आपकी जिंदगी उसी में फंस जाती है। जॉब लॉस, इलनेस या फैमिली इश्यूज के वक्त ये बर्डन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का यूज सोच समझ के करें, हर महीने का बिल क्लियर करें और ईएमआई कन्वर्जन्स को अवॉइड करें। ये भी मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का एक मेजर रीजन बन सकता है। चौथा मसला है ख्वातीनों हजरात, लोन्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करना। हर जगह से प्रमोशनल कॉल्स आती हैं, 0% इंटरेस्ट, लो रेट लोन्स, इन्वेस्ट इन इंडिया पाकिस्तान, लेकिन ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। असल में हर लोन के साथ

बाद हिडन कॉस्ट होती हैं। फ्लैट रेट इंटरेस्ट को अगर आप कैलकुलेट करें तो एक्चुअल इंटरेस्ट ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर 6 पर फ्लैट तो 11% रिड्यूसिंग। मिडिल ईस्ट में इस्लामिक बैंकिंग के रूल्स के मुताबिक अगर आप लोन जल्दी क्लियर भी कर दें फिर भी फुल इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस वजह से लोन लेना आपको फाइनेंशियल ट्रैप में डाल सकता है। इसीलिए अनसोलिसिटेड लोन्स ऑफर्स को अवॉइड करें। हर लोन आपकी फ्यूचर सैलरी से रीपे होता है और अगर जॉब लॉस, इलनेस या इमरजेंसी हो गई तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ मेस हो सकती है। ये भी मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का एक मेजर सबब बन सकता है। पांचवे नंबर पे हम बात करेंगे साहब इमरजेंसी फंड की कमी की। इमरजेंसी फंड जिंदगी का रिजर्व फ्यूल है। आपको कम से कम 2 साल के शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए एक लिक्विड और नॉन वोलेटाइल फंड मेंटेन करना चाहिए, जैसे जॉब ब्रेक, हेल्थ इश्यूज

जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए और मार्केट क्रैश का रिस्क ना हो। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड, ईएमआई या पर्सनल लोन लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जो मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का सबब बन सकता है। अर्ली करियर में ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें साइंटिफिक प्लानिंग के साथ। छठा पॉइंट है दोस्तों, नेगेटिव लिवरेज का ज्यादा इस्तेमाल। भाई लिवरेज का मतलब है कम पैसे से ज्यादा इन्वेस्ट करना, जैसे 100 रियाल से 1000 रियाल के स्टॉक्स लेना। अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर नीचे गया तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, मार्जिन ट्रेडिंग, ये सब हाई रिस्क लिवरेज टूल्स हैं जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते और फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया एड्स और इन्फ्लुएंसर्स जो लिवरेज को प्रमोट करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। लिवरेज दोनों तरफ से काट सकता है, लेकिन अक्सर लोगों के लिए ये नेगेटिव साइड पर ही काटता है। ये मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का एक स्ट्रॉन्ग रूट कॉज है, इसे किसी भी कॉस्ट पर अवॉइड करें। सातवां पॉइंट है दोस्तों, लाइफस्टाइल अपग्रेड का गलत इस्तेमाल। भाई लाइफस्टाइल का मतलब है गैजेट्स, घर का साइज, इंटीरियर्स, कार्स, हॉलीडेज और बच्चों की एजुकेशन। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? लाइफस्टाइल एक हैबिट बन जाती है। अगर आपने अपग्रेड किया और जॉब या इनकम में प्रॉब्लम आई तो उस लेवल से नीचे आना बहुत पेनफुल होता है। लोग हर नए फोन, गाड़ी या प्रॉपर्टी के चक्कर में कैश बर्न करते हैं बिना जरूरत के। भाई हर अपग्रेड से पहले सोचिए, ये जरूरत है या सिर्फ चाह। मॉडरेट लाइफस्टाइल रखें और अगर अपग्रेड करना हो तो स्लोली करें, वरना ये भी मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का सबब बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम का आखिरी पॉइंट है हाई कैश बर्न रेशियो। कैश बर्न रेशियो का मतलब है कि आप कितना कमा रहे हैं और उसमें से कितना खर्च कर रहे हैं। ये सेविंग के बारे में नहीं है, ये बताता है कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं। अगर आप 100 यूनिट्स ऑफ करेंसी, चाहे वो रियाल हो, डॉलर हो, दिरहम्स हो, रुपीस हो या कुछ और, कमा रहे हैं और उसमें से 70% खर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका कैश बर्न रेशियो 70% है, और अगर आप 90% खर्च कर रहे हैं तो कैश बर्न रेशियो 90% है। अगर आप 100 out of 100 खर्च कर रहे हैं तो ये 100% है, और अगर ये 100% से भी ज्यादा हो तो क्या करें? ये भी मुमकिन है कुछ लोग 110% 120% तक खर्च करते हैं। ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आता है? इसके सिर्फ दो सोर्सेस हो सकते हैं। पहला, भाई या तो आप फैमिली ट्रेजर बेच रहे हैं, मतलब असेट्स जो आपके वालदेन ने बनाए या जो आपने खुद पहले बनाए। दूसरा, आप लोन ले रहे हैं, मतलब आप अपने फ्यूचर को बोरो करके आज खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कैश बर्न रेशियो 70% से ज्यादा है तो आपकी जिंदगी फाइनेंशियल डेंजर में है।

ऑप्शन है कि आप मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहले ये जानिए कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। सिर्फ कंपल्सरी एक्सपेंसेस को देखिए जो आपके घर में हो रहे हैं, फिर रेशियो कैलकुलेट कीजिए। अगर ये 70% से ज्यादा है तो ये डेंजर जोन है, अगर ये 90% से ज्यादा है तो आपकी रिटायरमेंट डेंजर में है, और अगर ये 100% या उससे ज्यादा है तो आप ऑलरेडी मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। वहीं अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो कुछ केस में कैश बर्न रेशियो थोड़ा ज्यादा हो सकता है भाई। करियर की शुरुआती फेज में जब सैलरी कम होती है और जरूरत ज्यादा होती है, या फैमिली लाइफ की शुरुआत में नई शादी, नया घर, नया फ्रिज या नई कार वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप 35 साल से ऊपर हैं और आपका कैश बर्न रेशियो 70% से ज्यादा है तो ये एक डेंजर सिग्नल है। तो दोस्तों, लुब्बे लुबाब के इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, बैठिए और देखिए आप क्या कमा रहे हैं, आप क्या खर्च कर रहे हैं, और क्या ये खर्चे आपकी जरूरत हैं या चाह। अगर ये चाहत हैं तो उन्हें पोस्टपोन या कैंसिल कर दीजिए, और नीड्स यानी जरूरियात हैं तो उन पर फोकस कीजिए। अगर नीड्स अनअवॉइडेबल हैं और कैश बर्न रेशियो फिर भी मैनेजेबल नहीं है तो आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी। स्किल्स अपग्रेड कीजिए, जॉब चेंज कीजिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं ताकि कैश बर्न रेशियो कम हो। बॉटम लाइन, अगर आप एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अर्ली फेज ऑफ लाइफ के अलावा 70% से ज्यादा कैश बर्न रेशियो एक सिग्नल है कि आप मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करते हैं मिडिल ईस्ट में मिड लाइफ के लोगों पर पड़ने वाले कुछ प्रेशर्स के बारे में। भाई बहुत से लोग जो फाइनेंशियली कोपिंग या फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, वो अक्सर अपने प्राइम वर्किंग, फैमिली और केयर गिविंग ईयर्स में ही होते हैं। इसका मतलब है कि मिड लाइफ के बहुत से अफराद फाइनेंशियल प्रेशर में हैं। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे कि रेंट, खाना और यूटिलिटीज सबसे बड़ा कंसर्न है, खासकर मिडिल ईस्ट जैसे मुल्कों में। जो लोग अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए ये कॉस्ट और ज्यादा होती है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। कंज्यूमर डेट और पर्सनल लोन्स का हाई लेवल भी मिड लाइफ में बर्डन बढ़ा देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास मोर्टगेज, बच्चों की एजुकेशन कॉस्ट वगैरह होती है। इसके अलावा जिन मुल्कों में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वहां मिड लाइफ पेरेंट्स पर खास तौर पर असर होता है। जॉब इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और करेंसी डीवैल्यूएशन उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की सहूलियत को कमजोर कर देती हैं, और इस वजह से पेरेंटल स्ट्रेस में भी इजाफा होता है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पे आज के प्रोग्राम में हमने बात की। ये लिमिटेड नहीं है, हमने चंद मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। भैया इंश्योर कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में इनमें से किन पॉइंट से दो चार हैं। अगर कोई डेंजर सिग्नल है तो ये वक्त है कि आप इस पर काम करें और इंश्योर करें कि आप इस मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस के ट्रैप में ना फंसें। तो इसी के साथ सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी। हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली

0: की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके आयाने सल्तनत के पास भेजा और उसने जाकर कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। फिर जब उसने हमारी निशानियां उनके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगे। हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़ कर थी और हमने उनको आजाब में धर लिया कि वो अपनी रविश से बाज आए। हर आजाब के मौके पर वो कहते, ऐ साहिर, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है उसकी बिना पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जूं ही कि हम उन पर से आजाब हटा देते वो अपनी बात से फिर जाते थे। एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, लोगो, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता मैं बेहतर हूं या ये शख्स जो जलील व हकीर है और अपनी बात भी खोल कर बयान नहीं कर सकता? क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता इसकी अर्दली में ना आया? उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने उसकी इताअत की। दरहकीकत वो थे ही फासिक लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उनको इकट्ठा गर्क कर दिया और बाद वालों के लिए पेश रौ और नमूना इबरत बना कर रख दिया।

क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया है? अच्छा, तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। क्या इन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनके राज की बातें और इनकी सरगोशियां सुनते नहीं हैं? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। इनसे कहो, अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। पाक है आसमानों और जमीन का फरमारवा, अर्श का मालिक, उन सारी बातों से जो ये लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। अच्छा, इन्हें अपने बातिल ख्यालात में गर्क और अपने खेल में मुनहमिक रहने दो, यहां तक कि ये अपना वो दिन देख लें जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। वही एक आसमान में भी खुदा है और जमीन में भी खुदा, और वही हकीम आलीम है। बहुत बाला तर है वो जिसके कब्जे में जमीन और आसमानों और हर उस चीज की बादशाही है जो जमीनों आसमान के दरमियान पाई जाती है, और वही कयामत की घड़ी का इल्म रखता है, और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। उसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं वो किसी शफाअत का इख्तियार नहीं रखते, इल्ला ये कि कोई इल्म के बिना पर हक की शहादत दे। और अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहां से ये धोखा खा रहे हैं? कसम है रसूल के इस कौल की कि ए रब, ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते। अच्छा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे दरगुजर करो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा।

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम। कसम है इस किताब मुबीन की कि हमने इसे एक बड़ी खैर और बरकत वाली रात में नाजिल किया है, क्योंकि हम लोगों को मुतनब्बेह करने का इरादा रखते थे। ये वो रात थी जिसमें हर मामले का हकीमाना फैसला हमारे हुक्म से सादर किया जाता है। हम एक रसूल भेजने वाले थे तेरे रब की रहमत के तौर पर, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। आसमानों और जमीन का रब और हर उस चीज का रब जो आसमानों जमीन के दरमियान है, अगर तुम लोग वाकई यकीन रखने वाले हो। कोई माबूद उसके सिवा नहीं है, वही जिंदगी अता करता है और वही मौत देता है। तुम्हारा रब और तुम्हारे उन असलाफ का रब जो पहले गुजर चुके हैं, मगर फिल वाकई इन लोगों को यकीन नहीं है, बल्कि ये अपने शक में पड़े खेल रहे हैं। अच्छा, इंतजार करो उस दिन का जब आसमान सरीह धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा। ये है दर्दनाक सजा। अब कहते हैं कि परवरदिगार हम पर से ये आदाब टाल दे, हम ईमान लाते हैं। इनकी गफलत कहां दूर होती है? इनका हाल तो ये है कि इनके पास रसूल मुबीन आ गया, फिर भी ये उसकी तरफ मुल्तफित न हुए और कहा कि ये तो सिखाया पढ़ाया बावला है, हम जरा अदाब हटाए देते हैं, तुम लोग फिर वही कुछ करोगे जो पहले कर रहे थे। जिस रोज हम बड़ी जर्ब लगाएंगे वो दिन होगा जब हम तुमसे इंतकाम लेंगे।